राखी का त्योहार सभी ब्रह्मावत्सों के लिए अलौकिकता की छाप छोड़ने वाला है। सभी के मन में सुंदर संकल्पों के, पवित्र संकल्पों के बीज पैदा होने लगते हैं। एक बहुत सुंदर समय होता है जब हमारे सभी सेवा केंद्रों पर बहुत ज्यादा अलौकिक वातावरण अनुभव में आता है। मुझे याद है जब दादी प्रकाशमणि थी, बिल्कुल शुरू के दिन केवल हिस्ट्री हॉल था, क्या रौनक होती थी इस दिन की। राखी बंधवा कर भी सब लोग वहीं बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे, ऐसा सुंदर प्रवाह रहता था। तो इस दिन सभी मिलकर बाबा को कुछ संकल्प भी देते हैं, न केवल प्योरिटी का, लेकिन किसी में क्रोध हो, जिससे परिवार को परेशानी हो रही हो उसको जीतने का, किसी में अभिमान ज्यादा हो उसको रियलाइज करके उस पर विजय पाने का। हम जानते हैं ये सब काम केवल प्रतिज्ञा करने से नहीं होते, लेकिन इनके लिए एक लंबे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो इस राखी के दिन सभी भाई बहने अपने अंदर कुछ विशेष परिवर्तन करने का शुभ संकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे और उस संकल्प को पूर्ण करने की प्लानिंग भी करेंगे, अर्थात पुरुषार्थ क्या करना है। कम से कम 6 मास तो राखी का त्योहार हमारे लिए वरदान बन जाएगा। बहने भाइयों को राखी बांधती हैं, दुनिया में तो ब्राह्मण भी बांधते हैं और बहने भी बांधती हैं और खर्ची भी लेते देते हैं। हम लोग अपना कोई मनोविकार देते हैं तो आज कोई सूक्ष्म संकल्प, कोई आकर्षण, कोई सूक्ष्म संशय का संकल्प, कोई अपने जीवन में निराशा का संकल्प, विनाश नहीं हो रहा है पुरुषार्थ करते करते थक गए हैं इसको समाप्त करने का संकल्प, ऐसा एक संकल्प करते रहें। और याद रखेंगे विनाश की गति पहले धीमी ही होगी, फाइनल विश्व युद्ध तो अंत में होगा, लेकिन बाबा ने मुरली में कहा विनाश में मुख्य भूमिका निभाएंगी अर्थक्वेक्स, प्राकृतिक प्रकोप। तो हमें उन्हें भी साक्षी होकर देखने का और सबको सकाश देने का एक सुंदर संकल्प करना है राखी के पर्व पर। मेरी तो ये शुभ भावना है कि सभी अपनी दिनचर्या में 15 मिनट ऐसा फिक्स करें, फिक्स, जिसमें संसार को सकाश दें, प्रकृति को भी सकाश दें, जिनको विघ्न बहुत आ रहे हैं जीवन में उनको भी सकाश दें। टाइम फिक्स करने से वही समय हमें आकर्षित करने लगता है और हम जैसे तैसे करके भी अगर नियमबद्ध हो जाएं तो सचमुच नियमों में बड़ा बल होता है। मान लो आपके घर में मेहमान ही आ गए और आपको 15 मिनट विश्व को सकाश देनी है, आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, तो आप उन्हें कह भी सकते हैं कि मुझे 15 मिनट साधना करनी है, कुछ आप ये कार्य कर लो, एंजॉय कर लो, कहीं घूम फिर लो और मैं 15 मिनट के बाद आता हूँ, आती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे बहुत अच्छा हो कि सवेरे 6 बजे तक ऐसा सकाश देने का अपना टाइम सभी फिक्स करें। ये न केवल बहुत सुंदर सेवा होगी बल्कि अपनी स्थिति को महान बनाने का भी एक बहुत ही भव्य और आकर्षक प्रोग्राम रहेगा। बाबा की मुख्य प्रेरणा है और ये सकाश देने की सेवा विनाश काल में हमें प्रकृति की मदद की पात्र भी बनाएगी। तो इस त्योहार को इस अलौकिक ढंग से सभी मनाएंगे, राखी बंधवाएं आप बहनों से, आपको किसी को बांधनी है, बहन है, आप भी बांधें, लेकिन ऐसी शुभ भावनाएं रखें ताकि दूसरे का पूरा कल्याण हो जाए। क्योंकि संगम युग पर जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कर लिया हो उसको जीवन में बहुत सुख मिलता है। तो राखी बांधें और बंधवाएं और इस दिन का बहुत आनंद लें, इस समय को, राखी को, अपने संकल्प को पूरा महत्व दें।
रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।

ओम शांति। आज है 28 अगस्त 2026 और आज है भारत का सबसे पावन त्योहार रक्षाबंधन। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। यह त्योहार भारत में बहुत सुंदर तरीके से मनाए जाते हैं, परंतु हर त्योहार के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है, जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस संसार में अवतरित होकर के जो कर्म करते हैं उस कर्म का ही यादगार त्योहार के रूप में मनाया गया है। रक्षाबंधन जब कहते हैं तो वैसे तो किसी को बंधन प्रिय नहीं है, लेकिन ये रक्षा का बंधन है। जहां परमात्मा शिव जब इस संसार में आते हैं तो हमारी पवित्रता की रक्षा करते हैं और उसके लिए बहुत सुंदर एक दिव्य संबंध के बंधन में हमें बांधते हैं। परमात्मा को कहा गया है कि वह पतित पावन है, तो वो आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प करवाते हैं और ये दृढ़ संकल्प करने से ही परमात्मा हमारे परम रक्षक बन जाते हैं। सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधने से पहले आत्मस्मृति का तिलक लगाया जाता है, अर्थात परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, एक पवित्र आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ स्मृति में स्वयं को स्थित कराते हैं, अर्थात आत्मनिश्चय करते हैं। साथ ही साथ फिर ये पवित्र रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसमें भी जो दो धागे हैं, परमात्मा कहते हैं ये दो धागे हैं हिम्मत और उमंग उत्साह के। जीवन में हमेशा बातें तो आएगी, लेकिन हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना है और उमंग उत्साह में सदा रहना है, खुशी से जीवन को व्यतीत करना है। अनेक बातें चुनौती आने के बावजूद भी हम अपनी खुशी को गायब न होने दें। और फिर तीन गांठे लगाते हैं, अर्थात हमें दृढ़ संकल्प करने होते हैं। पहली गांठ है जब भगवान कहते हैं कि तुम्हें स्वरक्षक बनना है, अर्थात हमारी मनस्थिति की रक्षा हमें स्वयं करनी है। अनेक विपरीत परिस्थिति में भी हमें अपनी मनस्थिति को कभी डगमगाने नहीं देना है, उसकी रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। हमारी मनस्थिति की रक्षा कोई और नहीं कर सकता है। दूसरी गांठ है मर्यादा रक्षक बनना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक भगवान ने हम बच्चों को जो ईश्वरीय मर्यादाएं दी है, उन ईश्वरीय मर्यादाओं की रक्षा भी हमें स्वयं अपने जीवन में करनी होगी। और तीसरी गांठ है यज्ञ रक्षक बनने की, अर्थात परमात्मा शिव ने आकर के यह रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है और इस रुद्र ज्ञान के रक्षक हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इस यज्ञ के वातावरण को सदा शुद्ध रखना है, इसे कभी अशुद्ध नहीं होने देना है, सदा इस यज्ञ के वातावरण की रक्षा करनी है।
इस यज्ञ को सदा निर्विघ्न बनाने का दृढ़ संकल्प हमें करना है। कोई भी प्रकार के विघ्न रूप न स्वयं बनना है, न किसी को बनने देना है। यह यज्ञ के वातावरण की रक्षा भी हमें ही करनी होगी। इस रीति से तीन रक्षक हमें बनना है, और जब हम इस तरह से दृढ़ संकल्प करते हैं तो परमात्मा भी बंधायमान हो जाते हैं ऐसी आत्माओं की रक्षा करने के लिए। पावनता का वरदान देते हुए बाबा हम सब बच्चों के श्रेष्ठ चरित्र की रक्षा करते हैं और सदा हमें श्रेष्ठ दुनिया के लायक बनाते हैं। तो ये है पावन बनने के दृढ़ संकल्प का रक्षा सूत्र। उसके बाद मुख मीठा कराना होता है, अर्थात जीवन के अंदर मधुर वचनों के साथ, मधुर बोल के साथ व्यवहार में आना है। सर्व के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार हो, ये मधुरता की मिठाई हमें बांटनी है, एक दूसरे को खिलानी है। और रिटर्न में जैसे भाई कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है, ठीक इसी तरह जब हम ये रक्षा सूत्र में बंधते हैं तो परमात्मा भी हमें बहुत सुंदर एक पावन दुनिया के गिफ्ट देते हैं। पतित पावन परमात्मा आकर के हम सबको पावन बनाए, योग्य बनाते हैं उस स्वर्गीय दुनिया में श्रेष्ठ पद के अधिकारी और पावन आत्मा संपूर्ण रीति से बनाते हैं, जहां हम विश्व के मालिक भी बनते हैं। प्रकृति जीत, माया जीत, संस्कार जीत बन जाते हैं। तो कितना सुंदर ये यादगार स्वरूप है जिसको आज के दिन त्योहार के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो पुनः पुनः सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और सदा पवित्र जीवन में बंधे रहे। इस रक्षा सूत्र में हम दृढ़ संकल्पधारी बन करके, एक मत हो करके हम पावन दुनिया जरूर लाएंगे, परमात्मा के मददगार बनेंगे, और ऐसे मददगार बनते हुए इस संसार परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। तो सभी भाई बहनों को आज के दिन की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का।
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का।
0: खुशियों के त्योहार का,
6: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
7: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना नहीं चाहते और जिसे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना भले न चाहें, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम सहिष्णु बन जाते हैं। किसी के पास जब कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे पास नहीं है, या वह कोई ऐसा परिणाम दे सकता है जो हम नहीं दे सकते, और यदि हम यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाते, तो हम ईर्ष्यालु हो उठते हैं। लेकिन यदि हम यह सब स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम प्रेरित हो जाते हैं। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते कि अब क्या करें, और यह बात हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, तो यह स्थिति हम में भय पैदा कर देती है। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन यह बात हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जोखिम उठाने का साहस अनुभव करते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो और हम उसे स्वीकार न कर पाए, तो हम में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो, लेकिन हम उसे स्वीकार कर लें, तो यह स्थिति उसे माफ कर देने में हमारी मदद करती है।

0: छुटकी, क्या बात है, उदास क्यों है इतनी?
1: भाई, राखी है।
0: तब तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना?
1: नहीं भाई, मुझ जैसी कई बहनें रो रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं कोई छेड़ रहा है, उन्हें अपनी नजरों से दूषित कर रहा है। भाई, क्या इस राखी पर आप मेरी एक बात मानोगे? क्या आप मेरे जितना हर नारी को सम्मान दोगे, ताकि मैं आपको गर्व से राखी बांध सकूं?
0: हाँ गुड़िया, मैं वचन देता हूँ कि मैं सभी बहनों और माताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखूंगा, ताकि हमारे समाज में उनका जीवन सुरक्षित हो जाए और वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत कर सकें।

जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम यह स्थिति स्वीकार भी न कर पाए, तो हम कह उठते हैं कि हमें उसकी कमी खल रही है। जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम कहते हैं कि हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। और तब भावनात्मक समीकरण काफी आसान हो जाता है। कुछ होना और उसे स्वीकार करना, यह है सकारात्मक भावना। कुछ होना और उसे स्वीकार न करना, यह है नकारात्मक भावना। तो यह कुछ या कोई नहीं है जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को मेरा स्वीकार कर लेना या स्वीकार न करना है जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है। बात इस संसार की नहीं है, बल्कि संसार के प्रति मेरी प्रतिक्रिया स्वीकार करना या न करना की है, जो मेरी भावनात्मक गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगली बार जब किसी नकारात्मक भावना के कारण हम खुद को परेशान होता पाएंगे, तो यह पूछने के बजाय कि यह क्या है या कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, हम यह देखेंगे कि किस व्यक्ति या चीज या स्थिति के प्रति मैं प्रतिरोध यानी कि स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और फिर उसका प्रतिरोध करने के बजाय मैं उसे स्वीकार कर लूँगा या स्वीकार कर लूँगी। तब नकारात्मक भावना अपने आप ही सकारात्मक भावना में रूपांतरित हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मथे दोष मढ़ना बंद कर देने और स्वीकार कर लेने की जिम्मेदारी के साथ जीवन पर प्रतिक्रिया करने से भावनात्मक कौशल की शुरुआत हो जाती है।

0: राजे से मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक। दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि आप देख किसे रहे हैं, अपने अतीत को या अपने भविष्य को। मैं या तो यह कह सकती हूँ कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या फिर यह कह सकती हूँ मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहती हूँ। आज की जमीन पर खड़े होकर आप भविष्य को देखें, अतीत को नहीं। ज्ञान को लेकर आगे देखें, पीछे नहीं। जो लोग यही कहते रहते हैं काश यदि, वे दरअसल ज्ञान को लेकर बीते कल में झांक रहे होते हैं। अगर आप अपने भविष्य निर्माण को लेकर जागरूक हैं, तो फिर अपने अतीत को दोबारा जीवित करने की अर्थहीन कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञान आपको देरी से नहीं मिलता, वह तभी मिलता है जब उसे मिलना होता है, जब आप उसे पाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। ऊपर वाले की समय सारणी पर कभी प्रश्न न उठाएं। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब आगे देखा तो वे महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वे विवेकानंद बने। हमारा भविष्य हमारे अतीत के समतुल्य नहीं होता। भविष्य के स्वागत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारा सर्वोत्तम तो अभी आना है। हर ज्ञान के साथ, हर ज्ञात के साथ, हर बोध के साथ, हर गंभीर जागरण के साथ हम अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ें। आपको ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए कतई नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो भविष्य का निर्माण करने के लिए दिया गया है। आगे देखें। आप नहीं जानते कि आप क्या बन सकते हैं। जो आप बनने वाले हैं वह भविष्य में कहीं आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए आगे बढ़ें, उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनने

ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है। हर थोड़े समय के बाद कोई ना कोई त्योहार आता है जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खुशी उमंग से मनाते हैं। लेकिन हर त्योहार के अंदर कुछ ना कुछ राज छिपे हैं, कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो हमारे जीवन को एक्चुअली और बेहतर एलिवेटेड बनाता है। अभी राखी का त्यौहार है, आप देखिए बहुत खुशी से ये सब मनाते हैं। खास इस दिन पर बहन भाई को राखी बांधती है और जिस समय धागा बांधती है तो उस समय सभी समझते तो ऐसे ही हैं कि भाई फिर प्रतिज्ञा लेता है कि वो बहन की रक्षा करेगा। पर हमें भी कई बार संकल्प चलता है कि कैसे पॉसिबल है। कभी कभी भाई बहन से छोटा होता है, कभी दूसरे देश में होता है, दूसरी सिटी में होता है, और सिर्फ प्रोटेक्शन बहन को चाहिए ऐसे तो नहीं है, भाई को भी चाहिए। एक्चुअली क्या चीज़ है जो हमारी रक्षा करती है? रक्षा कोई भाई बहन की करता है या बहन भाई की करता है ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज़ रक्षा करती है वो है प्योरिटी, पवित्रता। ये जो बहन और भाई का रिश्ता है ये बहुत पवित्र रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते में दिखाया कि बहन भाई को राखी बांधती है, लेकिन एक्चुअली राखी बांधना, धागा बांधना ही माना एक प्रतिज्ञा लेना। और किस चीज़ की प्रतिज्ञा लेना? पवित्रता की प्रतिज्ञा लेना, क्योंकि पवित्रता में बहुत शक्ति है। पवित्रता ही जो है जो हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करनी है वैसे भी? एक्चुअली हम जब परमात्मा को भी याद करते हैं तो क्या कहते हैं? दुखों से मेरी रक्षा करो। और वो दुख का कारण और कुछ नहीं, बाहर नहीं है। बाहर तो वैसे भी बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी परिस्थिति आएंगी, कौन सा व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा, लेकिन हमारी अंदर की इम्प्योरिटी हमारे दुख का कारण बनती है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्योर सोचेंगे, राइट सोचेंगे, सही बोलेंगे, प्योर कर्म करेंगे। वही चीज़ है जो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। अगर कभी कभी फल ठीक नहीं है, कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं है, जो रिटर्न आ रहा है वो अच्छा नहीं लगता ना, हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कारण है कि मैंने वो ऐसा कुछ किया है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे बड़ी मेरी रक्षा है कि जब मैं अपने से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पवित्र सोचूंगा, बोलूंगा और करूंगा। क्योंकि आप देखो, हम किसी के साथ अगर गलत भी बोलते हैं, उनको दुख होता है, हमें दुख होता है, हम कुछ गलत करते हैं अनएथिकली, थोड़ा झूठ बोला, चोरी करी, कोई भी हमने किसी भी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हमारे अंदर में खालीपन, भय, चिंता, दुख, उदासी, गिल्ट, ये सब बढ़ने लगता है। पहली प्रतिज्ञा आज के दिन, जिस समय हम धागा बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं, कि हम पवित्र सोचेंगे, पवित्र बोलेंगे, पवित्र करेंगे। प्योरिटी में इतनी इतनी ताकत है कि आपके संकल्प सामने वाले के संकल्प को भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आज के समय और क्या प्रोटेक्शन है? किसी के साथ दो दो बॉडीगार्ड होते हैं तो भी उसको डर लगता है, लेकिन आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, ये मैजिकल है। मानो कई बार हम किसी को देख करके कहते हैं ना, इसकी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे लगता है इसकी भावना थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मेरी दृष्टि और भावना ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, आज वो व्यक्ति किसी खराब पोस्टर को देखता है तो उसके मन में थोड़े से विकारी संकल्प भी चलते हैं। वही व्यक्ति अगर मंदिर में किसी देवी की मूर्ति को देखता है तो उसके संकल्प बदल जाते हैं, उसके मन में उस देवी के प्रति श्रद्धा की भावना और रिस्पेक्ट की भावना आने लगती है। व्यक्ति वही है, लेकिन स्टिमुलस अलग था। खराब चीज़ देखी तो खराब संकल्प चले, प्योर चीज़ देखी तो प्योर संकल्प चले। ऐसे भले हमारे सामने कोई है जिसकी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं है, देखने का तरीका ठीक नहीं है, या उसके मन के संकल्प ठीक नहीं है, पर अगर मेरे मन के संकल्प ठीक हैं, मेरी भावना उसके प्रति ठीक है, अगर मुझे उस समय स्मृति है कि नहीं, ये आत्मा भी बहुत प्योर है, भगवान का बच्चा है, ये तो मेरा भाई या बहन है, ये मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है, तो मेरे संकल्प उसके संकल्प को चेंज कर देते हैं, मेरी भावना उसकी भावना को चेंज कर देती है, और ये मैजिक होता है।
कितने बार ऐसा होगा कि कोई मेरे साथ गलत करना भी चाहेगा, कोई चीट करना चाहता है, धोखा देना चाहता है, पर हमारे शुभ संकल्प, हमारे शुभ वाइब्रेशन उनके मन को परिवर्तन कर देंगे। ऐसा हमारे आसपास प्योरिटी का ऑरा हो कि उस ऑरा के अंदर कोई गलत कर ही नहीं सके, लेकिन ऐसी प्योरिटी जो हमारी ही प्रोटेक्शन करे, उसकी प्रतिज्ञा लेनी है। और इसलिए इस प्रतिज्ञा पर चलने के लिए परमात्मा का प्यार चाहिए। इसे कई सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर पर राखी के दिन बहुत सुंदर वायुमंडल होता है। हर कोई जो वहाँ बहने हैं, वो भाई बहनों को जो राखी बांधती है, वो परमात्मा की राखी है, परमात्मा के प्यार की राखी है। क्योंकि प्यार में वो ताकत आ जाती है कि हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सकें, और वो प्रतिज्ञा जो है वो हमारी फिर रक्षा करती है। तो एक तो उस दिन धागा बांधते हैं, दूसरा आप देखें कि बहन भाई को जब धागा बांधेंगे तो उससे पहले तिलक भी लगाती है, और तिलक हमेशा कुछ स्मृति के लिए होता है। ये सारे रिचुअल रिमाइंडर का काम करते हैं। तो ये भी एक रिचुअल कि हम जब किसी को तिलक लगा रहे हैं तो उस समय पर भी हमें ये स्मृति रहे कि हर कोई प्योर है, पवित्र आत्मा है, कोई भी है, चाहे मेरे सामने मेरा भाई है या कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, ओरिजिनली वो बहुत प्योर है। हो सकता है जर्नी में चलते चलते कोई ना कोई कमी तो हर एक के अंदर आ जाती है, पर ओरिजिनल नेचर उसकी प्योरिटी की है, क्योंकि वो प्योरिटी की स्मृति और प्योरिटी की प्रतिज्ञा ही मेरी रक्षा करेगी। फिर हम क्या करते हैं, मुख मीठा कराते हैं। हर त्यौहार में मुख मीठा कराने की रस्म ज़रूर है, लेकिन क्या रिमाइंडर का काम करता है, केवल वो मीठा नहीं पर हमारा मुख सदा मीठा रहे, हमारे बोल हर एक के प्रति बहुत मीठे हों। कभी कोई ऐसा बोल नहीं बोलना है जो किसी को दुख दे। हम तो कई बार उसको बोलकर भूल जाएंगे, सामने वाला हमारे बोल को पकड़ लेता है, बार बार उसको अपने मन में रिपीट करता रहता है, रिपीट करते करते इतना दुख क्रिएट कर लेता है जैसे वो अंदर एक जख्म बन जाता है। और ब्लेम तो हमें ही कहता है ना, आपने 10 साल पहले ऐसा बोला था, 20 साल पहले ऐसा बोला था, लोगों को बातें भूलती नहीं है। ये तीर एक बार निकल जाता है फिर वापस नहीं आता बोल का। इसलिए हर त्यौहार में मुख जरूर मीठा करते हैं कि रिश्तों में हमारे मुख में मिठास हो। रिश्ते एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, हम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलें कि उनका दिल दुख जाए। और फिर लास्ट में गिफ्ट, आजकल तो गिफ्ट भी बहुत महंगे महंगे हो गए हैं, कभी कभी जो त्यौहार है उसकी सिंप्लिसिटी ख़त्म हो जाती है और भौतिकता की तरफ वो जाने लगता है। बहन भी सोचेंगे मैं कैसी राखी बांधूँ, सोने की, चांदी की, डायमंड की। पहले तो सिंपल धागा ही बांध देते थे क्योंकि ये तो विधि थी, और उस विधि के पीछे जो रिमाइंडर था उसको याद करना था। भाई भी सोचता है मैं क्या गिफ्ट दूँ, और उस गिफ्ट से कभी कभी तो हम अपनी वैल्यू कर लेते हैं। वरना अगर कोई गिफ्ट थोड़ा सा साधारण होगा, सस्ता होगा, तो हमें लगेगा शायद भाई मुझसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली हम प्यार को गिफ्ट से तो नहीं तोल सकते हैं, प्यार तो एक एहसास है, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा कि हम उस गिफ्ट को फिर औरों को बताते हैं, ये गिफ्ट मिला, पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, फिर कोई अप्रिशिएट करता है, फिर हमें उस चीज़ की वैल्यू फील होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली त्यौहार सिंपल होने चाहिए। प्यार हमारा एक दूसरे के प्रति है वो गिफ्ट से नहीं पता चलता, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी शुभ भावना है, दुआएँ हैं। सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई किसी को दे सकता है तो वो दुआ है, दिल की दुआ, गुड विशेस, शुभ भावना, क्योंकि दुआएं दूसरों को जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो हमें इस बारे जो गिफ्ट एक्सचेंज करना है, भले स्थूल गिफ्ट भी करें, लेकिन उससे अपने को वैल्यू नहीं करें, वो चीज़ ये आधार नहीं हो कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन मुझे ऐसी गिफ्ट देनी है कि सामने वाले को उस प्यार का अनुभव हो, वो दुआ और गुड विशेस। तो जो ये त्यौहार है, हम उस त्यौहार को अगर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, रॉयल्टी के साथ, वो क्या हमें
स्पिरिचुअली सिखाने के लिए आया है उससे मनाते हैं तो वो हमारे जीवन में उन्नति का आधार बन जाता है। बहुत ही प्योर फेस्टिवल है और ये हमारे अंदर प्योरिटी को लेकर के आता है जो हमारी सदा सुरक्षा करती है। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम मिल करके परमात्मा की प्यार की ये राखी बांधे, पवित्रता का कंगन पहने, पवित्रता की प्रतिज्ञा करें और ये सदा ही हमारी रक्षा करेगा। ओम शांति।

एक सुप्रसिद्ध वक्ता जो उसकी गंदी कार से उतर रहा था, उसको देखकर हम दंग रह गए। वह कार इतनी गंदी थी कि हम अपने बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर भी उसे छूना पसंद नहीं करते। कार के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे नाली अटकने से कूड़े का ढेर लग गया हो। और वह वक्ता महोदय जिस विषय पर भाषण देने पधारे थे, वह था जीवन की गुणवत्ता। एक बार हमने देखा कि एक आध्यात्मिक सत्संग से बाहर निकलते चेले अपनी आंखों का मैल साफ कर रहे थे। इससे साबित हो रहा था कि ये लोग जो अपने तन को स्वच्छ रखने तक में लापरवाह हैं, वे अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वच्छ करने चले हैं। कितना अज्ञान है, वे नहाते तक नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके जीवन पर गुरु की कृपा बरसती रहे। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं जिनके जूतों पर पॉलिश नहीं थी, टाई फूहड़ ढंग से बंधी थी, लेकिन अपने उत्पाद व सेवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला बताने में वे पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुणवत्ता पहले भीतर उदित होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जो गुणवत्ता हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वह इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर कैसी गुणवत्ता है। जो गुणवत्ता हमारे भीतर है, वह इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है, कोई दूसरा हमसे जितनी अपेक्षा करे, हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है, संसार हमारे लिए जितना उच्च स्तर निर्धारित करे, हम अपने लिए उससे उच्च स्तर निर्धारित कर लें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है यह विश्वास करना कि हर चीज और हर अवस्था को उन्नत और बेहतर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। गुणवत्ता यानी एक ऐसी चीज जिसका होना तो नजर से चूक सकता है, लेकिन जिसका ना होना नजर से कभी नहीं चूक सकता। गुणवत्ता उन क्षेत्रों में छोटी बड़ी हर चीज का उत्कृष्ट होना है जिस पर दूसरे शायद ध्यान भी न दें। सुगंध हो या न हो, फूल तो फूल ही रहेगा, लेकिन उसमें सुगंध होने से बहुत फर्क पड़ता है। गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है जिसका होना ही सारा फर्क पैदा कर देता है। तो हम भी अपने जीवन स्तर की गुणवत्ता को चेक करें और उसे उच्च से उच्चतर बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: अभी बजे हैं सुबह के 7। स्वयं को 1 मिनट दें, मन से कहें सुप्रभात।

0: होता जिसे मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक, दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

0: सितारे चमकते हैं आकाश में, लेकिन मुझ मधुबन का कितना सुंदर भाग्य है कि यहां रहते हैं धरती के अनमोल सितारे। मनुष्य तन में विराजमान इन सितारों की चमक इतनी है कि वे संपर्क में आने वाले हर मानव के जीवन को आध्यात्मिकता के प्रकाश से रोशन कर देते हैं। उनकी परख शक्ति ऐसी है कि वे हंस की भांति कंकड़ के बीच से मोती चुन लेते हैं। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पारखी नजर रखते थे, उन्हें सच्चे हीरे की पहचान थी। दादी रत्न मोहिनी जी की नजर भी किसी जौहरी की समान ही है। हर कार्य को परफेक्ट रूप से एक्यूरेसी के साथ संपन्न कराना उनकी विशेषता रही है। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक संस्था में आध्यात्मिकता को बनाए रखते हुए कैसे कार्य किया जाता है। दादी ने साथ कार्य करने वाले हर यज्ञवत्स को सक्षम और स्वतंत्र बनाया। यज्ञ कारोबार संभालते हुए उन्होंने सभी का हर प्रकार से ध्यान रखा है, उनकी प्यार से पालना की है। शक्ति वंदन की आज की कड़ी में वरिष्ठ राजयोगिनी बीके कृति दीदी अपने उन अनुभवों को साझा कर रही हैं जो उन्होंने दादी रत्न मोहिनी के अंग संग रहते हुए प्राप्त किए। बकौल कृति दीदी, 13 वर्ष की छोटी सी आयु में आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के उपरांत यूथ विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बनने की उनकी यात्रा दादी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती थी।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: बहुत छोटी आयु में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ। उस समय मेरी उम्र लगभग 13 वर्ष थी और सबसे पहले पोरबंदर में ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में आना हुआ। काफ़ी वर्षों के बाद मैं समझती हूँ इट वॉज 70s, लेट 70s, जब पहली बार रतन मोहिनी दादी जी से मेरा मिलना हुआ। उस समय दादी जी ट्रैवलिंग में थी और सफ़र में ट्रेन में हम साथ साथ थे और वही मेरी एकदम सब नज़दीक की मुलाकात रही। और पहली ही मुलाकात में जो छाप छोड़ी वो ये थी कि दादी जी की नज़र एक जौहरी की नज़र थी और वो बहुत सहज आत्माओं को परख सकते थे। पहली मुलाकात में ये पहली छाप उन्होंने मेरे पर छोड़ी और उसके बाद आना जाना काफ़ी हुआ। छोटे मोटे कार्यक्रमों के कारण छोटी ही उम्र में मेरे को यहाँ आबू में भी कुछ न कुछ ड्यूटीज मिलती थी, उसके कारण दादी जी से बड़ा क्लोज आना हुआ। उसके बाद ये बात थी 87 की, जबकि एक बार मैं माउंट आबू में थी और मेरा जो प्रोग्राम था वो सिर्फ सुबह का 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता था, उसमें अरेंजमेंट्स मुझे देखना होता था, तो बाकी के टाइम में मैं फ्री होती थी। दादी जी ने मुझे फ्री बैठे देखा तो मुझे बुलाया और एक छोटा सा कार्य मुझे सौंपा गया। वो कार्य मैंने दादी जी को इन टाइम करके दिया। काम काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे और उसका रिपोर्ट तैयार करके देना था। मैंने इन टाइम दादी जी को पूरा रिपोर्ट बना के भेजा और मैंने वो काम करने के लिए मेरे जैसे फ्री लोगों को इकट्ठा किया और मैंने फटाफट टाइम पर वो काम पूरा किया। दादी जी इस कार्य से बहुत खुश हुई और उस दिन जो मेरी सीनियर थी, हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी, वो यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर थी, दादी जी यूथ विंग की चेयरपर्सन थी। तो उन्होंने उनको बुला करके कहा कि ऑफिस के काम के लिए आप इसको जिम्मेवारी दे दो, ये काफी जिम्मेवार होके करेगी। तो ये जो एक मेरी पहली बार की छाप थी दादी जी के लिए कि दादी के पास परख है, वो चीज को प्रैक्टिकल में मैंने 80s में मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए देखा। जैसे जैसे दादी जी से कारोबार और कार्य के लिए नजदीक आना हुआ, मैंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काफी सारी विशेषताएं उनकी देखी। पहली बात ये देखी कि कोई भी बात उनसे नजरअंदाज नहीं होती थी। शी वॉज सो एक्यूरेट एंड सो केयरफुल, और ये एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहली निशानी होती है। एक छोटे से छोटा हम लोगों को कुछ बुलेटिन वगैरह बनाना होता था, वो भी दादी जी 3 बार पढ़ेगी, उसमें छोटे से छोटा ग्रामेटिकल करेक्शंस भी देंगी। शी वॉज सो एक्यूरेट कि कोई भी चीज ऐसे ही जानी नहीं चाहिए सबके बीच। दोनों के पास से ये एक्यूरेसी मैंने बहुत अच्छी तरह सीखी। दूसरी बात, जिन्हों को भी उन्होंने कार्य में लगाया या जो उनके साथ कार्य में रहे, शी वॉज सो लविंग एंड सो केयरिंग। कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी क्या है, जिम्मेवारियां बढ़ती जाती है, और कभी थक करके या कभी तबीयत के हिसाब से कह दिया भी होगा दादी जी को, दादी जी मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, शी यूज टू मोटिवेट। वो कभी भी हमारे अंदर उन्होंने होप नहीं छोड़ी, शी यूज टू मोटिवेट। जिस तरह से केयर करके आगे बढ़ाने की जरूरत हो, शी टुक एवरी टाइप ऑफ केयर। और आज मैं ऐसा समझती हूँ कि यूथ विंग की एक नेशनल कोऑर्डिनेटर तक की मेरी जो जर्नी है, इसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो आदरणीय रत्नमयी दादी जी का योगदान है। वो उनकी नजर थी, उनकी परख थी, उनका हर स्टेप पर मोटिवेशन था, उनका हर स्टेप पर गाइडेंस था। इतनी बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था में कोई भी काम करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनी हुई होती है। दुनियावी हिसाब से हम लोग कुछ और तरीके से यूज टू होते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक जगह में अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रख करके हर कार्य करना होता है। ये सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का गाइडेंस इतना अच्छी तरह दिया कि आज इतने बड़े पूरे भारत भर के कोई भी कार्य के कोई भी कारोबार में मुझे आज कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती है। चाहे हम लोगों ने आदरणीय रत्नमयी दादी जी की लीडरशिप में बहुत सारे कैंपेन्स किए, उनके डायरेक्शन से हमने बहुत सारे लोकल कार्यक्रम पूरे इंडिया में एक साथ किए, बहुत कार्य हम लोगों ने किया है, लेकिन इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम, ईच एंड एवरी वर्क, इतना सुंदर तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि मैं एक जगह पर बैठ कर के भी कितना भी कारोबार करना होता था, मुझे कभी मुश्किलात नहीं आई। आई एम श्योर कि वो उनके गाइडेंस थी, हर स्टेप पर उन्हों के डायरेक्शंस थे, एंड शी वॉज वेरी श्योर कि कोई भी चीज़ को कैसे करना है। उनके पास एक डायरेक्शन होता था, कौन सी चीज़ के तहत कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, ये भी उनके आगे बहुत स्पष्ट होता था। और इसीलिए हम लोग जो भी कार्य कर पाए, एंड एट एवरी स्टेप, वो कभी हम लोगों को चुप होके बैठने नहीं देती थी, खुद इतनी एक्टिव रही। जीवन भर हमने उनको बहुत एक्टिव देखा, बहुत सारे कार्य

0: अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने इस तरह से हम लोगों को ट्रेन किया है कि सब कुछ सुचारू, जैसे अपने आप वो डायरेक्शंस पर या वो बताए हुए राह पर चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के लिए, चाहे वो समय में उनके पास इतनी जिम्मेवारियाँ आज की तरह नहीं भी थी, लेकिन फिर भी जितनी भी जिम्मेवारियाँ उनके पास थी उसकी हर क्षेत्र में मैंने उनको बहुत एक्टिव और अलर्ट देखा।
1: जब आप कहते हैं कि एक्टिव और अलर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है वो एक्टिवनेस, कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं?
0: एक्टिवनेस मैं इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि एवरी टाइम जब भी उनको देखो, कोई ना कोई कारोबार में आप व्यस्त होती, इतनी सारी फील्ड्स उनके पास होती थी, हमने उनको कभी थकते हुए नहीं देखा। वो हर क्षेत्र में इतना ही अटेंटिव होकर के, इतना ही ध्यान देकर के उनकी हर जिम्मेवारी को उन्होंने पूरा किया। मैं इसीलिए उनको एक्टिव कहना चाहती हूँ। कई होते हैं जो एक बार जिम्मेवार तो होते हैं, और जिम्मेवारी एक बार दूसरों को दे दी उसके बाद वो थोड़ा आराम से बैठ जाते कि पीछे वाले कर रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है कर रहे हैं, पूछेंगे तो जवाब दे देंगे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलता था, और ही हमें उनको जवाब देना होता था। इसीलिए मैं उनको एक्टिव कह रही हूँ। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें होती है, और शी वॉज अलर्ट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फेस दैट वुड कम इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन। कार्य दे दिया, फिर कैसे होगा वो हमें नहीं सोचना होता था। वो उस कार्य की हर चैलेंजेस, वो उस कार्य की हर चॉइसेस, शी वॉज वेरी क्लियर ऑफ दैट। और इसीलिए उन्होंने हमको इस तरह से मानसिक रूप से तैयार किया कि आने वाली हर चुनौती को हम अच्छी तरह से फेस कर पाए और आगे बढ़ पाए। मैं समझती हूँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो अपने पीछे वालों को इतना तैयार करता है कि वो आने वाली हर चुनौती को पास करने में, पूरा करने में सक्षम हो जाए। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं दादी जी को इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने कार्य करने वालों को सक्षम बनाया। सारा अपने हाथ में रख कर के हमें कहीं भी मना डिपेंडेंट नहीं बनाया। उन्होंने अपने डायरेक्शंस पर भी चलाया, लेकिन हमें एक इंडिपेंडेंट सोच, एक इंडिपेंडेंट फील्ड भी दिया उस पर। और दूसरी एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने हर नवीनता को, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज बदल रही है, सिस्टम्स बदल रही है, इस उम्र में दादी जी को मैंने नवीनता को और क्रिएटिविटी को जितना फास्ट अडॉप्ट करते हुए देखा, इसीलिए यूथ्स उनसे हमेशा मोटिवेटेड रहे। एक अच्छे एडमिन की ये निशानी होती है कि वो आने वाली हर नवीनता को समझ पाए, उसे अडॉप्ट कर पाए, और अपने पीछे चलने वालों को उस पर चलने के लिए साथ दे। तो उन्होंने साथ भी दिया, उन्होंने नवीनता को अडॉप्ट भी किया, और हमें हमेशा एक ओपन फील्ड दिया जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। दादी जी हमेशा बैकबोन रही, जहां उनको आगे आने की जरूरत थी वहां फ्रंट पे भी रही, और जहां ऐसी कोई नवीनताएं देखती थी तो वो बैकबोन बन करके उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हमें हमेशा ही उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और ही मार्गदर्शन दिया जिस चीज को नहीं भी जानती थी। तो ये जो अडाप्टेबिलिटी है, ये बहुत कम एडमिन्स में हमें देखने में, इसीलिए मैंने ये शब्द यूज करना पसंद किया कि वो एक्टिव भी है, अलर्ट भी है, हर मोड पर। सुस्त कभी नहीं देखा हमने दादी को, और एक स्पिरिट जो देखा हमने हर बात में, वो स्पिरिट ने सबको हमेशा ही आगे बढ़ाया है।
1: सो नेशनल यूथ विंग की आपने कारोबार में दादी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या किया, किस प्रकार के कैंपेन्स किए आपने, उसका क्या रिजल्ट रहा?
0: हमने यूथ विंग की एक्टिविटीज 1985 से शुरू की, और उसी वर्ष सबसे पहला कैंपेन जो हुआ वो पूरे इंडिया में हुआ, एक पद यात्रा के रूप में। हजारों लोगों ने भाग लिया और उसमें एकता का संदेश दिया। हमने ऐसे कुछ सोशल कैंपेन्स किए दादी जी के नेतृत्व में, जिन कैंपेन्स के जरिए हमने उस समय की जो सोशल बातें थी, जिस पर कुछ अवेयरनेस लाना जरूरी था, उन बातों को टाइम टू टाइम लिया, कभी हमने पदयात्रा के रूप में किया, कभी साइकिल यात्रा के रूप में किया।

0: कभी मेट्राडोर यात्राओं के रूप में किया। तो कुछ कैंपेन्स हमारे अवेयरनेस के कैंपेन्स रहे जो इन जनरल सोसाइटी से कनेक्टेड थे। कुछ कैंपेन्स एजुकेशनल कैंपेन्स रहे, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लाइफ स्किल कैंप्स किए दादी जी के नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यूथ फेस्टिवल्स बहुत सारे किए। 3 नेशनल यूथ फेस्टिवल्स किए हम लोगों ने जो हमारे हेडक्वार्टर्स में हुए, और इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स किए जो पूरे इंडिया में हुए, और वो 2001 एंड 2004 दो वर्ष में हमारी यूथ मिनिस्ट्री के सपोर्ट से हम लोगों ने किया। तो विशाल पैमाने पर एक साथ हजारों कार्यक्रम भी हुए, सैकड़ों कार्यक्रम भी हुए, एजुकेशनल भी हुए, यूथ के अवेयरनेस के लिए हुए, सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूथ को इन्वॉल्व करके उनकी सेवाओं को यूज़ किया गया, उनकी एनर्जीज को यूज़ किया गया। इस प्रकार की वैरायटी टाइप ऑफ कैंपेन्स, वैरायटी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने वर्ष भर के लिए लिए, जैसे एक साल हम लोगों ने लिया पॉजिटिव चेंज, एक वर्ष हम लोगों ने किया स्वच्छ स्वस्थ भारत। इस तरह से हमने टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स भी अलग अलग लिए। हम लोगों ने रीबिल्डिंग यूथ टू रीबिल्ड द नेशन, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए। तो 1985 से आज 2023 है, हम लोगों ने जर्नी को निरंतर दादी जी के नेतृत्व में कंटिन्यू किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ, पहली बात कि हजारों युवाओं ने अपने जीवन में एक सही दिशा को प्राप्त किया। दूसरी बात, उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर को समझा, और आध्यात्मिकता एक लाइफस्टाइल है इस बात को समझ करके उन्होंने अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास किया। इसके कारण आज यूथ विंग के पास, या मैं कहूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास, ऑन द होल लाखों ऐसे युवा है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शुद्ध अन्न जीवन में अपना करके चल रहे हैं, व्यसनों से संपूर्णतया मुक्त है। ये जो एक लाइफस्टाइल वो अपना रहे हैं, वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं, अपना नौकरी, अपना बिजनेस। कुछ कुछ ऐसे भी युवाएं हैं जो अपने अपने एरियाज में बहुत टॉप कर रहे हैं, अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है। इस प्रकार की जो एक मार्गदर्शना मिली, ये हजारों युवाओं को इन कार्यक्रमों के जरिए मिली। दूसरे कुछ ऐसे यूथ भी मिले जिन्हों की लाइफ, उन्होंने चाहे स्पिरिचुअलिटी को पूरा अडॉप्ट किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइफ में जीवन की कुछ चुनौतियों के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, और अंदर की एक एम्पावरमेंट आई कि हमारे सामने जो आने वाले चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को हम सक्सेसफुली कैसे पार कर सकते हैं। ये एक ऐसा एम्पावरमेंट है जो आजकल काफी स्ट्रेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल में सुसाइड्स वगैरह की जो टेंडेंसीज हैं, इस टेंडेंसीज में ऐसे कई युवाएं हैं जो इस अवेयरनेस को प्राप्त करके ऐसे टेंडेंसीज से भी अपने को बचा पाए हैं। तो एक बृहद प्रकार का मैं कह सकती हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम ये सभी कैंपेन्स के जरिए रहा है।
1: बहुत सुंदर दीदी, सुनने में इतनी गूज़बम्प्स हो रहे हैं कि सरकार, अन्य संस्थाएं भी इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी के अपने अपने प्रयास हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से ये बदलाव हो सकता है, ये संभव करके दिखाया दादी के नेतृत्व में। इतने सारी यूथ खुद भी एम्पावर हो चुके हैं जो संस्था में है। सो ये तो यूथ विंग के कारोबार आप दादी के साथ रह करके किया, और आप खुद भी एक युवा से लेकर के नेशनल कोऑर्डिनेटर तक की जर्नी तय की है। जब आप अपनी लाइफ को खुद देखते हैं कि वो 80s में जो पहली पदयात्रा में आपने नेशनल लेवल पे कैंपेन में पार्टिसिपेट किया एज ए जस्ट यूथ
0: जी,
1: आज आप एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है
0: जी
1: इस यूथ विंग की, तो आप अपनी जर्नी को कैसे बताना चाहेंगे, दादी ने कैसे आपको इंस्पायर किया?
0: मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हर जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ रही, चाहे वो एक संस्था के लिए कार्य कारोबार में कुछ सिस्टम्स में आकर के कार्य करना रहा, हर जीवन के मोड़ पर दादी जी ने एक बैकबोन बन करके, एक रोल मॉडल बन करके इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि आज ये पूरी ही जर्नी मेरी बहुत सुखदायी हो गई है। मेरी ही नहीं, ऐसे कई युवा भाई बहने हैं जिन्होंने दादी जी के नेतृत्व में कार्य किया और आज वो काफी अच्छी लेवल पर इन सेवाओं में कार्यरत है। तो पूरी जर्नी को मैं इस तरह कहना चाहूंगी कि ऐसा एक सक्षम रोल मॉडल हमेशा ही मुझे इंस्पायर करता रहा कि किस तरह हमें जीवन में आगे बढ़ना है। दादी जी के अपने पास भी मैंने बहुत सारे चैलेंजेस आते हुए देखा है, बहुत सारी बातों से वो खुद भी गुजरी हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कार्य कारोबार में थी। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ चैलेंजेस नहीं हो, लेकिन हमने उनको कभी भी मायूस या कभी भी हमने उनको डिप्रेस होते हुए नहीं देखा। उन्होंने इस तरह से हर बात में अपने को आगे बढ़ाया जैसे कि वो जर्नी उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। तो यही सब चीजें देख कर के हमने भी जीवन में यही सीखा कि कितने भी चैलेंजेस आए, कभी अस्वस्थता के रूप में आई, कभी बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हैं तो जो मानवीय बातें आती है लोगों के बीच में,
1: उनके अपने संस्कारों के कारण
0: स्वाभाविक है। तो इन सब बातों में हमने देखा कि जैसे दादी जी ने अपने को इजी गोइंग आगे बढ़ाया तो उनकी लाइफ हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गई। इसीलिए जीवन में कभी हमने मायूस होना सीखा नहीं, कभी थकना सीखा नहीं, कभी बैकफुट पर जाना सीखा नहीं। मैं समझती हूँ आज इस मुकाम पर पहुँचने में ये सारी चीजें, जो भी नेगेटिविटीज थी उसको इजीली ओवरकम करने में दादी जी एक रोल मॉडल के रूप में हमेशा सामने रही। और बहुत नजदीक मेरा रहना हुआ है और इसीलिए हर मोड़ पर इस प्रकार के इंस्पिरेशंस मेरे लिए लेना सहज हो गया है।
2: जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं बड़ों का मार्गदर्शन आवश्यक है। दादी रत्न मोहिनी जी के नेतृत्व में यूथ विंग द्वारा अनेक सफल अभियान एवं कार्यक्रम चलाए गए। उन्हें युवा शक्ति पर काफी विश्वास रहा है, इसलिए समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित एवं जागरूक करती रहीं। यहां तक कि उन्हें आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो सकें। दादी में खुद भी किसी युवा सरीखा ओज, तेज एवं ऊर्जा थी। मैंने मधुबन ने देखा है कि कैसे उन्हें कभी थकावट स्पर्श तक नहीं करती थी, सदैव सक्रिय एवं अलर्ट रहते थे, आज भी रहती हैं। यही सीख उन्होंने अन्य ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी बहनों को दी है कि सेवा मार्ग में थकावट का कोई स्थान नहीं है। कितनी ही व्यस्तता क्यों ना हो, दादी रत्न मोहिनी जी सदा इजी रहते थे। यूथ विंग में कैसे नवीनता एवं रचनात्मकता का समावेश हो उसका पूरा ध्यान रखती थी। दादी रत्न मोहिनी जी ने बाबा के दिए मंत्र बालक सो मालिक को सदा अपने कार्य में लगाया। दूसरों के सुझावों को बालक बनकर सुनते और फिर अपना मत रखते। ऐसी दादी की छाया में रहते हुए मुझ मधुबन ने कितने ही युवाओं को आध्यात्मिकता के जरिए परिवर्तित होते देखा है। दादी को मेरा शत शत नमन नमन।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
0: भैया मिठाई तो खा लो।
2: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
3: रक्षा बंधन पर्व है,
4: भाई बहन के प्यार का,
3: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का,
3: खुशियों के त्योहार का,
4: रिश्तों की मिठास का,
3: परस्पर विश्वास का।
5: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
3: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में। डिप्रेशन क्या ये कोई बीमारी है या फिर हमारे मन का वहम? क्या डिप्रेशन मुझे आपको हो सकता है? क्या डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, या हम ऐसे ही डिप्रेस्ड फील करते हैं? ज़रा सा लो हुए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल के रूप में कभी ना कभी हमारे दिमाग में उपजती हैं और फिर उसके सोल्यूशन भी तलाशने की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में हमने ये जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के इलाज पॉसिबल हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइकोथेरेपी से हो, या फिर कई बार जब ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। किस तरह के ये इलाज हैं, आज इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका स्वागत।
1: नमस्कार।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात, वो ये थी कि तीन तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की इस वक्त संभव है। उसमें सबसे पहले आपने बात की थी ड्रग्स से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी है। कई मिथ्स हमने दूर की थी जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी कि दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली सीवियर केसेस में लीड टू सुसाइड आल्सो। सो इतना ज़रूरी हो जाता है ड्रग्स या दवाई लेना। आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलिए, आपने कहा था कि 2.5 से 3 महीने तो क्लिनिकली बहुत ज़रूरी ही है, उसके बाद क्या हमें लाइफ लॉन्ग ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है, या हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं, हम ठीक हो गए हैं?
1: लाइफ लॉन्ग तो लेने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा, किसी भी डिप्रेशन में नहीं,
1: लाइफ लॉन्ग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो गलतियां हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि भी क्या गलती हम करते हैं। वास्तव में जैसे कहा कि उसे हर 5-6 दिन में मेडिसिन को बढ़ाते बढ़ाते एक क्लिनिकल डोज पर आना पड़ता है कि जब केमिकल जो इम्बेलेंस हुआ है वो ठीक होने लगे, और वह जब एक क्लिनिकल डोज पर आ गए फिर 2-2.5 मास में उसकी परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा साइकेट्रिस्ट है उसे कम करना प्रारंभ करेगा कि हर 20 दिन या 1 मास में थोड़ी थोड़ी वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, और फिर एक छोटा सा डोज जिसे मेंटेनेंस डोज कहा गया है वो बहुत ही मामूली होता है, वो एकदम जो मामूली डोज है उसे कम से कम 1 साल लेना चाहिए।
0: अच्छा, ये जो जब हम इस पे पहुंचेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा? वो 6 महीने भी हो सकता
1: नहीं
0: है?
1: वो करीब 2.5 मास वो होने, वहां तक पहुंचेंगे 15-20 दिन में पहुंचेंगे, फिर 2.5 मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए। बोले कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की जरूरत पड़े, परंतु अगर आप सचमुच रिलीजियसली साइकेट्रिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह एक जो सिस्टम है वो काफ़ी है। अब गलती कहाँ होती है कि एक तो पेशेंट अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं, और जैसे ही आपको पता चला ना कि भई ये साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन ले रहे हैं, कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ है ना, वो क्या कहते हैं कि भई ये विधि करा लो, फलाना भुआ है वो ये विधि करता है उससे ही तुम। और देखा है मैंने 60-70% लोग 8-10 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दे, फिर सेकंड अटैक आता है तो फिर से जाएंगे साइकेट्रिस्ट।
0: अच्छा, सबसे बड़े फक्र से ये कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद कर दी, मतलब मुझे, मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुए
1: है। और जब अभी सेकंड अटैक आए तो सेकंड अटैक में अब ठीक होना मुश्किल है, फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा मुश्किल है, थर्ड में और मुश्किल है, और अगर फोर्थ अटैक आ गया तो फिर तो बस फिर 90% ठीक नहीं हो सकते।
3: अटैक मतलब
1: मतलब रिपीट हो, जिसको कहें ना कि रिलैप्स कहेंगे, कि भी एक बार आप डिप्रेस हुए, आपने कुछ समय मेडिसिन ली, थोड़े अच्छे हुए, आपने छोड़ दी कोई भी कारण से, 10-15 दिन के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गए, फिर से साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने और कुछ मेडिसिन दी और फिर से आप ठीक हुए, फिर से आपने कुछ समय ली उसको छोड़ दी, और ऐसा अगर जिसको रिलैप्स भी कह सकते हैं कि दोबारा बीमारी होनी,
0: लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट क्या है डिप्रेशन के? एक्चुअली हम ये तो मान लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, हार्ट की हम दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर है उसकी सुबह उठ के दवाई ले लेंगे, थायराइड है उसकी दवाई लेंगे, लेकिन डिप्रेशन की दवाई क्योंकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर फिजिकल इम्पैक्ट इतने शायद नहीं नज़र आते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या है अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं? ये बार बार अटैक्स जो आएंगे, हाउ विल इट यू नो इफेक्ट माय बॉडी?
1: डिप्रेशन में जो हम अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एक तो वह बीमारी है वह लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर विकृति भी आ सकती है, जिसको कहा है डिप्रेसिव साइकोसिस, कि पागलपन भी आ जाए, डिप्रेशन के साथ साथ भी पागलपन, की जो और भी बुरा है। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह सुसाइड तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो इसके कारण ठीक से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है।
0: तो लाइफ के ऊपर भी एक्चुअली अगर हम शिवानी देखें तो कभी जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम इसलिए दवाई खाते हैं कि हमें पता है भाई हमारा दिल रुक गया तो सब रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर आ सकती
1: है। और बीमारियां भी जो आपने बताया ना कि भी अगर लंबा समय डिप्रेशन चले तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, लंबा समय डिप्रेशन चले डायबिटीज हो सकता है, नहीं बैक के प्रॉब्लम, कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं लंबा समय। तो उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो सेफ है वो हमें ठीक से करना बहुत आवश्यक है।
0: दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
3: क्योंकि सिंपल बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी ना,
0: और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी,
1: आपने कहा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसके कारण नहीं होगी क्योंकि डिप्रेशन भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, तो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाएगी।
0: स्ट्रेस आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, हमने जब कारणों की बात की थी तो जो लाइफस्टाइल हमारा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।
1: ये विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन से आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे थे कि जब इलाज कर रहे हैं, आपने 2.5 से 3 महीने तक अपना एक प्रॉपर क्लिनिकल डोज ली उस लेवल पे लिया, उसके बाद आपने कहा था कि धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना, कई बार लगता है कि 0.25 mg की गोलियां ना ही लो तो चलो रहने देते हैं, यू नो कोई बात नहीं चलो ठीक है, क्योंकि 0.25 mg तो यही होगा ना, इतना ही होगा छोटा सा, तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना, जिसे आप कह रहे हैं कि सर्वाइविंग के मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए?
1: एक तो क्योंकि वो केमिकल्स को मेंटेन करना है, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए,
0: अगर हो जाए
1: तो क्या होगा कि केमिकल आपके स्लोली बिल्टअप हो रहे, आपने एक दिन नहीं ली फिर से डाउन आ गए, तो फिर से उस केमिकल को बिल्ट अप करने को और आपको ज्यादा टाइम लगे,
0: नहीं तो फिर अगले दिन डबल डोज तो ना ले,
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं
0: ले। ये दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल,
1: दैट इज वेरी रॉन्ग राइट ना, फिर उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। ये संभव है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि भी सोने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेना, बाई चांस आप भूल गए, आपको रात को 2 बजे याद आया तो बोले 2 बजे भी ले लो, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो केमिकल्स की जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव इफेक्ट स्लोली होगी,
0: तो अगले दिन फिर उसी टाइम पे लेना चाहिए।
1: हाँ, उससे फिर उसी टाइम पर ले हम, और मिस ना करे, डबल डोज तो बिल्कुल नहीं लेना है, दैट विल बी स्टिल मोर हार्मफुल। और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े, सबसे अच्छा था कि डॉक्टर को डिसाइड करने दो, आप अपने डॉक्टर नहीं बनो, फिर भी एक जनरल आइडिया जो देना मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको बिल्कुल अच्छा हो गया, 2.5-3 महीने तक सचमुच आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए, आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कि भी हर मास में या 20 दिन में स्लोली वो डोज को कम करते हैं, और एक जो फिर मेंटेनेंस डोज आएगा वह मेंटेनेंस डोज कम से कम 1 साल लेना चाहिए। और फिर भी एक तो एक्सपेरिमेंट करना है वास्तव में, कुछ लोगों को और भी 2-3 साल भी आवश्यकता हो सकती है, कि तब हम छोड़ सकते हैं,
0: तब वो बहुत मिनिमल होती है।
1: और उसके बीच में फिर और चीजें भी करो, जैसे मेडिटेशन करो, है ना, जीवन शैली को परिवर्तन में लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो,
0: साइकोथेरेपी विल हेल्प। डॉक्टर साहब, अब ड्रग्स को तो हमने काफी डिटेल
1: में जाना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो लोगों में मिथ है और कई लोग पूछते हैं ये कि भी क्या मेडिसिन कभी बंद नहीं हो सकती है, तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी मेडिसिन जरूर बंद करो, ठीक से लो और फिर बंद करो। अंत में थोड़े समय दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर, लेकिन फिर वह हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो एडजस्ट हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड एज का जहां सवाल है, मैंने कहीं देखे जो बूढ़े पेशेंट है 70 इयर्स के 75 इयर्स के है, मेडिसिन लेने से वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर ये भूत सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है, तो उनको मैं कई बार कहता हूँ कि भाई कितना जीना है अभी आपको, अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना।
0: अच्छा, और सबसे बड़ी बात, खुद को भी तो नहीं पता होता कि हमने कितना लंबा जीना है अभी।
1: सोच भी लो, और सिर्फ मेडिसिन की जो थोड़ी सी इफेक्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, कि जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज है, इनोवेटिव पावर्स है, हो सकता है कि सब मेडिसिन ने कुछ मेडिसिन की इनोवेटिव पावर्स क्रिएटिव एबिलिटी पर थोड़ी सी 5-10% इफेक्ट हो सकती है। इसलिए यूथ को एडवाइस देंगे कि आप इसके थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए और प्रॉपर उसका जो रूट कॉज है वो भी दूर करना चाहिए। रूट कॉज दूर हो गया तो फिर वो मेडिसिन को बंद करने में मुश्किल नहीं होगी।
0: आपने जब कहा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं वो,
1: अगर आवश्यकता है, ये भी नहीं अगर वो छोड़ सकते भले छोड़िए, लेकिन आप समझते हैं भी छोड़ने पर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और मेडिसिन से आप एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो स्मॉल डोज में लेने में आपको डिफिकल्टी।
0: यहाँ लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन ये चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं और ऐसे में हम कोई योगा या मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे हैं कि वो दैट रियली हेल्प्स, वहाँ पर जाते भी योगा करते हुए खासकर या इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाने के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम ठीक ही हो जाएंगे ये सारी क्रियाएँ करके, क्या वो छोड़ना चाहिए?
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छा कनुप्रिया जी, एकदम पावरफुल प्रश्न है आपका, जिसको मैं कहता हूँ फीलिंग गुड। जब व्यक्ति योग आसन आदि करता है ना, उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूं, तो वह डेंजरस चीज है। ये केमिकल्स एकदम कम हो जाएंगे और सीरियस प्रॉब्लम होगा। छोड़ भी आप सकते हैं, एक बार आपने अगर प्रॉपर जो ड्यूरेशन महीने का 3 महीने का ड्यूरेशन वह दवाइयाँ ले ली आपने, आप एकदम नॉर्मल है, फिर जो मेंटेनेंस डोज आपका है वो भले दूसरे पेशेंट को हम कहते हैं 1 साल के बाद बंद करो, आप ट्राई कर सकते 6 मास के बाद भी करो, अगर अब उससे आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए और तुरंत लो, फिर रुको नहीं,
3: मेडिटेशन करने से अच्छा लग रहा है तो मेडिटेशन करने के बाद दवाई अपने आप छोड़ देते हैं, वो भी शायद खुद नहीं छोड़नी चाहिए ना,
1: डॉक्टर को पूछ कोई है,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंसेस क्रिएटेड हैं, इवन इफ वो मेडिटेशन से अगर ठीक हो रहे हैं तभी वो इम्बैलेंस तो है,
3: लेकिन फिर भी एक ट्रीटमेंट तो फिनिश कर लेनी चाहिए ना, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर जैसे
1: एडवाइस से ही करिए।
0: और जैसे कि आपने कहा था कि साइकियाट्रिस्ट जो आपका डॉक्टर है उस पे 100% फेथ रख के ही हमें अपना इलाज कर, जैसे हम अपने हार्ट के डॉक्टर हैं या हमारे कोई और प्रॉब्लम चल रही है, इवन जनरल फिजिशियन है उसके ऊपर भी तो 100% फेथ रखते हैं, वो कहते हैं इतनी एंटीबायोटिक खानी है, इतनी चाहे कितनी भी हालत खराब हो आप वो 5 दिन का कोर्स खत्म करेंगे ही। आई हैव सीन रियली यू नो पीपल दे सेइंग कि आपको 5 दिन की दवाई खानी है, चाहे आप बीच में ठीक हो जाएं, लेकिन वो 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना ही है, और आई थिंक वो हर कोई करता है, तो फिर इसको भी पूरे कोर्स को करना जरूरी हो जाता है। एक और मिथ, आज हम मिथ्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डिप्रेशन जैसा मुद्दा है उसमें जब यंगस्टर्स में डिप्रेशन की बात आती है तो चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, पेरेंट्स के दिल में एक बहुत ये, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो यू नो चाहे वो अभी इलाज कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके यू नो मैरिज के बाद कंसीव करने में प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं दैट हाउ डज इट रियली इफेक्ट,
1: ये भी मिथ ही है वास्तव में, बल कुछ मेडिसिन इफेक्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ मेडिसिन इफेक्ट कर सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन नहीं देनी है तो डॉक्टर जानता है,
0: वो तो
1: से।
0: उस वक्त पे है ना कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिसिन नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई बच्ची या जो व्यक्ति है वो कॉलेज में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो डिप्रेशन
1: तो कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में मेडिसिन देनी ही चाहिए, और अगर कोई थोड़ी सी साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी नई दवाइयां हैं जो डॉक्टर उसको चेंज भी करेंगे,
0: और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होते ना।
1: और यूथ में तो देनी चाहिए, क्योंकि यूथ में कई बार सिम्टम्स अलग प्रकार के होते हैं, और इसके कारण यूथ में अगर उनको जरूरत है तो सही ड्यूरेशन के लिए अवश्य ही उनको हम दवाइयां दें। और एक मिथ है वास्तव में, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
0: तो चलिए ये पूरा एक यहाँ एक ये कंप्लीट चैप्टर ये होता है कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर अगर डिप्रेशन में हैं आप, और कुछ देर के लिए ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म ही करना है। मेंटेनेंस के लिए अगर साल भर है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद हम एक बेहतर ज़िंदगी, जो एक बोझ लेके हम डिप्रेशन का चलते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम शॉक की बात करते हैं कि शिवानी बहन ने भी उस टाइम पे, उस वक्त जब बात हो रही थी कि शॉक ट्रीटमेंट पे होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स या कन्वर्जन्स जिसे कहते हैं, जो दिया जाता है फिल्मों में अगर हम देखें तो वो एक सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, किसी को टॉर्चर करना है तो शॉक्स दिए जाते हैं। How important they become at times?
1: सबसे पहले मैं clarify करूँ, ये शब्द बड़ा डरावना है, और ये शब्द सही भी नहीं है, नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो इसका नाम है, जिसको कहा है ECT, है ना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कि जैसे हमको फिट्स आते हैं, किसी को कन्वल्जन्स आते हैं नेचुरली, वह इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एक तो कि भी वह रेयर है, आज वर्तमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि वह रेयरली आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे कि भाई 1000 या 2000 पेशेंट में एक आध किसी को उसकी आवश्यकता पड़े, बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। और अच्छा साइकेट्रिस्ट पहले तो सभी दवाइयों का प्रयोग करेगा, अगर एक नहीं हुई तो सेकेंड जनरेशन की अच्छी दवाइयाँ हैं, थर्ड जनरेशन की है उसका भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वो ECT का सहारा लेगा। और दूसरा एक होता है कि भी जिसमें सीरियस सुसाइडल टेंडेंसी है, कि भी किसी भी क्षण या आत्महत्या कर लेगा, और ऐसे किससे हुए हैं, यहाँ तक कि वो साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में गए हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, पेशेंट ऊपर टेरेस में गया, उसने जंप लगाई। तो जहां पर ये पता है कि भी इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहां कुछ किस्सों में ECT कार्य कर सकती है। और अब ये जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे आपने में शॉक ट्रीटमेंट, और लोग डरते हैं उससे। अब जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है, पहले तो मैंने कहा रेयर है, इट्स में भी 1000-2000 पेशेंट में एक आध को जरूरत पड़े। और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं, ऐसे एनेस्थीसिया देने के बाद, और अब जो नए मशीन आए दे आर सो सेफ, जिसमें जो कन्वर्जेंस डिफरेंट वे टेक्निकल नहीं पाएंगे हो, तो उसका भी पूरा सेट होता है कि हमें अराउंड 8 ECTs की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, तो उस अनुसार वह भी जो डिप्रेशन के पेशेंट में जरूरत है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बोले आप दूसरा भी ओपिनियन ले लो, आपको ये लग रहा है कि भी आपके डॉक्टर ने सही सब मेडिसिंस का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं, तो दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, वह भी समझता है कि यह सब दवाइयों का प्रयोग किया
0: गया होता है। जैसे हमने ड्रग्स की जब दवाइयां ली तो हमें पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस था, तो वो बैलेंस करने के लिए उसको कम्प्लीट करते हैं, दवाई ली जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस है, इसमें क्या होता है, क्या चेंज आता है?
1: ऐसा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक बात भी 100% पता नहीं, परंतु फिर भी इसमें जो दो बातें होती है कि भी केमिकल्स में भी परिवर्तन आता है, और दूसरा एक जो फायदा होता है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव मेमोरीज है ना, वो व्यक्ति भूल जाता है, स्ट्रेस की मेमोरी, सर्टन ट्रॉमास, एब्यूज, समथिंग नो विच माइट हैव ट्रिगर्ड, कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी अगर हिस्ट्री को हम देखें ना, तो ECT की शुरुआत वास्तव में पागल पेशेंटों के लिए हुई।
0: यही मैं इस पे आने वाली थी कि क्या डिप्रेशन लीड्स टू मैडनेस आल्सो एट टाइम्स?
1: इट कैन,
0: वायलेंट जब हो जाता है तो,
1: यानी वायलेंट हो या तो वो ज्यादा समय रहे, हमने आगे डिस्कस भी किया था कि डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, तो वो डिप्रेसिव साइकोसिस में मैडनेस होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ कि जो शुरुआत हुई ECT की वो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए हुई, जो पागलपन के पेशेंट्स हैं उनके लिए हुई, परंतु फिर कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी दिया गया और देखा कि सबसे फायदा इनको हो रहा है, पेशेंट एकदम नॉर्मल हो रहे हैं। और इवन मिरेकल्स हो सकता है कि जिस पेशेंट को आपने एक साल तक दवाइयां दी, अलग अलग दवाइयां डॉक्टरों ने प्रयोग किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, और उसको आपने 4 ECT दिए, एकदम मिरेकुलस एकदम वो नॉर्मल हो गया।
0: डीप डिप्रेशन में जो गए हुए लोग,
1: या तो जिनको आवश्यकता है कि भी उसके सुसाइडल थॉट्स एकदम खत्म हो गए, जैसे लगा जादू हो गया। तो रेयर किस्सों में अब ये जजमेंट लेना चाहिए कि भी कहां पर आवश्यकता है तो देने में हर्जा नहीं,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैड मेमोरीज को सप्रेस कर देता है, निगेट कर देता है, डिलीट कर पाता है। अगर कोई हम मेमोरी में जाके उन मेमोरी अपनी मेमोरी बॉक्स में जाके उन बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाए, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो है साइकोथेरेपी।
1: बिल्कुल
0: विचारों का जो जनरेट, जो बेसिक अगर हम कहें कि जहाँ से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दें, वहीं बदलाव ले आए
1: तो
0: वो हमारा आपके साथ और आपके साथ ज़रूर उस पर डिटेल में और डीप जाने की ज़रूरत है कि क्या होगा वहाँ पे। लेकिन अभी समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू में पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी में किया क्या जाता है।
1: अच्छा, अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी है वास्तव में, जो शुरुआत हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं, जिसको कहा साइको एनालिसिस। ये सेगमेंट फ्रॉइड ने इसकी शुरुआत की और वो सारी उसकी थियरी है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कहीं ऐसी बातें हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बीमार करती है, जिसको कहेंगे चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स। उनकी अपनी एक सारी पर्सनालिटी की थियरी है, तो फ्रॉइडियन थियरी थी। फिर उसमें भी बदलाव आया, यूंग ने उसमें परिवर्तन करके एनालिटिक साइकोलॉजी नाम दिया उसका, और भी कई एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वो जो थेरेपी थी उसमें कुछ कुछ चेंज करते लाए। फिर एक जो दूसरी थेरेपी प्रीडोमिनेंटली यूज होती है जिसको कहा बिहेवियरल थेरेपी, कि हमारे बिहेवियर में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया, कि जो भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती थी। और अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसको कहा है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना, क्योंकि विचारों में मूड है और ये जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज़्यादा संबंध नहीं, अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो उन मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे। प्रयोग भी हुए हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है।
0: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सिस्टर शिवानी, इनफैक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे, ये कि विचारों में परिवर्तन डॉक्टर साहब ने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसमें मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकती है, पूरा जो हमारा पूरा
3: पूरी तरह से शायद है ना। मेडिटेशन में भी अलग प्रकार होती है ना, जैसे आजकल बहुत सारी मेडिटेशन हम देखते हैं, तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जो बॉडी के ऊपर फोकस्ड हैं, ब्रीदिंग टेक्निक पर, एंड कोई आसन को भी योगा कहते हैं। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट डील्स ओनली विद द माइंड, तो हाँ ओनली विद द माइंड, एंड फिर माइंड थॉट्स चेंज होंगी तो एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। तो राजयोगा मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज, यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग और फिजिकल पोस्चर, वो पूरी तरह से मन और संकल्पों के ऊपर केंद्रित है, तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहें हम अपने विचारों में ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो साइकोथेरेपी एक वो थेरेपी है जो कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की तरफ, सिर्फ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा,
1: जिनको मामूली डिप्रेशन भी,
0: मुझे लगता है हम में से हर एक को, मुझे तो होगा ही, इतनी सारी बातें मैं समझ रही, तो ये हम जो है अपना सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में आने वाली कड़ियों में हम ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल और सिस्टर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए। आज जो हमने जाना कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन लेना, और उसके अलावा जो आपने ECT के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स ना रह के डिफरेंट तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार यूज़फुल हो जाता है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सी बातें आपके पास भी होंगी, आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से साइकोथेरेपी को हम अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हैं, किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बातें करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही एनालिसिस करके अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएं, हो सकता है ये पॉसिबल हो, आने वाली कड़ियों में इन्हें ज़रूर तलाशेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रयास जारी रखेंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: माँ की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, एक साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हैज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्प्ररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा बिल्कुल थोड़ा व्यस्त भी होंगे और खुशी से झूम भी रहे होंगे, क्योंकि रक्षाबंधन हमें खुशी प्रदान करती है और बंधन मुक्त बना देता है, हमें अपनों से मिला देता है और खुशियां बरसा देता है। तो आइए, ऐसे खूबसूरत रक्षाबंधन के त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए सुनते रहो।

0: पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की सभी को लाखों लाखों बधाई और शुभ भावनाएं। बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है अभी प्रोग्राम। अभी हम सब प्यार से खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे, सुनेंगे, मुस्कुराएंगे और सभी को नमस्कार। भाई ओम शांति, ओम शांति,
1: ओम शांति। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ये थे सुभाष जी, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर। आप सभी को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी से रूबरू हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेशम की ये डोर हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। वैसे कोई भी व्यक्ति बंधन में बंधना नहीं चाहता, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जो हर कोई प्यार से बंधना चाहता है और बांधना चाहता है। तो आइए, 28 अगस्त 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार आज श्रावण शुक्रवार है और विक्रम संवत 2083 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार सद्विशा आज है। इसके साथ ही आज सांस्कृतिक दिवस भी है, रक्षाबंधन भी है और श्रावणी पूर्णिमा भी है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें आज हम करेंगे और आप सभी भी अपने यहाँ कैसे मनाते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और कल विशेष रूप से शाम को एक प्रोग्राम था जो आबू रोड में एक विशेष जगह पे आयोजित किया गया था, करोके क्लब अरावली, करोके क्लब वालों ने और उसमें हमको बुलाया था। तो बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से लोग संगीत को चाहते हैं और संगीत के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये देखने को मिला। और बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग सभी जो है करोके पे गाना गा रहे थे और बड़ा मस्ती में झूम रहे थे। तो देखकर खुशी हुई और उन सभी से मिलने का मौका मिला। तो आइए, संगीत हमारे जीवन को खुशियाँ प्रदान कर देता है और हमारे जीवन को बेहतर बना देता है। आइए इसी खुशी को और बढ़ाते हैं आप सभी के साथ मिलके। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अभी अभी हमारे बीच अजय वर्धन जी अलीगढ़ से याद कर रहे थे और साथ में नीरज जी गोंदिया से याद कर रहे थे। बड़े प्यार से आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं रही, फ़ोन करके उन्होंने याद किया। अब गीत चल रहा था तो मैंने उनको लाइव नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी भावनाएँ विचार हमारे साथ साझा किया है। वो आइए, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार। राखी की शुभकामना के साथ
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राखी की।
1: हाँ, सभी साथियों को भी मेरा सब शुभकामनाएं है। और रंग रंगीली राखी बन राजे भैया गाना है सर, रंग रंगीली राखी बन राजे भैया। राखी है दादो का त्योहार, राखी है भाई बहन का त्योहार। ये गाना भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार सा नमस्कार, राखा रक्षा बंधन का। और सुरेश भाई भी सुनते होंगे और गुलाराम जी है, भजन भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी प्रणाम हो, शुभकामनाएं के साथ में। धन्यवाद सर।
0: शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी खुशी, अपनी आवाज़ और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कर रहे थे। 8:37 हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं संस्कृत दिवस के बारे में। जी हां, भारत में हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है और रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजन और स्मरण का पर्व भी माना जाता है। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि सूत्र रहे हैं, इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व या सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्र तथा जिला स्तरों पर सांस्कृतिक दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कवि, संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखन गोष्ठी, छात्रों की भाषण तथा श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति। दयाराम जी बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज तो भाई और बहन का जो प्यार अटूट है, तो आज शुभ दिन है
0: जी। बहुत बढ़िया।
2: तो मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और बहन और भाई का प्यार ऐसे ही बना रहे और भाई का आशीर्वाद बहन पर रहे और बहन की दुआएं भाई को स्वस्थ रखे, ये हमारी शुभकामनाएं है। और सभी मेरे भाई सुन रहे हैं इस वक्त, जो हमारे प्रिय भाई भूरा राम जी है, सुरेश भाई है, कंचन भाई है और मदन लाल जी है, और भी बहुत साथी है हमारे जो भाई, जो सभी के नाम तो मैं लूंगा तो समय भी हमारा इतना नहीं है, और वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि हम भी जुड़ेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और अपनी भावनाएं रखे। और सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंद ही आनंद में रहिए। और सभी को बहुत बढ़िया है और गाने भी बहुत सुंदर सुंदर सुनाए जा रहे हो भाई जी, धन्यवाद है आपको। ओम शांति
0: जी। दयाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया, आपको और आपके पूरे परिवार को सांस्कृतिक दिवस का और रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सांस्कृतिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। चलिए मैं आप सभी को सीधे ले चलता हूँ, जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ सांस्कृतिक दिवस का, इसके बारे में अगर बात करें तो 1969 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस दिन को मनाने का पर्व जो है निर्देश मिला और तब से संपूर्ण भारत में ये दिन श्रावण पूर्णिमा का सांस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
3: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश जी बोलता हूं जटाना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया। सुरेश जी, आपको और आपके परिवार को सांस्कृतिक दिवस और रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बताइए कैसे हैं आप?
3: को आपके दिन की आज शुभ दिन पर सबको, हमारे सभी बहनों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे सभी बहनें खुशी रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे और हर दम जो खुशी का एक पर्व रहते हैं तो हर दम पर्व मनाते रहे और ऐसा ही परिवार में संबंध बना रहे भाई बहन का, क्योंकि ये जो पर्व है सर की कोई भी बात हो, कोई भी मुसीबत हो तो एक दूसरे पर जो एक दूसरे पर निर्भर रहे, एक दूसरे को सहाय करे, एक दूसरे को मदद करे, क्योंकि कई कई बार क्या होता है बहन को दुखी होती है, भैया यस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बहन के घर पहुंच जाइए और बहन की मदद कीजिए। तो हम जो रक्षाबंधन का पर्व निभाया था ही है, वरना तो आज के दिन बना प्रसंग निभाए अच्छी बहनों के रखे बाद में नहीं रखे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी हमारी बहनों को भाइयों को आपके दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और गाने तो हम सुन रहे हैं रक्षाबंधन के आपकी तरफ से जो सुना जा रहा है, तो बहुत बहुत नमस्ते सर, ओम शांति
0: जी। शुक्रिया सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाए हैं रिनवाद बन 107.8 FM। चलिए रंग बिरंगी राखी की तरफ ले चलते हैं आप सभी को। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सुना दोगे?
1: कौन सा गाना सुनना है आपको
0: जी?
1: कौन सा गाना सुनना है?
0: रक्षाबंधन का सर।
1: बहुत बढ़िया
0: सर, सुनाइए ना।
1: बिल्कुल सुनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: सर मैं सिरोही से बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: सिरोही से।
1: सिरोही से, क्या नाम है आपका?
0: राहुल।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिरोही से राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये थे राहुल सिरोही से। आप सभी से रूबरू होते हुए रक्षाबंधन का ये गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए गीत हम सुनाते हैं आपके लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। काजल मूवी का 1965 में ये फिल्म आई थी। आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत, रवि के सुंदर संगीत के साथ सजा, शाहिद लुधियानवी साहब ने लिखा था ये गीत, मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया था। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी सर, मैं नारायण लाल बोल रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं लाला राम
1: जी? सर आपकी सर एक कहानी सुननी है सुडल की।
0: हेलो,
1: मुझे सुडल की कहानी सुननी है सर।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
1: सुडल की कहानी,
0: कुंडल की कहानी, ठीक है। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं। सांस्कृतिक दिवस के बारे में बातें कर रहे थे और 1969 में इसकी शुरुआत हो गई और फिर उसके बाद सबसे प्राचीन भाषा हिंदी को विशेष रूप से याद किया जाता है और विदेशियों का रुझान भी इसी सांस्कृतिक दिवस को लेकर यहाँ पर काम किया गया। तो व्यावसायिक करण के बाद भारत में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा था, वहीं पर विदेश में संस्कृति का झंडा भी विशेष रूप से बुलंद हो रहा था। देश विदेश में समय समय पर हुए तमाम शोधों ने भी स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक वैज्ञानिक समता भाषा है, शोध के बाद सिद्ध हुआ है। हेलो जी नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार, रक्षाबंधन
0: की सर। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।
2: जी जी सर, मैं सर वंताराम बात कर रहा हूँ।
0: हाँ वंताराम बोलिए बोलिए।
2: जी सर, मुझे सर रक्षाबंधन का गीत सुनना है सर। आज सर रक्षाबंधन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनाते हैं अभी आपको, ठीक है
2: जी सर। राजस्थानी सुनाइएगा सर। बढ़िया,
0: चलो कोशिश करता हूँ मैं राजस्थानी वाला भजन आपको सुना पाऊँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। जी सर
0: जी, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो आइए यहाँ पर जो भारत में विशेष बनारस के घाट पर जो है 20 साल पहले ये चीज़ें जो है संस्कृति की वहाँ पर की गई थी और उसके बाद धीरे धीरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में विशेष सांस्कृतिक भाषा और भारत की संस्कृति को पहली बार करीब से जानने का मौका मिला, जहाँ पर देश विदेश के लोगों ने इस चीज़ को समझा। देवभाषा के रूप में संस्कृत को और अन्य जो विश्वविद्यालय जहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक ने उनके निर्देशन में 2006 में लोगों ने PhD किया और ये अभी तक क्रम चल रहा है। तो ये थी कुछ खास बातें, आप सुनाए हैं रिन्यूमाद वन 107.8 FM। हेलो जी नमस्कार।
3: नमस्ते जी, राधे राधे।
0: राधे राधे बोलिए, कैसे हैं आप?
3: सर मन भावन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो बातें हुई हमारा कॉल लगा तो हमें बहुत प्रसन्नता है। रक्षाबंधन के दिन शुभ पावन पर्व पर हमारा
0: बातचीत हो रहा रेडियो पर
3: मधुबन से बात हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अतर सिंह यादव है जी।
0: अतर सिंह यादव कहाँ से बोल रहे हैं सा?
3: जयपुर से बोल रहा हूँ जी मैं।
0: बहुत बढ़िया, अच्छा जयपुर से नेट पे सुन रहे होंगे आप रेडियो
3: जी, मेरा रेडियो मधुबन ने मेरा दिल जीत रखा है।
0: क्या बात, क्या
3: और
0: बात।
3: रेडियो मधुबन में जो अपना कार्यक्रम है बहुत अनुपम देन है जी।
0: जी जी,
3: अद्भुत जानकारी मिलती है, बहुत ही रोचक प्रोग्राम शानदार मुझे मधुबन के प्रोग्राम पूरे ही अच्छे लगते हैं।
0: जी जी जी,
3: और प्रोग्राम सुन के मेरी श्री राधा कृष्ण जी की सेवा भी चलती रहती है, मैं प्रोग्राम भी सुनता रहता हूँ। बीच में आप धार्मिक जो गाने लगाते हो वो जी, हमारा जी। दिल को जीत लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे राधा कृष्ण जी को भी उतने ही पसंद आ रहे होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत सफल प्रोग्राम, भगवान की कृपा से आपके प्रोग्राम को बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जो भाई बहन का जो हमारा सात्विक प्रेम है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये हमारा जो प्रेम है बना रहे अटूट प्रेम, इसमें यूं ही तरक्की और स्नेह सघनता बढ़ती जाए, ऐसा हमारा हमारे सभी बहन भाइयों को, भाई को बहन के प्रति और बहन को भाई के प्रति जो सात्विक संबंध है ये हमारा अटूट
0: बना रहे,
3: स्नेह के साथ बना रहे।
0: जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, अच्छी भावनाएं व्यक्त किया, राधे राधे, थैंक यू। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए एक झलक मारवाड़ी में खास राजस्थानी भाषा में रक्षाबंधन का ये सुंदर गीत आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुरा रहे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, बड़ा प्यारा सा भाई बहन का ये प्यारा गीत आप सुन रहे थे। आइए, इसके साथ ही वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं। अभी
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
2: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
3: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-23088718 और 9111-23088719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
6: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
7: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
6: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
8: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
9: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
10: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
9: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे

0: शक्तियों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
3: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
4: हमारे मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है, इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना, तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे, बच्चा आज तेरा एग्जाम है, तो है ना, हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स, इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए, सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए, तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी।
5: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अरे चुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे चुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए समाचारों के बाद, आशा करूंगा आप समाचार ठीक से सुन पाए हो। और समाचारों में जैसे कि नेपाल के पास में जो है काफ़ी बाढ़ आया हुआ है और लोग जो है गायब है, कुछ भारतीय भी है कुछ अन्य भी हैं, पर्यटक जब जितने भी हैं वो लापता भी है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में हम सभी उनके साथ उनके लिए श्रद्धा सुमन करते हुए जितना हो सके हम वहाँ पर मदद भेजें, और भारत भी जो है नेपाल के साथ खड़ा हुआ है इस मुश्किल घड़ी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ श्रावण पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र वर्ष के प्रत्येक महीने का नामकरण उसी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में भी 27 नक्षत्र माने जाते हैं। सभी नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी माने जाते हैं और इन्हीं में से एक है श्रावण। मान्यता ये है कि श्रावण पूर्णिमा को चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में गोचरत होता है, इसीलिए पूर्णमांत मास का नाम श्रावण रखा गया है और ये पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी आज विशेष रूप से इस पर्व को मना रहे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रीलोडेड गानों वाला।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है राखी के इस पवित्र बंधन की, पवित्र पर्व की। आपको और के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आज के दिन जन्मे उन खास लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका जन्मदिन है। और फिराक गोरखपुरी का भी जन्मदिन है, नारायण गुरु का भी जन्मदिन है। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। कन्याकुमारी में मरुत्वन पहाड़ों की गुफा में जिन्होंने तपस्या की, गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी। नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई और समाज सुधारक नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और उनकी समाधि केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। नारायण गुरु को श्री नारायण गुरु के नाम से ही जाना जाता है। उनका जन्म एजवा जाति के परिवार में हुआ था और केरल के जाति ग्रस्त समाज में उन्हें बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक आज़ादी और सामाजिक समानता के नए मूल्यों को बढ़ावा दिया। नारायण गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अपने स्वयं के प्रयासों से दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया और उस पर उन्होंने काम किया। तो बात करते हैं नारायण गुरु के, इनका परिचय में। इनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के उत्तर में 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव 1855 में इनका जन्म हुआ। स्वयं पिछड़ी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को अच्छे से समझ रहे थे। इनका घर का नाम नानू था। ये बचपन से ही बहुत नटखट भी थे और इनके पिता मदन आसन एक किसान थे, प्रसिद्ध आचार्य गुरुकुल के और संस्कृत के विद्वान भी थे, आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता भी थे। श्री नारायण गुरु की माँ का सरल महिला थी और अपने माता पिता की चार संतानों में एकमात्र बालक थे नारायण अथवा नानू। नानू एक आम बालक की तरह पढ़े लिखे। 5 वर्ष की आयु में उन्हें गाँव के स्कूल में पहला शिक्षक प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती कराया गया। वहाँ उन्होंने संस्कृत पढ़ी और प्राथमिक शिक्षा के बाद नानू के घर पर रहकर खेती और घरेलू कामकाज में हाथ बटाया और इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा करके पूजा पाठ और आध्यात्मिकता के प्रति भी उनका बचपन से ही जो है झुकाव रहा और पिता उसके लिए उनको अपने साथ ही रखते थे। लेकिन रोग कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर संघर्ष का दौर चला। अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का इन्होंने बाद में निर्णय लिया और स्थानीय समाज के बालकों विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा देने का प्रचार प्रसार इन्होंने काफ़ी अच्छे से शुरू किया। लेकिन इस बीच कई संघर्ष उनको आना पड़ा, संघर्ष उनका सामना करना पड़ा क्योंकि परिवार का पालन पोषण और फिर गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाना या फिर स्कूल खोल कर उन्हें पढ़वाना, तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा था। और ये संघर्ष उन्होंने बहुत समय तक किया। काफ़ी रिश्तेदारों के साथ उन्होंने बातचीत की इसके लिए, लेकिन किसी ने उनको जो है इसमें आगे बढ़कर हिस्सा या फिर मदद नहीं की। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम जारी रखा और फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने घर को छोड़कर इसी काम में संलग्न हो गए। 28 वर्ष की आयु में नारायण गुरु की इच्छा बहुत ज़बरदस्त हुई और ज़बरदस्ती उनका वो उस समय जो है विवाह भी करा गया, लेकिन वो घर छोड़कर चले गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ। 9:36 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। तो आइए एक और सुंदर राखी का गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बातें हो रही थी नारायण गुरु के बारे में और उन्होंने जैसे ही विवाह के बाद घर छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल गए, योग शिक्षा ली, मरुस गुफाओं में जो वहाँ पर साधना उन्होंने की, कठोर अनुशासन का व्रत साधा, व्यक्ति के विकास और गुण संपन्न हेतु कर्म और गति की बहुत अच्छी गहराई से पढ़ाई उन्होंने की। काफ़ी समय बाद श्री नारायण गुरु लोगों के बीच फिर लौटे। जब लोगों के बीच में लौटे तो गांव-गांव घूमकर उनको वो भोजन लिया करते थे और समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ रहकर पिछड़े वर्ग से घुल मिले और सभी लोग उनसे प्रभावित हुए, उनकी प्रति श्रद्धा जागी और समाज कार्य में सबसे पहले नारायण गुरु ने त्रिवंतपुरम में 20 किलोमीटर दक्षिण में अरुविपुरम में नैयर नदी के तट पर 1898 शिव मंदिर की स्थापना की और इस मान्यता को ठुकरा दिया कि केवल एक ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है। हिंदू मंदिरों में जिसका प्रवेश वर्जित था, वे इस मंदिर में निर्बंधन, जो भी पूजा करना चाहते, जो भी आना सकते आ सकते हैं, ये उन्होंने वहाँ पर सिद्ध कर दिया। और फिर धीरे धीरे मंदिर के साथ उन्होंने आश्रम बनाया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और इस तरह से फिर अपने पैरों पर खड़े होकर समाज सेवा को उन्होंने प्राथमिकता दी। आध्यात्मिकता और शिक्षा दोनों को लेकर वो आगे बढ़ते गए। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। ठाकुर भूपत सिंह शिवपुरिया
0: जी, स्वागत है आपका। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: हमारे सभी दोस्तों को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा
0: जी जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आपने याद किया।
1: नहीं, एक गाना चला दीजिए महाभारत ना, माता कुंता बेमान्य से बांधे अमर वाकई।
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: वो महाभारत में गीत है ना, माता कुंता बेमान्य के बांधे अमर वाकड़ी।
0: ठीक है, ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपत सिंह जी याद करने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, नई किरण। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो चलिए राखी का ये पावन पर्व जो है आप सुन भी रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त भी कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले नारायण गुरु की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उन्होंने आश्रम शुरू किया और मंदिरों की स्थापना की और पिछड़े वर्ग के लोगों को अध्यात्म, पूजा पाठ और शिक्षा के साथ जोड़ा उन्होंने। और उनके जीवन दर्शन में तीन जो है हिस्से देखे जा सकते हैं। एक ऐसा भक्त जो संसार के दैनिक झगड़ों से दूर शांति पथ पर आगे बढ़ते हुए जंगलों में, पर्वतों में और अन्य स्थानों पर, सुनसान जगह पर वो धीमी गति से अपना कार्य करते रहे और निर्जन स्थानों पर सत्य को ढूंढने का काम किया। जब मनुष्य एक तपस्वी हो जाता है तो एक वास्तविक योगी बन जाता है और जब वो गीता के सूत्र को ध्यान में लाता है, कर्म करते जा फल की इच्छा न कर, तो उसको सार्थक भी करता है। तो ये दूसरा भाग उनके जीवन में देखने को मिला। तीसरा भाग, वास्तविक रूप में वो कर्म में विश्वास रखते हुए संसार के मोह माया से हटकर एक ज्ञानी बन गए और समाज की आवश्यकता समझकर समाज की गतिविधियों को भी ज्ञान से प्रेरित करते हुए अपना कर्म को किया। तो ये थी कुछ खास बातें नारायण गुरु के जीवन दर्शन के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर जी, नई किरण। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए मंगल कामनाएं करते हुए मैं आपको फिर से ले चलता हूं एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं, फिराक गोरखपुरी। जी हां, भारत के एक ऐसे शायर जिन्होंने उर्दू में एक नई रंगत पैदा की अपने कविताओं के माध्यम से। भारत के बहुत ही पॉपुलर शायर, उर्दू के जाने माने शायर फिराक, उनका तकल्लुस था और उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उनमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय जाता है। फिराक गोरखपुरी ने अपनी साहित्यिक जीवन का आरंभ गज़ल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई थी और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी के बारे में। 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका फिराक का पूरा नाम था रघुपति साई फिराक, किंतु अपनी शायरी में वे अपना उपनाम फिराक लिखते थे। उनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, जो पेशे से एक वकील थे, और मुंशी गोरख प्रसाद भले ही वकील थे किंतु शायरी में भी उनका बहुत नाम था। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि शायरी फिराक साहब को विरासत में मिली थी। फिराक गोरखपुरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करके BA से चौथे स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त हुए थे। उनकी मुख्य रचनाओं को बात करें तो गुल ए नगमा, गुल ए आरान, रूहे कायनात, मसहल, रूप रुबाई, सरगम, बंज में जिंदगी, रंगे शायरी, परछाई, तराना ए इश्क आदि आदि बहुत पॉपुलर रहे। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मदन
0: जी। मदन जी बोलिए, स्वागत है आपका। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: आपको भी और हमारे सभी दोस्तों को और पूरे रेडियो मधुबन को और हमारे पूरे विश्व में भाई बहन का त्यौहार है, बड़ा पवित्र है, मगर बहुत खुशी से और मन से अच्छे विचारों से त्यौहार मनावें और सभी का सम्मान करें, ऐसी शुभकामना करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं और गाना गाते हैं। सजारों में मेरी पहला है, सारी उम्र हमें संग लेना है, तारों का सबका कहना है। एक हजारों मेरी पहला है। नमस्कार सर, ओम शांति।
0: ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिराक गोरखपुरी की जीवन कहानी को सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जैसे हम लोग रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बातें चल रही हैं और अपनी शुभ भावना शुभकामना आप विशेष रूप से दे रहे हैं, तो चलिए एक और सुंदर सा गीत आपके लिए अभी। और ये एक नया गीत आपके नाम।

0: रे लो मारे हये हर कन मायरे रक्षा बांधू तुम्हारा वीर मेरे लोल जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, थैंक यू। आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये थे फिरोज भाई जो अपनी राखी की गुजराती वाला गीत सभी को सुना रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं 28 अगस्त को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 में भारत के लिए कंस पदक जीतने वाली खिलाड़ी अन्नू रानी का जन्म आज ही के दिन 1992 में हुआ। मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी अनुज नैयर, इनका भी जन्मदिन आज है। 1975 में इनका जन्म हुआ था। और भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, 1952 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। एक भारतीय राजनीतिक थे, इंडियन पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निर्देशक रहे। नरेंद्र चंद्र टेब वर्मा, 1942 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव जी का जन्म भी आज के दिन 1929 को हुआ। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार रमेश जी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे सभी श्रोताओं को।
1: जी जी, शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: हाँ, जो भी आपने फिराक गोरखपुरी का जो बताया था तो उसमें गुलो नगमा बुक मैंने पढ़ी है और
1: जी,
2: बहुत
1: जी,
2: अच्छी, मतलब इनकी डिस्कर्स तो होती है थोड़ी सी ना शायरी, लेकिन बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने और बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने इनकी गजलों को गाया है, तो मैंने पढ़ा है इसको गुड़े नगमा को। थैंक यू
1: जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ये दिल्ली से वंदना जी थे जो आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ फिराक गोरखपुरी की बातें याद की। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक भारतीय राजनीतिक थे, इंडियन पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निर्देशक नरेंद्र चंद्र जी का भी जन्मदिन आज ही है, 1942 में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव जी का भी जन्म आज है, 1929 में इनका जन्म हुआ था। भारत के बहुत ही पॉपुलर सितार वादक विलायत खां का जन्म भी आज ही के दिन 1928 को हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी के मैनन, इनका भी जन्मदिन आज ही है, 1928 में इनका भी जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे टीवी राजेश्वर जी, 1926 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजकुमारी थी विजया देवी, 1922 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भोपाल रियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली पायलट महिला आबिदा सुल्तान का भी जन्मदिन आज है, 1913 में इनका जन्म हुआ था। चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद जी का जन्मदिन भी आज ही है, 1932 में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर जिनके जिक्र हमने अभी किया फिराक गोरखपुरी का, इनका भी जन्मदिन 1896 में आज ही के दिन हुआ। और भारत के महान संत और समाज सुधारक नारायण गुरु, इनका जन्म आज ही के दिन 1855 में हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का,
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का,
4: खुशियों के त्योहार का,
6: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
7: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

भाई बहन का प्यार है, दिल री मारी दुआ है, वीरा थे जियो हजारों साल है, राखी का त्योहार है। तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। राखी का पर्व माँ लक्ष्मी ने शुरू किया, कैसे तो जरा विचार करिए, हम जरूर बताएंगे। और जी हाँ, अगर शरीर का कोई भी अंग सुन पड़ गया है तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की आज हम ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी के साथ राखी मना करके, ठीक है। और भाई रेसिपी कैसे भूल सकते हैं, आज तो रक्षाबंधन है तो कुछ स्पेशली आपको खिलाएंगे। आप क्या पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा अपनी पसंद, नहीं तो हम तो बैठे हैं अपनी पसंद सुनाने के लिए। और आज का टंग ट्विस्टर तो बहुत ही लाजवाब होगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: वीरा लाड़।

तो पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग आशना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का सुंदर सा विचार है, राखी का त्यौहार माँ लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, माँ लक्ष्मी जी ने ही शुरू किया है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी है। ऐसी ही एक कथा राजा बलि, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी, तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल है। ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो ये मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। बहनें जब भाइयों को राखी बांधती है तब भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इस मंत्र के पीछे की धार्मिक घटना क्या है? आइए रक्षाबंधन त्यौहार के पवित्र मौके पर जानते हैं इस मंत्र से रक्षाबंधन की कथा का क्या संबंध है और माता लक्ष्मी ने किसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त किया था। एक बार क्या होता है, दानवों और देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया जो 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित करके इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे जनार्दन, ये स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं है। हम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यथा दूर करो प्रभु। भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या यह वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोकों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो चाहे सो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पैर जमीन मांगी। ये सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर के। उन्हें वामन पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि को यह दान देने से रोकना चाहा, लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बोना 3 कदम मतलब 3 पग में कितनी जमीन नाप पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से अपनी 3 पैर भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना 3रा पांव

वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर आए उधर उसको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अवचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते, वे वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद फिर वैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने एक कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष सयाधारी भगवान कहाँ है, कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापिस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान्य, समृद्धि और ऐश्वर्य से खिल उठा। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसकी रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ भी मांगने का आग्रह किया। देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सन्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने का अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म परायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर वैकुंठ आ गई। जिस दिन ये घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। पूर्णिमा तिथि थी, कहते हैं तभी से यह तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देता है। तो इस तरह रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो ये हुआ आज का विचार। और आइए फिर से सुन लेते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मोहन जी कुमावत रोहिड़ा से जुड़ चुके हैं जो अभी वर्तमान में आबू रोड में रहते हैं। नमस्कार भाई साहब।
1: सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को हमारी बहनों का स्वागत बना रहे और हमारे भैया लोगों का घर आबाद रहे, तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि हमेशा उनके घर में खुशियाँ आवे और वो रक्षाबंधन इसी प्रकार प्यार से मनावे। तो मैं अपने तहे दिल से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ
0: जी। और सभी बहनों की तरफ से, रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को और आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, निरामय रहे।
1: मेरे पुराने जो बंधु श्रोता है उनके उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी अपने अन्य नए श्रोता है उनको भी बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मोहन जी कुमावत और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ शरीर के प्रभावित अंगों के लिए, जो अंग सुन पड़ जाते हैं किस कारण से वो सब जानेंगे। तो देखिए, सबसे अधिक टीबी का असर फेफड़ों पर होता है। जब टीबी होते हैं ना तो फेफड़ों पर पड़ता है। अन्य प्रभावित होने वाले अंगों में जैसे हड्डियाँ, आते, टॉन्सिल्स, चमड़ी, गुर्दे और प्रजनन अंग सम्मिलित है। चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो, सामान्य लक्षण एक से होते हैं। हरारत, हल्का सायंकालीन बुखार, भूख कम, वजन गिरना टीबी के सामान्य लक्षण है। फेफड़ों की टीबी में खांसी, बलगम आना, छाती दर्द, सांस में दिक्कत, खांसी के साथ खून आना, ये इसके खास लक्षण है। आंतों की टीबी में पेट में गैस का घोला बनना, बदहजमी, पेट फूलना खास लक्षण है। संतानहीनता का प्रमुख कारण बदहजमी, पेट फूलना, महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी का खास मतलब लक्षण है। गुर्दे की टीबी में पेशाब में खून आना और गुर्दों में सूजन आना खास संकेत है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीबी के कारण अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुंदर से उपाय आपको बता रही हूँ। एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालिए, फिर ठंडा होने पर शक्कर डाल करके रोज़ सुबह शाम पीजिए। इसमें क्या है, खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी, आरंभिक टीबी में लाभ होता है जब टीबी की शुरुआत है और यह सब कुछ दिक्कतें आ रही है तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, दूसरा उपाय है यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्र में घी मिलाकर खाने से क्षय रोग का नाश होकर के बल मिलता है, ताकत मिलती है। ठीक है, फिर तीसरा है यक्ष्मा में जिन्हें लगातार बुखार रहता है, ज्वर रहता हो, उन्हें 11 पत्ते तुलसी, फिर नमक, जीरा, हींग, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिला करके 3 बार कुछ दिन तक पीजिएगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। फिर से दोहरा रही हूँ कि आप 11 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा नमक, थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग 1 गिलास गर्म पानी में मिलाना है, ये सब कुछ, नींबू का रस भी 25 ग्राम मिलाना है और कुछ दिनों तक लगातार आपको पीना है तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। सेब खाना, सेब यानी कि एप्पल, एप्पल खाइएगा, यक्ष्मा में बहुत ही लाभदायक है। आतो, यकृत और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लास्ट उपाय बता रही हूँ, यक्ष्मा में भोजन के रूप में अंगूर का सेवन करिएगा। यक्ष्मा में, यक्ष्मा जिसको अंग मतलब ये टीबी कहते हैं, तो इसमें आप भोजन के रूप में अंगूर का सेवन करिएगा, काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर है और आपको अधिक से अधिक 3 बार और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है। ठीक है, तो सुनिएगा राखी रेशमी, रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। तो यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15। और अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राखी का धागा सिर्फ कलाई नहीं सजाता, राखी का धागा सिर्फ कलाई नहीं सजाता, ये भाई बहन के दिलों को पास लाता। रिश्तों में अगर कभी रूठना भी हो जाए, रिश्तों में अगर कभी रूठना भी हो जाए, प्यार का एक धागा फिर सब भुलाता, प्यार का एक धागा फिर सब भुलाता। तो आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, जो ये शायरी रखी है आपके समक्ष, अब इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज भाई बहन का पवित्र दिन है, बहुत ही सुंदर प्यारा पर्व है, तो क्या कर रहे हैं आप सभी? चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सरोज भाई जटान आपसे बोलता हूँ, और आपको, सभी परिवार को, सभी हमारे मित्रों को, सभी बहनों को आपकी दिन की रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी
0: जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं
1: दीदी। हमारे सभी बहन अच्छी रहे, हमारी आज कोई हमारे मित्र मंडल है, हमारे मधुबन परिवार है, सभी बहने जितना है, तो आज के दिन की सभी बहनों को शुभकामनाएं दीदी
0: जी।
1: सबको बस भाई बहन का एक अस्मर स्टार बना रहे, ऐसी शुभकामना आज के दिन के लिए दीदी
0: जी।
1: और बहुत अच्छा त्योहार है आज, देखो आज इतनी हलचल है घरों में, बाजार में, रिश्तों में,
0: तो जी जी जी,
1: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी, सब खुश रहे, अच्छे रहे।
0: आज आप भी कहीं जाने वाले हैं या आपके घर पर आ गई होगी बहने, है ना?
1: नहीं दीदी, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आज मैं अभी बहन आ रही है, एक दो तीन दिन में तो आके गए और एक दिन आ रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, क्योंकि सबको जो मौका जब मिलता है तब आते हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल,
1: एक साथ तो नहीं आ सकते,
0: बिल्कुल, ये तो है,
1: सभी परिवार में सामने वाले को भी करके आता है जाता है, तो ऐसा रहता है दीदी। कल हमारी बड़ी बहन आई थी, तो सुबह में आके तो रात को चले गए, शाम को, तीन चार दिन पहले भी एक बहन आए थे।
0: अच्छा,
1: तो अगले आज भी एक बहन सुबह में आ रहे हैं थोड़ी देर में बस।
0: जी जी जी जी,
1: तो और बेटी भी आ रही है।
0: जी जी जी जी,
1: अहमदाबाद से।
0: जी जी जी, तो ये रिश्तों में आजकल क्या हो रहा है सुरेश भाई, भाई बहन के रिश्तों में भी जो सबसे खास अजीज रिश्ता है उसमें भी दूरियां बढ़ती जा रही है, उसमें भी मन मोटाव होता जा रहा है।
1: सही बात है दीदी, बता, आज ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है, शायद सामने वाले की बहन भी अब थोड़ा अनसमझ है, कभी कभी गायकों को भी थोड़ा समझ जाती है, तो ऐसे में मैं तो दीदी कहता हूँ उसको जो ऐसी मन बनो तो जल्दी से इसको ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी बहन की एक बात करूँ तो मेरी छोटी बहन दीदी नहीं आती है, तीन साल से नहीं आती, मैं हर रोज कहता हूँ, हर रोज फोन करता हूँ, लेकिन नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ
0: जी,
1: मैं भी कह कह के थक जाए। आज मैंने मेरी जल्दी छोटी बहन है, आज वो नहीं आई है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है,
0: छोटी बहन
1: आए एक दिन नहीं आती तो क्या हो, लेकिन इसको ऐसे थोड़ी सी गैर समझ हो गई, लेकिन गैर समझ वो समझते नहीं है, क्या करे। मैंने कितनी बार उसको बोला, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ कि मेरी गलती है,
0: अरे ऐसे भाई बहन के प्यारे से रिश्ते में एक बार गलती मान ली, बात खत्म हो गई ना।
1: लेकिन मैं हर बार गलती मानता हूँ, एक बार नहीं हर बार मानता हूँ, लेकिन उसको क्या हुआ है पता नहीं, नहीं समझती है।
0: अच्छा,
1: मैं कल परसों भी मैंने बहुत उसको फोन किया, मैं इसके घर, वो मेरे घर तीन साल से नहीं आती है, लेकिन मैं इसके घर 25 बार गया हूँ,
0: क्या बात
1: मेरे
0: है,
1: घर नहीं आती है।
0: अरे बाबू,
1: क्या करूँ।
0: चलो, आपने गलती जो भी हुई हो एक्स वाई जेड, आपने स्वीकार कर ली, आपने माफी मांग ली, आप 25 बार चले गए, बात खत्म, आपकी तरफ से गिला शिकवा है ही नहीं, अब वो उसको पकड़ के बैठी हुई है, तो फिर वो तो अब ईश्वरी मालिक है।
1: बिल्कुल छोटी बहन दीदी, उसको मैंने लाठ पास से प्यारा था, वो उसको क्या था दीदी, मैं उसको खुल स्कूल भेजने जाते थे, मैं उसके भी बाल भी मैं बनाता था।
0: जी जी,
1: क्या मैं छोड़ के जाता था, बिल्कुल छोटी बहन है मेरी, समझती है, तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन करो तो क्या करो,
0: कोई नहीं, कुछ क्या कि कुछ है ना, ऐसी बातें हो जाती है, समय पर छोड़ दीजिए, जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो समय पर छोड़ देना ही अच्छा है।
1: इसलिए मैंने छोड़ दिया, तेरे को जब आना होता है ना, मैं तो पूछ रहा, मेरी तरफ से मैं सब कुछ मैं बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: इसलिए चलो, मैं और एक सिस्टम के स्तर से ला दूँ तो।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्योंकि विषय तो मैं बता चुका हूँ क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है तो
0: जी जी जी जी जी जी
1: जाना चाहिए, बैनों को भी समझ जाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: भैया को समझना चाहिए
0: जी।
1: तो मैं संकिस्ता सुना।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, आए बहन की बने रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
0: क्या बात है जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आपने भी देखे अपनी व्यथा को बताई है कि कैसे बहन नाराज है और हम इस दिन को मनाते हैं। तो भाई मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी गिला शिकवा है ख़त्म करिए। अरे हम आपस कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, खून का रिश्ता है। अरे कुछ गलती मुझसे हुई, कुछ गलती आपसे हुई, चले मुझसे हुई आपसे नहीं हुई तो क्या अपनी बहन को माफ़ नहीं करोगे? या भाई से हुई बहन से नहीं हुई तो क्या अपने भाई को माफ़ नहीं करेंगे? हाँ थोड़ा सा आपको अगर ऐसा है कि कैसे गलती हो गई तो थोड़ा भाई झगड़ लीजिए, आपस में बात कर लीजिए कैसा किया वैसा किया तो उसका समाधान आएगा। गांठ बांध कर हम बैठ जाते हैं तो उसका समाधान नहीं आता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए कोई भी बात की टीस है आपके मन में तो आप बता दीजिए कि ऐसी बात है, आपने ऐसा किया, अब क्या करना है। तो सामने वाला भी अपनी बात रखेगा और उस बात को वही ख़त्म कर देगा, बाकी पकड़ के रखने में कोई फायदा नहीं। हेलो,
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: जी ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हम अच्छे हैं सुभाष भाई, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखो आज बहुत ही पावन पवित्र खूबसूरत प्यारा मनोहर दिन, रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार का त्योहार है। तो आपको और रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोता भाई बहने सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार और रक्षाबंधन की दिल से हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभ भावना। और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपने भी बहुत ही अच्छा विचार सुनाया विशेष दिन का। और सुरेश भाई हमारे पहले दोस्त जोटाना वाले, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सभी का शुक्रिया और सभी को बधाई। ओम शांति दीदी, ओम शांति
0: जी। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? चलिए रख दिया है, कोई बात नहीं, अगर आप भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आज के विषय में भी अपनी बात रख सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। जो मैं बोल के सुना रही हूँ ध्यान दीजिएगा। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। हेलो, हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते
0: जी,
3: बहनों को शुभकामनाएं देते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन
0: ऑन एयर है आप?
3: हाँ जी,
0: हाँ जी। तो आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस दिन को कैसे आप खास मना रहे हैं?
3: तो हमारे तो क्या है कि हम पांच भाई थे, हाई बहन भी थे, क्या
0: जी
3: हमारे तो कोई बहन नहीं है, धर्म की बहन हमारे गांव में ही एक बहन है, तो ये आए थे तो दो दिन पहले
0: जी।
3: तो से राखी लेके आए थे तो हमने ये सब किया, तो हमारी ये है दिया और ये सब किया। लेकिन क्या है, आज हमारी बेटी आने वाली है
0: जी।
3: चार भाई बेटे हैं मेरे और एक ही बेटी है, तो कल से कॉल कर रही है। हमने भी ये तो सुबोध ने और एक के घर से बुलाया है कि भी आओ यहाँ भोजन का सब ये करेंगे, तो आज आने वाले हैं वो
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए।
3: जैसे सूरज भाई ने बोला कहा है, ऐसे हमारे भी हमारे भाई के एक ही बेटा है, दो बेटियां है, तो थोड़ा ये हुआ है बहन जी, बनाव हुआ है।
0: अच्छा।
3: माता पिता से, बहनों से तो नहीं हुआ था, लेकिन माता पिता से हुआ है
0: जी।
3: इसको जॉब भी दिलवाई है, ये जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बहुत परिस्थितियां बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को बोलता नहीं, माता पिता को नहीं बोलता, बहनों को नहीं बोलता, कोई कॉल भी नहीं करता, ये नहीं करता, तो क्या करे बहन जी। ऐसा ये कुछ हो जाता है तो इतना है, ये तो एक साल में ये होना हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि कोई इसके घर से कोई ये है क्या है, कोई समझ में नहीं आता बहन
0: जी। जी जी जी
3: तो नहीं, आज भी नहीं आया घर पे
0: जी,
3: बहने भी नहीं आई।
0: अच्छा, अब बहने कैसे आएगी जब भाई बुलाता ही नहीं है, तो बहने कैसे आएगी भाई। माता पिता का झगड़ा है तो माता पिता के साथ रखो, लेकिन बहनों ने क्या बिगाड़ा,
3: क्या बिगाड़ा,
0: और माता पिता से क्या आप एक नहीं होंगे, इकलौता बेटा है, माता पिता क्या बच्चे का बुरा तो नहीं चाहेंगे।
3: बुरा क्यों चाहे बहन जी, जॉब दिलवाई है, इसका जो रिटायर्ड हुए सब पैसे इसमें एक कर दिए और जॉब दिलवाई, और ये फिर ये माता पिता से और बहनों से सब घर से अलग हो गए
0: जी। ये तो स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ हो गया।
3: मुझे
0: ये तो
3: कहानी याद आ गई, छोटी सी है बहन जी, कि
0: जी।
3: एक बहन थी तो भाइयों ने इसकी शादी की, ठीक है, तो इसकी परिस्थितियां कोई अच्छी नहीं थी बहन के घर से, तो ये बुलाते भी नहीं थे कि भाई अब इसको क्या बुलाए, क्या भाई इसके पास, ऐसा थोड़ा भाई भाइयों में थोड़ा ये था
0: जी।
3: तो परिस्थितियां तो एक सरखी तो नहीं हो रहती बहन जी, तो
0: जी।
3: फिर क्या हुआ कि भाई बहन की घर से थोड़ी परिस्थितियां बहन की सुधर गई और अच्छी परिस्थिति हुई, मेहनत की ये किया, तो फिर भाइयों को पता चला कि भाई बहन तो थोड़ा परिस्थितियां तो थोड़ी अच्छी हो गई है, हमारे भी कोई पैसों की जरूरत पड़े तो हमें भी मदद करेगी, काम आएगी, तो बुलाते हैं इस साल रक्षाबंधन में।
0: अच्छा,
3: तो क्या किया कि भाई उनको बुलाया बहन, इतने सालों से तो नहीं बुलाते थे
0: जी,
3: बुलाया तो बहन को पता चल गया कि भाई इतने सालों से नहीं बुलाया तो इस साल बुला रहे हैं, तो हमारी परिस्थितियां थोड़ी ठीक हुई है तो चलो जाते हैं। तो सभी गहने पहन के भाइयों के घर गई
0: जी।
3: तो भाइयों ने भोजन बनाया था, मिष्ठान आदि बटी सभी बनाया, तो बैठा है बहन को भोजन करने के लिए
0: जी।
3: तो बहन ने एक थाली दूसरी मंगवाई, खाली थाली
0: जी,
3: एक खाली थाली लाओ, तो इसमें सभी गहने बहन ने एक एक करके ये थाली में रख दिए, और बहन बोली कि भाई ये मेरा, मुझे नहीं बुलाया, मेरे ये गहनों को बुलाया है। मेरी परिस्थिति ऐसी थी तो आपने नहीं बुलाते थे इतने सालों तक
0: जी,
3: लेकिन आज आपने ये बुलाया है तो ये मुझे नहीं बुलाया है। ये मेरे तो ये फिर भाइयों को पछतावा हुआ कि भाई हमें बहुत गलती की थी, माफी मांगी की।
0: जी
3: तो एक नहीं करना चाहिए बहन जी, ये परिस्थिति जो जिसकी जो परिस्थिति है, लेकिन आज के दिन बहन को भाई के घर जाना और भाइयों को हमें बुलाना चाहिए, भाइयों के घर से है, बहन की भाभियां है, इसको भी बुलाना चाहिए कि भी आओ। देखो कल दो तीन बार कॉल किया हमारे सुबोध के घर से, आओ तुम कब आओ आते हो, यहाँ सब खाना बना बनाएंगे सब बैठेंगे
0: जी।
3: तो ये आज के दिन की थोड़ी बात है
0: जी जी जी, जी।
3: तो मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे तो होता है, उल्टे बहन की परिस्थिति डाउन हो तो उस समय तो भाइयों को और आगे आना चाहिए।
3: हाँ आगे हम देखते हैं ना, देखो सुभद्रा अर्जुन की बहन, पांडवों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसको निकाल दिया था ये करके, ठीक है। तो कृष्ण ने क्या सोचा कि भाई चलो संबंध बांधे, ऐसे तो वो लेने वाले नहीं थे पांडव, सुभद्रा का शादी की अर्जुन से और ड्रग संपत्ति फिर कृष्ण ने दी
0: जी जी जी।
3: ये उदाहरण एक लेना चाहिए बहन जी की भी परिस्थितियां नहीं है तो ऐसे संबंध जो बांधा है तो हमें कुछ मदद करनी चाहिए
0: जी बिल्कुल,
3: दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है
0: जी। कंचन भाई चलिए बहुत बहुत आभार आपका।
3: हाँ जी बहन जी, सभी बहनों को
0: जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आइए अब यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटते हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए पहले हमारे श्रोता बंधु से बात कर लेते हैं। हेलो, चलिए तो सुन लेते हैं एक गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: होता जिसे मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक, दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
6: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में दयाराम जी रामपुरा से जुड़ चुके हैं। दयाराम जी नमस्कार।
1: नमस्कार, ओम शांति दीदी, हमारी प्यारी बहन उषा जी और सभी मेरी जो रेडियो के माध्यम से जो हमारे परिवार की बहनें हैं उन सभी को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और हमारा जो आशीर्वाद हमारी बहनों पर बना रहे और हमारे बहनों के साथ साथ जो हमारे प्रिय भाई है तो उन पर भी बना रहे। सुरेश भाई है, कंचन भाई है, मदन लाल जी है, पूरे राम जी है और बहुत सारी है इन सभी पर और हमारी आरजे बहनी है उन पर तो विशेष कर खास बना रहे तो वो हमारे लिए कार्यक्रम अच्छा करते है और उन पर बना रहे वो मैं जो हमारे शब्दों के माध्यम से उन तक हमारी राखी पहुंचाती है और हमारा जो भावनाएं होती है दिल में उनके साथ हम व्यक्त करते हैं तो उन बहनों को सभी को हमारी दादियों को बहनों को भाइयों को हमारे राजकुमारों को सभी को बहुत बहुत आज के दिन की हार्दिक बधाई और बढ़िया हूँ अच्छा हूँ। और राखी का त्योहार है, बहने भी आई थी, राखी कलाई पर बांध के गई है
0: जी।
1: और बहनों को जो हमारा आशीर्वाद है, कई भाइयों ने तो हमारी बहनों के जो गिफ्ट के रूप में कहीं ने कोई मदिरा पान भी छोड़ दिया है, कहीं ने बीड़ी भी छोड़ी है तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है
0: जी जी जी जी।
1: और दीदी आपका आज का टांग ट्विस्टर?
0: हाँ जी, हाँ जी सुनाइए।
1: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की प्रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, ढेर सारी
1: धन्यवाद दीदी आपके लिए।
0: बहुत बहुत आभार आपका दयाराम जी। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आपने भी अपने दिल के भाव व्यक्त किए हैं सभी के समक्ष। वो कहते हैं ना कि कलाई पर राखी आंखों में प्यार हो, कलाई पर राखी आंखों में प्यार हो, भाई बहन का रिश्ता यूं ही शानदार हो, दुनिया चाहे कितनी भी क्यों न आए, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों न आए, दिल से दिल का रिश्ता सदा बरकरार हो, दिल से दिल का रिश्ता सदा बरकरार हो। पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी।
2: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज भले और रक्षाबंधन की सबको बधाई। और एक गीत बोलता हूँ,
0: हाँ जी,
2: लेडीज आवाज में बोलता हूँ,

0: ਆਖਣੀ ਨਾ
1: जी, हमने भी यही सुनाया था विचार में जी।
0: दूसरा के ये फूल लोग का तारों का
1: सबका कहना है एक हजार में मेरी बहना है
0: सारी उम्र हमें
1: संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, क्या बात है फिरोज भाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
0: टंग ट्विस्टर में मेरे को जमता नहीं है बहन जी, इसी वजह से नहीं जुड़ता इसमें।
1: अच्छा, आप अच्छा बोलते हैं, आराम से सुना सकते हैं आप टंग ट्विस्टर भी, बहुत सरल है। ठीक है, फिर भी कोशिश करिएगा जुड़ के बोलने की, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और देखिए बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है, और आप गीतों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है। अब आप ही जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज के त्योहार के बारे में आप बता सकते हैं, तो आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं। आज का त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, बहुत सारे दिन मनाते हैं, लेकिन आज का दिन भी खास है। और जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी जो भी सुन रहे इस कार्यक्रम को, रेडियो मधुबन परिवार का हिस्सा हो, आपको भी जुड़ने का अधिकार है और आप जुड़ सकते हो। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ जी सुरेश भाई,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: जी जी दीदी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी हमारे देश की बहनों को भी शुभकामना, और सभी के लिए आज के दिन की ढेर ढेर सारी शुभकामना। बहुत पावन पवित्र दिन है तो, और हमारे दोस्त भी अपना भाव इतना अच्छी तरह से व्यक्त कर रहे थे, हम सुन के हमारा दिल मन गदगद हो रहा है।
1: जी जी जी
2: जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो दीदी मैं ये बताऊंगा कि जो इस प्रोग्राम में बातें की गई, तो अब ये क्या है दीदी कि खास करके जो भाई बहन के जो थोड़े से रिश्ते ये होते हैं ना, उनमें जो हम लोग क्या करते हैं, और लोगों को भी, सभी अगर सुन रहे तो उनको भी ये कहना चाहूंगा कि जो बहन भाई से ज्यादा अपनी भाभी को ज्यादा अगर खुश रखे या जो भी वो करेंगे, तो भाई तो अपने आप ही बहन के प्रति तो प्यार रहता ही है। तो क्या कहते हैं कि कोई भी भाई बहन अगर नहीं बोलते है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस भाई और भाभी और ननद को सुलह करा देते हैं दूसरे को, तो फिर वो रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता है। अगर बहन भी के चलो उनके मन में ये है, गुस्सा है, नहीं बोल रही, तो उस भाभी को भी आगे कर देते हैं कि चलो ननद है कैसे भी है, लेकिन रिश्ता बनाए रखना, तो ये तो करना जरूरी है, तो ये रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी जी जी, और बस हमारी बहन, मेरी तीन बहन है, जो बड़ी बहन है मधु, मधु बहन है, तो वो मुंबई वसई में रहती है, और दूसरे नंबर की आशा बहन है, वो नई मुंबई में रहती है, और तीसरी नई मुंबई में धारावी में रहती है।
1: क्या बात है, तब तो या तो तीनों ही बहनें आ जाए या आप चले जाओ, एक ही जगह सारे हो जाए त्योहार का आनंद।
2: हाँ, थोड़े से दूर है तो आएंगे, तो कुछ दिनों के बाद आएंगे, हमारे यहाँ 10 दिन आसपास भी राखी बांधन तो भी चलता है, ऐसा नहीं कि आज के दिन ही।
1: जी जी, ये वैसे ऋषि पंचमी तक चलता है त्योहार।
2: हाँ दीदी,
1: और भाई बहन का प्यार तो दिल में होना चाहिए ना, तो हमेशा ही रक्षाबंधन जी।
2: और अब तो जो फोन का जमाना आ गया है ना, तो हर रोज वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे का हाल चाल, सब कुछ ऐसे ही लगे कि जैसे हम एक साथ ही रहते हैं।
1: जी सही बात है।
2: और मैं टंग ट्विस्टर सुनाने की कोशिश करता हूँ।
1: हाँ जी जरूर।
2: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशम की राखी, रेशम रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे पीठ। हैप्पी बन।
1: पहली लाइन में थोड़ी गड़बड़ हुई है।
2: वो तो पंक्ति सर है तो
1: जी जी जी, तो फिर भी अच्छी कोशिश की है। बहुत बहुत आभार आपका।
2: जी नमस्ते जी, ओम शांति
1: ओम शांति। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है और टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है। तो कहने का भाव यही है, जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि भाभी और ननंद का रिश्ता अच्छा होगा तो भाई तो अपना ही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के हर सिक्के के दो पहलू है, अच्छा भी है बुरा भी है, है ना। अभी ब्रेक में ही किसी का फ़ोन आया, अभी उससे बात करना बाकी है। अभी पूरी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उनको समझ गए थे कि बहन बता रही थी भाभी क्या करती है, मुंह के सामने अच्छा रहती है और भाई के कान भरती है। तो भाई अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बोलता, एक भाई एक बहन, और भाई बात नहीं करता है। अगर भाई के घर पर बहन जाती है तो किसी न किसी कारण से बहन के इंसल्ट करता है, बहन के ऊपर कमेंट कसता है, और भाभी मीठी मीठी बातें करती है और भाई को चढ़ाती है। अब आप बोलिए, अब ऐसा भी भला होता होगा है। हेलो
3: हेलो दीदी, नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी
3: कुशवा बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी विक्रम भाई नमस्कार, कैसे हो आप?
3: सब बढ़िया है दीदी।
1: जी जी जी,
3: के आपको बहुत बहुत बधाई।
1: जी आपको भी, और स्वास्थ्य बढ़िया?
3: हाँ दीदी सब बढ़िया है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, परिवार भी बढ़िया है। हम
1: जी अच्छी बात है,
3: कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी।
1: जी थैंक यू,
3: बंधन का
1: थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मना रहे हैं इस त्योहार को?
3: ये तो दीदी आज लौकुश जयंती है, तो राम हमारे यहाँ गांव में लव लौकुश की झांकी बनाकर पूरे गांव में घुमाते हैं।
1: अच्छा।
3: और फिर वापस हम, हमारा संगठन है कुशवा समाज का
1: जी,
3: तो वहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर और मंच पे कोई महानुभव आकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और साथ ही एक दूसरों को बधाइयां देते हैं रक्षाबंधन की
1: जी।
3: और फिर पूरे मतलब कुशवा समाज मिलकर भंडारा टाइप भोजन करते हैं जी।
1: अच्छा जी जी जी जी, प्रतिभोज रहता है। तो कौन सी जयंती बोल रहे हैं आप?
3: लवकुश जयंती।
1: अच्छा लवकुश जयंती,
3: लवकुश का जन्म हुआ था ना दीदी आज।
1: जी जी जी,
3: तो वो लवकुश की जयंती मनाते हैं
1: जी
3: हमारे यहाँ।
1: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको दोनों ही त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
3: हाँ दीदी सुनाऊंगा।
1: हाँ जी सुना दीजिए। हाँ जी,
3: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
1: क्या बात, 3 से अधिक नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार विक्रम भाई
3: जी,
1: थैंक यू। तो ये थे विक्रम भाई मध्य प्रदेश से, और आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है। लवकुश जयंती भी है, तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं बता रही थी कि वो बहन रोते हुए बता रही थी कि भाभी बोल के नहीं बिगाड़ती है, लेकिन भाई को इतना मतलब इतना नेगेटिव भाई के अंदर भर दिया है कि अब कौन बहन चाहेगी अपने मायके जाए और भाई उसका कमेंट कसे, उसका ताना मारे, उस पर उसके बात बात पर इंसल्ट करे। तो कह रही मैं इस बार कहीं जाने वाली नहीं हूँ, रो के बता रही थे। अब बोले ऐसा भी होता है, इसलिए कहते हैं ना कि देखे कहीं बहन में कुछ बातें हो जाती है नेगेटिव, कहीं भाई में तो कहीं भाभी में। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहन बेटियों का अधिकार है अपने मायके में आने का। आप जो प्यार से उनको रखेंगे वो ही उनके साथ जाएगा, वो खाने पीने लेने की भूखी नहीं है, रिश्ता निभाने की वजह से वो आपके घर पर आते हैं। तो कम से कम आप दिल से उनका अच्छा स्वागत करिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, दिल से उनकी मनोहार करिए, ये उनके लिए काफ़ी होता है। भले आप उनका यथा योग्य जो हो दो, नहीं हो तो मत दो, लेकिन प्यार से जरूर पेश आइए। हेलो,
4: खमा गणी हुकुम।
1: हाँ जी, गणी खम्मा सा उमेश सिंह जी, कैसे हो आप जी?
4: से निवेदन कर रहा हूं।
1: जी जी जी, बहुत समय के बाद बात हो रही है
4: जी, अंतराल आ गया था प्रस्तुति।
1: जी जी जी, तो आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आपको भी दीदी
1: जी।
4: ये पर्व है स्नेह समरसता और आपसी भाईचारे प्रेम का है, जो केवल आधुनिक युग में बहन भाई तक ही सीमित नहीं रहा है
1: जी।
4: इतिहास गवाह है कि हमारे स्थानीय लोक देवता बाबा रामदेव, जो पंच पीरों में भी जाने जाते हैं
1: जी,
4: उन्होंने समरसता का संदेश दिया
1: जी।
4: अछूत पीड़ित जातियों के बीच में रह करके उन्होंने सेवा की थी
1: जी।
4: संत रविदास की जयंती भी इस पर्व पर मनाई जा रही है, शताब्दी वर्ष है उनका
1: जी।
4: तो समरसता के रूप में उनको भी याद किया जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वास्तव में भगवान ने इस दिन थोड़ा आपने जो वृतांत बताया था
1: जी,
4: कि वो स्नेह सूत्र एक स्वर्ग पर अधिकार करने वाले राजा को भी वचनों में बांध देता है कि ये नमन दो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान अनुबंधामी रक्षति माचल माचल
1: जी।
4: एक बार पुनः शुभकामनाएं सभी को
1: जी। आपको भी बहुत बहुत आभार आपका,
4: धन्यवाद दीदी
1: जी। और टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
4: थोड़ा बाहर हूँ, अच्छा नहीं पाया था।
1: चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे उमेश सिंह जी ग्राम ओसिया से, और आइए इस विषय को अब यही समाप्त करते हैं। कहने का भाव यही है कि देखिए को जो भी गिला शिकवा है, आप कहते हैं ना एक तरफ हम खून का रिश्ता कहते हैं, दूसरी तरफ दूरियां बढ़ाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। भाई बहन का प्यार बना रहे और जो भी गिले शिकवे हो माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, बात यही ख़त्म कर दो और अपने रिश्ते को मजबूत कर दो। यही आज का संदेश है। और आइए अब फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा, आज हम आपको सिखाएंगे शाही टुकड़ा स्पेशल रेसिपी, क्योंकि रक्षाबंधन है और ऐसे खास त्यौहार पर तो भाई मीठा तो बनता ही है। और कहते हैं ना, भाई बहन को और बहन भाई को पहले सबसे पहले मुख मीठा कराते तो किसका कराते, कोई मिठाई का ही कराते हैं ना, वो भी मावे का ही, भले पेड़े हो, चाहे दूध का हलवा हो, चाहे रबड़ी हो, इस तरह की मिठाई ही ज़्यादा खिलाई जाती है। तो सोचा कि चलिए आज आपको भोजन में मैं शाही टुकड़े सिखा देती हूँ। तो सामग्री में खास कुछ नहीं चाहिए, दूध चाहिए रबड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो दूध ले लीजिए और ब्रेड ले लीजिए, शक्कर लेनी है, घी लेना है और ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा सामग्री नहीं है, दूध, शक्कर, ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स और घी। अब बनाने का तरीका भी आप सीख लीजिए। ब्रेड को क्या करना है, आपको ब्रेड को चारों तरफ से वो किनोरे निकाल देनी है, किनोरे निकाल करके घी में तल देना है, घी से तल करके आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और इधर आप रबड़ी बना दीजिए। रबड़ी बनाना आपको कितनी बार सिखाया है, दूध उबालिए अच्छी तरह, मोटे पेंदे वाली कढ़ाई में उबालिएगा, ठीक है, और हिलाते रहिए बीच बीच में, ऊपर जब मलाई आए तो एक दूसरी पतीली में आप लेते जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा दूध रह जाए फिर ये सारी मलाई अंदर डाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए, और तो ये बन गई रबड़ी, हिला दीजिए और फिर गैस बंद करके इसके ऊपर आप केसर भी डाल सकते हैं, केसर का तार पहले से ही दूध में भिगो दीजिए, वो भी डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। चलिए आगे की प्रोसेस बाद में बताऊंगी, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: सभी भाई बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यही सदा खुश रहे, बस हर दिन एक त्यौहार हो, बस ऐसी मैं शुभकामनाएं करूँगा।
0: जी जी जी,
1: और बस बस मैं तो सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए आया था। देखिए
0: जी जी जी,
1: बाकी आप सिस्टम फाइन?
0: जी जी, हम अच्छे हैं,
1: ठीक है, ओके, चलो, जय माता दी, जय
0: जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और इनके पिताजी का पहला त्यौहार है रक्षाबंधन। कहते हैं ना कि पहला त्यौहार आता है तो आने जाने वाले भी लगे रहते हैं, मिलने आते हैं, फिर भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आपको सिखा रही थी शाही टुकड़े, तो ये रबड़ी तैयार हो चुकी है, ठीक है, ब्रेड को भी हमने तल के निकाल दिया है। अब आप इस ब्रेड को एक प्लेट में रखिए, फिर ये रबड़ी जब आपके ठंडी हो जाए फिर इस रबड़ी को ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला दीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट की कतरन बुरका दीजिए। ये बन गया शाही टुकड़ा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही, आप खुद जब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक प्रोसेस रह गई है, वो भी बता देती हूँ। आप एक तार की चाशनी बनाइएगा, और ये जो ब्रेड हम घी में से तल के निकालते हैं तुरंत ही आप उस चाशनी में डालिए, ठीक है, भले आप निकाल करके उसका घी निकल जाए उसके बाद डालिए, पर चाशनी में डाल करके दोनों तरफ पलटी लगा कर तुरंत निकाल दीजिए। चाशनी में ज़्यादा देर रखना नहीं है, नहीं तो ये ब्रेड गल जाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे, इसलिए तुरंत ही आप एक तार की चाशनी, एक तार की भी पूरी मत आने दीजिए, ठीक है, और फिर चाशनी में से निकाल दीजिए, तुरंत निकाल करके आप एक चाली में रखिए ताकि अतिरिक्त चाशनी उसी चाशनी में गिरे, और फिर आप एक प्लेट में रखिए, ऊपर रबड़ी सब तरफ फैलाइए, ऊपर कतरन जो ड्राई फ्रूट्स ये है, बादाम, पिस्ता, काजू, इन सब की कतरन आप फैला दीजिए, सजा दीजिए इसके द्वारा, और फिर आप खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, क्या टेस्टी और क्या स्वादिष्ट, और ये एक मिठाई हो गई, ठीक है। फिर आप नमकीन में कुछ भी बना सकते हैं। तो जो भी सात्विक चीज़ हम बनाते हैं, इष्ट देव को

0: भोग लगा करके ही भोग स्वीकार करिएगा, ठीक है। तो ये बन गए हमारे शाही टुकड़े। और आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ओम शांति, मैं हूं मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर टीबी की वजह से कोई अंग हमारे रह जाए, सुन हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो वो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की अच्छी सी बातें भी हुई है। भाई बहन का रिश्ता हमेशा मजबूती के साथ बना रहे, भाई बहन के, बहन भाई के सुख दुख में काम आते रहें। और रेसिपी में जो आपको शाही टुकड़ा बनाना सिखाया, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा था, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। तो ये हमने भी 3 बार सुना दिया है, तो स्वयं के लिए भी। तो चलिए, टंग ट्विस्टर सुनाया है, उनका नाम सुनाना चाहूंगी। सुरेश भाई झोटाना से आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया है। फिर दयाराम जी रामपुरा से आपने भी बहुत ही अच्छा सुनाया है। सुरेश भाई धानेराव से, फिर विक्रम भाई मध्य प्रदेश से आपने बहुत ही अच्छी तरह टंग ट्विस्टर को सुनाया। इसके लिए एक बार तो आप सभी के लिए ढेर सारी तारीफ। फिर शुभकामना देने के लिए जुड़े हैं, विषय में भी कोई कोई जुड़े हैं। सगुना बहन ने शुभकामनाएं दी है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। बाकी विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से। सुभाष भाई ने भी शुभकामनाएं दी है। कंचन भाई जुड़े हैं, दयाराम जी, फिरोज भाई और सुरेश भाई धानेराव से, विक्रम भाई और उमेश सिंह जी जोधपुर ग्राम ओसिया से आप सभी विषय में जुड़े और बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया, अपनी राय व्यक्त की। इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। जो बुद्धिमान होता है वह उतनी ही बातें करता है जितनी आवश्यक होती है, अतः कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब मैं, प्यारे श्रोता बंधु, आज मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार की है, आप सभी को सौगात के रूप में देना चाहूँगी। मैंने खुद एक कविता बनाई है। आज के समय में भाई बहनों का रिश्ता कैसा होता जा रहा है, तो इस पर व्यंग्यात्मक कविता है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाज़त। पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल मिलेंगे। कल क्या है आप सभी जानते हैं, कल अंताक्षरी कार्यक्रम होगा। कल की थीम रहेगी भाई बहन के गीतों की, और तीज, जो बड़ी तीज आ रही है, तीज के गीत, ठीक है, और लोकगीत, ये तीनों ही मिक्स रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा और हमें अभी दीजिएगा अनुमति। तो आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। राखी आई थाली सजी, मिठाई भी मुस्काई। राखी आई थाली सजी, मिठाई भी मुस्काई। बहन बोली भैया याद है बचपन की लड़ाई। भैया बोला सब याद है पर अब वो बात कहाँ। भैया बोला सब याद है पर अब वो बात कहाँ। तुम व्हाट्सएप पर, मैं इंस्टाग्राम पर, मिलना होता कहाँ। तुम व्हाट्सएप पर, मैं इंस्टाग्राम पर, मिलना होता कहाँ। कभी बहन की चोटी खींची, कभी भाई ने रुलाया। थोड़ी सी नोक झोंक, फिर भी दिल से दिल मिलाया। आज उसी रिश्ते में जाने कैसी दूरी आई। आज उसी रिश्ते में जाने कैसी दूरी आई। महीना महीना भाई बहन में बात न होती हाय। पहले राखी का धागा दिलों को जोड़ता था। पहले राखी का धागा दिलों को जोड़ता था। अब भले कितनी राखी बांधो, दिल अक्सर टूटता है। उपहारों की कीमत बढ़ी, रिश्तों की कीमत घट गई। उपहारों की कीमत बढ़ी, रिश्तों की कीमत घट गई। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, कहते कहते बस पोस्ट तक रह गई। राखी तो कलाई पर बंध गई हर साल। राखी तो कलाई पर बंध गई हर साल। पर रिश्तों की गांठ खुली तो कौन करेगा सवाल। आओ इस राखी पर
एक वादा कर जाए। आओ इस राखी पर एक वादा कर जाए, सिर्फ धागा नहीं रिश्तों को भी थोड़ा समय दे जाए, सिर्फ धागा नहीं रिश्तों को भी थोड़ा समय दे जाए। न तकरार रहे मन में न कोई शिकायत बाकी, न तकरार रहे मन में न कोई शिकायत बाकी, कलाई पर धागा हो और दिल में हो सच्ची राखी। न बहन रोए घर में न भाई हो उदास, न बहन रोए घर में न भाई हो उदास, आओ सब मिलकर मनाएं राखी का त्योहार, आओ सब मिलकर मनाएं राखी का त्योहार।

0: चुटकी, क्या बात है, उदास क्यों है इतनी?
1: भाई राखी है।
0: तब तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना।
1: नहीं भाई, मुझ जैसी कई बहनें रो रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं कोई छेड़ रहा है, उन्हें अपनी नजरों से दूषित कर रहा है। भाई क्या इस राखी पर आप मेरी एक बात मानोगे? क्या आप मेरे जितना हर नारी को सम्मान दोगे ताकि मैं आपको गर्व से राखी बांध सकूं?
0: हाँ गुड़िया, मैं वचन देता हूँ कि मैं सभी बहनों और माताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखूंगा, ताकि हमारे समाज में उनका जीवन सुरक्षित हो जाए और वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत कर सकें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है लेकर आ गए हैं और पिछले कड़ी में हम सुन रहे थे आदरणीय गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन कहानी, कैसे वो गुजरात के एक गांव से निकले और उनको जैसे परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति हुई, उन्होंने सोचा है कि अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करें, इस देश की सेवा करें और इस संसार की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। सेवा की भावना जो जागृत हुई है उनके अंदर, लेकिन उसको कैसे हासिल किया? जैसे आप सभी को याद होगा कि उनके बहुत सारी कठिनाइयां थी उनके लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि हर किसी को मंजूर नहीं था इस तरीके की सादगी और योगी जीवन जीने का। कैसे वो आगे बढ़े और वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, अपने जीवन को वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे उन्होंने कैसे जिया है, आइए आज जानते हैं आगे की कहानी को। जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। आदरणीय गंगाधर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको घसीट कर लेके गया है उसके बाद फिर क्या हुआ?
1: तो इसी दौरान एक जब मैं गुरुवार को सेंटर पे गया था, 85 की बात है, फरवरी मार्च की बात, तो वहाँ एक बुलेटिन आता था। उस टाइम तो ये मोबाइल की ये सुविधा नहीं होती थी, एक मधुबन से जो डायरेक्शन आता मुरली के अंदर लिखा हुआ आता था और वो दीदी पढ़ती थी और जिसको जो है डायरेक्शन देती। तो उसमें आया कि एक पदयात्रा का निकलने वाली है, भारतवर्ष से 13 पदयात्रा का आयोजन 1985 में, ये बुलेटिन आई। तो उसमें पढ़ा और फिर बोला कि शाम का समय था, हम सेंटर पर थे, तो कहा कि कौन कौन जाएगा, किसको जाने की इच्छा है तो हाथ खड़ा करो। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा जैसे दीदी ने, पुष्पा दीदी थी हमारी, तो हाथ खड़ा किया। तो फिर ठीक है, मैं ना जाना ना पहचाना, क्योंकि घर में तो छुट्टी थी नहीं। और वो कितनी लंबी यात्रा, 5000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से दिल्ली पद यात्रा, और करीब करीब 6 महीने समय। मैं फाइनल ईयर में था तो मार्च में मैंने एग्जाम देने के बाद जून से स्टार्ट होने वाली वो पद यात्रा। तो मुझे अभी वो फॉर्म भरना है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, घर से स्वीकृति पत्र चाहिए और खुद की स्वइच्छा चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी, तो ये फॉर्म भरना था। तो अब फॉर्म की तारीख लास्ट लास्ट थी और मधुबन वो फॉर्म भेजना था, वहाँ से सिलेक्शन होगा। और फिर तो लास्ट डेट आ गई तो दीदी फिर मेरे को बोले कि आपका तो कुछ आया नहीं, तो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जाने नहीं मिलेगा। अब भाई से कैसे बोलूं क्योंकि वो तो विरोध थे। रोज बाबा को अमृत वेले 2 से 5 योग करके, बाबा आज तो मैं बोलूंगा। तो जब भाई के सामने जाओ ऐसे जैसे मुंह बंद हो जाता था। तो ऐसे बहुत हुआ। अब लास्ट लास्ट है, अभी तो देना ही है, 2-4 दिन ही बाकी है। तो उस टाइम गुरुवार का दिन था तो अमृत वेले में फिर अपना आज तो बोलूंगा ही। तो जैसे 2-3-4 दिन मैंने से आज तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन उस टाइम बाबा की मुरली चलती थी, मैं युक्ति रचता था कि मुझे अभी भाई मैं अभी गुजरात जाऊंगा और मेरी एग्जाम भी हो गई है, पापा को मिलने चला जाऊंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान ऐसी युक्ति रहता तो मुरली में बहुत अच्छी बात आई, बच्चे कभी भगवान के बच्चे कभी झूठ नहीं बोल। अब ये बात आई, अभी मैंने युक्ति रची, लेकिन ये युक्ति मेरी वो बाबा की मुरली से, मैं बोला ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, बस तो वहाँ खत्म हो गया, मेरी युक्ति फेल हो गई। बाबा कहता है उसमें मेरा फायदा है, मेरा खुद की मनमत में तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इस तरह से मन में द्वंद्व चला और फिर मैंने बोला नहीं ये तो युक्ति है, तो वो दिन चला गया। फिर दूसरा दिन भी दूसरी युक्ति रही, वो भी फेल हो गई। फिर तीसरा अभी लास्ट लास्ट है तो अभी क्या करूँ, अमृत वेले बाबा कर मुझे तो जाना है पदयात्रा, कुछ भी हो जाए ये आपको करना। तो हुआ क्या कि लास्ट में जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो सारे ऑर्डर्स वगैरह आते थे, तो हम फैक्ट्री बंद हुई 5 बजे और उसके बाद जो किसका ऑर्डर पूरा हुआ, बॉम्बे का, कलकत्ता का, चेन्नई का, वो सब हम सप्लाई करते थे। तो इसका तैयार हो गया, ये प्रोसेसिंग बाकी इतना है। तो हम ऐसे दो भाई फैक्ट्री में अंदर देखने गए, मूड भाई का बहुत अच्छा था, तो मेरे मन से मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन मन में मूड अच्छा था ऐसा मैंने संकल्प आया और तुरंत मन में ये हिम्मत आई कि मैं ना पदयात्रा में जाना चाहता हूँ और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये यात्रा है और 5 महीने की है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मेरा भाई का पता नहीं क्या हुआ, अभी जाओ तो मैं भी चलूंगा। जो विरोध करने वाला, तो ऐसे हुआ। तो मैंने तुरंत मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में A4 का पेपर ले आया और उसको ब्लैंक पेज पे साइन करा दिया। लिखना क्या वो पता नहीं, तो लिखना है वो तो दीदी को बोलूंगा इसमें जो लिखना है लिख दो। और मैं बस ऐसा, जैसे कि शाम को खाना बना एक तरफ रह गया और यहाँ हम 15 किलोमीटर बस ये काम पूरा करके जो भी है, तो भागा भागा भागा दीदी के पास जाके आया। दीदी मैं ये ले आया और उसमें सारा लिखा और मेरे को पद यात्रा में जाने मिला। फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको, उसे ले लिया और ये स्वीकृति मिल गई और इन्हें भेजा और मेरा फिर आना हुआ मधुबन और पद यात्रा का मेरा फाइनल हो गया। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत में चलते है, तो वो न जाने अब मैं तो भाई के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता था, लेकिन बाबा का चमत्कार के कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये बात मेरे जीवन से बिल्कुल ये ज्ञान में आने से कि दृढ़ता है वह सफल, ये बात मेरी वहां से स्टार्ट।
0: आपके जीवन में आदर्श कौन रहे?
1: आदर्श तो फिर जैसे मैं 85 में जो पदयात्रा में आया, तो पहले तो हम गीता पाठ ही थे, तो गीता का ही सारा ये योगेश्वर और ये सब चलता, लेकिन यहाँ जब आए तो मधुबन में आए तो पहले मुझे सेवा मिली ओम शांति भवन। वो भी एक मजेदार कहानी है कि भाई अभी 6 महीना मुझे निकलना है, 6 महीना कोई अपने बेटे को कैसे छोड़ेगा, तो हम जाना है तैयार भी हो गया, तो भी मैं अभी भाई से हिम्मत नहीं कर पाया 6 महीना, लेकिन बाबा की ये मदद के उन्होंने मैंने बोला कि अभी मेरी डेट आ गई मुझे जाना है, तो वो मुझे गाते गाते सेंटर पर ले आए सभी परिवार को लेके, और वहाँ सेंटर पर ले मैं इसको छुट्टी दे रहा हूँ आपने हमें नहीं बताया। फिर वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आए, रेलवे स्टेशन छोड़ने आए तो विदर्भ जोन है हमारा, तो विदर्भ जोन ने सभी सेंटर की इंचार्ज जो बहने थी वो व्हाइट व्हाइट कपड़े, उन्होंने कभी देखा नहीं था बहनों को ब्रह्मा कुमारी को, तो व्हाइट व्हाइट 25 बहने जो, क्योंकि पदयात्रा का जो ओपनिंग था ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे वो वहाँ ओपनिंग करने वाले थे, ज्ञान कलश देके यात्रा का शुभारंभ ओम शांति भवन में करने वाले थे। तो जो डेकोरेशन की जो मधुबन में डेकोरेशन करने की ड्यूटी नागपुर जोन को दी गई थी, परिणाम स्वरूप हम सारा सामान लेके आ रहे थे, तो 25 मुख्य बहने थी सेंटरों की वो भी आ रही थी हमारे साथ, दीदी भी साथ में, तो हम दो भाई सिलेक्ट हुए थे, एक भंडारा से और नागपुर से दो भाई थे, तो हम आए और यहाँ आए और फिर यहाँ हमें जो अभी आप देखोगे पांडव भवन में राजू भाई की जो ऑफिस है वो देवधाम करके था, वहाँ हमें रहने का भी मिला और वहाँ सारा डेकोरेशन का

0: ऑफिस तो बाद में बनी और हम यहाँ आ गए मधुबन।
1: सो जैसे लगभग 1985 से आप संस्था में समर्पित रूप से अब सेवा,
0: हाँ, फिर वहाँ ही रह गए और बीच में गए जो भी कार्यवाही थी कि भाई समर्पित के लिए किया है तो वैसे करके गए और फिर दिल नहीं लग रहा था और रिजल्ट भी आ गया और सब फिर यहीं रहने लगे।
1: तो आपने क्या पढ़ाई पूरी की थी?
0: मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया, एमकॉम मैं कर रहा था तो एमकॉम का सेकंड ईयर के बीच में ये घटना घटी और फिर मैंने
1: काम छोड़ दिया,
0: वो परीक्षा भी नहीं दिया और आधे में ही मैं फिर मधुबनी आ गया। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मन में यही है कि मुझे जीवन ऐसे ही जीना है तो फिर यहाँ मधुबन आ।
1: क्या प्रेरणा रही समर्पित होने के लिए आपको?
0: समर्पित लेके बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, हम क्योंकि ज्ञान गीता पढ़ते थे तो ज्ञान में जो उसमें एक श्लोक आता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार, और तो नरक के द्वार पढ़ते तो उस टाइम समझ में नहीं आता था। अब यहाँ ये पता है काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है तो चेतना से अंदर कॉन्शियस से भी ये नहीं होना चाहिए, ये अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो ये तो हिंसा है और हिंसा है तो बाबा से प्यार कैसे जुटे, बाबा से नजदीक तो हम नहीं जाएंगे,
1: परमात्मा के नजदीक,
0: हाँ नजदीक परमात्मा से नजदीक हम नहीं जा पाएंगे। तो वो एक अंदर मन में चलता रहा तो फिर ये जीना है तो नशा खूब रहता था, बाबा ने जो कहा है तो मुरली बस सुनना है। और फिर हमें ड्यूटी भी शुरू शुरू में 15 दिन के लिए वहाँ शांतामणि दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती सेवादारी, उसके बाद फिर चंद्रमणि दादी ने भी हमें, क्योंकि और मनोहर दादी हमारे विदर्भ जोन की क्षेत्र की वो प्रभारी थी तो उनसे सारा मेल मिलाप होता रहा और बड़े प्यार से। उसके बाद मैं टोली में गया, टोली डिपार्टमेंट है हमारा जो प्रसाद वितरण का, उसमें रामनाथ भाई के पास गया, रामनाथ भाई भी बड़े ज्ञानी थे तो मुरली सुनना और एक्यूरेट करना वो खुद भी ध्यान रखते थे और हमारा भी ध्यान रखते थे कि नहीं पढ़ाई पर मुरली सुनना चाहिए लिखना चाहिए, एक छोटी सी बुक पॉकेट में रखते थे क्योंकि वो सुना थे
1: जी।
0: तो आदर्श में फिर आपने जैसे पूछा बहुत अच्छी बात कही, आदर्श कौन रहा तो उसमें ये रहा कि हम जहाँ डिपार्टमेंट है उसके बाजू में दादी का नाश्ते का कक्ष है तो दादी रोज आती थी हमारे पास, हमें रोज जैसे छोटे बच्चे की तरह, तो दो बातें जरूर पूछती थी, आपने अमृत वेला किया, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा बताओ, तो उनको बताना पड़ता था। उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो माइक भी नहीं था डिपार्टमेंट जो माइक आता था, तो और हमें ड्यूटी थी तो उस टाइम हम तोसा को पैकिंग वगैरह करते थे मुश्किल से 2,000-2,500 की, तो लास्ट में पार्टी हुई 2,500 मानना सबसे बड़ी पार्टी, तो 1,500-2,000 ऐसे लोग आते थे पार्टी बाबा को मिलने, तो हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम मुरली सुनने जा पाए और मुरलियाँ हाथ में नहीं मिलती थी तो एक ही मुरली दादी के पास ही होती थी और सुनाएंगे उससे ही हमें सुन, तो थोड़ा सा हम जाते थे तो प्रसाद वितरण के लिए जो ओम शांति भवन में, तो वहाँ माइक थे तो वहाँ सुन लेते तो वो नोट कर लेते, वो नोट करके फिर दादी आएगी पूछेगी तो हम बताएं और दादी बड़े प्यार से और इतना सा प्रसाद लेंगी ना तोसा का, एक उस टाइम तोसा ही होता था मोन थार दो ही चीज होती, इतना लेंगे और खाएंगे और बड़े प्यार से चली जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ कि अब 2-3 साल हो गए मुझे वहाँ, 3-4 साल 5 साल ऐसा मुझे हो गया वहाँ, तो दादी जी ने जो ज्ञान स्वरूप प्रोजेक्ट है इसके बारे में सेवा का वृद्धि के कारण बाबा का मैसेज आया तो फिर वो ज्ञान का जमीन ली गई और उसका डेवलपमेंट का काम चालू। तो अभी वहाँ कौन जाएगा ये सारा देख रेख करने के लिए, तो ये बात मधुबन में दादी ने सभी के सामने रखी। दादी जी का शाम को लगभग रोज क्लास होता था तो उसमें मधुबनवासी होते थे और उसमें कहा था सभी कहते थे भाई माँ दादियों को छोड़ के कौन जाएंगे, इतना मधुबन छोड़ के क्यों, एक भावना थी ना बॉन्डेज, तो कोई जाना नहीं चाहता था, वो तो जंगल था ज्ञान सर वहाँ भालू रहते थे तो कोई जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। तो अभी मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ तो निर्वेर भाई और दादी ही सारा कारोबार संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो निर्वेर भाई ने कहा कि वो जो बच्चा आया है ना टोली डिपार्टमेंट में वो पढ़ा लिखा है दादी, उनको भेजो वहाँ जो सारा हिसाब किताब का फाइनेंस का ये सारा मैनेजमेंट करना, लिख के हिसाब देना, अकाउंटिंग करना, तो इनको भेजो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर दादी जी हमारे पास रोज आती थी तो दादी मेरे को पूछती थी मैं तेरे को एक दूसरी सेवा दूंगी, तो रामनाथ भाई हमें सहमत नहीं होते थे कि दादी मैंने हैंड्स तैयार किया है आप नहीं ले सकते, माना मेरी सहमति नहीं है, ऐसा दादी रामनाथ भाई बताते। लेकिन दादी ने फिर रोज आते थे, तेरे को एक बड़ी सेवा, इतना तोसा लेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं बोला दादी रोज मुझे पूछ रही है, ऐसा 10-15 दिन चलता रहा तो मेरे से रहा नहीं गया। दादी जी आप जो कहेंगे मैं हाँ जी, वहाँ भाषा ही हाँ जी की थी, मेरे को ये आता है नहीं आता ये बात नहीं, जो दादी जी के वो करना है इसको। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक बार दादी ने कहा तुम 2 घंटे है ना ज्ञान सरोवर जाना। दादी इतनी रॉयल थी और हमें जैसे कि बच्चों का माँ का प्यार, जैसे एकदम पालन पोषण इतना स्नेह होता था दादी के सानिध्य में, आप लोगों ने भी जानते हो। तो उसके कारण मैं कहा कि ठीक है, और फिर मेरे 2 घंटे दिन में जाना, और रामनाथ को बोला इसको 2 घंटे छुट्टी दो और ये हिसाब किताब करेगा और आपके पास भी सेवा करेगा। ऐसी मेरी सेवा चालू हुई। फिर वहाँ कारोबार बढ़ता गया, कहाँ ज्ञान सरोवर का कारोबार बढ़ा, तो फिर बोला कि 4 घंटा। ऐसे करते करते फिर दादी ने कहा कि अच्छा इसको अभी रामनाथ तो दूसरा हैंड्स तैयार कर ले, और तो मेरा
1: ज्ञान सरोवर रह गया।
0: ज्ञान सरोवर का यज्ञ का बड़ा पहला प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का ऐसा वैसा उसका दायित्व तो मुझे दिया गया, जो फिर मैं उसके सारे उसी में रच बच गया और ज्ञान सरोवर का कारागार।
1: तो ये जो पीरियड आप देखते हैं 4 दशकों से अधिक समय से आप संस्था से जुड़े और सेवाएं कर रहे है मुख्यालय में रहते हुए, अपने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि या प्राप्तियों को आप अनुभव करते?
0: कहते हैं ना जो आदि में हमारा जैसे जन्म पत्री होती है ना, ऐसा ही हमारा जीवन बन। तो हमारा जन्म पत्री में जैसे मैंने कहा कि 5-6 बजे से 7 बजे वो योग कर रहे थे, मैं वो गीता पाठशाला में एंट्रेंस हुआ नया नया और वहाँ योग चल रहा था, उसमें गीत बहुत सुंदर बज रहा था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए है, पावर और सुख का वर्षा देने आए। ये गीत बहुत सुंदर गीत है, अभी भी है अपने मधु अपने यहाँ। तो वो गीत से मेरा जन्म हुआ कि भगवान स्वयं आया है, हमें वर्षा देने आया, सुख का वर्षा देने आया। तो उसी से वो वाइब्रेशन और योग में बड़ी रुचि थी, रुचि रही, और हम 2 से 5 मधुवन में भी आए तो 2 से 5 हम योग करते थे और मजा आता था, यंग थे तो वो रुचि रही। तो अंदर में अंदर कि नहीं मुझे बस बाबा को मैंने जान लिया और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब वैराग टाइप का, और बाबा जो कहे वो ही फॉलो करना, उसको स्टडी करते थे। और रामनाथ भाई हमें अच्छे मिले तो वो भी ज्ञान के चिंतन कराते, आज बाबा ने क्यों कहा कैसे कहा, तो ये भी एक हमारा एक सपोर्टिव और मुझे संग अच्छा मिला। तो इस तरह से कि जीवन में जो बाबा कहते हैं, अब बाबा आया तो हम अभी बाबा का सेवा और बाबा के भी ज्ञान योग करना, यही जीवन का उद्देश्य रहा। और दादी का सानिध्य जो मिला, वो जो एक प्रकाशमणि दादी जी का जो सानिध्य मिला, और मैं जब घर से, मेरे जो बैकग्राउंड में घर से मैं 6 किताब पढ़ के, तभी लगभग 10 बरस का होगा, तब से मैं घर से बाहर ही चला गया, तो माँ बाप का प्यार मुझे इतना नहीं मिला था। तो मैं कभी कहता था कि जैसे राखी बांधती थी बहने, तो मैं कहता था मुझे तो बाबा का चित्र देते थे और उसके पीछे स्लोगन लिखे थे, हाथ से लिखा हुआ स्लोगन देते थे, उस टाइम ये सब प्रिंटिंग का नहीं होता था। तो एक जब राखी आई तो मैंने कहा कि मुझे तो मम्मा का चित्र आना चाहिए राखी में, क्योंकि मैं मम्मा माँ है मेरी, वो माँ का तो प्यार मुझे नहीं मिला, तो ये माँ मेरी में, तो वो सच में वही मेरे को मम्मा का चित्र के साथ वो स्लोगन लिखे आया तो उसे और विश्वास बैठता गया। तो दादी ने जैसे माँ का प्यार दिया तो वो बॉन्डेज एक बहुत हो गया, और ये मेरा आदर्श रहा कि दादी ने जो कहा और कहा, और वहाँ भाषा ये रही कि जो बड़े कहे उसको हाँ जी करना, ना जी करना ये भाषा नहीं। ज्ञान में सफल होना है तो जो बड़ों ने कहा उसमें हमारा कल्याण है, ये आदर्श रहा और यही ज्ञान से हम आगे बढ़े।
1: जी सो भाई साहब, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, कौन सी सेवाएं संभालते हैं यहाँ पर?
0: बात यह हुई कि जब ये ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद फिर ये शांतिवन का जो बातें चलने लगी, तो दादी ने कहा कि शांतिवन में अभी करना, तो यहाँ भी कोई आना नहीं चाहता, भगवान नीचे कौन आएगा, यहाँ भोपाल भाई और अशोक भाई करके थोड़े रहते थे और यहाँ खेती बाड़ी हुआ करते। तो मेरे को बोला कि आपने तो सारा किया है, अकाउंट का सारा सब कुछ दिया है, तो आप भी नीचे जाओ और ये कारोबार। तो फिर मैं पहली बार दादी को थोड़ा सा सहमे आवाज से बोलने लगा, दादी मुझे दूसरी सेवा दे दो ना, क्योंकि हम मन में तो ये था कि अभी मधुबन छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, तो ये मन में था। दादी को कहा तो दादी ने कहा अच्छा, तो रमेश भाई थे हमारे जो अकाउंट अपने, तो उससे तो छुट्टी ले ली थी, और लेकिन सेवा में मुझे रखा था नीरज भाई ने, दादी और नीरज भाई संभालते थे उस टाइम, तो रमेश भाई तो मधुबन से आते थे अकाउंट के हिसाब से, तो मैंने छुट्टी ले ली थी, अभी मेरे कोई दूसरी सेवा दे दो दादी, लेकिन मधुबन में भले झाड़ू पोछा की दो लेकिन मधुबन में रहेंगे। दादी ने पहली बार मुझे थोड़े मतलब डर डर के भी दादी को ऐसा मैंने बोला, कभी ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ ऐसा बोलेंगे तो घर भेज देंगे, ये डर रहता था मधुबन में हमें घर भेज देंगे, इसलिए बोलने नहीं होता, लेकिन मैंने बोल दिया। तो दादी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर दादी मुरली सुना कर वो आंगन में बैठती आते थे, फिर दो तीन दिन हुआ फिर मेरे को बुलाया, तुमको है ना वो सेवा करनी है अभी अकाउंट की ही करनी है, लेकिन शांतिवन में जाओ, यहाँ दर गर्मी वहाँ ठंडी, तो मन में ये कहने हम नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बार बोला तो अच्छा तू रमेश से मिल लेना, रमेश भाई ने बोला कि नहीं तुमको ही करनी है ये सेवा, तुमने ये ज्ञान सुनो तेरे को आता है सब तुम कर, लेकिन मैंने बोला भाई मुझे सारा हिसाब किताब करना, कोई कागज मिलता है वो उसमें सारा मगज उसमें ज्यादा ज्ञान योग छूट जाता है मेरे मन में ये था। तो फिर ठीक है ऐसे जो भी हुआ उसके बाद फिर मैंने कहा, तो दादी ने फिर से मुझे जो महादेव नगर है ना जो चंद्रिका दीदी का उनका मकान का ओपनिंग था, उसके पूर्व दिन जो दादी दूसरे दिन ओपनिंग करने जाने वाली, तो रात को मीटिंग हुई, इसमें ये नीरज भाई दादी करुणा भाई और वही लोग संभालते थे ऊपर मधुबन में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको अभी ज्ञान सरोवर की सेवा से मुक्त है। तो करुणा भाई ने बोला कि हमें भी एक सीनियर भाई चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा कारोबार है जहाँ साउंड का इसका सारा उसका भी अकाउंट करना है, तो मुझे दे दो। तो ऐसा डिसाइड हो गया। तो दूसरे दिन मेरे को दादी से अशोक गाबा जो अभी है उसने मेरे को बोला कि तुमको अभी ज्ञान सरोवर में करुणा भाई के पास सेवा कर। तो मेरे मन में बोला अच्छा ठीक है, मधुबन तो रहने मिला ऐसा करके। हाँ दादी जी ओपनिंग करने चली गई, लेकिन तीन दिन तक मन में खुंदक रही, मेरे को तो मधुबन रहता फिर ज्ञान सरोवर ये। तो इस तरह से मन में एक मधुबन मना बाबा का उसमें गीत बहुत सुंदर कि मधुबन स्वर्ग भूमि है, और स्वर्ग भूमि को छोड़ के अभी मधुबन में मुख्य मुश्किल से हमें मिला है मौका, अब फिर से मैं वहाँ छोड़ के कैसे लेकिन सेवा। तो ये एक मन में थोड़ा सा था, तो क्योंकि यज्ञ में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं, भगवान तो आबू में ही आएगा, कहीं नीचे थोड़ी आएगा, नीचे जाओ फिर बाहर वाले लोगों से काम कराना ये सब, थोड़ा हम अपने परिवार में पवित्र भाई बहनों के साथ रहना संग ये सब अच्छा लगा। तो मैंने ये भावना मन में थी ठीक है। फिर उन्होंने कहा तो फिर मैं ओम शांति मीडिया का कारोबार, पहले तो मैं अकाउंटिंग करता रहा, और मीनवाइल विंग की सेवा आरंभ हुई, तो विंग की सेवा में फिर मीडिया में था, तो मीडिया में फिर मुझे ये दायित्व दिया गया जो हमारी मासिक पत्रिका ओम शांति मीडिया निकलती है उसका उत्तरदायित्व दिया गया, क्योंकि मुझे तो कोई जर्नलिस्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन दादी जी ने मुझे बुला के कहा कि तुमको अभी ये सेवाएं वृद्धि हो रही है तो ज्ञानामृत तो है ही, लेकिन ओम शांति मीडिया में ऐसा समाचार सुनाना है और दो बातें याद रख, तुझे ये सब लिखना करना। उस टाइम क्या है कि दादी के चीज के ऊपर नजर हो जाती थी ना, ये काम ठीक कर लेता सेवा ठीक, तो उसको वो दादी सेवा देती जाती थी। तो हम उस टाइम तो पेपर तो पढ़ते नहीं थे, बाबा की महावाक्य में आता था बच्चे है ना रावण की मुरली पसंद करते ज्ञान का मुरली, क्यों रावण बाबा कहते हैं कि उसमें जो खराब आजकल के न्यूज़पेपर है उसमें तो खबरें ऐसी आती हैं जो, तो हमने वो टच नहीं किया था 10 साल से, ये रावण की मुरली हम टच नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिस राह पर हमें जाना नहीं उस राह का समाचार सुन के क्या करेंगे, ऐसा भाव मन में आता था। तो लेकिन हमें सेवा ही वो मेरे जीवन में ये रहा कि समर्पित होने के बाद भी जो मेरी कमजोरी थी, मेरे को जो कम आता था वही मेरे सामने पेपर होता था, वही मुझे सेवा देते थी दादी। तो अकाउंट में भी हमारे फैक्ट्री में तो एक अकाउंटेंट रखते थे और उसको पैसे देते थे, वो अकाउंटिंग करके चला जाता था फैक्ट्री तो सारा, लेकिन यहाँ मेरी कमजोरी थी अकाउंटिंग करना ये पढ़ना, हालांकि मैंने पढ़ाई की थी अकाउंटेंसी में, लेकिन यही करना ये माथा पच्ची है। तो यहाँ भी मुझे वही डिपार्टमेंट मिला ज्ञान सरोवर का सारा हिसाब किताब ये सब करना, तो जो मेरी कमजोरी है वही मुझे सेवा मिलती थी। अब ये मैं सोचा कि अभी ये रावण की मुरली मिली थी तो दादी ने मुझे वही सेवा दे दी, लेकिन दादी यहाँ तो सेवा ईश्वरी सेवा समझा। तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया और अभी कौन सिखाए कैसे लिखना है क्या करना है, तो मैं लाइब्रेरी में गया और एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें राजस्थान पत्रिका होती थी, भास्कर नहीं आया था तब, दिव्य ज्योति नव ज्योति वगैरह होते थे, तो वो मैंने पढ़ने लगा। तो उसमें से मैंने सुना कि न्यूज़ कैसे बनती है, अब कौन सिखाए, यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं। तो मैं पढ़ा तो उसमें दो चार बातें थोड़ी समझ में आई, एक तो उसमें नाम लिखा है कि कहाँ का है, भीनमाल का है या रेवदर का है, न्यूज़ का नाम लिखा रहता था। दूसरे फिर ये बात समझ में आई कि कौन से संदर्भ में है, तो भाई ये मेला है, ये कृषि मेला है, गौ मेला है, उसमें इन्होंने ये बात कही। फिर कौन VIP है, तो उसके वो फिर स्थान, व्यक्ति, कौन बोल रहा है, ये पांच बातें। तो ये बात समझ में आई तो वो उसके आधार से मैंने, मेरे को ड्यूटी देती थी दादी ने कि आपको 15-15 दिन में चलाना है। तो मीनवाइल फिर मुझे मैंने लिखा और फिर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो अभी शरीर छोड़ा, कमल दीक्षित जी करके, आप भी जानते होंगे, तो वो कमल दीक्षित जी जो भोपाल में रहते थे और राजस्थान पत्रिका के एडिटर भी रहे हुए थे, तो वो मीडिया कॉन्ट्रोवर्स में और बाबा के यज्ञ से जुड़े हुए। तो फिर करुणा भाई ने कहा कि भाई ये है तो इनके साथ मिलो और सीख लो जो भी है, तो मैं सीखा। फिर वो मेरे को हेल्प करते थे, तो A4 साइज का जो पेपर है ना उतना ही ओम शांति मीडिया निकलता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ज्ञानामृत में चला। तो अब जर्नलिस्ट ना होने के कारण और हमारी हिंदी भी एक साहित्य के रूप में लिखना और बोलना वो अलग बात होती है, तो एक लाइन में मेरी 17 मिस्टेक होती थी। वो कहे ठीक करो, फिर वो बड़े प्यार से कहता था कोई बात नहीं, और वो ऐसे ही छप जाती थी गलतियाँ, बिंदी नहीं लगा कोई तो, लेकिन वो मुझे ढांचे से सीख जाएगा। और वो फिर चले जाते थे, 2-4 दिन आते थे फिर चले जाते थे, तो ऐसा महीने में 1-2 बार आते थे। तो ऐसे करके मैंने फिर ये जर्नलिज्म, बाबा ही कहो समझ लो, मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारी विशेषता, यहाँ सच कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जिसको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का बारे में एक अगर सही में अगर समझना चाहते हैं तो ये हम स्वयं परमात्मा ही सब कार्य कराते और परमात्मा ही नियुक्त करते हैं, परमात्मा ही उसको वो विशेषता भरते हैं, चाहे उसके लौकिक योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो योग्यता भर के उसको परफेक्ट बनाते हैं। और एक सुंदर कारोबार ये ब्रह्मा कुमारी में, और मेरे को भी ये दायित्व तो मिला जो आज भी चल रहा है, ओम शांति मीडिया पत्रिका जो अभी पहले पाक्षिक थी, अभी इस साल से हमने उसको मासिक किया है और सारे गांव-गांव में जाती है और विदेश में भी जाती है और लाखों पाठक है उसके, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही है, और उसमें ईश्वरीय सेवा समाचार भी बड़े, जो हमें कहीं मालूम नहीं है तो हम एक दूसरे से पढ़ के भी और सुन के भी, और ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा चल रहा है। और वर्तमान समय इसका दफ्तर अभी शांति वन में और आनंद भवन में, और मैं वही सेवा करता हूँ, एडिटिंग की सेवा करता हूँ। तो बाबा ने मुझे जो कुछ नहीं आता था, तो जो भी इतनी सेवा बदलते तो मुझे एडिटर बनाया और एडिटर से, और एडिटर ही नहीं लेकिन सारा मैनेजमेंट पे करना, सारा डेवलप करना। आज हम मेरे साथ 10-12 भाई बहन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप में हम ये कारोबार चलाते हैं शांति वन में, आनंद भवन।
1: बहुत सुंदर जर्नी रही भाई जी, एक समर्पण भाव और एक निश्चय, और जब ज्ञान की समझ होती है और क्लैरिटी मिलता है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो जीवन में दृढ़ता अपने आप आती है और हम जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। या आपकी इस जीवन यात्रा से हमें यह समझ में आता है, आज आपने अपनी समय निकाल करके अपाए और एक योगी जीवन क्या होता है, एक लौकिक काम करते हुए भी एक अलौकिकता को उसमें दर्शाना, और अलौकिकता अपने जीवन में जब आता है लौकिकता अपने आप जो चली जाती है और हम खुद एक आदर्श बन जाते हैं, ये भी आपने हमें आपके इस जीवन की यात्रा से परिचय कराया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत आपको भी, रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम से आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: अभी आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब वक्त हो गया कार्यक्रम जीवन रोशनी का, और कहते हैं कि रिश्ते केवल नाम से नहीं बल्कि भावना से बनते हैं। जब हमारे मन में ये भाव जागता है कि सामने वाला भी मेरा अपना है, तब दूरी कम होने लगती है, मतभेद संवाद में बदलने लगते हैं और जीवन में सहयोग की भावना बढ़ती है। तो आज जीवन रोशनी में हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पर जो हमें ये सिखाएगा कि आज जो हम संवाद नहीं कर रहे हैं या भ्रातृत्व भावना समाज से खत्म हो रही है, तो उसे पुनः कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम विचारों के मतभेद के बावजूद एक दूसरे को अपना मान सकते हैं? क्या प्रतियोगिता के बीच भी सहयोग और सम्मान बनाए रखा जा सकता है? तो इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम से, जिसका नाम है जीवन रोशनी। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बीके राज सिंह भाई जी, जो मूल रूप से कोटा राजस्थान से हैं। भाई जी ने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से MSc तथा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मैनेजमेंट में MSc की है। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति उनकी गहरी रुचि रही और वर्ष 1995 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपने जीवन की दिशा के रूप में चुना। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व्यापार एवं उद्योग प्रभाग माउंट आबू से, यानी कि हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी ने देश भर में आर्मी, BSF, CRPF, CISF, रेलवे, एयरपोर्ट स्टाफ, जेल और सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के कंपनीज, कॉलेज, स्कूल्स और राजयोग शिविरों के माध्यम से 500 से अधिक स्थानों पर, यानी कि देश के हर कोने पर जा करके आपने अपनी सेवाएं दी, वर्कशॉप्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से। तो आज वो हमारे साथ हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ब्रदरहुड यानी कि भ्रातृत्व भावना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। और 25 अगस्त को हम मनाने वाले हैं दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस। तो दादी जी भी यही भावना रखती थी और भाई जी ने करीब से दादी जी को भी देखा है, तो उनके अनुभव भी हम इस विषय को समझते हुए जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज सिंह भाई जी रेडियो मधुबन पर।
2: धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाने का चांस दिया।
0: जी, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सरल शब्दों में कि क्या होता है भ्रातृत्व भावना, यानी कि ब्रदरहुड क्या है।
2: सिंपली यूं कहें कि हम अक्सर बातें करते हैं आपस में, हमारा भाईचारा होना चाहिए, और जब भाईचारा बनेगा तो एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना बनेगी। तो भाईचारा का मतलब, भ्रातृत्व भावना का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यक्तियों केवल कहे मात्र, लेकिन उनके साथ साथ उसका सम्मान भी करें। अपनापन की भावना और सहयोग की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा।

0: मेरा भाई ये ऐसा भी नहीं सोचना है, लेकिन साथ साथ उसके सुख दुख को समझना, उसकी गरिमा का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग करना ही सच्चा ब्रदरहुड है।
1: ओके, तो मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार और
0: प्यार
1: अपनत्व की भावना
0: हाँ,
1: रखना
0: अपनत्व की
1: है।
0: भावना होना चाहिए।
1: ओके, तो इसके पीछे कोई गहरी सोच है, आपको क्या लगता है, क्या विचार है?
0: क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचते हैं। जब हम दिल से उसको अपना बनाते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है। बाहर ही हम दिखावा करेंगे तो वो सामने वाला भी समझ जाता है, वाइब्रेशन उसको कैसे हो जाता है कि ये केवल दिखाने के लिए भाईचारे की बात करता है, लेकिन अंदर से कुछ और है।
1: जी, मतलब हमारे देश में हो या फिर कहीं और कंपटीशन होता है तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि वो हमारा भाई है,
0: हाँ
1: लेकिन अंदर से नहीं सोचते हैं कि भाई है,
0: हाँ
1: तो
0: अंदर से
1: वो
0: ही भावनाएं नहीं होती है तो सामने वाला समझ जाता कि ये अंदर से नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारे प्रति वो भावना नहीं जागृत होती है भाईचारे की।
1: ओके, तो जैसे हम सोचेंगे तो सामने वाला भी वैसे ही सोचने लगेगा। तो क्या हम किसी व्यक्ति से विचारों में असहमत अगर हैं, हम उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, तो भी उसके प्रति भ्रातृत्व की भावना रख सकते हैं? अगर हमारे ओपिनियन मैच नहीं होता, हम दूसरे जगह से आते हैं, हमारे खान पान रहन सहन विचारधारा सब अलग है, तो क्या हम इस ब्रदरहुड वाली भावना को रख सकते हैं?
0: हाँ जरूर रख सकते हैं। वो किसी जाति का भी हो सकता है, किसी धर्म का भी हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी होता है,
1: जी
0: तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है। लेकिन ब्रदरहुड का मतलब ये, जब हम एक इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हम एक ईश्वर की संतान है, शरीर के कॉस्ट्यूम भले हमने अलग अलग पहने हुए, लेकिन अंदर से हम एक एनर्जी है, अंदर से हम उस पिता की संतान है, तो वो हमारा भाई है। चाहे उसकी कल्चर अलग हो सकते हैं, उसका व्यवहार अलग हो सकता है, उसका बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशंस हमारे सेम है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। तो चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कबीले का हो, किसी भी देश का हो, ये कुछ वैल्यूज जो है इंटरनली सब हर एक को चाहिए होता है।
1: जी ओके, तो वैसे भी भारत में कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भातृ भाव की भावना लेकर के सबको ट्रीट करना चाहिए। कुछ सवाल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में कोई स्टाफ आपके कॉलिग है, वो हमसे कंपीट करता है, कंपटीशन का भाव रखता है, और हमें लगता है कि वो हमारी प्रोग्रेस रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्रदरहुड को कैसे मेंटेन करें, भ्रातृत्व भावना को कैसे मेंटेन करें?
0: जैसे ऑफिस में कोई हमारे साथी, वो उसके अंदर जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो उसको हम कोलैबोरेशन में उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी आगे बढ़ा है वो उसकी विशेषताओं के आधार पे बना है। अगर उसको हम जेलसी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारे अंदर वो इमोशंस जागृत नहीं होंगे। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशेषताएं दी है। जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर नहीं, और उसके अंदर जो है हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उसके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ा है, और मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसके आधार पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन कमियों को ठीक करने के लिए साथ साथ हम पुरुषार्थ करें, और उसको ईर्ष्या ना करके उसको भी मोटिवेट करें। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे।
1: जी, इसका मतलब भाई जी कह रहे हैं कि रेस करे, रीस नहीं करे, जेलेसी
0: जी
1: ना
0: जी
1: करे,
0: हाँ
1: लेकिन हेल्दी कंपटीशन करे,
0: हाँ
1: क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक मार्केट में सेम सब्जियां लोग बेचते हैं, अगर
0: हाँ
1: कंपटीशन होता तो शायद वो मार्केट ही नहीं होता, लेकिन कहाँ गलती हम कर रहे हैं उसे देखना है
0: और
1: हमें।
0: मार्केट में सब्जी उसकी ज्यादा बिकती है जिसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ प्यार से प्रेम से करेगा। हम केवल प्रोडक्ट ही सेल नहीं करते, लेकिन साथ साथ अपना अपना व्यवहार भी हम दूसरों को देते हैं,
1: जी
0: वैल्यूज भी हम देते हैं। तो कस्टमर जो आता है आपके व्यवहार से सीख के जाता है कि ये व्यक्ति केवल हमें प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, केवल बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वैल्यूज है जो मुझे भी चाहिए, मैं अपने फैमिली में इसको अप्लाई कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री विंग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो
0: जी
1: आप
0: जी
1: इस बात को बड़े अच्छे से समझा पा रहे हैं और समझते भी हैं। अगला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो क्या फिर भी उसके प्रति हम भाईचारे की भावना रखें, या व्यवहारिक रूप से ये कैसे संभव हो सकता है प्रैक्टिकल में?
0: वो भले हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन अगर हम भी उसको देख देख के यही सोचते रहे कि मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूं, तो ये जो बदले की भावना हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हम जितना, एक ये साइकिल है, जितना किसी के प्रति नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ के बोल बोलेंगे, दूसरों के साथ बात करेंगे, तो वो वातावरण उसके पास पहुँचता है। भले आज वो हमारे को लगता है कि मेरे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, मैं इतना इसको सहयोग देता हूँ तो भी मुझे सहयोग नहीं देता है, लेकिन देते देते देते क्या होता है कि एक टाइम उसको फील होता है कि इस आदमी ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि सराउंडिंग में वो वातावरण फैलता है और उस तक वो बात पहुंचती है कि आप उसके लिए गलत सोच रहे हो, लेकिन वो उसने आप हमेशा आपके लिए सुभावना सोची, आपको हमेशा कोऑपरेट करता है। तो अंदर से हम जब सुभावना रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे चेंज होता है।
1: ओके, तो कोशिश करेंगे उनकी अच्छाइयां देखने की,
0: अच्छाई देखने
1: की भावना रखने की। जी ओके,
0: जैसे दादी जी कहती थी कि व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो लेकिन विशेषताएं जरूर होती है, और जब विशेषताओं को हम ध्यान में रख करके दादी जी विशेष ईयर से उसको सेवाओं में आगे बढ़ाती थी कि इसके अंदर ये विशेषताएं, तो विशेषताएं हम देखेंगे तो जो कमियां है वो अपने आप ही फिर कम होती चली जाती। जैसे दादी जी कहती थी किसी के अंदर गुस्सा बहुत आता है, तो दादी प्यार से कहती ये आजकल बहुत कम गुस्सा करता है। तो वो अगर ये बोले कि नहीं आपको तो गुस्सा बहुत आता है, आप तो बहुत यहाँ रहने लायक नहीं, लेकिन दादी उस चीज को पॉइंट आउट ऐसे तरीके से करती कि आजकल बहुत इसके अंदर सुधार हुआ है, धीरे धीरे देखो गुस्सा इस पर कंट्रोल होने लगा और बहुत कम अभी गुस्सा करता है, तो सामने वाला को ये रिलाइज होता था, भले वो गुस्सा उतना ही करता लेकिन रिलाइज ये होता था कि देखो मेरे को दादी जी ने ऐसा कहा, मतलब मेरे अंदर वो गुस्सा कम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो प्रयास करता था कि मेरे अंदर गुस्सा कम आए, कंट्रोल करने की कोशिश करता था।
1: तो शुभ भावना हम इस तरीके से देख सकते हैं जैसे भाई जी ने दादी जी के एग्जाम्पल दिया। तो जब हमें लगता है कि मैंने दूसरों के लिए इतना किया लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया, तब सहयोग देने की जो भावना है वो कई बार खत्म हो जाती है, उससे कैसे बनाए रखें?
0: दूसरों के लिए हमने इसलिए कि मेरे लिए किसने के, लेकिन हाँ अगर हम ये मन में रखें कि किसी के लिए मैंने जो भी किया है वो मैंने कोई स्वार्थ के वश नहीं किया। जब हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना आती है कि मुझे उस जो मैंने उसके लिए किया मुझे उसका रिटर्न चाहिए, जब हम ये सोचते हैं तो हमें वो भाईचारा हमारे अंदर वो पनपता नहीं है। जब हमें सोचते हैं कि मैंने दिया, प्रकृति भी हमें ये सिखाती है कि आज जो पेड़ पौधे हमें जो फल देते हैं वो ये नहीं सोच के देते कि बाद में मुझे कुछ देंगे, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमें देती रहती है। बारिश का मौसम, बारिश हमें दे रही है तो बदले हमसे कुछ उनको चाहिए नहीं, तो प्रकृति पति जो परमात्मा हमें ये सिखाता है कि आप अपनी तरफ से देते जाओ देते जाओ, जब आप देते जाएंगे तो वो रिटर्न होके आएगा, क्योंकि हम ये सिखाते हैं ना कर्म की गति, तो ये जो आप देंगे वही आपको मिलेगा
1: जी।
0: तो आप मिले या नहीं मिले ये सोच के आप देने की भावना जागृत करेंगे। परमात्मा कहते आप दाता के बच्चे हो, आप देते रहो तो एक दिन आपके सामने वो चीज आएगी, आपको मिला नहीं मिले लेकिन अपना आप ही वो मिलेगा,
1: लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम व्यक्ति
0: सेम व्यक्ति मिले, किसी और से मिलेगा
1: जी। तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सेम व्यक्ति से मिले तो फिर दुख होता है,
0: फिर दुख होता है
1: जी।
0: लेकिन वही चीज हम किसी और के द्वारा हमें मिल जाती है, जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं उससे नहीं मिलता, अक्सर ऐसा ही होता है उससे हमें नहीं मिलता लेकिन कहीं और से मिल जाता, लेकिन समय गुजरने के बाद उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया ऐसा।
1: लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशंस के कारण दुख होता है, उस दुख को आप जाहिर होने ना दो और
0: कर्म करते रहो,
1: डिटैच होके तभी वो फल मिलेगा
0: जी जी जी।
1: ओके, तो आज समाज में ओपिनियंस, लाइफस्टाइल, भाषा, संस्कृति और विचारों में बहुत डिफरेंसेस हैं, एक ही घर में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक दूसरे को अपना कैसे महसूस करें, मतलब एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है हमें इंसानों को एक्सेप्ट करने में, क्या भाव रखें?
0: एक्चुअल में क्या हो रहा है आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम जीवन में वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए। आज जो चीज़ फैशन में है एक महीने बाद, 10 दिन बाद वो आउटडेट हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो चीज़ों में हम अपडेट हो गए लेकिन वैल्यूज में डाउनफॉल हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार अभी धीरे धीरे बदलते रहे हैं। और आजकल डिफरेंसेज इसलिए हो रहा कि जैसे माता पिता है अपने बच्चों से, उनका विचार डिफरेंस है, क्योंकि माता पिता जो है वो ये चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखी है तो बच्चों के अंदर वो डालना चाहते हैं, लेकिन बच्चे स्वीकार नहीं करते। जैसे माता पिता है उन्होंने अपने ज़माने में दलिया खाया, दाल रोटी चावल खाया है, तो वो बच्चे से यही अपेक्षा करे वो भी वही खाना खाए, लेकिन आजकल के जो बच्चे उनको चाउमीन चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, उनको फास्ट फूड चाहिए और वो ज़बरदस्ती उनके साथ करना चाहते तो वो मैचिंग नहीं हो पाते हैं। तो समय अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम पुराने ज़माने के लोग, हमें मान लो लता मंगेशकर के गीत पसंद है, किशोर कुमार इनके गीत पसंद है, लेकिन नई जनरेशन को भी हम यही चाहते हैं कि वो भी वही सुने, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते हैं। उनको नई जनरेशन के नए जो सिंगर आए उनके गीत पसंद है, तो समय अनुसार हम उनको देख करके उनके साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, तब अपनापन की भावना आएगी। हम अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकते, उनके विचार भी अपने अंदर हमें समाने पड़ेंगे, क्योंकि जनरेशन बहुत तेजी से बदल रही है। तो उस जन जिसको कहते हैं आजकल जेन जी, तो जेन जी के विचार बहुत फास्ट है, बहुत प्रगतिशील विचारधारा वाली जेन जी एक है, यूथ है, तो उनके विचारों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे से फास्ट है। जैसे स्मार्टफोन है ना, वो स्मार्टफोन की तरह हमारे से फास्ट है, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज है, लेकिन उनके साथ साथ उनको हमें सहयोग देने की जरूरत है, उनको सहानुभूति देने की जरूरत है, तब हम उनके साथ में एडजस्ट हो सके और

0: उसके हम बच्चे हैं और लाइट ऑफ पॉइंट हैं। वहाँ पे कोई संस्कृति नहीं है अलग, कोई विचारधारा अलग नहीं, एक ही विचारधारा है और एक ही वैल्यूज है जो सबके अंदर हमें दिखाई देते हैं और सबको एक ही डिमांड है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो कहीं का भी हो
1: जी,
0: किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश काल का हो, उसको ये चीज़ें की जरूरत होती ही है। तो जब इस भावना से हम देखते हैं तो अपना आप वो भाईचारा बनता है।
1: जी बिल्कुल। तो जैसे भाई जी ने कहा कि हम सब भी एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है और एक देश से आए हुए हैं, इस बात को हम ध्यान में रखें। अगर किसी की सोच हमसे बिल्कुल विपरीत हो तो उसके साथ संवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले हमारे अंदर लिसनिंग पावर होना चाहिए कि सामने वाले की मेरी सोच विपरीत है लेकिन वो क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, उसको हम समझें। और समझने के साथ साथ उसके जब वो सारा सुनने के बाद समाने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि वो उसकी सोच डिफरेंस क्यों हुई है। हो सकता है वो जिस सराउंडिंग वातावरण में रहा हो तो इस कारण से वो ऐसा सोचता हो कि फलाना व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो पूरी बात जब हम सुनेंगे तो फिर हम उस पर कैलकुलेशन पे आएंगे कि ये व्यक्ति इस वजह से बोल रहा है। तो उसकी बात को सुनते हुए हम अपनी बात को रखें। जैसे हमें दादी जी सिखाती थी कि भाई कोई भी बात को आपको करेक्ट करना है तो डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना है, तो डायरेक्ट ना बोलने के साथ साथ उसकी बात पर सुनो और फिर साथ में जैसे कहते हैं ना कि सैंडविच जैसे लगा के उसकी महिमा करते हुए
1: जी।
0: उसको साथ साथ वो बात उसको पेश करना कि आपके अंदर ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपके विचार अलग हो सकते लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये करेक्शन करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा जीवन में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो भले सोच अलग है लेकिन हम अपने विचार उसको रिस्पेक्ट से, प्यार से हम उसको दे सकते हैं और वो स्वीकार करेगा उस बात को।
1: जी, तो बात करने की तरीके आना चाहिए। और जैसे भाई जी ने कहा कि लिसनिंग, आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सुनने से पहले जज कर लेते हैं, तो इसके वजह से संवाद करते समय भी प्रॉब्लम होती है हमें। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सुनना है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जीवन में आते हैं, मान लीजिए दो कॉलिग्स हैं, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति है, वो भ्रातृत्व भाव की भावना से उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकता है?
0: वो तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग विचार जाने, उनका सुने और उनकी प्रॉब्लम समझे कि किस बार कारण से इन दोनों के आपस में बीच में टकराव है या एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो दोनों का सुनने के बाद में बीच का रास्ता निकाले, ब्रिज बन के पुल के माध्यम से कि आप अपनी जगह राइट है लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेंगे तो सामने वाला भी समझने के लिए तैयार है, फिर उसके पास जाके भी बोलेंगे कि आप भी ठीक है, उसके अंदर ये चीज की है कि मेरे साथ में इन्होंने ऐसा किया तो आप इस पर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी। तो तीसरा व्यक्ति ब्रिज के रूप में जब अपना सहयोग देगा तो दोनों आपस में मिल सकते हैं।
1: जी, तो आजकल हम ब्रिज की जगह पे शायद जले पे नमक चढ़े
0: कि चार बातें मिला के बोलते हैं कि आपके बारे में वैसा बोल रहा था इसलिए, तो और नजदीक आने के बजाय और दूर हो जाते हैं।
1: ओके, तो ब्रिज का
0: ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो दुनिया में बहुत ईगो बढ़ रहा है तो एक दूसरे को हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी है कि उसके कारण व्यक्ति का माइंड भी वैसा ही हो गया है,
1: हम विश्वास भी नहीं कर पाते एक दूसरे पर।
0: हाँ, विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले एक जमाना था तो एक दूसरे को हम एडजस्ट कर पाते, अभी इतना जल्दी हो गया कि मन के अंदर सहन शक्ति हमारी खत्म हो गई है। हम सुनना ही पसंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि रील से आप देखते हैं 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, तो जो भी माइंड ऐसा हो गया कि उसमें इमोशंस खत्म हो गए, हमें जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। अगर कोई आज की डेट में आप देखो कोई मूवी देखना भी चाहता है या मोबाइल में देखे तो तुरंत फॉरवर्ड करेगा, कारण क्या, मन में वो चीजें नहीं है, इमोशंस ही नहीं है उस चीज के,
1: जी
0: जो भी कहना है आप मुझे सार में कहो, तो माइंड ऐसा हो गया इसलिए वो दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है, कोऑपरेट नहीं कर पाता है।
1: ओके, बिल्कुल। तो मेन चीज है ईगो प्रॉब्लम के कारण हम भ्रातृत्व भाव को, ब्रदरहुड को अपना भी नहीं पा रहे हैं, और जैसे भाई जी ने कहा अगर तीसरे को सॉल्व करना है तो ब्रिज बने। अच्छा भाई जी, गुस्से में कही गई किसी बात से रिश्ता खराब हो जाए तो पहला कदम किससे उठाना चाहिए? मान लीजिए आपस में झगड़ा हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, तो पहला कदम कैसे उठाना चाहिए और किससे उठाना चाहिए?
0: पहला कदम, अब जो पहले जो झुकेगा उसी को उठाना पड़ेगा, आखिर किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और उसके बीच में सबसे पहले आता है ईगो। तो ईगो में ये देखा जाए कि रिश्ता अगर महत्वपूर्ण है, मेरा दोस्त है, साथी है, जो भी है, अगर मेरा रिलेशन मेरा जरूरी है तो ईगो को उसको साइड में रख देना चाहिए क्योंकि गुस्से से बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कोर्ट के अंदर या जेलों में जो ज्यादातर केसेस जा रहे हैं वो गुस्से के

0: कारण और ईगो के कारण जा रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर के हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं और वो चारों तरफ फैल जाती है। तो हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते कि नहीं मुझे ऐसा उसने क्यों कह दिया, मेरा उसने अपमान कर दिया सबके बीच में, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, है ना, या मेरी मुझे मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे से उसने पैसे मांग लिए, उधारी मांग ली, या मेरी उसने ये हिस्सा मेरे से छुड़ा लिया। तो इस बात को लेकर के हम बहुत सालों तक एक दूसरे से अलग रहते हैं और सोच सोच के हमें अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें ये महसूस होता कि नहीं ये छोटी चीज है और मेरा रिलेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे से नुकसान में हम बहुत बड़ा फायदा खो देते हैं ना, उस चीज के कारण हमें बहुत सारी प्राप्तियां होती है एक दूसरे से, तो वो भी हम खो देते हैं, रिलेशन हमारे चले जाते हैं। तो हमें ही झुक करके अगर उसके साथ में संवाद कायम करें, अगर खुद नहीं बात कर सकते हो तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा हम बात पहुंचाएं कि मैं बात करना चाहता हूं। अगर एक सिंपल लाइन भी अगर हम बोल दें कि भाई मेरी गलती थी, सॉरी, इसमें कोई हम बड़े छोटे नहीं हो जाते, अगर हम रियलाइज कर लें कि मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं, तो सामने वाला भी ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, वो भी झुक जाता है, नहीं वो मेरी भी गलती थी। तो जब दोनों एक दूसरे के आगे झुकते हैं तो संवाद आया आसानी से कायम हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं।
1: जी भाई जी, आजकल देखा जा रहा है कि घर घर में भाई भाई के बीच में झगड़ा है
0: जी,
1: और यहाँ पे भी ईगो प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज की भी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। तो एक भाई सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, तो उसका भी तो कर्तव्य है ना। तो ऐसे हर रिलेशनशिप में है कि सिर्फ हमेशा मैं ही क्यों झुकूं।
0: उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का भी झगड़ा होता है लेकिन उसके दूसरे तरीके भी होते हैं, हम ही क्यों झुके, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि सामने वाला भी झुकता है जब उसको महसूस होता है कि हर बार ये झुका है और मैं अकड़ के रहा हूँ। क्योंकि जब उसके सामने भी सिचुएशन आती है, अभी भाई के साथ तो अकड़ के रहेगा लेकिन जब दूसरे सामने वाले लोग जो झुकाते हैं उसको, तब उसको रियलाइज होता है कि मेरा भाई तो मेरे लिए बहुत कोऑपरेट करता है। सामने वाला जो होता है, जो अननोन पर्सन है, वो तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो उसके आगे हम झुक जाते हैं लेकिन भाई के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन अगर हम अपना, अगर हम रियल में भाई समझते हैं, अपनापन समझते हैं, तो अगर हम झुकते भी करें कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये होगा। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ कि ज्यादातर जब नहीं झुकते हैं तो ये कोर्ट केसेस में जाता है, अपराध बढ़ते हैं, मारपीट हो जाती है, और मारपीट होने के कारण हम जेलों में चले जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल साल भर, 10 साल वहां निकाल के आते हैं, फिर जाके रियलाइज होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। जब जेल में जाता है आदमी, उसको वो चीज फील होती है कि मैंने बहुत गलत कर लिया
1: जी।
0: तो वहां जाने पर क्या हो, हमारी इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, समय भी जाती है। तो मेरा तो यही विचार है कि अगर हम पहले ही इसको कंट्रोल कर, पहले ही हम झुक जाए, वो जो रियलाइज हो उसके पहले हम रियलाइज कर लें, तो हमारा समय भी बच जाए, इज्जत भी बच जाए और धन भी बच जाए
1: जी।
0: तो चाहे कैसा भी हो, थोड़ा सा हम झुके और जो हमारे पास सराउंडिंग में जो सोर्सेस है कि ये व्यक्ति किसकी बात मान सकता है, उन सोर्सेस का हम उपयोग करें
1: जी,
0: जिससे हो सकता है उसके अंदर में भी कुछ चेंजेज आए।
1: बिल्कुल, सुख और शांति अगर चाहते हैं तो अपनों के आगे हम झुक सकते हैं।
0: कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें फैमिली भी है, भाई भी है, पत्नी है, तो हमें बच्चे देखने पड़ते हैं, माता पिता को देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि उसका असर केवल एक व्यक्ति पे नहीं पड़ता, हमारी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ वहां तक असर जाता है, मदर की फैमिली तक भी असर है, दूर दूर तक उस चीज का असर जाता है। और आज के टाइम पे लोग कोई हमारे लिए सुभावना नहीं रखते हैं, लोग मजे लेते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा होना, जले पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं। तो हमें तो मीठा बनना है, हमें बात को बढ़ाना नहीं है, बात को समाना है, छोटा करना है
1: जी, तभी हम ब्रदरहुड को कायम रख सकते हैं जी। क्या जो फॉरगिविंग है, क्षमा करना, तो वो भी भातृत्व भाव का एक हिस्सा है, लेकिन क्षमा करना वो भी एक कला है शायद, कैसे क्षमा करेंगे?
0: क्षमा करना, जैसे कहते हैं जो बड़ा आदमी होता है वही क्षमा कर पाता है, जितना जैसे घड़ा फुल भरा होगा तो ज्यादा छलकेगा नहीं, आधा भरा होगा तो छलकेगा, जल्दी उछल जाएगा। तो हमारे अंदर अगर जितने वैल्यूज होंगे कि मुझे ईश्वर ने इतना सारा दिया है और इतना सारा मुझे सिखाया है, तो हम दूसरों को वही देंगे। अगर मेरे अंदर गुस्सा होगा तो मैं दूसरों को गुस्सा दूंगा, मेरे अंदर अशांति होगी तो मैं दूसरों को अशांति दूंगा। तो मेरे अंदर जितनी शांति होगी, जितना दूसरों के प्रति प्रेम होगा, जितना भाईचारा होगा, उतना ही हम दूसरों को दे सकेंगे। बैंक, मेरे बैंक में बैलेंस होगा तभी तो मैं दूसरों को डोनेट कर सकूंगा, और बैलेंस नहीं होता कैसे? तो सबसे पहले हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा
1: जी।
0: जब हमारे अंदर होगा तभी हम दूसरों को दे सकेंगे।
1: तो कैसे भरना है? तो
0: वो हम मेडिटेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है बाहर की चीज दिखावे नहीं है। जैसे हम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कोई दिखता नहीं है, इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जब डाउनलोड करेंगे तब वो प्ले होता है, तब वो अपना कार्य करता है। तो परमात्मा ने हमें यहाँ जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो इसको अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है ना, अपडेट करने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल भी आजकल काम नहीं करता, वो भी अपडेट मांगता है, तो उसको अपडेट करते हैं बार बार। तो हमें रोज रोज अपने इस मेंटल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और वो अपडेट करने का तरीका है मेडिटेशन। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं रोज रोज वो हमारा अपडेट होता है, स्कैन होता है, वायरस हमारे निकलते हैं और उससे हम अपना आप ही आगे बढ़ते रहते हैं।
1: जी ओके, तो अपडेट करने के टाइम में कौन से चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं आप, डाउनलोड करते हैं?
0: मेन चीज़ तो यही है कि जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस चले जाते तो उसको हम स्कैन करते हैं और वायरस निकाल, दोबारा से कोई वायरस ना आए तो उसके लिए हम ऐसा सॉफ्टवेयर डालते हैं, एंटीवायरस डाल के रखते हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई फॉर्मेट का सिस्टम तो है नहीं, जो परमात्मा ने ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर डाल के देखा है पूरी ताउम्र या पूरी जिंदगी वो रहेगा, वायरस हम पूरा निकाल नहीं सकते, लेकिन कोई वायरस आगे ना बढ़े, ज्यादा फाइल करप्ट ना हो, उसके लिए एंटीवायरस डालना पड़े, तो वो एंटीवायरस है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में सिंपल चीज ये है कि हम अपने आप को पहले यहाँ एनर्जी समझे, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, एक प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज करते हैं या हम जो भी यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करते हैं और आए दिन अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार एक इंस्टॉल कर लिया हमने कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा किस प्रकार की हूँ, शरीर तो मेरा थोड़ा समय का ही है, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है हमेशा अजर अमर अविनाशी है। तो जब हम थॉट्स अपने आप को पॉजिटिव देते हैं और मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा क्या है, वो भी एक लाइट और पॉइंट है, उससे जैसे हम कनेक्ट होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें पता नहीं था, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज इंटरनेट के माध्यम से भेजनी है, आपने देखा कि यहाँ पे वाईफाई है, तो आप क्या कर रहे हैं, पासवर्ड अपनी तरीके से आप लगा रहे हैं, लेकिन पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। जब पासवर्ड पता नहीं, आप कितना भी ट्राई करो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा
1: जी।
0: तो आप इस बिल्डिंग के आसपास जो व्यक्ति रहता है उससे आप पूछेंगे, भाई यहाँ वाईफाई तो दिखा रहा है लेकिन मुझे पासवर्ड पता नहीं है
1: जी।
0: तो पासवर्ड उसी व्यक्ति को पता है क्योंकि उसने वाईफाई लगाया हुआ है, तो वो फिर वो पासवर्ड आपको बताएगा, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि परमात्मा से हमें कैसे कनेक्ट होना है, तो हम अपने आसपास के लोगों से, दूर दराज लोगों से ये पूछ रहे थे कि भाई भगवान से कनेक्ट होने का पासवर्ड क्या है, तो वो भी अपने तरीके से बताते हैं, ये लगा लो इससे लग जाएगा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वाईफाई लगाने वाला स्वयं परमात्मा है। भगवान स्वयं आकर के हमें बताता है कि ये पासवर्ड है, आप इस पासवर्ड को डालेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ये जब हमें पता पड़ा कि हम लाइट ऑफ पॉइंट है, तो तुरंत परमात्मा से हम कनेक्ट हो गए और हमें वो एनर्जी और वो शक्तियां हमारे पास आने लगी,
1: वो वैल्यूज भी
0: अपने आप ट्रांसफर होने लगे,
1: ट्रांसफर हो जाती जी। तो ये मेडिटेशन करने से हमें शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि हम भातृत्व भाव के साथ रह सकते हैं लोगों के साथ। परिवार में कई बार भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन होता है ना, आपके बच्चों ने ये कर दिया, इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या अलग अलग तरीके से कंपैरिजन और जेलसी आ जाती है, तो वहाँ रिश्तों को कैसे भातृत्व भाव के साथ स्ट्रेंथन करें?
0: हाँ, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आजकल जो पेरेंटिंग भी हो रही है, तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इतना सारा नंबर लिया, तू क्यों नहीं लेके आता है, क्या कारण है? तो आजकल ये बहुत ज़्यादा होने के कारण बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, माता पिता भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे कि मैं कोटा से हूँ, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं
1: जी।
0: और उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, माता पिता का प्रेशर होता है, प्लस टीचर का प्रेशर होता है, आसपास के दोस्तों का भी होता है, इसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कईयों को देखा है कि वो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी उनको पावर मतलब दबाना नहीं है, उसको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उसके अंदर जो नंबर आया अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि आपके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी, उसको हम सहयोग देते हुए भी हम मोटिवेट करें, ना कि दूसरे से हम कंपेरिजन कराएं। क्योंकि लेटेस्ट ही हमने देखा, एक बच्चे ने एक फोन के कारण सुसाइड किया, उससे गिर गया, तो उसके पीछे यही आया कि बच्चा दूसरों को देख देख के सीख रहा था कि उसके पास एप्पल आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है स्टेटस जनरेट स्ट्रेस। आप स्टेटस को मेंटेन करने जाएंगे, इनकम आपकी इतनी है नहीं है, और जब वो मेंटेन करने जाएंगे तो आप एन केन पर कारण लोगों से आप दूसरे तरीके ढूंढेंगे कैसे मेरे पास इनकम है। जब गलत कदम उठाने जाएंगे तो फिर गलत कदम का गलत ही नतीजा होता है
1: जी।
0: तो हम भी सादगी में रहना पसंद करें, बच्चों को भी वो सिखाएं, क्योंकि हम दूसरों को देख के हमें अपना जीवन नहीं जीना है, हमें अपनी क्वालिटी के आधार पर जीवन जीना। अपनी क्वालिटी को आप जितना डेवलप करेंगे तो आगे चल के वो जो चीजें आपको चाहिए वो अपने आप मिलेगी
1: जी।
0: लेकिन बच्चों को हमें उनको मोटिवेट करना है, ना कि उनको डाउनफॉल करना है। दूसरों के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे ये सर्टिफिकेट देते हैं, माँ बाप मुझे ठीक से लाइक नहीं करते हैं, मुझे आए दिन डांटते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो डांटने डपड़ने के बजाय उनसे प्यार से मोटिवेट करें। आपने देखा अपने यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, तो दादियां भी हमें यही सिखाती थी कि कोई भी गलती हो जाती है उसकी वजह डांटती नहीं थी
1: जी।
0: एक बार ज्ञान सरों में यहाँ पे एक भाई था, उससे काफ़ी बड़ी उस टाइम टीवी बहुत महंगी आती थी, टीवी गिर गई, तो दादी जी आए और उन्होंने देखा और देखने के बाद में वो भाई की तरफ देखो रखे और स्माइल किया बस, कुछ नहीं कहा। फिर दादी को पूछा, दादी आपने उसको डांटा क्यों नहीं, इतनी महंगी टीवी तोड़ दी उसने, कि बोले डांटने से टीवी को जुड़ नहीं जाती है
1: जी।
0: लेकिन मैंने उसको स्माइल दी, उसमें उसको प्यार भी मिल गया उसको और एक सावधानी भी मिल गई कि आगे से अपने आप ध्यान देगा, क्योंकि जानबूझ के कोई गलती ऐसी करता नहीं है, वो हो गया उससे। तो यही भावना हम अपने बच्चों से भी लगे रखें, बार बार उनको टॉर्चर ना करें, किस तरह से दबाए नहीं, उनको मोटिवेट करें, शिक्षाएं दें, सावधानियां दें, लेकिन वो प्यार से। हम खुद गुस्से में रहेंगे तो हमारे से भी वो सामने वाला यही सीखा कि जब पापा गुस्सा करते हैं तो मुझे लगता है शायद यही फार्मूला है दुनिया को चलाने का, तो फिर वो भी धीरे धीरे गुस्सा करना सीख जाता है। माता पिता जब बूढ़े होते हैं, जब वो बड़ा होकर फिर माता पिता वो गुस्सा करता है, क्योंकि हमने उसको सिखाया ही वही है, प्यार करना नहीं सिखाया है, प्यार देना नहीं सिखाया, तो गुस्सा देना करना सिखाया, तो सामने बड़ा होकर फिर वही करता, फिर वो अपने बच्चों के साथ भी वही ट्रीट करता है। इसके कारण धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता जाता है।
1: जी जी बिल्कुल। अगर हम स्टेटस मेंटेन करने को जाए तो भाई जी ने कहा कि स्ट्रेस होगी, तो इसीलिए कंपैरिजन कंपटीशन को साइड में रखते हुए अपने क्वालिटीज को ढूंढें और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे अपने आप सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, ऐसे भाई जी ने हमें बताया। तो बच्चों में बचपन से ही जैसे आपने कहा कि हम सब एक दूसरे के साथी हैं, इसकी भावना विकसित करने के लिए और क्या पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं चीज़ें?
0: और पेरेंट्स यही ऐड कर सकते हैं, बच्चों के सामने आप कभी भी अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ गलत व्यवहार ना करें। आप उसको करेक्ट करने जाएंगे, आप उसको डांटेंगे वाइफ को, तो बच्चा वो सीखता है कि पापा मेरी मम्मी को ऐसे डांट रहे, तो उसके अंदर वो अंदर ही अंदर एग्रेसिव की भावना जागृत होती है
1: जी।
0: तो अगर हमारे बीच में कुछ मनमुटाव भी है तो बच्चों के सामने ना करें
1: जी।
0: जब एकांत में होते अकेले होते हैं तो हम उसको बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले हम ये समझते थे कि पत्नी को या अपनी वाइफ को डांटेंगे तो ये सुधरेगी, अभी दोनों बराबर खले। शादी शुदा होना मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ है तो मेरे हिसाब से चले, अभी समय बदल गया। शादी शुदा मतलब हम एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, कंपेनियन है, तो एक दूसरे की हमें साथ देना है, सहयोग देना है, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देख करके उनके अंदर जो विशेषताएं उनको आगे बढ़ाना है
1: जी।
0: जब हम एक दूसरे की महिमा करेंगे, एक दूसरे की मोटिवेट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसका प्रभाव बच्चे पे ना पड़े। बच्चा ये सीखता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या प्यार दिया है ना, कैसे मुझे आगे बढ़ाया, तो वो फिर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेगा। अगर हम वैल्यूज हमारे अंदर होगा तो वैल्यूज बच्चों को देंगे, बच्चे अपने बच्चों को देंगे। हमारे अंदर अगर गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत, वो सब दिखते हैं तो बच्चे भी देखते हैं, तो वही सामने वालों को ट्रांसफर करेंगे। तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं
1: जी?
0: हमारे पास जो संपत्ति बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपए बंगला है, हम चाहते हैं मेरी संपत्ति उसको ट्रांसफर कर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो संस्कार है वो भी एक प्रकार की संपत्ति है। तो हमारे जो संस्कार की जो संपत्ति है बच्चों को देना चाहते हैं, तो हम बच्चों को कैसी संस्कृति देना चाहते हैं, कैसी संपत्ति देना चाहते हैं कि वही उसके साथ जानी है, वो आगे आगे से आगे ट्रांसफर करेगा। ये बैंक बैलेंस बंगलो तो यहीं तक रह जाएंगे, ज्यादा ज्यादा बच्चे तक जाएंगे, लेकिन उसके आगे वाली संतान तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने साथ में ये संस्कार दिए, इसलिए कहते हैं वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। धन हमें बाप दादा से मिल जाता है, करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, लेकिन धन के साथ में, वेल्थ के साथ में विजडम नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो उसको गंवा देगा। इसलिए राजस्थान में कहावत है कि यदि बेटा कपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका बेटा गुणवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, संस्कारवान नहीं है, तो उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: आप इकट्ठा करेंगे तो क्या करेगा, उड़ा देगा, सब खत्म कर देगा। फिर हमारे यहाँ कहते हैं अगर बेटा सपूत तो क्यों धन संचय, अगर बेटा आपका ज्ञानवान है, गुणवान है, संस्कारी, आपने अच्छे गुण दिए, उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, खुद कमा लेगा
1: जी।
0: तो हमें मेन ये देखना कि हमें अपने संस्कारों से बच्चों का परिवेश ऐसा करना है कि बच्चे बड़े होकर के ये महिमा कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिए
1: हैं जी। बिल्कुल, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं कि वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, तो इस बात का हम ध्यान दे सकते हैं। समाज के दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम सच में हर व्यक्ति को अपना भाई बहन माने तो हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें सबसे पहला बदलाव क्या आएगा?
0: सबसे पहला बदलाव ये है कि हम अपने ईगो को साइड में रखेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी जो पोस्ट पोजीशन है, मुझे इस दृष्टि से लोग देखे। लेकिन अगर हमने यही सोच लिया कि नहीं, ये मेरे भाई बहन है, तो हमारा पोस्ट पोजीशन तो साइड में हो जाता है ना। तो हमारे अंदर निमित्तता आ जाएगी, निर्माणता आ जाएगी। हम जितनी बड़ी पोस्ट पे होंगे उतना ही हम लोगों के साथ में हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे
1: जी।
0: ये चीज दादी जी के अंदर थी। वो इतनी बड़ी संस्था की चीफ होते हुए भी वो ये समझती थी कि ये मेरे बाबा के बच्चे, मेरे भाई है, मेरी बहन है
1: जी।
0: तो वो कभी इस पोस्ट पोजीशन का अहंकार नहीं होता था कि मैं इतनी बड़ी संस्था की चीफ हूँ तो मेरे हिसाब से लोग चले। वो खुद आगे होकर के लीडर करती थी, लीडिंग पावर थी उनके अंदर। तो जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं हमारे साथ
1: जी। बिल्कुल। तो दादी जी के अंदर सच में ये भावना थी। पूरे आबू रोड में अगर आप पूछें जिन्होंने दादी जी को देखा है, उनके अंग संग्रह हैं, तो वो ये बात को ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और आज जब लोग कहते हैं कि मुझे दूसरों से क्या लेना देना, आज की जो लाइफ हो गई है, तो इसमें जो ब्रदरहुड का सोच है, इसका सकारात्मक उत्तर क्या हो सकता है?
0: देखो, अगर दूसरों के साथ में रहना देना नहीं है तो, क्योंकि आज हम सभी क्या है, एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी, हम अकेले रह नहीं सकते, हम एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है
1: जी।
0: जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर एक में वायरस आ गया तो धीरे धीरे दूसरे में भी आएगा
1: जी।
0: तो अगर हम ये सोच के मुझे क्या मतलब उसकी प्रॉब्लम, वो जाने, लेकिन हमें आज उसकी प्रॉब्लम कल वो हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे हमने देखा 2020-21 में हमने देखा कि जब वो कोरोना आया, अगर हम सोचते कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे उसको ठीक करने की जरूरत नहीं, तो अगर नहीं करेंगे धीरे धीरे वो आप तक भी फैलता जाएगा। वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो सब पे कनेक्ट हो जाता है। तो आज हमारे अंदर में भी वो चीज़ें हैं, बुराइयां अगर वो सामने के अंदर है, उसको आप ठीक नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो बुराई आपके अंदर भी प्रवेश करने लग जाएगी
1: जी।
0: तो और बीमार पड़े, जैसे कहते हैं ना, एक एप्पल अगर सड़ा हुआ तो क्या है, लोगों के संपर्क में आएगा, दूसरों को भी खराब करेगा
1: जी,
0: तो उसको साइड कर देते। तो यहाँ उसको साइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर ये वीकनेस आई कैसे है और कैसे हम उसको मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। समझो कोई व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, अब वो नशे के इतना अधीन होगा कि बेचारा कमजोर है, छोड़ नहीं सकता। लेकिन छोड़ने के लिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कुछ। आज जैसे अपने अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान क्यों चल रहा है, हमें क्या मतलब, बहुत लोग पी रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसा बड़ा कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि समाज में यह बहुत बड़ी कुरीति है
1: जी।
0: नशा नाश की जड़ जैसे कहा था, तो व्यक्ति अगर एक नशा करेगा तो वो उसके उसका साथ देख के दूसरे उसके दोस्त भी करने लग जाएंगे, धीरे धीरे उसके बच्चे भी वही सीखेंगे, मतलब पूरा समाज पे दुष्प्रभाव एक पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति को हमने ठीक कर लिया तो उसकी वाइफ भी ठीक रहेगी, उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे, तो पूरा समाज धीरे धीरे, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समाज धीरे धीरे परिवर्तन होता है और होता जाता है। तो हमें उसके साथ में इन्वॉल्व होना जरूरी है उसको ठीक करने के लिए
1: जी।
0: हम समाज से भाग नहीं सकते क्योंकि समाज का एक अंग है, तो हमें वो जुड़ करके समाज को ठीक करना है।
1: बिल्कुल, कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर हम खुद ठीक हो जाते हैं और सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर समाज भी ठीक होने लगता है। क्या छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी की मदद करना, सुनना, सम्मान देना भी भातृत्व भाव को मजबूत करती है?
0: जरूर मजबूत करती है, क्योंकि यही तो एक हमारा मेन बेस है, संस्था का भी मेन बेस यही है, क्यों हमने इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए। आपने देखा हो यहाँ पे मजदूर वर्ग एक कार्य करता है, श्रमिक जो काम करते हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं होती कि ये छोटा व्यक्ति है, हम ये सत्य सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनको प्यार से चलाते हैं। इसलिए मैंने देखा हो दादी जी के टाइम पर भी हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर्स काम यहाँ पर आते थे, और बाहर में भी होटलों में उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, वहाँ भी बोलते आप हमारे साथ आइए, आप यहाँ कर, उससे ज़्यादा हम सैलरी आपको देंगे। लेकिन वो वर्कर्स जो थे, श्रमिक थे, वो छोड़ के नहीं जाते थे। तो मैंने एक से पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो, आपको वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है और आपको काम भी मिले, बोला हमें केवल सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन सैलरी के साथ जो हमें प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो यहाँ पर मिलता है, और जो अपनापन चाहिए वो हमें यहाँ मिलता है, ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे हम केवल सैलरी देते हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ हमारे साथ व्यवहार जो करते हैं वो ठीक नहीं होता है, कहीं कर्मचारियों के साथ में या कहीं ऐसे अधिकारी होते हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और यहाँ जो उनको इज्जत मिलती, जो अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम इस परिवार का एक हिस्सा है, भले हम छोटे हैं लेकिन हमें ये फील होता है कि ये हमारा परिवार है, तो हम अपनी जो सेवाएं, अपना जो कार्य हम दिल से करते हैं। तो छोटा छोटा जो हम दया की भावना दिखाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और अच्छी भावना के साथ वो सारे कार्य सुचारू

0: रूप से
1: सुचारू
0: करते हैं जी। एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आपके सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों अपनी बात को सही मान रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे आपने कहा लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ब्रदरहुड की भावना के साथ बीच में जाना हो तो क्या करेंगे हम?
1: थोड़े समय के बाद उनको अकेला छोड़ना चाहिए और बाद में फिर दोनों से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग रह करके बात करें, प्रॉब्लम कहाँ है। दोनों का मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। जब दोनों को अलग अलग बिठा के हम सुनेंगे और सुनने के बाद फिर हम अपनी बात रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वो लोग कई बातों पे फिर कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने थर्ड पर्सन से बातें सुनी होती है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, सच्चाई कुछ और होती है। जब तीसरा व्यक्ति जाकर के दोनों की बातें सुनता है और फिर उनको कम्युनिकेट करता है कि आप जो समझ रहे हैं या सुन रहे हैं वो गलत है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा आपके बारे में, तब वो उसको रियलाइज होता है कि मैं अभी तक फालतू में उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहा था, उसने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं कहा, तो फिर आदमी मोल्ड हो जाता है।
0: जी ओके, तो फिर आप अपने ब्रदरहुड की भावना के साथ दोनों की बात को अलग अलग सुन के फिर आपको निर्णय लेना है। जैसे आपने कहा कि हम एक एनर्जी है, हम आत्मा है, और दादी जी भी समझती थी कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है, जैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी जो भातृत्व भावना है इसे नेचुरली मजबूत कर लेती है। तो चलते फिरते काम करते हुए तो कैसे वो भाव रखे? फिर
1: सिंपली सा चीज़ है कि जैसे ये कॉन्शियस है हमारे अंदर, जो हमें फील हो रहा है कि हम आँखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो इसको ही हमें जागृत रखना है। बाकी तो ये जो चीज़ें हम जब शरीर छोड़ते हैं तो सब बदल जाता है। जैसे सिंपली आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें सिम पड़ा हुआ है
0: जी।
1: आप सिम निकाल दो मोबाइल डेड हो जाए, कोई काम का नहीं है, है ना। तो हमारा शरीर भी लाइक एक मोबाइल है, मोबाइल में सिम पड़ा है, सिम मतलब आत्मा है, तो आत्मा में जो तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि और संस्कार, उसी को सिम कहते हैं, है ना। एस मतलब संस्कार, आई मतलब इंटेलेक्ट और एम मतलब माइंड, वो सिम हो गया। तो जब हमारा शरीर धीरे धीरे जब पुराना होता है, हमारी एज बढ़ती है 40 साल 50 साल, तो हम इस शरीर से भी दुखी और परेशान होने लगते हैं। जैसे हमारा मोबाइल खराब होता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता भी खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, भाई नया मोबाइल दे दो। अब नया मोबाइल ले लेते हैं और हम इसमें से पुराने मोबाइल से सिम निकाल के नए में डाल देते हैं और अच्छे से वर्क करता है। अब हमारा ये शरीर जब धीरे धीरे खराब हो जाता है तो हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये मोबाइल अब खराब हो गया, मैं इससे काम नहीं कर सकता, मुझे चेंज करो, क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है
0: जी,
1: ये भगवान के पास है। तो भगवान क्या करता है, इस मोबाइल में से सिम निकाल लेता है, यानी आत्मा निकाल लेता है और नए मोबाइल में वो डाल देता है। नया मोबाइल मतलब बच्चे के अंदर डाल देता है
0: जी,
1: ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो किसी बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है ना
0: जी।
1: जैसे कई बार सिम में कॉन्टेक्ट नंबर चले जाते हैं तो जैसे दूसरे में डालें तो भी वो डिस्प्ले होते हैं,
0: राइट।
1: ऐसे वो बच्चे को पुरानी बातें याद रह जाती है, जबकि उसका शरीर हम जला देते हैं या दफना देते हैं, तो याददाश्त कौन लेके आता है, आत्मा लेके आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी, वो पावरफुल है। साइंस में कहा जाता है कि जो जितना होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है, जितना छोटा होता है। तो जब हम परमाणु की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन कितने शक्तिशाली होते हैं। तो ये आत्मा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से करोड़ों गुना छोटी चीज है
0: जी।
1: तो ये जो शरीर में भ्रकुटी के बीच में विद्यमान है, ये कितनी पावरफुल होगी। तो जब हम बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है हम रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, तो हमारे अंदर से अपने आप ही शांति के वाइब्रेशन निकलने लगते हैं, हमें कोई करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जैसे हम उसमें स्थित होते हैं अपने आप डिटेच हो जाते हैं और हमारा रिलैक्सेशन अपने आप ही शुरू होने लग जाता है।
0: ओके, तो ये बीच बीच में हमें रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, तभी हम अपने रिश्तों को और भातृत्व भाव को भी नेचुरली मजबूत कर सकते हैं। जब हम व्यक्ति के रोल या पोजीशन के बजाय उसके इनर आइडेंटिटी को देखते हैं, जैसे आपने कहा, तभी हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है वो सामने वाले का।
1: बिल्कुल, यहाँ पे लाखों की संख्या में अपने भाई बहन जुड़े हुए हैं, जैसे ही वो रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उनका गुस्सा शांत होने लग जाता है, उनकी बुरी आदतें छूटने लग जाती हैं, और साथ ही साथ ये जब उनको रिलाइज होता है कि ना केवल मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, जब हमें स्मृति आती है कि हम ईश्वर की संतान है। अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि हम कहते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ, हम पढ़ते राम की रामायण है लेकिन अवगुण किसके धारण करते हैं, रावण के, है ना। कभी हमने भगवान को नहीं देखा हुआ कि आज सीता जी को रावण चुरा के ले गया तो वो टेंशन में हो तो भाई एक बोतल पी ले या सिगरेट पी ले या कुछ ऐसा कर ले, कोई व्यसनों का सहारा लिया हो, भले उनके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आई हो, हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है व्यसनों का सहारा लेते हैं
0: जी।
1: तो हम कहते हैं ईश्वर की संतान है तो हमारे अंदर ईश्वर के गुण आने चाहिए
0: जी।
1: तो जैसे हम परमात्मा के बनते हैं तो हमें ये स्मृति आती है कि हम देवी कुल की आत्मा, भगवान हमें ऊंचा उठाने के लिए आया, तो अपने आप ही वो बुरी आदतें हमारी छूटने लगती है और अच्छे संस्कार हमारे अंदर वो डेवलप होने लग जाते हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। ये मेडिटेशन का कमाल है,
0: मेडिटेशन का कमाल है, तो इसे हम रोज थोड़ा थोड़ा करें। तो क्या जो ब्रदरहुड की भावना है ये शुरुआत खुद को बदलने के लिए है, दूसरों को नहीं?
1: नहीं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं ठीक हो जाए, लेकिन हम पूरा जीवन भर यही ट्राई करते रहे ये बदले। उसके लिए हम बहुत सारे उपाय लगते हैं, किसी को मारने पीटने के लिए भेज देते हैं या किसी आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, परिवार के जो सदस्य उनको हम ठीक करने के लिए पता नहीं हम क्या क्या यत्न करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बदलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे स्वभाव संस्कार के कारण भी सामने वाला दुखी होता है, वो परेशान रहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, अगर कहता भी है तो हम रियलाइज नहीं करते कि मेरे अंदर ये कमियां हैं ये कमजोरी है, लेकिन जब हम अपने को पहचानते हैं और हमें महसूस होता है, क्योंकि वो फिल्टर होता है ना, एंटीवायरस जब डालते हैं तो स्कैन करता है कि मेरे अंदर कौन कौन से वायरस है जो मेरी अंदर की फाइलों को करप्ट कर रहा है, तो जब मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं लोगों के सामने बहुत चुगली करता हूँ, लोगों के मेरे अंदर कोई बात पचती नहीं, मैं इधर की उधर बहुत करता हूँ, मैं मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत एग्रेसिव नेचर का हूँ, तो इसके कारण ना ही मेरा बिजनेस चल पा रहा है, ना ही मैं फैमिली में अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, ना ही मैं वाइफ के साथ ठीक से बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि अग्रेसिव नेचर होने के कारण लोग मेरे से दूरियां बनाने लग गए और हम ये सोचते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं बैठते हो, तो जब हमें रियलाइज होता है कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ कमियां है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उनपे हम जब काम करने लगते हैं तो जो मेरे से दूर गए लोग वो धीरे धीरे अपने आप ही नजदीक आने लग जाते हैं
0: जी। ओके, बिल्कुल। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। भातृत्व भाव जो है, ब्रदरहुड जो है, उसकी एक पहचान,
1: उसकी एक ही पहचान है कि सबसे पहले अपना ईगो को साइड में रखें, कुछ भी हो जाए मेरे अहंकार को मुझे आगे नहीं आने देना, क्योंकि अहंकार के कारण ही बहुत सारी ज्यादातर बातें बिगड़ती है
0: जी।
1: जैसे मैं सिंपल सी बात बता दूं, एक जगह मैं एक प्रोग्राम के लिए जाने वाला था तो वहां देखा कि वो छोटी सिटी थी पर रोड बहुत छोटे थे, सकड़े रोड थे, उसमें इधर से एक गाड़ी जा सकती थी और एक ही गाड़ी आ सकती, दोनों क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैंने देखा इस गाड़ी से एक व्यक्ति गया, सामने से भी एक गाड़ी आ गई, अब वो दोनों आपस में पीछे लेने चाहते, ईगो बढ़ गया
0: जी।
1: मैं क्यों पीछे लूं, वो भी सामने वाला सोच मैं क्यों पीछे लूं, उसके पीछे और भी गाड़ियां लग गई और बैठे बैठे हॉर्न मारने लगे, कोई पीछे लेना नहीं चाहता, तो इसमें क्या देखा, इस गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था उसने अखबार निकाला ड्रॉर से और अखबार टांग पे टांग रख के पढ़ने लगा, सामने वाला गाड़ी में से ड्राइवर निकला और उसने आके बोला इसको कि जब तुम अखबार पढ़ लो तो मुझे देना ताकि मुझे भी पढ़ना है, तो 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए आधा घंटा हो एक घंटा कोई पीछे लेना नहीं चाहता, किसी ने पुलिस वाले को फोन कर दिया
0: जी।
1: पुलिस वाला आया और उसको 2-4 तो उसने गालियां दी, धमकाया उसको, अपमानित भी हुआ, आखिर पीछे तो लेना ही पड़ा
0: जी।
1: तो वो ईगो ही था, ईगो के कारण हम वहां बैठे हुए, तो ऐसे हर एक की लाइफ में ऐसा ईगो होता है, आखिर ईगो हमें छोड़ना ही पड़ता, चाहे सिचुएशन छुड़ाती है या कोई कानून छुड़ाता है, किसी ना किसी कोई ना कोई व्यक्ति आके हमें आके डरा के धमका के हमें झुकाता जरूर है, लेकिन वो प्रेशर में फिर हमें झुकना पड़ता है, तो क्यों ना हम कोई आके हमें झुकाए, इससे अच्छा हम पहले से ही झुक जाए, पहले से हम ईगो साइड में रख करके हम जाए तो हमारा समय बच जाए, इज्जत भी बच जाए, धन भी बच जाए
0: जी।
1: तो सबसे मेन आज के टाइम पे हमने देखा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ईगो को हमें साइड में रख करके चलेंगे तो भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा,
0: भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा, तो वही भाईचारे को कमजोर करने वाली एक आदत ईगो ही है,
1: ईगो ही है
0: जी। भाईचारे को बढ़ाने वाला एक छोटा व्यवहार क्या है, क्या एक कदम हम उठा सकते हैं?
1: हमें एक दूसरे को सम्मान देना है, उनको सहयोग देना है, उसके बुरे वक्त में हमें काम आना है,
0: रिस्पेक्ट,
1: जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई ऐसा चैलेंजेज आ गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां जाके हम केवल ना, हमारे पास धन भी नहीं है लेकिन केवल उसके साथ में खड़े होना, उसके पीठ पे हाथ फेरना, उसको थपथपाना कि कोई नहीं मैं बैठा हूं आपके साथ में, मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा, तो वो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और सिचुएशन अपना आप पार कर लेता है, सिर्फ उसको हिम्मत देने वाला कोई चाहिए
0: जी,
1: साहस देने वाला, शक्ति देने वाला,
0: देने वाला, हिम्मत देने वाला जी। तो कॉन्फ्लिक्ट के समय याद रखने वाला एक विचार जब परिस्थिति सामने हो,
1: उस टाइम ये भी चला जाएगा,
0: ये भी चला जाएगा जी।
1: जैसे बाबा कहते हैं, हमारे दादियां सिखाते हैं कि नथिंग न्यू, थोड़े समय से की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। हमारे जीवन में ही समस्याएं आई, आपने देखा होगा आपके सामने भी कोई एक समस्या रही होगी साल भर पहले और आज उसके बारे में सोचेंगे आपकी, यार इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी, फालतू में इतना बारे में सोच सोच के मैं टेंशन कर लिया। तो जब समय गुजरता है तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन वो सामने समस्या देख के हम उसको सोच सोच के बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो टाइम आने पर वो गुजर जाती है।
0: आज ये
1: समय भी चला जाता है। उस टाइम जब कोरोना आया तो लोग घबराए, अरे कोरोना हो गया अब क्या करें, अब आज के डेट में सोचेंगे तो अरे वो तो छोटी सी बीमारी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये एक ही चीज रहे कि ये समय भी धीरे धीरे गुजर जाएगा, और उस समय को काटने के लिए अगर हम ये मन में रखें मेरे साथ भगवान है, परमात्मा मेरे साथ में, तो मेरा एक कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी पिता मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी एक पावर है, विल पावर। वर्तमान समय क्या होगा कि हमारी विल पावर कमजोर हो गई, इसलिए हम सामना नहीं कर पाते। और भगवान से हम हमेशा गीत गाते आए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना था। अभी वर्तमान समय सबका मन का विश्वास कमजोर हो गया, तो जब परमात्मा से हम जब कनेक्ट होते हैं, भगवान वो हमें शक्ति देता है। जब हमारी मन का विश्वास बढ़ जाता है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको हम सहज रूप से सामना कर लेते हैं और सहज रूप से पार कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो सोसाइटी में भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल कदम,
1: सहयोग की भावना,
0: सहयोग की भावना। और अंत में अगर हर व्यक्ति ये मेरा अपना है की भावना से जीने लगे तो समाज कैसा बन जाएगा,
1: जिसके लिए हम सबने परिकल्पना की, दादियों ने की, हमारे बाबा ने की, शिव बाबा ने भी की, पूरा समाज ही स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आज वर्तमान में हम देखते हैं आश्रम किसे कहा जाता है, आश्रम उसे कहा जाता है जहाँ सुख मिलता हो, शांति मिलता हो, लेकिन आज गृहस्थ में ये चीजें तो नहीं मिलती। हर घर में लड़ाई है, हर घर में महाभारत, हर घर में रामायण है। तो उस गृहस्थ को आश्रम की बनाने, आश्रम की तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बनने के लिए हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे जाके पहाड़ों में गुफाओं में जाने की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो दादी जी ने हमें सिखाया, बाबा ने हमें सिखाया कि आप घर में रहते हुए भी सन्यासी बनो, तो सन्यासी कैसे बनना है कि ये जो बुराइयां हमारे अंदर है, जो बुरे संस्कार है, उनका हमें सन्यास करना है, ना कि चीजों का, ना कि वस्तुओं का। तो गृहस्थ में रहते हुए भी इन बुराइयों का हम संन्यास करेंगे तो गृहस्थ भी वापस फिर आश्रम की तरह बन जाएगा, हम खुद सन्यासी हो जाएंगे। तो परमात्मा का यही संदेश कि जब ऐसा हम अच्छाइयों को धारण करेंगे, ये घर जो है, ये परिवार जो है, ये दुनिया जो है, अपना आप ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग इसी धरती को कहा जाता है। आपने देखा जब गर्मी का मौसम था तो पतझड़ थी, पूरा सुनसान था, पूरा चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी और पूरा रेगिस्तान था, लेकिन जैसे ही बारिश आया अपना आप ही हरियाली हो गई है। तो ये प्रकृति जो है समय के अनुसार अपना आप रूप परिवर्तन कर लेती है। तो जब मई जून का मौसम होता है तो गर्मी होती है, और जब ये जुलाई अगस्त का तो हरियाली होगी, टाइम गुजरता है अपना पे। तो इसी धरती पे पहले स्वर्ग था और इसी धरती पे फिर स्वर्ग आने वाला है। तो नर्क कोई, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, इसी धरती पे। जब हमारे शब्द बदलते, हमारे विचार बदलते, हमारा व्यवहार बदलता है, तो ये दुनिया, ये समाज अपने आप ही स्वर्ग जैसा हो जाता है।
0: ओके, तो जरूर स्वर्ग यहीं पर है। तो हमें अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को बदलना है, परमात्मा को याद करते हुए अपने को आत्मा समझते हुए। जी, तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब वक्त हो गया है यहीं से विदा लेने का।
1: मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का जो अनुभव है जो यही कहता है कि आप जो भी कारोबार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं या फैमिली में रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे कहते हैं कि दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो हमारा जो परिवार है ये हमारे साथ में 10-20 साल 50 साल 100 साल तक ही रहने वाला है, चाहे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, जो भी है परिवार के सदस्य है। लेकिन जब इस दुनिया में हम आए थे अकेले ही आए थे, और जब जाएंगे तो भी अकेले ही जाएंगे। लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है अकेले आए थे और साथ में कुछ जाना नहीं, लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया, दादियों ने ये सिखाया कि साथ में जरूर हमारे साथ जाता है, वो जाता है हमारी दुआएं, वो जाते हैं हमारे अच्छे संस्कार। जब हम अच्छे संस्कार, अच्छे पुण्य कर्म करके जाते हैं तो हमारे साथ वो जरूर जाते हैं, बाकी जो धन संपत्ति यहाँ के यहीं रह जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, आप मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करें। जो भी हमारे अंदर कमियाँ हैं, जो कमजोरियाँ हैं, तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन के अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, वो मेडिटेशन आपकी कमी कमजोरियों को दूर करता जाएगा, अच्छाइयों को अपने आप ही वो रिप्लेस करता जाएगा, अच्छे संस्कार आपके अंदर आते जाएंगे, भाईचारे की जो रियल भावना है वो अपने आप ही जागृत होते जाएगी। तो मेडिटेशन आपको पुश करता है, एक तरह से आपको आगे बढ़ाता है कि इस मेडिटेशन से आप अपने जीवन में ना केवल सक्सेस होते हैं लेकिन मार्केट में एक गुडविल बनती है, समाज में आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि से आपको देखा जाए कि ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, ज्ञानवान है, संस्कारवान है, और वो उसका एक ही कारण है कि वो मेडिटेशन के बल पे आगे बढ़ता चला जाता है।
0: ओके जी, तो भाईचारे को अगर आगे बढ़ाना है तो मेडिटेशन के जरिए आप भाईचारे के भावना को अपने अंदर ला सकते हैं, उसे पुश कर सकते हैं, आगे भी उसे शेयर कर सकते हैं।
1: मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि वैल्यूज कोई डिग्री नहीं है कि आपने एक साल का कोर्स कर लिया तो आपको ये डिग्री मिल गई। हमारे अंदर ये गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत हमेशा ही भरे रहते हैं। ये वायरस एक्टिव ना हो उसके लिए जैसे हमने एंटीवायरस लिया है, अभी आपने देखा कोरोना के लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। तो वैक्सीन रोज रोज हमें लेनी है ताकि वो जो वायरस है उनका असर हमारे ऊपर कम हो।
0: तो जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, और इस बात पे यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के
1: आपका
0: लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और मुझे बोलने का चांस दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बीके राज सिंह भाई जी, और दादी जी की स्मृति में भी उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और साथ ही साथ दादी जी की जो मूल बात, मूल संस्कार, जो भातृत्व भावना भाईचारे की, तो इस विषय को आपने स्पष्ट किया, बहुत सहज तरीके से आपने हमें समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
1: धन्यवाद आपको भी
0: जी। तो यहीं पर रुकना चाहेंगे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी। नमस्ते।
2: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
3: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
2: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
3: भैया गोलू?
2: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
4: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
3: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
5: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
7: ये ले तेरा के।
8: भैया मिठाई तो खा लो।
9: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
5: रक्षा बंधन पर्व है
10: भाई बहन के प्यार का,
5: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
11: बहन की रक्षा के वादे का,
5: खुशियों के त्योहार का,
12: रिश्तों की मिठास का,
5: परस्पर विश्वास का,
13: शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी।
5: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजर सारिका जी उपस्थित हैं। सारिका कुलकर्णी जी हमारे साथ नासिक से जुड़े हैं और काफी लंबे समय से आप एस्ट्रोलॉजी का सेवा दे रहे हैं लोगों को, और काफी अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं और प्रेडिक्शन लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उमंग उत्साह के साथ आपसे जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर एस्ट्रोलॉजी से क्या हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं, हमारा जीवन का सशक्तिकरण हो सकता है या हमारा लाइफ बेहतर हो सकता है, इन विषयों पर गहराई से बात करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के खास मेहमान सारिका जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सारिका जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप
5: जी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपके चैनल पे हमें बुलाया, और सर्वप्रथम तो आपको आपके 1000 एपिसोड होने के बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: जी जी शुक्रिया जी। सारिका जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपके बारे में काफी सुना था हमने और आज देख भी लिया आपको, और मैं चाहूंगा कि आपका क्या प्रोफेशन ही था कि या करियर ही आपने ऐसा चुना कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में ही काम करना है, या फिर ऐसा हुआ कि आप पढ़ाई करने के बाद ये चीजें फिर आपको लगा कि इसमें मैं कर सकती हूँ? एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, इस विज्ञान इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ, वो स्टोरी हम पहला सुनना चाहेंगे। जी सारिका
5: जी, विषय ऐसा था कि जब मैं 5th-6th standard में थी तो बहुत से लोग ज्योतिष के बारे में चर्चा वगैरह करते थे, टीवी पे भी आता था, मेरे घर में भी बहुत सारे सब लोग मानते थे उस चीज को, परंतु मैं थोड़ा कम मानती थी, मैं थोड़ा ये सारी चीजों को मानती नहीं थी। परंतु बहुत सारी बार जब मैं बाद में अंधश्रद्धा निर्मूलन जो होता है उसके अंदर भी मेरा अच्छा खासा उनको योगदान रहा है हमेशा, तो उनके साथ जुड़ने के बाद में मैं ये चीजें जो सोचती थी कि भाई किसी को माता आती है तो कैसे आती है, या फिर एस्ट्रोलॉजी है तो ऐसे कैसे पता चल जाता है, भविष्य कैसे पता चलता है, तो ये सारी चीजों की हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी। तो मैं जानना चाहती थी कि ये क्या है क्या नहीं, तो पढ़ाई करते करते उसको देखते देखते खुद ही उसमें चली गई और उसमें करियर बना लिया। बिकॉज जब उसको पढ़ाई किया, नजदीक से देखा पापा, तो समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है जो कि हम लोगों को पता नहीं चलता है और हम लोग तक सर्व नहीं हो पा रहा है।

0: सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, पर आपका आवाज नहीं आ रहा।
1: ओ सॉरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर, और जैसे आपने

0: देखी कि भाई एस्ट्रोलॉजी बचपन में आपको ठीक से मना ऐसे ही समझते थे आप भी जैसे कॉमन पब्लिक समझती है या मैं समझता हूँ। फिर बाद में आपको लगा कि नहीं इस पे काम करना चाहिए और फिर आपने सीरियसली उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग आज भी इन चीजों को देखते जरूर है, मानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं ये काम करता है और इसका टेक्निक या इसका जो विधि है वो इस तरह से है? जी
1: नहीं तो एक कंफ्यूजन जो लोगों का है वो मैं दूर करना चाहूंगी। बहुत बार
0: बिल्कुल,
1: मैंने ये देखा है कि लोग ज्योतिष को भविष्यवक्ता समझते हैं,
0: हाँ।
1: पर मैं बोलती हूँ कि ज्योतिष भविष्य नहीं बताता। ज्योतिष हमेशा आपको गाइडेंस देता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका पेट दुख रहा है या आपको चेस्ट पेन हो रहा है या बीपी की कोई तकलीफ होती है, उसके पहले जब चेस्ट पेन होता है या पसीना निकलता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद में बताता है कि भाई आपको ब्लड आपका मतलब इको करना पड़ेगा या फिर ईसीजी निकालना पड़ेगा। उससे वो आपको बताता है कि आपको
0: जी जी
1: बीपी का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो आप दवाई लेना शुरू करो वरना आपको हार्ट अटैक आएगा। पर वो ये
0: जी
1: तारीख कभी नहीं बताता कि हार्ट अटैक कब आएगा। ज्योतिष में हम लोग वही बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको ये फेस करनी पड़ेगी, और इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि उसकी तकलीफ उसकी गहराई कम महसूस हो। तो पहले तो जो भी
0: बिल्कुल
1: आपकी आपसे जुड़ी हुई ऑडियंस है उनको मैं बोलूंगी कि ये जो अंधश्रद्धा है कि भविष्य बता सकता है, ये मन में से निकाल दे। हाँ, हालांकि जब पहले के ऋषि मुनि वगैरह लोग थे, उन लोगों को इसमें डीप नॉलेज था, इसमें जो कैलकुलेशन उनका था वो बहुत डीप था। और जैसे हम लोग बोलते हैं नालंदा जब विद्यालय जल गई तो उसमें ये सारे डीप नॉलेज की बहुत सारी किताबें जल के खाक हो गई, ताकि अभी की प्रजाओं को या अभी जो भी ज्योतिष सीखते हैं उसमें बहुत मोस्टली ज्योतिष रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक्यूरेट भविष्य बता सके। तो
0: बिल्कुल
1: ये सिर्फ
0: बिल्कुल
1: गाइडेंस का शास्त्र है। आपने क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इसके हमेशा गाइडलाइंस रहता रहना चाहिए।
0: जी
1: तो
0: जी
1: मेरे मेरे जीवन में तो एक चीज ऐसी हुई कि जब मैं कैलकुलेशन इसका सीख रही थी, तो इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं कि वर्षफल, वर्षफल के उसमें फिर मासिक फल, मासिक से फिर साप्ताहिक फल, और साप्ताहिक से फिर दिन विशेष फल। तो मैं मेरे पिताजी की कुंडली के ऊपर जरा थोड़ा सर्च कर रही थी। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा कुंडली देख के कि भाई आज पप्पा का दिन अच्छा नहीं है, पिताजी का दिन अच्छा नहीं है। तो पिताजी को बोला, पिताजी आप आज मत जाइए बाहर क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो मेरे पिताजी भी थोड़े मान गए कि भाई बच्चे बोल रही है, जिद कर रही है तो नहीं जाते। मेरे ख्याल से तब मेरी उम्र में कुछ 6th 7th में थी, ज्यादा भी बड़ी नहीं थी। तो उस टाइम मेरे पिताजी ने मेरी सुन ली। सुनने के पश्चात वो बाहर गए नहीं, परंतु उस समय हमारा सेकंड फ्लोर पे घर था। तो सेकंड फ्लोर पे घर था तो जो कपड़ा था सेकंड फ्लोर पे मेरी माता जी सुखा रही थी, वो कपड़ा नीचे गिर गया। तो वो कपड़ा लेने के लिए मेरे पिताजी नीचे गए। जब नीचे
0: ओह
1: गए तो फर्स्ट फ्लोर से एक बच्चे ने एक स्टूल होता है ना लकड़ी का, वो खिड़की से नीचे
0: हाँ
1: फेंक दिया, और मेरे पिताजी जब कपड़ा उठाने के लिए नीचे झुके तो उनके सिर में लग गया। तो
0: हाँ
1: इसमें से एक चीज ध्यान में आती है कि कर्म का फल तो भोगना ही है, पर एक चीज हो सकती है कि उससे अगर 100% की हानि होने वाली हो तो आप उसको 30% 70% पे ला सकते हैं। वो आपको कर्म को अच्छे करके, मतलब आपको अगर नॉलेज मिल जाता है कि ये प्लेनेट की जगह से ये जगह पे जाने के बाद में आपको तकलीफ देने वाला है, तो उस प्लेनेट को अच्छा करने के लिए आप कुछ उपाय कर दें, तो ये जो होने वाली हानि है जो भी प्लेनेट की वजह से, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है।
0: जी
1: तो ये मेरे को उस दिन से पता चल गया। तो फिर मेरी रुचि इसमें बढ़ी और मैंने इसके अंदर फिर पढ़ाई पूरी की।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सारिका जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है एस्ट्रोलॉजी में। और इसके साथ में आपने बताया कि ये कोई भविष्य बताने वाला नहीं है, बाकी ये आपको गाइड करने वाला है, काउंसलिंग करने वाला है, ये आपने सही कहा। नहीं तो लोग मित्र यही समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर माना ज्योतिष वक्ता माना भविष्य बताएंगे हमारा, या भविष्य में हमें कुछ चमत्कारिक
1: नहीं,
0: चीजें बतानी
1: मैं
0: उसके
1: भी बहुत
0: बारे
1: सारे
0: में।
1: प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो चीफ गेस्ट के तरीके से बुलाते हैं, तो अनाउंसमेंट वही करता है कि इनको बुला रहे हैं, ये है और ये भविष्य वक्ता है। फिर मैं जाके माइक पे पहला वाक्य ये बोलती हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। तो ये जो समाज में एक भ्रम है उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक छवि बहुत सुंदर छवि है जिसको बहुत सारे लोगों ने खराब भी की है, और कुछ ऐसी चीजों की वजह से और खराब भी हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इसको ठीक से समझ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुंबई से कुसुम जी भी जुड़ गई हैं। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजर सारिका जी के लिए, मैं चाहूंगा कि सारिका कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, नासिक से आप जुड़े हैं और काफी लंबे समय से, हमारा बचपन से ही समझो 8-10 साल की उम्र से ही आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू की, पढ़ना शुरू किया और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी लोगों को इन्होंने मदद की है। तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा संगीत के साथ सारिका जी का स्वागत किया जाए, फिर उसके बाद सवाल तो है आपके पास, बाद में बमबारिंग करना सवालों
1: बिल्कुल बमबारी तो नहीं करनी है, कुछ ऐसे सवाल जो सही जानते हैं उन्होंने जो बताया। अच्छा, जैसे आज हैप्पी होली टू एवरीवन। जैसे
0: जी
1: आज तो सारी जगह होली का मस्त माहौल चल रहा है, तो वहां पे
0: जी
1: राधा
0: जी जी
1: कृष्ण का ही एक ऐसे गाना मुझे याद आता है, कोशिश करती हूँ।
0: जी बिल्कुल।

0: कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
1: बहुत
0: बहुत बहुत।
1: बढ़िया।
0: आइए आगे बढ़ते हैं। और चलिए कुसुम जी थोड़ा वेट कीजिए, फिर सवाल पूछिएगा।
1: जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा सारिका जी, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसा टिप्स हमको मिल जाएगा जिससे मेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा। कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मेरा भविष्य जो है अच्छा हो जाए या उसके लिए कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, ऐसे भी रहते हैं। तो क्या उनका ये भाव लेके आपके पास आना सही है या उसको आप सही कैसे करेंगे?
1: अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मेरा ये मानना रहा है हमेशा कि एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, वो एक डॉक्टर की तरह ही काम करता है, पर इतना ही है कि ये साइकोलॉजी से थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है।
0: जी जी
1: जैसे कि हमारे पास जब आदमी आता है तो ऐसे ही तो नहीं आ जाता, ये कोई टीवी मार्केटिंग से या इधर उधर से नहीं आता। एक फेथ रख के किसी को फर्क पड़ा हुआ है या किसी को उस पर मतलब जिसको हमारे से कोई फायदा हुआ है हुआ है, उसी के थ्रू आता है। तो एक तो पहले विश्वास की छवि लेके वो आता है, ठीक है, और विश्वास की

0: खराब हो जाती है, ज्यादा आदमी सोचने लग जाता है, शनि खराब हो या शनि की पनौती चल रही हो तो भी आदमी को इश्यूज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग उसको रेमेडीज देते हैं, तो अभी रेमेडीज क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे बीच में एक जन ने बोला था पीके वगैरह मूवी देखने के बाद में कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ा अपना दूध चढ़ा देने से क्या हल समस्या का हल हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। मुझे एक क्वेश्चन किया था जब मैंने बोला था कि सोमवार के दिन आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, तो उसके ऊपर से ये मुझे क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का मैंने जब मतलब मेरी तो पढ़ाई पहले से मैं साइंटिफिकली कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुझे युद्ध जोड़े ज्यादा से ज्यादा, तो युद्ध को जोड़ना है तो युद्ध को प्रूफ देना पड़ेगा, उसको बोल के नहीं
1: बिल्कुल
0: चलेगा। तो फिर मैंने पहले से पढ़ाई ऐसे ही की है कि मैं उसको अच्छे से जवाब दे पाऊँ। तो हमारा
1: बिल्कुल
0: जो आप अगर रेडियोलॉजी मैप अगर उठाएंगे, भारत का रेडियोलॉजी मैप उठाएंगे, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान है, उस सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान के ऊपर आपको रेडिएशन की मात्रा ज्यादा दिखेगी, क्योंकि शिवलिंग का जो आकार है ये रेडिएशन को ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। अब हमने दूध चढ़ाने के लिए बोला, आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए। अभी इस चीज को जब मैं बोलूंगी तो कोई हमारे धर्म के ही ऐसे होते हैं कि शायद इस चीज का विरोध करेंगे, पर मुझे स्ट्रेट बोलने की आदत है, किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रोटी ज्यादा खा ले। तो हमारे शास्त्र में श्रावण के महीने में दूध चढ़ाने का, रुद्राभिषेक करने का, शिव जी को दूध चढ़ाने का बोला है श्रावण के महीने में। अभी उसको सब लोगों ने रोज के रोज चढ़ा दिया, तो उसमें हमारी शास्त्र की गलती नहीं, लोगों की मेंटालिटी की और लोग जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसकी गलती है। श्रावण के महीने में दूध चढ़ाने को इसलिए बोला कि श्रावण के माह में, जब श्रावण का माह पड़ता है तो अगस्त में पड़ता है, मतलब जून जुलाई में जब बारिश शुरू हो जाती है, तो अगस्त जो है ये 2 से 2.5 महीने के करीब में आता है जो श्रावण चालू होता है। तो श्रावण के मास में जब शिवलिंग के दूध जो होता है, गाय जो होती है वो जब घास वगैरह खाती है, या फिर भैंस जो होती है वो घास वगैरह खाती है, तो कीटक उसके मुंह में जाता है। उस कीटक की वजह से उसका जो दूध होता है वो एक गैस को लेके उत्पन्न होता है। उस टाइम पे गैस्ट्रो नाम की जो बीमारी थी वो बहुत ही हावी रहती थी, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी गैस जिसको भी हो जाए वो चैन से बैठ नहीं सकता। तो ये सारी चीजों का क्या करें, तो ऋषि मुनियों ने सोचा। अभी मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम पे कभी गलती से एक आदि जो नई गाड़ी हो कोई गांव में आ जाए, तो गाड़ी के लाल उसकी जो लाइट्स रहती थी, वो लाइट्स को देख के भूत आया करके भागने वाले गांव वाले, वो अगर उनको साइंस सिखाने जाते तो वो साइंस सीखते नहीं, उनको उनको वो समझ के बाहर था, डर जाते थे। तो उसको भावनाओं से जोड़ा, क्योंकि अगर दूध नहीं निकालेंगे तो गाय और भैंसे बीमार पड़ जाएगी, अगर दूध खराब है बोल देंगे तो लोग गाय के भैंस में से, मतलब गाय या भैंस में से थनों में से दूध नहीं निकालेंगे तो गाय बीमार पड़ जाएगी। अब ये दूध निकालना कहाँ है, तो उसको आस्था के साथ जोड़ा। आस्था के साथ तो जोड़ा ही जोड़ा था, पर ऋषि मुनि को उतना नॉलेज था कि इसमें ऐसा ठंडा करने की जरूरत है। आपने समुद्र मंथन की कहानियां भी सुनी होगी कि शिव जी ने
1: जी
0: जहर पी लिया था, इसलिए उनको शेर को ठंडा करने के लिए उनके ऊपर चंद्रमा पहनाया गया वगैरह वगैरह। तो ये जो दूध है ये दूध शिव जी के ऊपर डालो, अभिषेक करो, मतलब दूध निकलेगा भी और शिवजी के ऊपर भी डाला जाएगा। अभी शिवजी के ऊपर जो भी डालने वाली चीज है, चाहे आप जल ले लो ठंडी तासीर, दूध ले लो ठंडी तासीर, फिर आप दतुरा ले लो ठंडी तासीर, भांग ले लो ठंडी तासीर, बेल का पत्ता ले लो ठंडी तासीर, मतलब जितना भी आप शिवजी के ऊपर आज तक चढ़ाने के लिए जो भी बोला गया है सब ठंडी तासीर का है। अब
1: जी
0: ठंडी तासीर का कारण क्या है, रेडिएशन का जो प्रमाण होता है उसकी ठंडी तासीर की जरूरत है रेडिएशन को। अगर आपको सबसे बड़ा अगर मैं प्रमाण दू, अगर आप मेरे बात पे कभी नहीं जाने, किसी के बात पे नहीं जानेगा, आप गूगल पे जाओ सर्च करो, तो अगर आपको सबसे बड़ा प्रमाण दू कि हाल ही में बना हुआ एक रिएक्टर जिसको भाभा रिएक्टर कहते हैं, वो शिवलिंग के आकार में बना है और उसको कंटिन्यू पानी में डिप करके रखा गया है, इसका कारण ही ये है। तो उसके ऊपर जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उस रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यू उसके ऊपर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ा, दूध नहीं, दूध तो सिर्फ श्रावण में चढ़ाना, या तो फिर आप भांग चढ़ाइए, बेल का पत्ता चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, तो उसी के लिए चढ़ाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें साइंस से जुड़ी हुई है। मैं तो मानती हूँ कि ताली बजाने से लेके मंदिर में परिक्रमा करने तक, फूल चढ़ाने से लेकर तो मंदिर में जाके मत्था टेकने तक, हर चीज के पीछे साइंस है, पर ये साइंस हमारे पास पहुंचा ही नहीं, और नहीं पहुंचा उसकी वजह से हमको पता ही नहीं चाहिए अब चला। तो ये सारी चीजों को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि साइंस उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था, तो उसके लिए वजह से अध्यात्म से के साथ जोड़ा गया कि तुम पुण्य करोगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुमको कोई ना कोई प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेमेडीज बनी हुई है सारी, जो रेमेडीज हम लोगों को देते हैं वो कोई ना कोई

0: ऐसा कर्म कराती है जिससे हम लोगों को आने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके।
1: जी जी
0: और इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ला, मतलब उसका सॉल्यूशन कर सकते हो 70-90%।
1: जी सारिका जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो किस भाव से आता है वो आप समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको बातें बताते हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ युवा आते हैं तो उनके अंदर सवाल होता है, तो उसका समाधान देना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने शिवलिंग पर पानी या दूध चढ़ाने के पीछे का जो वैज्ञानिक अर्थ है वो भी आपने बताया। तो अब आइए एक और बात आते हैं, जैसे कि हम लोग वस्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइए। जी
0: वास्तु शास्त्र जो है, जिस घर में हम लोग रहते हैं या फिर हम लोग कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर कोई लैंड खरीदना चाहते हैं या कोई जमीन, मतलब खेती बाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें वास्तु इफेक्ट करता है। अब वास्तु क्या है, तो बहुत सारे लोगों को वास्तु की पूजा तो कराते हैं पर वास्तु क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है ये पता नहीं होती। तो वास्तु ये जो चीज है, वास्तु पुरुष हम लोग जिसको बोलते हैं, आपने अगर किसी वास्तु पुरुष की मूर्ति देखी होगी तो वो उल्टी होती है, ऐसे चौकोर बना होता है और उसमें उल्टी होती है, ठीक है। तो जब शिव जी युद्ध कर रहे थे तो उनके पसीने में से जो बूंद गिरी उसमें से वास्तु पुरुष उत्पन्न हुए। अब वास्तु पुरुष जो उत्पन्न हुए वो, अभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई दैवी शक्ति का बेटा हो तो हम लोग कैसे उसको रखेंगे, चाचा भी बुलाएगा आ बेटा खाना खा, मामा भी बुलाएगा आ बेटा खाना खा, तो उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। तो बचपन में बहुत खाने की वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो उसकी भूख बढ़ती गई। अब बड़ा हो गया, ज्यादा भूख बढ़ गई तो लोगों ने उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए सब लोग, उसने क्या करना शुरू कर दिया कि आजू बाजू का जो घर था या पेड़ पौधे थे वो खाना शुरू कर दिया। अब ये खाते खाते सब लोग उससे परेशान हो गए, तो परेशान हो जाने के बाद में वो शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाने के बाद में शिव जी से प्रार्थना की कि आपका जो बेटा है ये हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, हमारे यहाँ पे सब मतलब घर खा लिए उसने, पेड़ पौधे खा लिए, ये मैं सब लोगों को भाषा समझे उस लैंग्वेज में कहानी बता रही हूँ। तो पेड़ पौधे खा लिए, हमारा घर वगैरह खा लिया, तो अभी क्या करने का। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने वास्तु पुरुष को बुलाया। तो वास्तु पुरुष ने, शिव जी पिता समान है इसलिए उन्होंने मत्था टेका। जैसे ही मत्था टेका, शिव जी बहुत क्रोध में थे तो उन्होंने उनका पैर जो था उनकी पीठ पे दे मारा, और उनकी पीठ पे देने की वजह से वास्तु पुरुष जमीन में अंदर समाए। तो जमीन के अंदर समाने के बाद में जब वास्तु पुरुष उठ के रोकर खड़े हुए कि पिताश्री मेरी ऐसी क्या गलती है कि जिसे मुझे ये दंड दिया जा रहा है और मुझ पे आप क्रोधित हो रहे हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सबने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, अब मेरी भूख बढ़ गई है तो मैं क्या करूं। तब पहले आपने सुना होगा कि श्राप देने के बाद में वो श्राप भी मिलता था अगर गलती का प्रायश्चित होता है तो उन्होंने, तब शिव जी ने उनको बोला कि आप को एक मैं वरदान देता हूं कि जिस समय भी कोई वास्तु करेगा या वास्तु लेगा उसमें आपकी पूजा होगी, अगर वह आपकी पूजा ना करे तो आप उसके घर को खा सकते हो। तो ये उसके पीछे की थोड़ी आध्यात्मिक कहानी है, इसकी वजह से वास्तु की पूजा की जाती है। और वास्तु की पूजा करते समय हम लोगों को ये हमेशा ध्यान करना चाहिए, मतलब कोई भी घर या प्लॉट लेते हैं तो वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। अब जिस समय शिव जी को वो पैर पड़ रहे थे, उस जहां पे सिर उनका टिका था उस जगह पे, जिस जगह पे शिव जी खड़े थे उसको ईशान्य, क्योंकि शिव जी का नाम है एक ईश, तो उसको ईशान्य नाम दिया गया, जिसको हम लोग मतलब नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का कोना रहता है उसको ईशान्य कोण बोलते हैं। तो ईशान्य कोण में शिव जी थे, इसलिए ईशान्य कोण में मंदिर, घर का जो मंदिर है वो ईशान्य में रखना चाहिए। उसका जो पेट था वो ब्रह्मस्थान हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं देता है, पिलर नहीं रखता है, तो इसलिए ऐसा, मतलब ये सारा फिर उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो जब बनाया गया तो इसके पीछे का साइंस क्या था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण में दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है। तो जब दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, इसका कारण है कि उत्तर अपना दक्षिण और पश्चिम की ओर से जो हवाएं आती है, जो हवा चलती है वो हमारे शरीर को फुगाती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। और जो पूर्व से और उत्तर से जो हवाएं आती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत स्वस्थ आदमी को रखती है, शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो इसकी वजह से दक्षिण और पश्चिम को पैक रखने को बोला।
1: बिल्कुल
0: और उत्तर और पूर्व को ओपन रखने को बोला, इसलिए दरवाजा जो है वो पूर्व में कर देने को बोला, खिड़कियां भी ज्यादा करके पूर्व और उत्तर में करने को बोल दी, मतलब ये सारी ऐसे चीजों की वजह से वो बनाया। तो ये जो बनाने की स्थिति है और प्लॉट देखने की स्थिति है या प्लॉट में पूजा करने की स्थिति है, इसको वास्तु में ये सारी चीजें वास्तु में आती है। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष ये चीज है कि जब हमारा जन्म होता है तो जो जन्म हमारा जिस टाइम पे जिस डेट में जिस स्थान पे हुआ है उसके अक्षांश और रेखांश को लेकर हम जिस स्थिति में, जैसे कि मेरा जन्म नासिक में हुआ है तो नासिक में जैसे अक्षांश और रेखांश की स्थिति को देखकर पृथ्वी के आसपास के जो ग्रह अंतरिक्ष में थे उस ग्रह की स्थिति ऋषि मुनि तभी बता देते थे। आज हम लोग ग्रहण 100 साल पहले ही बता चुके कब लगेगा, नासा सर्च करने के बाद बताती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन था। तो पूरे प्लेनेट्स कौन से एरिया में है उसको 12 राशियों में भाग किया गया, 12 ग्रहों में भाग किया गया और उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रिडिक्शन होता है। तो इसको होरोस्कोप जो होता है, मतलब कुंडली जो होती है, उसके ऊपर से ज्योतिष बताया जाता है और घर खेती या प्लॉट होता है उसके ऊपर से वास्तु बताया जाता है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वास्तु शास्त्र है क्या और कैसे इसको करना चाहिए और इसके ऊपर क्या क्या स्टोरीज बनी हुई है वो भी आपने बताया। चलिए आप कुसुम जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल पूछिएगा।
2: मेरे तो काफी हद तक सवाल के जवाब तो मिल ही चुके हैं, फिर भी मैं एक पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम कुंडली मिलाते हैं गोत्र ये सारी चीजें, तो
0: जी
2: क्या ये अभी भी इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं ये सारी चीजें कि दो, मतलब जैसे ये परिवार लड़का या लड़की का जो कुंडली मिलाई जाए, 36 गुण मिले या ऐसे कुछ, तो आज के जो जनरेशन के हिसाब से भी, या विच यू सेड कि साइंटिफिकली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, तो अभी उसमें भी कुछ एक साइंटिफिक रीजन है कि अभी भी उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अभी भी देखा है, इनफैक्ट मेरे घर पे होता ही है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में कहाँ गोत्र और वो सब देखते होंगे, मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब वो सब देखते होंगे क्या, बट कंपैटिबिलिटी एक लाइफ पार्टनर के साथ में हमारा जो वेव लेंथ है वो तो फिर भी उनका भी चलता ही है। लोग सोचते हैं कि 36 गुण मिले या ये सारी चीजें हो तो यू नो आई कैन मेक, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या
0: आपका आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो मैं उसका जवाब देना शुरू करूं।
2: मुझे वही
0: समझ गई, आजकल लव मैरिज भी होती है, लव मैरिज होती है, क्रिश्चियन मुस्लिम में कहां गुण मिलन किए जाते हैं, सारी चीजें, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको सनातनी आध्यात्मिक तरीके से लेने के बाद में साइंटिफिकली आती हूँ, ठीक है। तो गुण मिलन जो है, इसमें हम लोग जब दो व्यक्ति की गुण मिलाते हैं, ठीक है, तो गुण मिलन में सबसे पहले तो मैं लोगों से और इसमें और एक जागरूकता लाने की, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, ये इस क्वेश्चन में बहुत लोगों की जागरूकता कम है, इस क्वेश्चन की वजह से जागरूकता भी आ जाएगी और आपके साइंटिफिकली आपको जवाब भी मिल जाएगा। जागरूकता यह है कि लोग गुण मिलन करते हैं, मैं थोड़ा इसमें लोगों को इंटरप्ट करूंगी कि गुण मिलन सिर्फ ना करके वो कुंडली मिलन करे, ठीक है, ये एक मेरा लोगों से ये रहेगा कि गुण मिलन ना करके कुंडली मिलन करें। और आपका जो क्वेश्चन है मुझे बहुत पसंद आया ये भी, बिकॉज इसमें होता है कि बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो लोग तो गुण मिलन करते नहीं है तो फिर कैसे होता है। तो आप अगर देखेंगे तो संस्कृति जहां है, जहां पे भी संस्कृति बची है, सनातन धर्म बचा है, वहां पे रिश्तों की अहमियत है। आप क्रिश्चियन में ले लीजिए, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, आप मुस्लिम कम्युनिटी में ले लीजिए, रिश्तों को अहमियत नहीं है, खास करके हस्बैंड वाइफ का जो एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता है वो कम रहता है हम लोगों में। तो ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद आप लोगों का अलग भी हो उसमें। तो अभी इसमें आपको साइंटिफिकली क्या है ये बताने की कोशिश है। तो आप सबसे पहले अगर गुण मिलन में आते हैं तो गुण मिलन में सबसे पहली चीज आती है नाड़ी। नाड़ी दोष होता है तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि शादी मत करिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो साइंटिफिकली इसका ऐसा है कि नाड़ी जब एक हो और ब्लड, उनका जो नक्षत्र रहता है, नक्षत्र और उसके चरण होते हैं, तो नक्षत्र और चरण यदि एक होता है तो हम लोग उसको जीरो कर देते हैं, मतलब एक मार्क रहते हैं नाड़ी के, तो उसको जीरो कर देते हैं। उसका कारण यह है कि वो कुंडली मिल नहीं रही। अब इसके पीछे साइंटिफिकली रीजन क्या है, तो साइंटिफिकली रीजन ऐसा है कि नक्षत्र एक हो, चरण एक हो और नाड़ी एक हो तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप एक ही रहता है। और आप साइंटिफिकली देख लीजिए कि ब्लड ग्रुप एक ही जिसका होता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव नेगेटिव है तो उसका जो बेबी या तो होने में दिक्कत आती है, और यदि बेबी हो भी गया तो उस
1: नमस्कार, आप सुन रहे 90.4 FM, बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सारिका कुलकर्णी नासिक से जुड़ी है। शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है जिस वजह से वो बीच में उनका नेटवर्क कट गया है, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उनका। और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई कई चीज़ें जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो ज़रूर आप अपना नाम और वगैरह से जो है कमेंट सेशन में सवाल पूछिएगा ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। तब तक हम लोग कुसुम जी को एक काम देते हैं, एक और गीत सुनाएं बढ़िया सा।
2: आज तो वैसे भी नंदलाला मेरे सहन में ही चल रहे हैं सवेरे से।
1: अच्छा
2: वो वृंदावन में हो या मधुबन, मतलब सारी जगहों में खाली ऐसे दिमाग में खाली एक ही आता है कि राधा और कृष्ण ने जैसे होली खेली होगी ऐसी होली तो सभी जगह होनी चाहिए, तो उन्हीं को याद करते हुए।

0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया और हमारे सारिका जी वापस आई, वापस चले गए। शायद नेटवर्क का कुछ ज़्यादा ही इश्यू है उनके पास, और इंतज़ार करते हैं हम लोग।
1: मेरा प्रश्न
0: जी, आपका प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न का शायद उत्तर थोड़ा सा मिल गया, लेकिन अभी उत्तर आधा रह गया हमारे पास। एस्ट्रोलॉजी में हमारी जो साइंस है, साइंस के साथ साथ कुछ शक्तियां जुड़ी होती हैं, वो भी उनके पास जवाब रह गया मुझे पूछना था। मैंने सुना था कि भाई अगर शक्तियां और जो आपका क्या कहते हैं राशि, उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उससे जो चीजें बनेगी, ठीक से समझ जाएंगे कि आपकी ये शक्ति काम करती है इसके साथ में, तो आप उस शक्ति को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और मुश्किलें कम हो जाएंगी। चलिए, हम लोग एक और छोटा सा वीडियो हमारा बातें मुलाकातें का विशेष दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं मैडम को आने में, कितना टाइम लगते हैं।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, रेडियो मधुबन इस कम्युनिटी सर्विस शो में एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होता है बातें मुलाकात। दोस्तों इस कार्यक्रम का 1000वां शो होने जा रहा है। इस 1000वें शो की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने 1000 कई सुनने वालों को पूरे देश विदेश में जागरूक किया है, अपनी भावनाओं को जागरूक किया है। ऐसे ही करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, ओम शांति।
1: ओम शांति रमेश भाई जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वार्म विशेस फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1000 एपिसोड्स ऑफ फिर मुलाकातें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आल्सो टू सम ऑफ अस सिंगिंग टैलेंट टॉक शो एंड अदर शोस एज़ वेल। कुछ हुए चार महीने मैंने सोचा मौका भी है,
2: completing 1000 episodes. Best wishes to the entire
3: team.
4: ओम शांति। श्री रमेश भाई जी द्वारा संचालित बातें मुलाकात कार्यक्रम का 1000वां एपिसोड पूरा होने की खुशी में मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम डिग्निटीज को इनवाइट करते हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं जो बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक होते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रमेश भाई जी जल्द ही इसका 1000वां एपिसोड पूरा करें। धन्यवाद। ओम शांति।
5: चलिए बातें मुलाकातें कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैडम शायद मैसेज कर रही हैं कि मैं जुड़ रही हूँ। नेटवर्क इशू है थोड़ा उनके पास, तो कोई नहीं, हम लोग वेट करते हैं। और तब तक आइए कविता जी, कुसुम जी, आप मुंबई में रहते हैं और क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
6: मुंबई में मैं मुलुंड के यहाँ पर रहती हूँ। आई एम वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती हूँ मैं मोस्टली। तो मेरा काम ऐसे है कि 24/7 ही रहता है, कभी रात के 11-11 बजे तक है, हैव टू बी ऑन दैट वर्क। और इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, तो अभी ऐसे चल रहा है कि ऑडिट और ये सब चल रहा है। बाकी बिजी रहने का बहुत कुछ जरिया है, जैसे सिंगिंग मैं ज्यादा रुचि रखती हूँ, तो मेरा टाइम वैसे भी निकल जाता है रियाज करने में, और कुछ बच्चे हैं वो ऐसे ग्रूमिंग करते हैं, तो जैसे वीकेंड्स में जैसे टाइम मिल जाता है तो सारी चीजें भी हम करते हैं, और बाकी ऑफिस के और अपने सारे फैमिली सब कुछ। आज तो पूरा दिन तो होली का ही त्योहार मनाया गया, तो ऐसे बिजी रहते हैं काफी हद तक, तो चलता है।
5: जी
6: और बॉम्बे की लाइफ तो वैसे ही बिजी रहती है, लेकिन हाँ अब कुछ इतने चेंजेस आ गए हैं कि टाइम निकल जाता है। मतलब पहले थोड़ी टीवी देखने में टाइम निकाल लेते थे, सोचते थे कि भाई टीवी ही एक मनोरंजन का जरिया होगा, बट अब बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, कमिंग इन दिस बीकेज, मतलब ब्रह्म कुमारीज का जब से मैं कर रही हूँ, काफी टाइम खुद के लिए भी दे पा रही हूँ, मेडिटेशन के लिए, मुरली ये सब सुनना, मतलब अब पता चलता है कि टाइम ये बिजी बोलने से बेटर है कि बोलो वी आर इजी, ये ज्यादा बेटर होगा। तो वो मेरे लिए लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ है कि टाइम मिलता है, मैं रियाज कर रही हूँ, म्यूजिक पे टाइम दे रही हूँ, अपने आप पे भी बहुत सारी ग्रूमिंग करना होता है, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, तो वो भी हो जा रही है। तो आई कुड मेक आउट की एक्सक्यूजेस अब नहीं दे पाती हूँ कि अरे टाइम नहीं है। तो लाइफ कैसे चेंज किया जा सकता है ये अब पता चलने लगा, मतलब होने लगा काफी हद तक। तो ऑफिस को भी उतना
5: बिल्कुल
6: टाइम दे पा रहे हैं, फिनेंशियली भी स्टेबल कैसे रहना है, प्लानिंग कैसे करनी है, आगे का कैसे करना है, लॉट ऑफ थिंग्स कम ऑन ट्रैक होते जा रहा। तो वही ये चीजें एक एक समय के पहले सिर्फ टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूजेस में हम रुक जाते थे, अपने आप को रोक लेते थे कि नहीं बस ऑफिस ही जाना है, बाकी सारी चीजें में कहाँ ना टाइम बॉम्बे में लाइफ में ऐसे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है ना, बॉम्बे की लाइफ में ना कहीं और की लाइफ में, बस टाइम कैसे मैनेज करना है, पीपल मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये थोड़ा अगर हम डिसिप्लिन रख के करें तो बहुत हद तक हो सकता है। कई बार हम इग्नोर कर लेते हैं, हेल्थ भी इग्नोर कर लेते हैं, तो डाइट पे भी बहुत फर्क पड़ने लगा है, टाइमली खाना पीना, तो लाइफ हैज टोटली चेंज। आई कैन थिंक एंड आई कैन ऑब्जर्व माई सेल्फ, तो अच्छा लगता है, इनर इनर पीस आने लगी है, ऐसे हो गया। तो अब मैं वो नहीं कहती कि बॉम्बे की लाइफ हेक्टिक है या स्ट्रेसफुल है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ, गुड गुड।
5: चलिए, आपके लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं, काफी इम्प्रूवमेंट्स भी आए हैं, ये आपने बताया। और जब से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं तो एक लाइफ का विजन बन गया है। पहला आपका समय जो है टीवी टीवी के साथ आप काफी जुड़ा करते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है, आपके पास समय मिलता है और समय कम भी पड़ जाता है। चलिए सारिका जी, बैक टू शो बातें
6: थोड़ा शायद
5: मुलाकातें कार्यक्रम
6: टेक्निकल
5: में
6: इश्यूज हो
5: आपके।
6: गए थे। हाँ
5: जी, हाँ जी सारिका जी, बताइए। हम लोग थे, खास कुंडली वाली बात चल रही थी और उसमें आप कुछ
6: जी,
5: बात
6: शायद
5: थी।
6: अभी बीच में कहाँ रुका ये भी मुझे नहीं मालूम, पर मैं साइंटिफिकली इनको बता रही थी कि
5: तो आप
6: जहाँ
5: इसमें
6: नाड़ी दोष
5: बताएं
6: होता है।
5: कि हिंदू धर्म में या ये जो पंचांग वगैरह देखा जाता है, गुण मिलाए जाते हैं,
6: अच्छा वहाँ
5: और
6: वहाँ तक
5: इसके
6: चलते हैं।
5: अलावा पहुंचे।
6: तो इसमें कैसा है कि नाड़ी दोष जो होता है, तो नाड़ी दोष जब निकलता है वो 8 पॉइंट का रहता है, 8 आउट ऑफ जब 0 निकलता है, मतलब दोनों की एक नाड़ है, दोनों की आद्य आद्य या तो मध्य मध्य है, ऐसे दो नाड़ होती है, तो जिसकी सिमिलर नाड़ आती है उनको हम लोग ना बोलते हैं शादी करने के लिए। उसमें भी दो तीन रीजन होते हैं कि अगर उनका नक्षत्र एक हो, राशि एक हो, चरण एक हो, तो हम लोग ना बोलते हैं। तो नाड़ी, नक्षत्र और चरण, ये जब सेम होते हैं तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है, और जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम आता है तो बेबी जब हम लोग मतलब बच्चा जब होता है तो बच्चा या तो होने में दिक्कत आती है, हार्मोनल इनबैलेंसिंग बहुत हो जाती है लड़की में, और उसकी वजह से बच्चा होने में दिक्कत आती है, अदरवाइज अगर बच्चा हो भी जाता है तो उसको ब्लड रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये चीज को भी आपको मापना हो तो आप किसी डॉक्टर से या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि माता पिता का दोनों का ब्लड अगर सेम हो तो उसका क्या मतलब
3: आउटपुट क्या होगा करके, तो ये उसका साइंटिफिकल रीजन है. सेकेंड, उसमें मन कितने मिलेंगे एक दूसरे के साथ में, हम लोग कितना एक दूसरे को मैच कर पाते हैं, ये सारी चीजों का भी पढ़ाई किया गया है. अब ये सारी चीजों को जब मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, 8 पॉइंट्स का टॉपिक होता है. तो इसमें एक प्रेम होता है जिसको भ्रुकुट बोला जाता है, वो 7% का होता है. अगर वो दोनों के अगर मैच नहीं होते हैं तो दोनों में एक दूसरे में बनेगी नहीं, उनका मेंटली स्तर बहुत ऊपर नीचे रहेगा. अगर राक्षस और देवगण रहेगा तो जो अगर मतलब जो भी राक्षसगण का हो वो मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, वो सामने वाले को मतलब उसको डोमिनेशन सहन नहीं होगा, वो विरोध करेगा. ये सारी चीजें हैं उसके ऊपर, बहुत बहुत बड़ा चीज है. पर ये एक साइंटिफिकल, अगर मैं आपको विद प्रूफ अगर आपको सर्च करना है तो आप ये नाड़ी का सर्च कर सकते
5: हैं.
3: एक ये एक चीज से आपको सारा क्राइटेरिया क्लियर हो सकता है.
5: बिल्कुल बिल्कुल.
3: आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, अदरवाइज कुछ इसमें रह गया हो तो आप वो भी पूछ लीजिए मुझे.
6: कम से कम इतना तो पता चला कि क्यों मैच करवाते हैं कुंडली, जैसे अपने नाड़ी की
3: बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैच होना. क्योंकि अगर हमको कोई साइंस अगर पता हो, अगर आपने अभी सुना होगा तो एक डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट होती है, जो हमारे हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी माँ के गर्भ में हमारी फिंगर की प्रिंट्स और हमारा दिमाग ये साथ में मतलब बनता है. इसलिए हमारा हाथों की 10 उंगलियां और दिमाग के 10 पार्ट है, और मेन 2 पार्ट है दिमाग के, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन. इसलिए हमारे 2 हाथ है, ठीक है. तो ये लेफ्ट हैंड जो है ये राइट ब्रेन को डिटेक्ट करता है, और राइट हैंड जो है ये लेफ्ट ब्रेन को डिटेक्ट करता है. तो जैसे उसमें भी मैचिंग निकाली जा सकती है, उसी हिसाब से उस टाइम पे वैदिक पद्धति से वैदिक मैथ से मैचिंग निकाली जाती थी.
5: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे गुण मैच क्यों होना चाहिए, ये भी आपने बता दिया, और इसका इम्पोर्टेंस कितना है वो भी आपने बताया. तो चलिए, मैं चाहूँगा कि अब सिंपली हमारा लाइफ में समझो, अभी चलिए शादी भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फैमिली में है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या फैमिली का एक व्यक्ति को देखना जरूरी है, या सबके कुंडली को देखने के बाद फिर आप बताएंगे कैसा?
3: अगर जुड़वा भी बच्चा पैदा होता है और उनमें 1 मिनट का भी यदि अंतर है तो भी दोनों की अलग अलग देखी जाएगी. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा गणित है कि जिसमें 3 या 5 सेकंड या एक आधा मिनट का भी अगर गैप हो जाए तो भी कुंडली चेंज हो जाती है या प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है. और हर एक की अपनी अपनी लाइफ के लिए अपना अपना प्रिडिक्शन करवाना चाहिए.
5: जी जी. एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग बेहतर जीवन के लिए आते हैं तो किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और कैसे हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं एस्ट्रोलॉजर के गाइडलाइन से?
3: एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे पार्ट है. अगर हम लोगों को क्वेश्चन ही देखे जाए कि एस्ट्रोलॉजर को कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट सुनाऊंगी तो आपको हंसी आ जाएगी. जब बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने के लिए हमें पूछा जाता है, ठीक है. फिर बच्चा रोता नहीं तो हमें रोता है तो पूछते हैं, फिर दूध नहीं पीता है तो पूछते हैं, फिर बड़ा थोड़ा हो जाता है तो पढ़ाई नहीं करता इसलिए पूछते हैं, फिर टेंथ आती है, टेंथ के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उसके लिए पूछते हैं, टेंथ का सब्जेक्ट मिल जाता है तो जॉब करना चाहिए बिजनेस करना चाहिए उसके लिए पूछते हैं, जॉब बिजनेस में पता चल जाए तो शादी कब होगी इसके लिए पूछते हैं, शादी हो जाए तो उसके बाद में बच्चे कब होंगे इसके लिए पूछते हैं, और फिर वापस पहले जैसा था वैसे ही. तो क्वेश्चन तो बहुत सारे लाइफ में आते हैं, ठीक है. पर आपका जो मेन क्वेश्चन था कि इसमें हम लोग अगर जीवन को सुधारना है तो क्या करना चाहिए, तो मेरा जितना स्टडी है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी मतलब जितना पढ़ाई करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु, ये 2 चीजों को हमने लाइफ में सुधारना चाहिए थोड़ा बहुत क्यों ना हो. साथ ही साथ में हम लोग जो है एक चीज बनाते हैं जो अपने अपने अंदर से जो सबकॉन्शियस माइंड से या अपने अपने अंदर से आती है, जो चीज को हम आग बंद करके भी करते हैं, हमारी साइंस, तो ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर एनालिसिस भी कहा जाता है.
5: जी जी.
3: तो ये भी हमारे लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि साइन ये कोई आपको सिखाता नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपको क्रिएटिव करता है. तो साइन के ऊपर से भी हम बताते हैं कि साइन में क्या दिक्कत है, ये साइन आपको ग्रोथ कराएगी, ये साइन ग्रोथ नहीं करेगी. इवन नंबर, जिसको हम लोग न्यूमरोलॉजी कहते हैं, हमारा अंक शास्त्र जिसको कहते हैं, तो नंबर जो होता है, बंदा जब भी पैदा होता है वो नंबर को लेके ही पैदा होता है. जैसे कि जन्म तारीख, जन्म तारीख में नंबर्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद में हमको आइडेंटिफाई जो भी मिलते हैं, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजों पे नंबर होता है, पर वो हम लोग को ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं करते क्योंकि वो कंटिन्यूटी में हमारे हमारा उसके ऊपर से हमको पहचाना नहीं जाता, पर हमको एक चीज के ऊपर से पहचाना जाता है, सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करता है वो हमारा है मोबाइल, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम है और ये मोबाइल आपको क्या प्रॉब्लम दे सकता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट से भी आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा एक आता है हम लोग जैसे वास्तु हो गया, ज्योतिष हो गया, अंकशास्त्र हो गया और सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, और ये सारी चीजों को भी हम लोग अगर बाजू में रख देते तो अध्यात्म से हम लोग मेडिटेशन करके या अध्यात्म से जुड़ के आध्यात्मिक जो भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी प्रवृत्तियां करके भी हम इसमें से समस्या का समाधान पा सकते हैं।
5: जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और कई लोग जो है ना ज्योतिष शास्त्र को अपना डेट और टाइम बता देते हैं तो उससे वो फिर प्रिडिक्ट करके कुछ बातें बता देते हैं, तो क्या ये भी सही है या इसको कुछ और तरीके से भी लेना चाहिए?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है, क्योंकि पहले जो होता था पंचांग में से निकाल के हम लोग कुंडली बनाते थे जिसको हस्तलिखित कुंडली बताई जाती है, पर हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको सॉफ्टवेयर में भी रूपांतर कर लिया है, तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ नाम नंबर और डेट, मतलब डेट और टाइमिंग डालने से जो कुंडली को हमको बनाने में देर लगती थी वो इजी टू यूज हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर के लिए उसको कुंडली देने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ डेट और टाइम बता देता है तो भी हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
5: चलिए कुसुम जी, कुछ पूछना हो तो आपके पास अभी टाइम है, एक आध सवाल पूछिए।
3: बहुत सोचना पड़ रहा है कुसुम जी को।
5: सोच के मत सवाल पूछिए।
6: मेरा वही एक प्रश्न वही था, जैसे कुंडली सब वो जो ज्योतिष एक बार कोई बता दे कि एस्ट्रोलॉजर है तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि मेरे बारे में कोई कुछ बता दे आगे क्या होने वाला
3: है। अभी अभी सी अभी अभी आप आपका जो आप जो हो बराबर, अभी आपका अगर नॉर्मली प्रिडिक्शन करना है फेस, अगर हम लोग फेस को ले लेते हैं तो एक ये भी है, इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं अध्यात्म में, ठीक है, और सामुद्रिक शास्त्र को आज के युग में, मतलब आज के युग मतलब सारी जनरेशन फेस रीडिंग बोलती है, ठीक है। तो फेस रीडिंग में क्या होता है, ये माप होता है, ये चार उंगली का है, ये तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट नाक तक और ये तीसरा पार्ट। अभी इस पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तभी आप जो है आपका आपका अगर आपका नाम क्या है, कुसुम जी, राइट, मिथुन राशि, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका ये अगर जो भी आपने मोबाइल शायद नीचे से भी पकड़ा हो, फिर भी आपका जो भी ये पार्ट है या फिर ये पार्ट है इस
5: जी
6: आपको थोड़ा सा
5: हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी, बोलिए आप, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सारिका जी। शायद थोड़ी सी कुछ फोन या नेटवर्क इश्यू है। आप बोलिए अभी,
7: आवाज नहीं
5: है। हाँ अभी आ रही है थोड़ा। हाँ जी, अभी बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। कोई नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप वापस एक बार जो है कल भी जुड़ जाएं हमारे साथ में, फिर हम लोग आपसे और जानकारी ले लेंगे, ठीक है। सारिका जी, अगर आपसे जुड़ना चाहे, कोई नंबर देना चाहे तो आप नंबर टाइप कर सकते हैं YouTube में, आप टाइप कर दीजिएगा बाद में। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और सारिका जी ने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और भी इन्फॉर्मेशन हम उनसे ले सकते हैं, अगली बार मिलेंगे तो जरूर उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। कुसुम जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद।
7: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है आज मैं आपसे मिलने आ ही रहा था कि अरे ये सुमी भागी भागी कहाँ जा रही है, चलो हम भी देखें।
1: मीना मीना, मेरे बाबूजी शहर गए थे ना, वहाँ से वो एक नया रेडियो लाए हैं।
2: अरे वाह सुमी, और पता है हमारा मनपसंद कार्यक्रम मस्ती की पाठशाला अब से शाम को 5:30 के बजाय 7 बजे रेडियो पर आएगा। इसका मतलब हम खेलने के बाद आराम से उसे सुन सकते हैं।
1: मीना क्यों ना कल से हम सब दोस्त साथ में ये कार्यक्रम सुने, कितना मजा आएगा।
3: कितना मजा आएगा, मिट्टू भी गाएगा।
0: सुमी ने मीना, बालूशाही, रानू और सुनील को ठीक 7 बजे अपने घर आने के लिए कहा। शाम को ठीक 7 बजे मीना, सुनील, रानू और सुमी ने मिलकर सुमी के नए रेडियो पर अपना मनपसंद कार्यक्रम सुना। लेकिन ये बालूशाही कहाँ रह गया था?
4: दोस्तों आप सुन रहे थे मस्ती की पाठशाला, उम्मीद है आपको मजा आया होगा।
5: अरे वो देखो, बालूशाही आ गया।
6: कार्यक्रम शुरू हो गया क्या?
5: शुरू नहीं बालूशाही, कार्यक्रम तो खत्म भी हो गया।
6: खत्म हो गया?
1: हाँ, कार्यक्रम का समय तो 7 बजे का था और अब 7:30 बज रहे हैं। तुम कहाँ रह गए थे?
6: वो मैं।
2: कोई बात नहीं बालूशाही, तुम कल हमारे साथ ये कार्यक्रम फिर सुन लेना।
6: ठीक है मीना।
5: एक मिनट बालूशाही, मेरे पास ये लट्टू है, चलो थोड़ी देर इसके साथ खेलते हैं।
6: ठीक है सुनील।
5: ये मैंने रस्सी को लपेटा और ये घुमा मेरा लट्टू।
1: मीना सुनील ध्यान से देखो, बालूशाही के हाथ में जो टॉर्च है उसकी रोशनी घूमते लट्टू पर पड़ रही है, बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी हमारी घूमती हुई पृथ्वी पर पड़ती है।
2: हाँ सुमी, और घूमते लट्टू की एक तरफ टॉर्च की रोशनी पड़ रही है यानी दिन, और दूसरी तरफ रोशनी नहीं है मतलब रात। बिल्कुल इसी तरह घूमती पृथ्वी के जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ होता है दिन, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात।
6: ये तो सचमुच कमाल है, मुझे तो ये सब पहले पता ही नहीं था।
0: अगले दिन क्लास में।
7: बालूशाही तुम भी तो कल सुमी के घर गए थे कार्यक्रम सुनने, अब तुम कुछ बताओ।
6: वो बहन जी, कल मैं सुमी के घर देर से पहुँचा और तब तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था।
7: ओ तो ये बात है।
6: लेकिन बहन जी, कल मीना और सुमी ने लट्टू और टॉर्च के खेल से मुझे ये बताया कि धरती पर दिन और रात कैसे होते हैं।
7: शाबाश, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने दोस्तों से एक नई बात सीखी।
0: और उसी दिन शाम को।
2: बालूशाही तुम इस समय सुमी के घर के बाहर क्या कर रहे हो?
6: मीना कल तो मैं देर से आया था, लेकिन आज तुमने, सुनील और रानू ने देर कर दी है, सुमी भी घर पर नहीं है।
2: मगर कार्यक्रम तो 7 बजे शुरू होता है।
6: हाँ मीना, 7 ही तो बजे।
2: 7 बजे, ये कैसे हो सकता है? अभी 10 मिनट पहले मैंने लाला जी की दुकान पर समय देखा था तो 6 बज रहे थे। बालूशाही अभी 7 नहीं बजे है, आज तुम जल्दी आ गए हो।
6: नहीं मीना, 7 बज गए हैं।
2: चलो एक काम करते हैं, सुमी के घर में जो घड़ी है उसी से पता करते हैं कि क्या समय हो रहा है।
6: ठीक है।
2: ये देखो बालूशाही, घड़ी में 6:15 बज रहे हैं, है ना?
6: दरअसल मीना, मुझे घड़ी से समय देखना नहीं आता। बहुत पहले बहन जी ने क्लास में घड़ी से समय देखना सिखाया तो था, पर तब मुझे समझ नहीं आया और मैंने उनसे दोबारा पूछा भी नहीं। अब मैं कभी समय नहीं बता पाऊंगा।
2: इस तरह उदास मत हो बालूशाही, कुछ ही देर में सुमी, रानू और सुनील भी आने वाले हैं। हम सब मिलकर तुम्हें सिखाएंगे कि घड़ी देखकर समय कैसे बताया जाता है।
0: और फिर जब रानू और सुनील के साथ सुमी अपने घर पहुँची तो।
1: मीना तुम कविता शुरू करो।
2: ठीक है सुमी, ध्यान से सुनना बालूशाही। ध्यान से देखो इस घड़ी को और पते की जानो बात, 12 अंक है इसके ऊपर और घूमते हैं 2 हाथ।
5: हाथ जो लंबा मिनट बताए, 60 मिनट का चक्र बनाए, घंटे बताए छोटा हाथ, सुबह शाम हो या दिन हो रात।
1: छोटा हाथ जो 4 पे थमता, लंबा हाथ टिका बारा पर। तो समय बताना मेरे यार।
8: घड़ी में बज गए पूरे चार।
2: छोटे हाथ ने छुआ जो दो को, लंबे हाथ ने पकड़ा तीन। कौन है समय बताएगा जो?
8: समय हुआ है सवा दो।
5: छोटा हाथ अब ठहरा आठ पर और लंबा हाथ पहुंचा है छह पर। तो क्या बतलाए समय का पाठ?
8: घड़ी में बज गए साढ़े आठ।
6: समझ गया, जैसे इस समय घड़ी का छोटा हाथ है छह से थोड़ा सा आगे और लंबा हाथ छह पर, इसका मतलब समय हुआ है साढ़े छह, है ना?
2: हाँ बालूशाही, तुम तो इतनी जल्दी सीख भी गए।
6: हाँ मीना, अब मुझे समझ में आ गया है कि घड़ी से समय कैसे देखा जाता है। अब से मैं भी हर जगह सही समय पर पहुँच जाऊँगा।
0: भाई वाह, आज तो बालूशाही ने समय देखना भी सीख लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम भी सुना और फिर अगले दिन क्लास में।
6: कल का कार्यक्रम सचमुच बहुत मजेदार था बहन जी।
7: अच्छा, इसका मतलब कल तुम सही समय पे पहुंच गए होगे, है ना बालूशाही?
6: जी बहन जी, वो
7: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है?
6: पिछली बार मैं देर से इसलिए पहुंचा था क्योंकि मुझे घड़ी से समय देखना नहीं आता था और मुझे क्लास में सबके सामने आपसे पूछने में भी शर्म आती थी। पर कल मीना, सुमी, सुनील और रोशनी ने मुझे एक कविता सुनाकर समय देखना सिखाया और अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।
7: बालूशाही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने दोस्तों से कुछ सीखा जो तुम्हें नहीं आता था। बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने टीचर या अपने बड़ों से ही सीख सकते हैं, बल्कि हम अपने दोस्तों और हम उम्र लोगों से भी बहुत सी बातें सीख सकते हैं।
6: हाँ बहन जी, अब तो मैं भी ये सब अपने छोटे भाई बहनों को सिखाऊंगा।
3: भाई बहनों को सिखाऊंगा, मिट्ठू को भी बताऊंगा।
0: भाई वाह, बालूशाही ने तो सचमुच अपने दोस्तों से कुछ नया सीखा और अब हर जगह बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच जाता है। चलो देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
3: बड़े सिखाते ज्ञान की बातें, हमें दिखाते राह सही।
1: मगर दोस्त भी सिखला सकते हमको बातें नई नई।
0: क्या खूब कविता लिखी है इन दोनों ने। अब समय है एक सुरीले गीत का।

0: अरे ये क्या, आप सब भी साथ में गा रहे थे गाना जो इतना मजेदार था। चलो अब देखते हैं कि मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं।
1: बच्चों आज का खेल है कुछ अनोखा, भेद खोलना है हमें उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम्हें चार प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताऊंगी, तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा नाम बाकी तीनों से अलग है और क्यों। तो शुरू करें।
2: जी बहन जी।
1: उन चार व्यक्तियों के नाम हैं अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, राजीव गांधी और इंदर कुमार गुजराल।
3: बहन जी मुझे लगता है कि सही जवाब है श्री इंदर कुमार गुजराल, क्योंकि उनका नाम ई से शुरू होता है जबकि बाकी सभी नाम अ से शुरू होते हैं।
1: अच्छा दीपू, क्या श्री राजीव गांधी का नाम भी अ से शुरू होता है?
4: ओ ये नाम तो मैं भूल ही गया बहन जी।
1: बच्चों अगर तुम सब ध्यान से सोचोगे तो जरूर इसका उत्तर बता पाओगे।
5: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है श्री APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि श्री राजीव गांधी, श्री इंदर कुमार गुजराल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये तीनों ही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।
1: बिल्कुल सही जवाब रोशनी। तो मजा आया बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: लगता है आप सबको भी खूब मजा आया। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी दोस्त मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, सातवां पाठ, जगमग जगमग, पृष्ठ 69। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने एक साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जंगल के जानवर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है सालगिरह मुबारक। उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मजेदार चीज खीर बनाई जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते, कूदते फांदते और रेंगते हुए। पृष्ठ 70। यहां पर एक चित्र है जहां पर जंगल के जानवर दिखाए गए हैं और साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है तुम जियो हजारों साल, बन्नी और बन्नो। हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। जिराफ रिक्त स्थान लीटर खीर पी रहा है। गाय रिक्त स्थान लीटर खीर पी रही है। फिर गिलहरी आई, उसने कहा
1: मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए।
0: गधे ने पूछा
2: 500 मिलीलीटर खीर, क्या ये 1 लीटर से ज्यादा नहीं है?
0: लोमड़ी ने कहा
3: गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर।
0: पृष्ठ 71। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा
1: ओह, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए।

0: यहाँ पर मेंढक और उसके 9 दोस्तों का चित्र बना है।
1: म्याऊ, म्याऊ। अच्छा, ये रही तुम्हारी खीर,
0: बिल्ली ने कहा, जो सबको खीर परोस रही थी। उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर यानी ml खीर डाली। यहाँ पर बिल्ली को गिलासों में खीर डालते हुए दिखाया गया है। गधे ने हैरान होकर पूछा,
2: डेचू,
3: हर गिलास में 100 मिलीलीटर, ये कितना हुआ?
0: लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वो बोली,
1: आहा, ये तो बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर यानी ml, मतलब रिक्त स्थान मिलीलीटर यानी ml बराबर रिक्त स्थान लीटर।
0: अब तुम लिखो, 10 गुणा 100 मिलीलीटर बराबर रिक्त स्थान।
3: देखो, यहां एक चींटियों का दल चला आ रहा है, टिड्डा बोला।
1: म्याऊ, म्याऊ। खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें?
0: बिल्ली उदास होकर बोली।
3: टिड्डा बोला, क्या हमें देर हो गई?
0: पृष्ठ 72।
4: चिंता मत करो, वो ज्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगा।
0: हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों के आंसू पोंछता हुआ बोला। हाथी ने पूछा,
4: तुम सब कितने हो?
0: चींटियों ने एक साथ कहा,
1: हम सिर्फ 1000 हैं।
0: बिल्ली बोली,
1: म्याऊ। क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी।
0: कुछ सोचकर हाथी ने कहा,
4: चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा।
0: हर चींटी 1 मिलीलीटर यानी ml खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियां खीर पिएंगी। 1000 गुणा 1 ml बराबर रिक्त स्थान ml।
1: ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए,
0: गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली, सब खुश थे। अब वो शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। यहां पर सबसे नीचे जंगल के जानवरों का चित्र है, जो खुशी में नाच रहे हैं। पृष्ठ 73। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? तुम कितनी खीर खा सकते हो? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? यहां पर एक लड़की और एक लड़के का चित्र है। लड़की कहती है,
1: मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूं।
0: लड़के ने कहा,
1: मैं 400 ml पानी पी सकता हूं।
0: इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे एक गधे का चित्र बना है। यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। यहां पर एक चार्ट बना है। अब तुम इस चार्ट को खुद पूरा करो। यहां पर एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में 3 पट्टियां बनी हैं, एक लेटी हुई पट्टी, दूसरी खड़ी हुई पट्टी और तीसरी तिरछी पट्टी यानी बाएं से दाएं तरफ जाती हुई पट्टी। अब हम इन पट्टियों को अलग अलग पढ़ते हैं और तुम इनमें दिए गए खाली स्थानों को पूरा करो। लेटी हुई पट्टी, बाएं से दाएं तरफ, रिक्त स्थान ml जमा 200 ml बराबर 1 लीटर। लेटी हुई पट्टी में अब हम दाएं से बाएं तरफ चलते हैं, 500 ml जमा 500 ml बराबर 1 लीटर। अब हम खड़ी पट्टी को देखेंगे। खड़ी पट्टी में सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं, रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML जमा 100 ML बराबर 1 लीटर। अब हम खड़ी पट्टी में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML जमा 250 ML बराबर 1 लीटर। अब हम तिरछी पट्टी को देखते हैं। तिरछी पट्टी पहले बाएं से दाएं तरफ जाती हुई। रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML बराबर 1 लीटर। अब हम तिरछी पट्टी में दाएं से बाईं तरफ चलेंगे। रिक्त स्थान ML जमा रिक्त स्थान ML बराबर 1 लीटर। पृष्ठ 74। आसपास देखो, इन चित्रों को देखो। ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। यहां पर एक तालिका है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है पैकेट और दूसरे में लिखा है कितना है लीटर या मिलीलीटर यानी ML में। इस तालिका के इर्द गिर्द कुछ चित्र भी बने हैं। इस तालिका का पहला कॉलम हम भरते हैं, उसके बाद बाकी कॉलम तुम भरो। पैकेट दूध कितना है लीटर या मिलीलीटर यानी ML में? 500 ML। अब बाकी खाने तुम खुद भरो। मेरी लीटर की बोतल, क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाजा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। यहां पर सबसे नीचे एक लड़की को एक बड़ी बोतल में छोटी बोतल से पानी डालते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 75। अब करके देखो तुम्हारा अंदाजा सही है या नहीं। तालिका भरो। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 खाने हैं। पहले खाने में बोतल 1, बोतल 2 और बोतल 3 लिखा है और दूसरे खाने में सबसे ऊपर मेरा अंदाजा और तीसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है मेरा माप। अब तुम इन खाली स्थानों को भरो। बोतल 1, मेरा अंदाजा रिक्त स्थान, मेरा माप रिक्त स्थान। बोतल 2, मेरा अंदाजा रिक्त स्थान, मेरा माप रिक्त स्थान। बोतल 3, मेरा अंदाजा रिक्त स्थान और मेरा माप रिक्त स्थान। देखो आदित्यन क्या कर रहा है। यहां पर एक बच्चे का चित्र है जो कह रहा है, 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़े ली। उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? यहां पर एक चित्र में आदित्यन को छोटी बोतल से बड़ी बोतल में पानी भरते दिखाया गया है। इसी चित्र के नीचे एक और चित्र भी है जो लड़की का चित्र है। लीला कह रही है,
2: मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा।
0: तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा? रिक्त स्थान। रामू की माप की बोतल। यहां पर सबसे नीचे की तरफ रामू का चित्र है जिसके हाथ में एक छोटी बोतल है और उसके सामने एक बड़ी बोतल दर्शाई गई है। बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया? पृष्ठ 76। मेरी माप की बोतल 200 ML, 400 ML, 600 ML, 800 ML और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। अंदाजा लगाओ और जांच करो। अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीजों को देखो। सोचो हरेक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग हैं। पहले भाग में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है मग, गिलास और भगोना, और दूसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है मेरा अंदाजा, और तीसरे खाने में लिखा है मेरा माप। अब इस खाने को तुम खुद भरो। मग मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान मेरा माप, रिक्त स्थान। गिलास मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान मेरा माप, रिक्त स्थान। भगोना मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान मेरा माप, रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के सबसे नीचे एक घर का चित्र है। इसमें एक लड़का और एक लड़की को बैठे दिखाया गया है। लड़का कहता है,
2: मुझे लगता है कि ये 750 ml से कुछ कम है।
0: लड़की कहती है,
2: मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है।
0: पृष्ठ 77। नीतू अस्पताल में। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे एक दिन में कितनी दवाई की जरूरत है? 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी? यहां पर एक चित्र में डॉक्टर को नीतू को इंजेक्शन लगाते दिखाया गया है। नीतू बोली,
1: मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता।
0: व्यक्ति बोला,
1: एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी।
0: यहां पर एक गैंडे का चित्र है और उसके सामने एक इंजेक्शन का चित्र है। गैंडा इंजेक्शन को देखकर सोच रहा है,
4: मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की जरूरत होगी?
0: एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं? यहां पर 2 कॉलम है। पहले कॉलम में सबसे ऊपर लिखा है आंखों में डालने की दवाई, और दूसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है हम एक बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं। अब तुम दिए गए खानों को अंदाजा लगाकर स्वयं भरो। उन चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज्यादा किया जाता है। नहाने का पानी। अब तुम दिए गए खानों को खुद भरो। पृष्ठ 78। अभ्यास का समय। 1। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा है? 2। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। एक चाय बनाने के लिए वो 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई। उसे कितने दूध की जरूरत पड़ी होगी? यहां पर एक चाय की दुकान का चित्र है और दाहिनी तरफ कुछ गिलास और कप बने हैं। दुकान पर कुछ व्यक्तियों को भी दिखाया गया है। 3। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी थी। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के सबसे आखिरी भाग में राधा और उसकी दादी का चित्र बना है और सामने ही कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ 89। पानी पानी। दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है। वो गुडालूर गांव में रहते हैं। यहां पर एक चार्ट है जिसके 2 खाने हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है कार्य और दूसरे में लिखा है पानी लीटर में। आइए अब हम चार्ट को पढ़ते हैं। खाना बनाने और पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर और नहाने में 75 लीटर। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ एक आदमी और एक औरत का चित्र है जिन्हें कपड़े धोते और बर्तन साफ करते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया? रिक्त स्थान।
3: तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है अंदाजा लगाओ और चार्ट बनाओ। अब इस दिए गए चार्ट को तुम खुद भरो। यहां पर एक चार्ट है जिसके तीन खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर लिखा है कार्य, दूसरे में पानी का उपयोग बाल्टी में और तीसरे में लिखा है पानी का उपयोग लीटर में। अब तुम इन कार्यों को देखकर इनके सामने के खानों को खुद भरो। कार्य: खाना बनाने और पीने में, पानी का उपयोग बाल्टी में रिक्त स्थान, पानी का उपयोग लीटर में रिक्त स्थान। कार्य: कपड़े धोने में, पानी का उपयोग बाल्टी में रिक्त स्थान, पानी का उपयोग लीटर में रिक्त स्थान। कार्य: बर्तन धोने में, पानी का उपयोग बाल्टी में रिक्त स्थान और पानी का उपयोग लीटर में रिक्त स्थान। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते हैं? एक लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाएं। समय लिखो, एक घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। पृष्ठ 80। पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है। रिक्त स्थान: एक हफ्ते में रिक्त स्थान, एक महीने में रिक्त स्थान और एक साल में रिक्त स्थान। पहेली: यहां पर एक चित्र में कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं और यहां पर एक बोर्ड पर लिखा है दुग्ध सहकारी समिति में। चिल्लानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मिनी वहां 4 लीटर दूध खरीदने गईं, लेकिन वहां पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था, सिर्फ 3 लीटर वो 5 लीटर की बोतलें थीं। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे किया गया? इसी के साथ 7वां पाठ जगमग जगमग यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: रूहानी, तुम्हें पता है कल मैंने सपने में क्या देखा?
1: क्या देखा?
0: हम दोनों तो कश्मीर घूमने गए थे।
1: कौन दोनों?
0: अरे तुम और मैं, और कौन दोनों?
1: वाह कश्मीर, वैसे मैं तो हिमाचल गई हुई हूँ।
0: कोई बात नहीं, मेरे साथ कश्मीर भी चल पड़ना।
1: अच्छा
2: कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो भाई आप लोग?
3: कहाँ घूमने की बातें हो रही है भाई?
0: दीदी कश्मीर।
3: कश्मीर जा रहे हो? और कहाँ, हिमाचल भी सुना था मैंने तो।
1: अरे दीदी सपने में जा रहे हैं।
3: अच्छा हाँ,
0: असली में तो जा नहीं सकते इसलिए सपनों में ही जा रहे हैं।
3: सपनों में तो कहीं भी घूम सकते हैं ना।
1: अरे दीदी असली में तो मैं भी गई हूँ हिमाचल।
3: अच्छा अच्छा ठीक है तो चलो एक काम करते हैं, असली में घूमने की बातें भी करेंगे लेकिन आज आपके सपनों के बारे में बात करते हैं बच्चों की दुनिया में। सब लोग तैयार है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, क्योंकि बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ा है?
4: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
1: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती
7: हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ओके, तो हमारे साथ है बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और इनके बहुत सारे सपने, है ना? सपने तो सब देखते हैं।
1: हाँ।
3: कोई ऐसा है जो सपने बिल्कुल नहीं देखते?
1: नहीं।
3: खुली आंखों से देखते हो कि बंद आंखों से?
1: दोनों से।
3: तो दोनों से देखते हो। तो चलो पहले बात करते हैं बंद आंखों वाले सपनों की, यानी रात को आने वाले सपनों की। तो आप लोग को सबको सपने आते हैं क्या?
1: हाँ।
3: रोज?
1: हाँ।
3: अच्छा ऐसा?
1: हाँ।
3: ओके,
1: तो कभी
3: कभी कभी आते हैं। रोज किसको आते हैं?
0: दीदी मेरे को।
7: मेरे को।
3: ओके, और ठीक है, किसी किसी को रोज आते हैं, किसी किसी को कभी कभी आते हैं। तो एक एक करके अपने सपने शेयर करेंगे सब लोग, क्या क्या क्या सपने आते हैं, कौन बताएगा पहले?
1: दीदी मेरे को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार आ जाते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, और बहुत बार तो डरावने सपने भी आते हैं भले ही मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी हो तब भी। और कभी कभी ऐसा लगता है मैं बिल्डिंग से गिर रही हूँ नीचे अपने बेड पर बैठे बैठे ही।
3: और डरावने सपने कैसे आते हैं?
1: जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया ऐसे, मैं इधर उधर भागती हूँ चिल्लाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं सच में रो रही होती हूँ।
3: रोना आ जाता है?
1: हाँ।
3: फिर क्या करते हो जब उठते हो तब?
1: कुछ नहीं, आंसू पोंछ के फिर सो जाती हूँ।
3: अच्छा ठीक है, और किसको क्या सपने आते हैं भाई?
4: दीदी एक बार ऐसे आया कि मैं पलंग पे सो रही हूँ पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, पर फिर उठ के देखा तो मैं पलंग पे ही थी।
3: ऐसा लगता है ना गिर रहे हैं, और सच में वो लगने लगता है बॉडी को भी कि हम नीचे गिर रहे हैं, मगर नहीं गिर रहे होते हैं।
1: एकदम बॉडी ऐसी लगती है जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है सारा।
3: लेकिन असल में तो वो बस एक सपना होता है। ओके, और कौन बताएगा अपने सपनों के बारे में?
0: दीदी एक बार तो मैंने सपनों में मूवी बनाई थी खुद।
3: अच्छा,
0: कभी उसमें डोरेमोन आ रहा था, कभी एलियंस आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी भूत आ रहे थे, पता नहीं सब मिक्सचर होके आ रहा था।
3: ओके, मतलब कार्टून्स भी आ गए उसमें, एलियंस भी आ गए उसमें,
0: सब कुछ।
3: एलियंस वाली कोई मूवी देखी थी क्या आपने?
0: नहीं, वैसी मन में आ गया।
3: ओके ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, मूवी बन जाती है सपनों में कभी कभी, मिक्स हो जाता है ना सब कुछ।
7: दीदी मेरे सपनों एलियन आए धरती पर, मेरे से हाथ मिला के वापस चले गए।
3: एलियन धरती पर आके आपसे
7: हाथ मिलाए, मेरे परिचय लिया, चले गए वापस, बोलते आपसे दोबारा मिलने आएंगे।
3: अच्छा ये बोल के गए कि दोबारा मिलने आएंगे?
7: हाँ, पर पता नहीं दीदी कौन सी भाषा में बोल के गए,
3: लेकिन आपको समझ में आ गया।
7: हाँ।
3: वाह, यानी आपने एलियन वाली भाषा सीख ली है।
7: हाँ।
3: ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग सपना था काफी। आपको कोई सपना आया शिक्षा?
5: मुझे कभी कभी सपने आते हैं, और सपनों में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आते हैं, कभी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं भाग रही होती हूँ, और फिर मैं ना कभी कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुंडी लगा लेती हूँ कि कहीं वो आ ना जाए, मुझे डर लगता है, और मैं सपने में ये ना उठ जाती हूँ, और उठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है हाँ अभी भी यहाँ कहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, डरती हूँ, फिर उठती हूँ, थोड़ा आंसू वगैरह निकल रहे होते हैं, पोंछती हूँ, थोड़ी देर जगती हूँ, उसके बाद लाइट ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ, जब लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा सपना तब लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ।
3: तो मतलब आप पहले खुद को पहले अश्योर कर लेते हो कि ये सपना था।
5: हाँ।
3: और मैं ठीक हूँ और यहाँ कोई भी नहीं आसपास, फिर वापस सोते हो।
5: हाँ।
3: ओके ठीक है, ऐसा होता है, डरावने सपने भी आते हैं कभी कभी, किसी के में तो एलियंस आ जाते हैं, किसी के में जानवर भी आ जाते हैं। बिल्कुल।
5: ज्यादा ज्यादा सपने में कभी कभी तो बादलों पे चले जाते हैं।
3: बादलों पे चले जाते हो?
5: हाँ।
3: क्या करते हो बादलों पे?
5: मैं एक बार सपने में एक से दो बार ही गई हूँ बादलों पे। तब गई थी मैं तो उड़ने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे।
3: अरे वाह, तब तो बड़ा अच्छा लगा होगा।
5: हाँ, वो सपना मेरा सबसे बेस्ट सपना था।
3: बादलों में उड़ने में तो मजा आता है ना?
5: हाँ।
3: पर रियल में पंख होते तो कितना अच्छा लगता ना।
7: ये आपसे एक बात पूछूं, यदि आपको कभी सपने आए हैं?
3: बताऊंगी मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग तो कंप्लीट कर लो।
9: मेरे को तो बहुत डरावना सपना आया था, मैं पूरे 5 बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गई।
3: अरे बाप रे, फिर आपको तो डर
9: बहुत डर लगा।
3: फिर नींद खुली आपकी? फिर क्या किया? नींद खुली
9: फिर मुंह धोया, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आ रही थी।
3: ओहो,
9: थोड़ी देर बाद नींद आई।
3: थोड़ी देर बाद नहीं, क्योंकि डर गए होते हैं ना तो एकदम से कभी कभी नींद नहीं आती। रूहानी कुछ बोलना चाह रहे हैं
1: हम? हाँ दीदी, मेरे को ना सबसे अजीब वो गरीब सपना आया था।
3: क्या?
1: मैंने समाधि ले ली।
3: हाँ? अच्छा, ओके।
1: चिता पर बैठ रही थी मैं खुद मरने के लिए।
3: अच्छा।
1: हाँ, वो भी रो के।
3: रो रहे थे आप?
1: हाँ।
3: ओके, उसके बाद नींद खुली या नहीं?
1: खुली थी, तब भी रो रही थी मैं, फिर आंसू पोंछ के सो गई।
3: तो घर में किसी को बताते हो आप लोग जब आपको?
1: हाँ,
3: ऐसे सपने आते
1: हैं? ऐसा सपना आया था ना, तब मेरे घर वाले सब साइड में खड़े थे, देख रहे थे मेरे को। फिर मेरे को पता चला कि उसमें ना मेरे को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही मर रही थी।
3: अच्छा। हाँ। बाप रे, तो आपके घर वालों को जब आप उठे तब बताया आपने कि मेरे को ऐसा सा सपना आया?
10: नहीं, तब तो सब सो रहे थे। अगले दिन बताया।
3: तो क्या बोला सपने?
1: ऐसा कैसा सपना है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
3: किसने थोड़ी ऐसा सोचा, पता नहीं कैसे आ गया ना।
1: हाँ।
3: तो आप लोग क्या करते हो जब सपना आता है? तो सो तो जाते हो, अगले दिन फिर बताते हो सबको घर में?
4: हाँ, बताते हैं।
1: कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ही मन से चला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है,
3: भूल जाते हैं सपने। ओके, और आप लोग जब बताते हो तो फिर क्या बोलते हैं घर वाले?
5: मैं तो सपना ही भूल जाती हूँ अपना।
3: सपना
5: थोड़ा बहुत याद रहता है वो बता देती हूँ,
3: फिर भूल जाते हैं ना।
5: हाँ।
3: पूरा तो नहीं याद रहता, कभी कभी भूल जाता है, वो तो है।
4: तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे पूरा याद क्यों नहीं रहता? मैं बोलती हूँ कि मैं तो वो डरावना था इसलिए आधा भूल गई।
3: डरावना था तो भूल जाता है कभी कभी, उस समय डर लगता है लेकिन बहुत है ना?
7: दीदी, जब मैंने एलियन वाली बात मेरे घर में बताई ना, मम्मी बोली नाश्ता पानी करवा देती हूँ उनको, आए थे वो।
3: कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए था।
7: मेहमान आया, खाली हाथ चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस बुलाओ उनको।
3: वापस बुलाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, इतना दूर सफर किया बिना कुछ खाए पिए।
7: हाँ।
3: गलत बात है, बुरा मान जा।
7: दीदी, उनको पता नहीं 2 दिन लगे थे आने में, अब 2 दिन जाने में लगेंगे।
3: सपने में अलग भाषा थी कुछ।
7: सपने में तो पता नहीं, मैं जैपनीज।
3: अच्छा। हाँ भाई, हो सकता
7: है पहाड़ों में।
3: अच्छा, ओके। कुछ भी हो सकता है सपनों में, कुछ भी भाषा हो सकती है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है। क्योंकि देखो, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा कौन सा होता है?
1: अनकॉन्शियस।
3: सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पता है सबको?
1: हाँ।
3: किसने पढ़ा है? सच्ची सच्ची बताओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो। नहीं जानते? बोलो।
4: नहीं जानते।
7: नहीं जानती।
3: कोई भी नहीं जानता?
1: नहीं।
3: नहीं जानते। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जो एकदम अलर्ट है, एक्टिव है, आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के चेहरे याद रखते हैं, है ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अमीक्षा का मुझे याद है कि नाम क्या है, कैसी दिखती है, और बाकी लोगों का भी जिनका मुझे, जिनसे मैं बात कर रही हूँ। हमारा सबकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ें पिक करता है, आसपास क्या रखा हुआ है, मेरा कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मेरे सबकॉन्शियस ने काफ़ी चीज़ें आसपास की रखी हुई भी पिक कर ली और अपने अंदर रख ली। और जो बचपन की भी मेमोरीज होती हैं बहुत, जब आप छोटे थे या आपने कभी तो कुछ चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, कॉन्शियस माइंड भूल गया, कॉन्शियस माइंड तो दूसरी चीज़ें देखने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, पर सबकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें जो कुछ सेव हुआ होता है ना, बहुत सारी फाइल्स, पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी मूवीज देखी थी, टीवी देखा था, किसी से मिले थे, किसी के बारे में पढ़ा था, वो सब उसके अंदर है। तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, और फिर 2-3 फाइल एक साथ खुल गई तो वो मिक्स होकर कुछ और ही बन जाता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है जब आप सोते हैं ना तो उससे पहले कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिख के सोएं या बोल के सोएं, क्योंकि जैसे हम सोए हुए होते हैं ना फिर वही वाली फाइल्स ऊपर रहती हैं फिर हमारे, तो हमें स्लीप में मदद करती हैं वो वाली जो ऊपर खुली वाली फाइल्स हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के समय और उठने के समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो आप उसको दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो उसके अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा होगा, जो हमको याद भी नहीं है, वो भी जो आपने कहीं ऐसे ही निकल गए होते किसी दुकान से, आपको नहीं याद होगा वहाँ क्या क्या रखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ रहता है उसमें। कमाल की चीज है ये, इसके बारे में पढ़ना कभी, है ना? आप तो पढ़ते हो, गूगल यूज करते हो ना आप लोग?
11: हाँ।
3: है ना, यूट्यूब भी देखते हो?
11: हाँ।
3: तो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ के देखना, कितना इंटरेस्टिंग है।
11: ठीक है,
3: ठीक है।
11: हाँ।
3: अच्छा, ये तो हुए बंद आंखों से देखे हुए सपने। चलो खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में भी एक अलग से एपिसोड करेंगे। या तो ये बताओ, अच्छे सपने आए हैं किसी को बंद आंखों से? मतलब सपने तो देखे, डरावने भी देखे, भी देखे, अच्छे सपने देखे कोई? जैसे उन्होंने बताया बादलों के ऊपर थे, वैसे कोई अच्छा सपना आया है कभी? या सब कुछ डरावने ही सपने आते हैं?
7: दीदी आपको पता है, एक बार मुझे आसमान में उड़ना था, घूमना था, है ना? तो क्या हुआ, मैं सोचने लगी, सामने आया डोरेमोन, उसने निकाला अपने वो पॉकेट में से गैजेट और मुझे ऊपर भेज दिया घूमने के लिए।
3: वाह, उड़ने वाला सपना दो लोगों को आ गया।
7: हाँ दीदी, वो उसने पता नहीं मेरे सर पे क्या पहना है, चक्री।
3: अच्छा, तो वो आप उड़ गए उसको चक्री को लगा?
7: हाँ दीदी, पूरा आसमान 2-3 दिन में घूम के आई थी मैं।
3: वाह क्या बात है, 2-3 दिन तक ऊपर घूम रहे थे? वाह।
7: और वो खाना आगे दे रहा, तो पर खाना खा लेना, पानी पी लेना।
3: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
4: और दीदी एक बार है ना, मुझे एक फेरी मिली थी सपने में। वो बोल रही थी आपको मेरे घर देखना है। मैंने कहा हाँ आपका मुझे घर देखना है। तो मुझे वो लेके गई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आई थी।
3: अच्छा,
4: उसका घर इतना बड़ा था।
3: कैसा था उसका घर?
4: बहुत अच्छा था,
3: बहुत सुंदर था। क्या हाँ, क्या था वहाँ पे?
4: वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ था, और बुक्स का मतलब पूरा शेल्फ था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज बुक रखी हुई थी।
3: अरे वाह,
4: बहुत कुछ था। और
3: ओके, अच्छा लगा होगा ना आपको?
4: हाँ
11: दीदी, मेरी तो अच्छे सपने की स्टार्टिंग भी बुराई से ही हुई है।
3: कैसे?
11: अरे एक जलपरी ने मेरे को काट लिया, फिर मैं जलपरी बन गई। फिर मैं समुद्र के अंदर जाके समुद्र एक्सप्लोर किया था।
3: कैसा लगा था समुद्र अंदर?
11: बहुत मस्त था, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था अंदर जाके।
3: तो सुंदर क्या लगा वहाँ पे?
11: वो रोशनी आ रही थी ना, उसमें बबल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे।
3: तो बबल्स अच्छे लग रहे थे,
11: और बहुत सारी फिशेज भी बहुत झुंड बना के ऐसे गोल गोल घूम रही थी, वर्लपूल जैसे।
3: फिशेज कितनी कलरफुल होती है ना, कितनी सुंदर होती है ना।
11: क्लोन फिश भी थी।
3: वो तो काफी फनी होते हैं, वो भी एक टाइप है फिश का। बिल्कुल, और फिशेस तो देख सकते हैं हम, प्रकृति ने क्या क्या कलर्स दिए हैं ना, कमाल के।
7: दीदी मैं एक बात बताऊं?
3: बोलिए।
7: मैं खुद भी जलपरी से मिल के आई हूँ।
3: अच्छा,
7: उसने अपना घर बनाया था मोतियों से, वो भी देख के आई थी। उसमें कम से कम 4-5 दिन लग गए थे देखने में।
3: 4-5 दिन लग गए थे? तो आपको सपने में पता चल गया था कि इतने दिन लग गए अभी। अभी घर जाना,
7: क्योंकि गिन रही थी मैं।
3: अच्छा, गिन रहे थे?
7: एक दिन कम्प्लीट हुआ, दूसरा दिन कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन कम्प्लीट हुआ, और जा रही थी ना मैं अपने 5वें दिन, वो जलपरी उल्टा रोक के मेरे को चाय पिला रही थी।
3: वाह, समुद्र में चाय?
7: हाँ।
3: बात है। वाह, तो उसमें पानी नहीं चला गया फिर चाय में सारा?
7: नहीं, मैंने घर के अंदर बैठ के पिया।
3: घर के अंदर बैठ के पिया? ओके।
7: और वो मैंने जो मतलब जहाँ कोने में बैठी थी ना, वहाँ से पानी हटाया था मैंने।
3: अच्छा, पानी हटा के फिर बैठी साइड में। कैसा घर था जलपरी का?
7: उसमें सोचोगे नहीं, तो मतलब ऐसे बनाया था ना, मोती मोती मोती मोती जोड़ कैसे ही पूरा वो महल खड़ा कर दिया।
3: मोतियों का महल था?
7: हाँ।
3: और अंदर क्या क्या था?
7: अंदर वहाँ पे कुर्सी थी मोती वाली।
3: अच्छा।
7: उनका पूरा मतलब क्या बोलते, किचन का सेट
3: मोतियों वाला।
7: हाँ, मोतियों वाला बेड भी था मोतियों वाला। उनकी ड्रेसेस रखी थी वहाँ पे मोतियों वाली,
3: वो भी मोतियों वाली। कितना सुंदर होगा।
7: और दीदी वहाँ पे एक मतलब बड़ा सा वो रखा था, जिसके अंदर वो मोती निकाल के वहाँ पे जोड़ दी थी बार बार।
3: अच्छा, मतलब स्टॉक था उनके पास पूरा।
7: वो थोड़ी थोड़ी देर में मोती बनाया जा रहा था, वो जोड़ती जा रही थी, जोड़ती जा रही, जोड़ती जा रही। मैंने भी जुड़वाया उनके साथ।
3: वाह, मतलब जहाँ गए वहाँ मदद भी करके आए। वाह। हाँ मीक्षा।
4: और दीदी मैंने वो फेरी के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे फेरी के खेलने के लिए ना एक बादलों का घर बनाया था उसने।
3: अच्छा,
4: बहुत सुंदर था वो भी, उसके घर के जैसा ही था, बस बादलों से बना हुआ।
3: बादलों से बना हुआ था।
4: हाँ, उसको वो पेंट कर रही थी, तो मैंने बोला मैं भी करूँ, तो बोला हाँ।
3: आपने पेंट कराया?
4: हाँ।
3: कौन से कलर के कर दिया आपने बादल फिर?
4: बादल मैंने ब्लू कलर के किए।
3: ब्लू कलर के किए, पहले व्हाइट थे।
4: हाँ,
3: कितना अच्छा लगा होगा ना। और अनुष्का ने कोई अच्छा सपना देखा कि नहीं?
9: हाँ।
3: क्या?
9: वहाँ पर मैं तो परी बन गई थी, मेरे तो पंख आ गए थे ऐसे। पूरे 2 दिन घूम के आए आसमान में।
3: अच्छा, बस आप परी बन के उड़ गए थे। कौन से कलर की परी थे आप?
9: मेरे पिंक कलर के पंख आए थे।
3: पिंक कलर के पंख आए थे,
9: मेरे को वो भी नहीं पता पिंक कलर के कहाँ से आ गए।
3: अच्छा, ओके। तो कैसे लग रही थी ऊपर से दुनिया?
9: बहुत अच्छी लग रही थी।
3: बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया। और आपको कोई सपना आया ऐसा?
5: मेरे को तो बस एक ही बार सपना आया था, बादल वाला। तब मैंने तो बस बादल पे चल के उसको घूम रही थी पूरा अच्छे से। वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा बस मुझे हॉरर सपने ही आए हैं।
3: हॉरर सपने? कैसे हॉरर सपने?
5: मैं सपने में है ना डायनासोर वगैरह, मेरे को ज्यादा ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं सपने में।
3: अच्छा, तो डायनासोर भी मिलते हैं आपको?
5: हाँ।
3: अरे बाप रे।
5: डायनासोर, मैं बेड के नीचे छुपी हूँ, वो घूम रहा है आसपास ढूंढ रहा है, मैं ना कवर्ड में बंद हो गई, ऐसे मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा था। ऐसे मेरे को सपने बहुत डरावने आते हैं, डायनासोर, कभी है ना डीमंस वगैरह आ जाते हैं सपने में, ज़ॉम्बीज वगैरह, ऐसा सपना भी आ जाता है।
3: आ सकता है। आपने कभी वो जुरासिक पार्क या ज़ॉम्बीज वाली मूवी देखी?
5: हाँ।
3: तो हमारा सबकॉन्शियस ना वो सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे पहले बात हुई थी ना, कॉन्शियस माइंड तो शिफ्ट हो गया वो मूवी देख के, आगे बढ़ गया, अब कुछ और देखने लगा, पर सब कॉन्शियस में वो चीजें अंदर तक छप गई और वो चीजों ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया था उस समय, तो बहुत पावरफुल है सब कॉन्शियस में, तो वो निकल निकल के बाहर आती है ना। इसलिए हम जो चीजें देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है अभी।
0: दीदी हमें तो कभी अच्छे सपने आए ही नहीं, हमेशा एक्शन या हॉरर ही आते हैं।
3: एक्शन सपने आते हैं?
0: कभी आप किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को किसी से बचा रहे होते हैं, या फिर कभी भूत आ जाते हैं।
3: किससे लड़ाई कर रहे होते हो?
0: याद भी नहीं रहता किससे लड़ रहे हैं, बस वो रियलिटी में जब बेड पे होते हैं तो भाई बहन को ही मारते हैं।
3: अच्छा,
0: बेड पे भाई बहन को, सपने में किसी और को।
3: मतलब लेकिन चल रही होती है मार पिटाई?
0: हाँ जी।
3: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
4: और दीदी हम लोग कोई भी सपना देखते हैं ना उसमें मजा आता है, बस थोड़ा डर लगता है।
3: डर तो लगता है। पता है एक बार किसी ने अपने एक सपने की स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको शेर दिखाई देता था सपने में और शेर के पीछे भाग रहा होता था और वो डर के उससे भाग रहे होते थे। तो फिर उनको किसी ने हेल्प करी और उनसे कहा कि अगली बार जब सपने में वो शेर आए ना तो उससे दोस्ती कर लेना, उससे बातें करना कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, मेरे फ्रेंड बनोगे, और ये याद रखना, फ्रेंडशिप कर लेना, उससे बातें करना, और ये याद रखना सपने में कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम शेर से तो डबल ट्रिपल 100 times पावरफुल हो। तो अगर ऐसा लगता है कि वो शेर तुम पे हमला कर रहा है तो उसकी तुम पिटाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम।
11: दीदी ऐसा करने का मन करता है लेकिन ऐसा लगता है कि सपने में हम खुद ही कंट्रोल हो रहे हैं।
3: हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, जब रात को सोना है ना तो खुद को बोल के सोना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल, इसको बहुत बार लिखो, या तो लिखते हो ना तो वो भी माइंड में हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। आपको बहुत सारी अच्छी फाइल्स देनी है सबकॉन्शियस में, अभी ये सब डरावनी फाइल्स दी हुई हैं आपने, तो आप अच्छी अच्छी पावरफुल फाइल्स दे दोगे ना तो वो उसको ओवर पावर कर लेंगी। लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव ये वाली फाइल्स जमा है क्योंकि हमने ऐसी मूवीज़ देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं ना, कभी पहले भी देखी हो सकती हैं, हो सकता है अब हमने छोड़ भी दी हो, तो पर वो जमा तो हो जाती है फाइल, तो अब उसको पावरफुल पॉजिटिव फाइल्स आपको खोल के देनी पड़ेंगी। आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, ये लिखना है आपको बहुत बार, है ना। और भी ऐसे स्वमान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस ले सकते हो, है ना, आई कैन डू एनी थिंग, आई यू नो, सबसे ऐसा कुछ लिख के भेजो, आई एम गॉड्स चाइल्ड, मेरे अंदर सारे ताकत है, मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। इसको आप एटलीस्ट 50 times 100 times लिखोगे ना तो वो सबकॉन्शियस फिर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अगली बार वो वाली फाइल भी खोल देगा वो, है ना। तो आप अपने सपने में हैंडल कर लोगे सारी सिचुएशंस।
0: दीदी कई कई बार तो पता ही नहीं लगता कि रियल लाइफ में है या सपनों की लाइफ में है।
3: हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है ना,
0: कई बार अगर कहीं से गिरते होते ना तो एकदम ऐसे आँख खुलती है जैसे हम गिर गए
3: हैं, ऐसा होता है, होता है।
4: और दीदी एक बार तो क्या हुआ, मैं सपनों में लड़ाई कर रही थी तो मैंने एक बार है ना अपनी नानी को एक गुस्सा मार दिया।
3: सपने में लड़ाई करते करते ना, असली में तो नहीं किया ना।
0: दीदी मैंने तो सपने में मम्मी की बहुत बार चाय गिरवाई है, मम्मी जैसे पैर के आगे बैठते हैं ना तो ना ऐसे पता लग जाता है आगे कोई बैठा है, पर सपने में जब लड़ रहे होते हैं ना तो पैर एकदम ऐसे आगे जाते हैं, मम्मी की चाय गिर जाती
3: है। असल में तो नहीं गिराई ना?
0: असल में ही तो गिराई है।
3: अच्छा, असल में गिरा दी।
0: बहुत बार गिरवाई है।
3: अच्छा ओके।
12: दीदी
3: हाँ
12: चलो मैं आपको अपना हॉरर सपना बताती हूँ।
3: बताओ।
12: एक बार क्या हुआ, मैं घूम रही थी जंगल में, एक हवेली दिखी, मैं उसमें गई, वहाँ पे गई, अपने आप गेट बंद हो गया, मैं बैठ के वहाँ पे भजन करने लगी, पता नहीं क्या दिमाग चला, भजन करने लगी, पास में से आई एक आत्मा, बोली तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम पल्लक है। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है भूतनाथ। मैंने बोला अच्छा भूतनाथ और कैसे बनू उससे मैंने बातचीत की। फिर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बोला मार दो। हमने खूब मस्ती की दीदी सोचा कि नहीं। दो दिन तक मैं हवेली में थी और मैं भूत को बाय बोल के जा रही थी। बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ भूतनाथ नहीं बन जाओ। मैंने बोला नहीं बनना मुझे।
3: नहीं नहीं जाने तो बाद में आके बातें करूंगी मैं। ओके
0: दीदी इनको तो पता भी लग रहा है कितने दिन लगा के आ रहे। मेरे को तो पता भी नहीं लगता मैं कितने दिन लगा के हूं क्या करके।
3: हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुष्का?
9: हाँ दीदी हमने तो बहुत सपने देखे। आपने कौन से सपने देखे?
3: मैंने कौन से सपने देखे?
4: दीदी आप भी बताओ ना।
3: मैं अभी तो मुझे बहुत समय से कोई सपना नहीं आया लेकिन पहले जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि गिर रहे हैं ऐसा वाला सपना आता था मुझे भी कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो अचानक से। और ना एक सपना आता था कि एग्ज़ाम में लिख रहे हो और ना पेन की रिफिल ख़त्म हो गई और फिर लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं एग्ज़ाम। ऐसा सपना आता था मुझे।
0: दीदी इतना खतरनाक सपना।
4: फिर दीदी आपने क्या किया?
12: फिर मैम से पेन मांग लिया होगा।
3: हाँ नहीं उस समय मेरा पेपर ही छूट जाता था एग्जाम में।
11: सबसे बड़ा डर
12: रिजल्ट
4: आता था। असलियत में तो नहीं छूटा ना।
3: असलियत में एक बार छूट गया था मेरा वो भी बोर्ड्स के एग्जाम में।
0: उस टाइम भी रिफिल खत्म हो गई थी क्या?
3: 6 मार्क्स का मैथ्स का पेपर नहीं बिना रिफिल के छूट गया था मगर ठीक है मार्क्स ठीक आ गए।
0: टाइम रिफिल नहीं हुआ होगा।
3: हाँ क्या कह सकते हैं अब असल लाइफ में तो भाई दोबारा सपना तो नहीं है कि दोबारा देख सके है ना। जो हो जाता है वो हो जाता है तो उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं है ना।
9: दीदी मेरी भी मम्मी सपना देखती है अभी भी।
3: आते हैं सपने बड़ों को भी आते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चों को आते हैं।
9: पर आपको तो नहीं आते अभी इस टाइम?
3: हाँ इस टाइम नहीं आते क्योंकि पहले जब मुझे सपने आते थे ना तो बहुत ऐसे डर जाती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरी मम्मी को भी डर लगता था कि भाई बाहर पढ़ने जाओगे तो कैसे रहोगे क्योंकि बहुत डर जाते थे।
0: अभी कई कई बार ऐसा होता है मैं सपने में उठ के बेड पे ऐसे मतलब खड़ी हो जाऊंगी फिर दूसरी तरफ सिर करके सो जाऊंगी। मैं खुद को पता नहीं होता मैं कब उठी कब उधर सिर रखा कब सो गई।
3: सपने में बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन सपनों की दुनिया अपनी अलग है और रियल दुनिया अलग है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम बातें करेंगे लेकिन बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय।
13: बाय बाय।
14: अरे चुटकी यहाँ तो आ।
15: क्या भैया मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मुझे चुटकी मत बुलाया करो।
14: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
15: भैया गोलू?
14: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
16: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
15: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
17: ये धागा है रक्षा का ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है जो रूठों को मनाता है वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बाल संसार में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पर, सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता। मुख्य भाग आज के इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे रचनात्मक सोच और नवीनता हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नए और अनूठे तरीकों से हल करना। यह कौशल हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। रचनात्मक सोच के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पार्श्व सोच, आलोचनात्मक सोच और कल्पनाशील सोच। इन सभी प्रकारों का उपयोग करके हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा कि आप कार्यक्रम को सुनकर बहुत सारी बातें इकट्ठा ज्ञान की कर रहे होंगे और मैं चाहूंगा जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप जो है धनवान बनते हैं, है ना। कमाल की बात, टाइम इज मनी कहा जाता है, वैसे ज्ञान को भी धन कहा जाता है। तो ज्ञान बढ़ता है तो धन बढ़ता है, और उसके साथ में अगर समय पर ज्ञान का उपयोग हो जाता है तो आप जो है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते हैं, बना विश्व में आप सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं समय के साथ ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज बाल संसार में हम लोग छठवां जो अध्याय है उसके ऊपर बात करेंगे और सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता, इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे। इसमें काफ़ी बातें हैं और बड़ा ही सरल और सिंपल सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो हम उन पहलुओं पर बातें कर रहे हैं जहां पर शायद माता पिता कभी सोच नहीं सकते या कभी उनके विचारधारा उस तरह से सोचने की नहीं होती, क्योंकि एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर हम माता पिता की सोच ये रहती है कि मैंने पैसे लगाए, समय दिया और एडमिशन दिलाया, अब बच्चे का काम पढ़ना है। तो बच्चों की मनोस्थिति समझने में उनको जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो अब बड़े बन गए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर यह है कि मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, पिताजी या माताजी मेरे साथ खेले, मेरे साथ मस्ती करे जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो चीज़ें उनके बिल्कुल समझ के बाहर हो जाती हैं। तो एज डिफरेंस का ये बहुत बड़ा जो है मुश्किल दुविधा है, तो इसको सुविधा अनुसार करने के लिए ये बातें हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आज के हमारे वक्ता हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बाल संसार में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत खुशी हो रही है, सादर प्रणाम भाई जी, ओम शांति।
1: जी जी, और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि हमारा ये अध्ययन है इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सार्थक नवीनता की विशेषता क्या होती है।
2: जीवन में जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम बड़े हों या छोटे हों, सहजता के साथ में स्वयं की गतिशीलता चाहते हैं और उसके लिए तमाम हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास भी करते हैं और इस प्रयास के प्रति हम संवेदनशील भी होते हैं और एक सही या जैसे हम कहते हैं कि सार्थक परिणाम तक हम पहुंचने का वहाँ जो श्रम कर रहे होते हैं वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है। कारण उसके पीछे ये है कि हमने सबसे पहले जो स्वयं के प्रति व्यवहार किया उस व्यवहार में एक नया परिवर्तन करने का प्रयास किया है और वो परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि है। जैसे ही हमारी आँखों से, हमारे तीसरे नेत्र से हम देखने का प्रयास करते हैं, अपने कॉमन सेंस को एक नई ऊर्जा के साथ भरते हैं, तो आप देखेंगे कि हम लगभग लगभग स्वयं के प्रति या परिवार के प्रति या समाज के प्रति हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो देखने का तरीका है, नज़रिया है, उसमें बदलाव आता है और उस बदलाव को हम कह सकते हैं कि हमारी सकारात्मक दृष्टि अब विकसित हो गई है और यही सकारात्मक दृष्टि हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण के अंदर एक सार्थक परिवर्तन करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो परिणति उसकी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं सार्थकता के केंद्र में स्वयं को स्थापित करने की बात होती है और जहाँ सार्थक दृष्टिकोण हो जाता है तो वहाँ समाधान में एक नवीनता आ जाती है। देखिए, जीवन में हम बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी स्मृति में हमने रखा भी हुआ है, अपना स्टेटस सिंबल को लेके हम अपना एक बढ़िया स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम जिस कार्य को कर रहे थे हैं उसका हम पर्याय बन जाते हैं, अपनी जो जीवन की व्यवहारिकता है, जो हुनर हमारे पास में है, जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से और जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है उसके प्रति हम काफ़ी लॉयल हो जाते हैं, और कुल मिला के एक अच्छी बिलोंगिंगनेस जब हमारे कार्य और हमारे बीच में क्रिएट हो जाती है तो वहाँ हमारा अधिकार और कर्तव्य जुड़ जाता है, और उस जुड़ने का परिणाम ये होता है कि हम तो महसूस करते ही हैं कि हमने एक अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है, कि सकारात्मक दृष्टि विकसित की है, सार्थक दृष्टिकोण भी हमने विकसित कर लिया है, और समाधान में अब हमारे नवीनता है। कहने का अर्थ कि सृजन हम कर रहे हैं, क्रिएशन हम कर रहे हैं, लेकिन क्रिएशन में इनोवेशन के प्रति हम कॉन्शियस हैं। हमें लगता है कि जो भी हमने सृजन किया है ये हमें एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन को एन्जॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनोवेशन की आवश्यकता होती है, और जब इनोवेशन किसी सृजनात्मक गतिविधि में जुड़ता है तो निश्चित रूप से हमें तो आनंद आता ही है, और सामाजिक जो स्वीकारोक्ति है, सोशल जो एक्सेप्टेंस है, वो भी बढ़ जाता है। और आधुनिक बाजारवाद के युग में अगर हम देखने की बात करें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि अगर कोई इन्वेंशन होती है तो उस इन्वेंशन में प्रतिदिन या प्रति समय या एक अल्पावधि के बाद में वहाँ कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और उस परिवर्तन का ही परिणाम होता है कि उस ब्रांड की या उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की आप अलग अलग लेवल पर चर्चा करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जब ये कंपनी कुछ नया करेगी तो एक नए मॉडल के साथ में मार्केट में होगी। तो कुल मिला के हमारी दृष्टि अगर सकारात्मक हो, दृष्टिकोण हमारा सार्थक हो, तो समाधान हमें एक नए परिवेश में, एक नए सृजन के साथ में, एक नवीनता के साथ मिलता है। हमें तो आनंद आता ही है, लोक व्यवहार में भी उस आनंद को स्वीकृति मिलती है। जी
1: डॉक्टर अजय सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा। इसके साथ में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, सार्थक नवीनता की विशेषता के बारे में आपने बताया। अब मौजूदा संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम लोग, और जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वो भी चीज़ें काम आती है, लेकिन अगर हमारे पास बजट है तो हम नई चीज़ें भी उस तरह का माहौल बना भी सकते हैं। तो आइए, एक और बात आती है जहाँ पर हम लोग सार्थक दृष्टिकोण से नवीनता का एक उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारे डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया कोई कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे बहुत सारे मरीज ठीक हो सकते हैं, तो अब ये बच्चों के जीवन में, माता पिता और बच्चों के बीच में नवीनता को लाने के लिए कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं।
2: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब सार्थकता की दुनिया के अंदर बात होती है तो एक बात निकल के आती है कि कोई इंसान बढ़िया तो है लेकिन वो उपयोगी कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक होने में ही हमें बहुत समय लग जाता है। हमें लगता है कि अभी चीज़ों को देखने का नज़रिया, उसको परसीव करना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना, ये सारी चीज़ों पर आपने चिंतन किया है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कार्य के प्रति सकारात्मक हैं। अब सकारात्मकता किसी परिणाम तक कब पहुँच सकती है, तो सकारात्मकता उस समय परिणाम तक पहुँचती है जब इंसान को सार्थक करने की अपने मन में ठान लेता है, जहाँ एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को लेके आप चलते हैं। बहुत सारे उदाहरण पर हम लोग बातचीत करते हैं तो उदाहरण कभी सिद्धांत नहीं होता है, कारण उसके पीछे है कि उस सिद्धांत के पहले बहुत सारी सिचुएशन में हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और जब प्रयोगवादी कोई दृष्टि और दृष्टिकोण होता है तो वहाँ पर वो प्रयोग कई बार सफल भी है और असफल भी है। जैसे उदाहरण के लिए कि कई बार हम किसी केस स्टडी को करते हैं और उस केस स्टडी में ये हो जाए कि नहीं, इस केस स्टडी को सभी बच्चों के ऊपर लागू कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा मिट्टी खाता है या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को, चौक है, दिया है, वो खा जाता है तोड़ तोड़ के, उसको अच्छा लगता है। अब पेट में कीड़े आ गए, अब कीड़े आ गए तो आपने डॉक्टर को दिखाया, नेचुरली दिखाएंगे, प्रॉब्लम आएगी तो अब डॉक्टर किस चीज़ की दवाई देंगे? आपका पेट में मिट्टी गई है और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जीवाणु या विषाणु या इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है, वो चीज़ें ठीक हो जाए, अर्थात वो हम फिजिकल रूप से अपने आप को फिट कर लें। अब ये सारी प्रक्रिया हो गई, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि यहाँ पर क्या करती है कि वो ये पता लगाती है कि एक बच्चा ये मिट्टी क्यों खाता है, और इस मिट्टी को ये नहीं खाए उसके लिए हमारे पास में क्या सार्थक उपाय है। अब उन उपायों को जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने ऐसा किया, अब मैंने कहा गार्जियन से कि आप एक टेबल पर इस बच्चे को बिठा दीजिएगा या सोफे पर बिठा दीजिएगा, और सामने की जो टेबल है वहाँ पर कुछ दिए या चौक या मिट्टी को आप एक प्लेट में रख के उसमें धनिया टमाटर और ये सब डाल के मिला के उसको नमक वगैरह बढ़िया जैसे भेलपूड़ी बनाते हैं ऐसे बना के उस बच्चे को खिलाइएगा। अब ऐसा करते समय ही वो बच्चा आपको मना कर देगा। तो स्टार्टिंग में हमें हो सकता है कि एक चेयर पर बड़े प्यार से दो लोग उस बच्चे के आसपास बैठ जाएं, उसको पकड़ के बैठें, सामने एक टेबल हो, और जब कोई व्यक्ति दीवार में से चाकू से कोई खुरच के उसका डस्ट निकाल के प्लेट में इकट्ठा करेगा, उसमें इन चीज़ों को मिलाएगा, उस बच्चे को खिलाने की चेष्टा करेगा, तो जैसे ही हम पहले चम्मच से उसको खिलाने का प्रयास करेंगे तो वो उसका पैर ओपन है, आपने हाथ के दोनों उसके बगल में आप बैठे हैं, उसने पैर से टेबल को मार दिया, आपको भी थोड़ा चोट लग गया, प्लेट भी गिर गया। अब प्लेट मान लीजिए कांच का है, तो उस समय आप कुछ मत बोलिए, आप अलग हो जाइए। आप देखेंगे कि वही बच्चा ये सोचता है कि ये जो मैं गलती कर रहा था मिट्टी खाने की, इसका माता पिता ने विरोध नहीं किया, मेरे को डांट डपट नहीं की, मेरे को मारा पीटा नहीं, किसी सोसाइटी में जाके और बच्चों के सामने ये कंप्लेंट नहीं रखा उन्होंने, मेरे कुल मिला के एक सामाजिक जो इमेज बिल्डिंग उस बच्चे की है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, और इसमें एक सार्थकता ढूंढने का प्रयास किया कि अपने बच्चे को हम मौन रूप से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये इस मिट्टी में ये सब चीज़ें हम मिला देते हैं खाने पीने की, तो क्या ये भेलपूड़ी वाकई में बनेगी और ये हमको इससे कोई लाभ होगा। तो बच्चे ने क्या किया कि डिस्ट्रॉय किया और विरोध किया, और उसके बाद वो उठा, वो कांच को भी उसने उठा के बाहर फेंका, फर्श को भी क्लीन किया, और कान पकड़ के धीरे से माता पिता से कहता है कि आज के बाद मैं ये मिट्टी में नहीं खाऊंगा। तो कुल मिला के हमने क्या किया कि उस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्म में कोई चीज़ ना बोल के, मतलब वो जैसे हम कोई चीज़ को लेके हर्ट होते हैं, हम फीलिंग में आते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो एज ए ह्यूमन बींग आप बड़े हुए हैं तो आपका नहीं होना चाहिए था। तो ये जो नैसर्गिक या मानवीय जो फ्लैक्चुएशन है, तमाम वैल्यूज़ को जानने के बाद सबको पता है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन हम रोज़ नाराज़ होते हैं। सबको पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम क्रोध करते हैं। सबको पता है कि आंखें दिखाना नहीं चाहिए, अब आपका बॉस आपको आंखें दिखाएगा तो आपकी मनस्थिति क्या होगी? तो क्या वहाँ आप पेन डाउन करके नहीं बैठेंगे? क्या आप अपने ऑफिशियल प्रोसेस के प्रति उतने लॉयल या वफादार, या अगर मान लीजिए कि बाहरी तौर पर हो भी गए लेकिन अंदर से रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ऐसे ही बच्चे के साथ में उसकी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और जहाँ पर माता पिता थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा चीज़ों को जस्टिफाई वे में देखते हैं और उन उस कार्य को कार्य वो भी कर रहे हैं, विरोध बच्चे का वो भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के अलग अलग तरीके को वो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी वो कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। उनका जो फोकस है वो है कि बच्चे की जो बुरी आदत है उसको हम दूर करके उसका समय हम बचाएं, उसको बीमार होने से बचाएं, क्योंकि कुल मिला के स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होगा, और पेट जो बॉडी के अंदर बिल्कुल मध्य में है और इसमें अगर कोई विकृति आती है तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट पूरे शरीर पर पड़ेगा, और जब शरीर बीमार होगा तो उस समय आत्मा जो अनुभव करती है सब कुछ, उसे फीलिंग होगी और वहाँ वो अपना विरोध भी जताएगा और निराशा भी होगी, उदासी भी आएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि छोटी छोटी आदतों और स्वभाव में बदलाव के लिए मैं कुछ आपको जो उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये उदाहरण सिद्धांत नहीं है, और इस मिट्टी खाने की आदत को सुधारने के लिए सारे बच्चों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये बच्चे के स्वभाव, उसकी आदत, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, उसके उसकी मनोदशा, इन सभी का अध्ययन करने के बाद एक डॉक्टर ये निर्धारित करता है कि किस पर्टिकुलर केस में किस एक सॉल्यूशन को एड ऑन किया जाए जिससे कि दृष्टि भी सकारात्मक रहे और दृष्टिकोण भी सार्थकता के साथ वहाँ प्रकट हो सके और बच्चे की आदत और स्वभाव में बड़ी सहजता से बदलाव आ जाए, और इसी बदलाव का नाम हमें समाधान के रूप में देखना चाहिए। जी
1: जी जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया। सार्थक दृष्टिकोण में नवीनता एक उदाहरण के साथ आपने दिया, बड़ा अच्छा लगा हमें। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आज हम लोग सार्थकता के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एक सकारात्मक दृष्टि के प्रति गहरी आस्था विकसित करने के कुछ तरीके बताइए।
1: बहुत अच्छा, एक अच्छी बात निकल के आती है कि जीवन में जब हम किसी सिद्धांत को फॉलो करने की बात करते हैं तो एक मन में जरूर एक उत्सुकता रहती है कि किसी सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जो बेसिक वैल्यूज है वो क्या हो सकती है और किस स्टेप को हम फॉलो करके किस स्टेप पर जाके हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं या सार्थक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो नज़रिया है उसमें बदलाव आने का अर्थ है कि सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है वह नहीं बदलता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो तपस्वी अपने जीवन में तपस्या करना चाहते हैं उनके लिए रात जो है वो दिन है और दिन रात है। तो यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष रूप से इस बात को सुना जाए तो ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ये कहना चाहता है कि रात दिन है और दिन रात है, इसका मतलब क्या है, ये पागल है क्या? तो ये व्यक्ति पागल नहीं है, एक्चुअल में वो सृष्टि को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहा है। उनका ये मानना है कि रात्रिकालीन बेला में जब संपूर्ण सृष्टि विश्राम कर रही होती है तो मैं जागरण करके स्वयं को सशक्त अर्थात मनोबल अपना बढ़ा सकता हूँ, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकता हूँ, आत्महित की बात सोच सकता हूँ और कुल मिला के निज निधि निजानंद स्वरूपों पर अपने को फोकस करके अपनी उन्नति कर सकता हूँ। अब ये बात एक ऋषि के मन में आ गई तो जब वो रात भर ध्यान और तपस्या और गुणग्राही स्थितियों में स्वयं को रखने का प्रयास करेंगे तो दिन उनके लिए रात होगी। अब दिन को रात बोलने का अर्थ है कि जहाँ दुनिया जाग गई, लोग अपनी एक्टिविटीज़ में रख गए और वो इंसान जो तपस्वी है वो अपनी कंदरा में जाके, अपनी गुफा में जाके या अपने घर में जाके विश्राम कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब रात होगी तो अपना जागरण हमारा शुरू होगा। कहने का अर्थ है कि दिन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है उसको वो रोक नहीं रहे हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मनस्थिति से एक नई स्वीकारोक्ति को जन्म दिया और कहा कि तपस्या के लिए रात्रिकालीन बेला उचित है तो वो मेरे लिए दिन है, अर्थात वहाँ मेरी आत्मा का जागरण हो रहा है। अब इस उदाहरण का मतलब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि भाई साहब, अगर एक ऋषि या एक महान आत्मा, एक महात्मा या धर्मवेत्ता या अध्यात्मवेत्ता ये सोच रहे हैं तो क्या रात दिन हो जाएगा और दिन क्या रात हो जाएगा? तो दार्शनिक दृष्टिकोण से ये एक पुरुषार्थ जहाँ वो आत्म उत्थान की बात कर रहे हैं वहाँ उनके लिए सही है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण में हम देखें तो रात दिन नहीं होने वाला है और दिन रात नहीं होने वाला है। केवल क्या हुआ, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव हुआ। तो जब दृष्टि और दृष्टिकोण बदलता है तो उसके लिए कुछ इंटरनल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जो भाई जी ने प्रश्न भी किया। उस इंटरनल पुरुषार्थ में हम ये करते हैं कि जो सर्व सामान्य लोग अपने व्यवहार में आचरण कर रहे हैं उस व्यवहार में हम बदलाव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक इंसान साधारण सोच के साथ में चल रहा है तो हम अपने सोच में वहाँ बदलाव करेंगे, अर्थात साधारण से उठ के हम व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार कोई व्यर्थ सोच की तरफ जा रहा है तो जो व्यर्थ सोच की तरफ जा रहा है तो हम उसमें कुछ स्वयं को बदलने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार कोई नकारात्मकता की ओर जा रहा है तो वहाँ भी हम बदलाव का प्रयास करेंगे। अब आप बोलेंगे वो बदलाव के प्रयास में किन बातों को सम्मिलित किया जाए, तो आप देखें कि जहाँ साधारण व्यर्थ और नकारात्मक पर कार्य चल रहा है तो हम साधारण की बजाय वहाँ समर्थ चिंतन पर बात करेंगे। तो जब इंसान समर्थ चिंतन की बात करता है या सकारात्मक चिंतन की बात करता है या फिर सकारात्मक चिंतन एक बार आरंभ हो गया तो वही चिंतन फिल्टर होके किसी एक मूल्य को जब हम फॉलो करने लगते हैं तो उस पर हम अडिग हो जाते हैं और ये हमारा अचल निश्चय और विश्वास ये बताता है कि अब ये जो सकारात्मक चिंतन है ये सार्थक चिंतन में बदल गया। अब जब सार्थक चिंतन में बदलाव आता है तो वहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे और चीज़ें फिल्टर होंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जिसको हम ग्रेट थिंकिंग बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सकारात्मक से ही प्रारंभ होगा और वो सार्थकता की ओर होते हुए और महान चिंतन की ओर चला जाएगा। धीरे धीरे हमारी सोच में बदलाव होने पर हम महसूस करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं महसूस करता हूँ बाल्यकाल से कि नहीं, मुझे को अभी धीरे धीरे जब आगे में बढ़ूँगा तो गुड, बेटर, बेस्ट की ओर जाऊँगा, एक्सेलेंट की ओर बढ़ूँगा, ग्रेटनेस की ओर बढ़ूँगा। और जब ग्रेटनेस की ओर बढ़ जाऊँगा तो उसके बाद भी कुछ है क्या, अब आप बोलेंगे ग्रेट मतलब सफिशियंट है, आप लिख देते ना सोशल मीडिया पर ग्रेट, ग्रेट मीन्स अल्टीमेट स्टेटमेंट, लेकिन ग्रेट के आगे जब हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी दृष्टि जो सकारात्मकता का हमने प्रयास किया है वो वहाँ फलीभूत होती है, और वही धार्मिक हमारा जो आचरण है वो स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग का लास्ट डिजायर है, द हाईएस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग समम बोनम, अर्थात जैसे वो धरती पर आके मोक्ष चाहता है, तो वो जो मोक्ष की तैयारी है अर्थात कर्म बंधन और कर्म संबंध इन दोनों के दबाव से मुक्त होके एक नई दृष्टि की ओर पहुंचना, यही हमारे जीवन में सार्थकता को एक्सप्रेस करता है। जी
0: चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और सार्थक दृष्टिकोण के बारे में बहुत ही गहरा अनुभव आपने प्रकट किया है, और अब वक्त हो गया है इजाज़त चाहने का, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। मुझे लगता है सार्थकता में और बातें हम लोग जोड़ सकते हैं, उसे अगले एपिसोड में इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ करते हैं, और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर देता है और सकारात्मक लोगों के साथ आपको जो है जोड़ता जाता है, और आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाने लग जाते हैं। तो चलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर जश्न मनाएं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर से बेहतर बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: समापन। तो बच्चों, आज हमने जाना कि रचनात्मक सोच और नवीनता कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का,
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का,
4: खुशियों के त्योहार का,
6: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
7: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 अगस्त की बातें हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। आज 28 अगस्त है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विशेष नारायण गुरु फिराक गोरखपुरी विलायत खा MGK मेनन राजेंद्र यादव अलविदा सुल्तान सरस्वती प्रसाद TV राजेश्वर जगदीश सिंह खेड़ केहर अनुज नैयर विजय देवी अनु रानी इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही मिर्जा राजा जय सिंह शंको चौधरी कपिल देव द्विवेदी इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमेशा विचार सुनाता हूं और आप सभी का विचार सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी। दयाराम जी ने मैसेज करके याद किया था कि आज का विचार मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सुभाष जी ने भी याद भेजा है, विचार सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर विचार के साथ। कहते हैं कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटा दिया जाए तो मैं 6 घंटे को लड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। जी हाँ, विचार सुनिए एक विचार आपके लिए आज का। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे को लड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कहा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं नारायण गुरु के बारे में, आज जिनका जन्मदिन है. भारत के एक महान संत, समाज सुधारक थे. कन्याकुमारी में मारुतिवन पहाड़ियों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की और गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी. वैसे ही नारायण गुरु को परम की प्राप्ति गुफा में हुई और समाज सुधारक नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और उनकी समाधि केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है. नारायण गुरु को श्री नारायण गुरु के नाम से भी जाना जाता है. उनका जन्म एजवा जाति के परिवार में हुआ था और केरल के जातिग्रस्त समाज में उन्हें बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा. उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया और जातिवाद को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक आज़ादी और सामाजिक समानता के लिए नए मूल्यों को बढ़ावा दिया. नारायण गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से अपने स्वयं के प्रयासों से दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया था. तो आइए इनके बारे में जानते हैं अभी. और श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में 1855 में हुआ था. स्वयं पिछाड़ी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते थे. इनका घर का नाम नानू था. ये बचपन से ही बहुत नटखट थे. इनके पिता मदन आसन एक किसान थे और वे बहुत ही पॉपुलर आचार्य गुरुकुल के और संस्कृत के विद्वान थे. आयुर्वेद और ज्योतिष में विशेष प्रवीण ज्ञाता थे. श्री नारायण गुरु की माँ एक सरल महिला थी. अपने माता पिता की चार संतानों में एकमात्र बालक थे नारायण अथवा नानू. तो आई इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर अपने घर के आसपास के जो स्कूल है गाँव में उनको मिला और वहाँ उन्होंने संस्कृत भी पढ़ाई की. और शिक्षा के बाद नानू ने घर पर रहकर खेती और घरेलू कामकाज में हाथ बढ़ाया. वे दिन प्रतिदिन संस्कृत काव्य पाठ पढ़ते थे करते थे और मंदिर में पूजा और एकांत में ध्यान भी करते थे. 14 वर्ष की आयु में उन्होंने नानू भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए और 15 वर्ष की आयु में माता का देहांत के बाद मामा कृष्ण आयुर्वेदाचार्य के उनके देखभाल की और कृष्ण वेद यार को अपने भांजे की अप्रतिम प्रतिभा का जल्दी ही पता लग गया. तो नानू को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने एक योग्य अध्यापक रमन पिल्ले आसन के पास भेज दिया. रमन पिल्ले एक विशेष हिंदू थे, स्वर्ण हिंदू थे. चूँकि नानू जन्म से ही अछूत थे, उन्होंने अपने गुरु के घर के बाहर रहकर अध्ययन करना शुरू कर दिया. नानू एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुए और उन्होंने अपने सभी साथियों से आगे निकलकर शिक्षा के सामने संस्कृत और अपनी विद्वत्ता जो है सिद्ध कर दी. संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1881 में नानू अत्यधिक बीमार पड़ गए और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा. आइए आगे बढ़ते हुए आगे क्या हुआ इसके बारे में थोड़ी देर में जानते हैं. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर. इस कार्यक्रम को सुनते रहो.
2: तो माया कितना भी जोर लगाए तो दौर नहीं टूटेगी.

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गो

0: जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, आप सभी को ले चलता हूं मैं। और जैसे उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया तो फिर बीमार हो गए तो घर लौट गए। रोग मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया और यहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों को, विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। ये दौर उनके जीवन में बड़े मानसिक संघर्ष का दौर रहा। एक ओर तो उन्हें पारिवारिक भरण पोषण की चिंता करनी होती थी, दूसरी ओर उनके भीतर आध्यात्मिक जो यथार्थता के अनुभवों को पाने की तीव्र उत्कंठा होती रहे। उनके सब कामों पर उन्मुक्त आध्यात्मिक जीवन की तीव्र इच्छा की झलक दिखने लगी थी। चिंतित रिश्तेदारों ने उनकी सेवा में सोच में बदलाव की दृष्टि से उनका विवाह कर दिया। 28 वर्ष की आयु में श्री नारायण गुरु की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उनका विवाह कर दिया गया। फिर घर का जो है गृहस्थ जीवन को देखते हुए वो परेशान और भी ज़्यादा हुए और घर का त्याग करके नानू आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए। योग शिक्षा ली और फिर गुफाओं में साधना की। कठोर अनुशासन का व्रत साधा। व्यक्ति के विकास और गुण संपन्न हेतु कर्म और गति का दौर शुरू हुआ। काफ़ी समय बाद श्री नारायण गुरु लोगों के बीच में लौटे। गांव गांव घूमे, भोजन मिला, उसे खाया, समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ रहे, पिछड़े वर्ग में घुले मिले और सभी लोगों को उनसे प्रभावित होना पड़ा। उनके प्रति श्रद्धा जागी। समाज कार्य में सबसे पहले श्री नारायण गुरु ने त्रिवंतपुरम में 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में अरुवीरम में नैयर नदी के तट पर 1888 में शिव मंदिर की स्थापना की और इस मान्यता को ठुकरा दिया कि केवल एक ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है। हिंदू मंदिरों में जिनका प्रवेश वर्जित था वे इस मंदिर में निर्बाध आ सकते थे। तो यहाँ से उनकी जो है सामाजिक सेवा और खुद की तपस्या का जो प्रमाण है वो शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे मंदिर के साथ साथ आश्रम की स्थापना किया और आश्रम में जो भी लोग आते थे श्रद्धा और कल्याण की व्यवस्था के साथ उन्हें जो भी उनका अनुभव था वो सुनाते थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित करते थे। तो इस तरह से महापुरुष कथन। फिर गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने लिखा है, मैंने विश्व के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। इन यात्रा के दौरान मुझे अनेक संतों और विद्वानों का दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु से आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महान हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों में उनके समक्ष भी हो। गुरुदेव टैगोर और स्वामी जी श्री नारायण गुरु की भेंट 1922 में हुई थी। इस तरह से बहुत से गांधी जी ने भी उनके बारे में लिखा और राय मोराला ने भी उनके बारे में लिखा है। तो इस तरह से जीवन दर्शन उनका जो है बड़ा मुख्य था और उन्होंने तीन भागों में उसे बांटा था। एक ऐसा भक्त जो संसार के दैनिक झगड़ों से दूर शांति दूत शांति प्रिय स्थानों पर जंगलों में पर्वतों की गुफाओं में धीमी बहती नदी के तट पर अथवा इसी प्रकार से निर्जन स्थानों पर सत्य को ढूंढता रहता है। दूसरा, जब मनुष्य एक तपस्वी हो जाता है, एक वास्तविक योगी बन जाता है, तो उसके जीवन में जब वह गीता के सूत्र को अपना धर्म मान लेता है, कर्मण्यवादी करस्थे मा फलेषु कदाचन, तो जब वो वास्तविक रूप में कर्म में विश्वास रखते हुए संसार के मोह माया से हटकर एक ज्ञानी बन जाता है, लेकिन उसे समाज की आवश्यकता अथवा समाज की गतिविधि का भी ज्ञान रहता है। ये एक धर्म प्रमाण बौद्धिक का रूप है। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में दिखाई देती थी। तो ये थी कुछ बातें श्री नारायण गुरु के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी व्यक्ति की जीवन कहानी से रूबरू होते हैं। तो आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं भारत के बहुत ही पॉपुलर उर्दू के जाने माने शायर फिराक, उनका तकल्लुस था, उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय जाता है। फिराक गोरखपुरी ने अपना साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रची बसी हुई थी। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो आइए ऐसे मशहूर फिराक गोरखपुरी के बारे में, जो शायरी में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। 28 अगस्त आज ही के दिन 1886 में गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। तो आइए इनके बारे में मैं आपको हमारे भारत के बहुत ही नए उभरते और लेजेंडरी लेखक, राइटर और निर्देशक, साथ ही साथ बहुत ही पॉपुलर बाहुबली जैसी स्टोरी लिखने वाले विशेष महान शायर, जिन्हें दुनिया में आज सभी जानते हैं, मनोज मुंतशिर, इनकी द्वारा फिराक गोरखपुरी की अनसुने किस्से अभी सुनते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए सीधे मैं ले चलता हूँ आपको मनोज मुंतशिर की आवाज़ से जोड़ता हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

94 का किस्सा है। मेरी स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी और अब वक्त था कॉलेज चुनने का। मेरी गैंग में मेरे जो दोस्तों का ग्रुप था उसमें किसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी चुन ली, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई रुड़की चला गया और कोई रशिया। लेकिन मैं एकदम क्लियर था, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करना था। क्यों? क्योंकि मुझे उस शहर की हवाओं में सांस लेना था जहां फराग गोरखपुरी रहा करते थे, उन गलियों में भटकना था जहां फराग साहब मॉर्निंग वॉक्स किया करते थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट की वो दीवारें देखनी थी जिन्होंने फराग साहब को बोलते हुए सुना था, कैंपस के उस पेड़ से बतियाना था जहां जाड़ों में कुर्सियां लगाकर फराग साहब घंटों धूप सेका करते थे, मुझे नेत्राम की वो कचौरियां खानी थी जो फराग साहब को बेहद पसंद थी, मुझे कटरे के वो चायखाने देखने थे जहां बैठकर फराग साहब दोस्तों को शेर सुनाया करते थे। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। मेरी टू डू लिस्ट बहुत लंबी थी और इसीलिए मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी पीसीबी हॉस्टल में रहने के लिए। पीसीबी छात्रावास 8x4 बैंक रोड से काफी करीब था। 8x4 बैंक रोड, फराग साहब का एड्रेस 8/4 बैंक रोड। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन और आखिरी दिन, दोनों के बीच तकरीबन 4 साल का वक्फा, इन 4 सालों में और कुछ भी बदला हो, बैंक रोड की परिक्रमा करने का मेरा नियम कभी नहीं बदला। लक्ष्मी चौराहे पर शाम की चाय और बंद मक्खन खाने के बाद मैं हर शाम उन गलियों का तवाफ करने निकल पड़ता जहां आज भी मुझे फराग साहब के कदमों की आहट सुनाई देती थी। अक्सर वहां ऐसे लोग भी टकरा जाते जिन्होंने फराग साहब को देखा था, उनके साथ वक्त गुजारा था। ऐसे लोगों से मिलके मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन दरअसल मुझे जलन होती थी। फराग साहब ने सच ही कहा था, आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हम असरों, जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फराग को देखा था। मुझे ये सब बातें आज इसलिए और ज्यादा याद आ रही हैं क्योंकि आज हिंदी उर्दू शायरी के इस युग पुरुष का जन्मदिन है। जुबानों के जानकार मानते हैं कि अगर मॉडर्न उर्दू पोइट्री में गालिब के बाद कोई एक नाम चुनने की शर्त हो, सिर्फ एक नाम, तो वो नाम फराग गोरखपुरी का होगा। इतना बड़ा रुतबा है फराग साहब का और ये सिर्फ उनके शेरों, उनकी गजलों, उनकी नज्मों की बदौलत नहीं है। उनके भक्कड़पन, उनकी जिंदा दिली, छोटे बड़े को एक मानने वाली उनकी सोच और उस शख्सियत का नतीजा है जो अपने जीते जी ही लेजेंड बन चुकी थी, जिसकी कहानियां यूनिवर्सिटी कैंपस में दिन रात गूंजती रहती थी। एक बार पंडित नेहरू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तकरीर कर रहे थे, सामने सैकड़ों स्टूडेंट्स और प्रोफेसर बैठे हुए थे। अपने भाषण के दौरान पंडित जी ने इतिहास का कोई वाकया सुनाया और उसका साल बताने में गलती कर गए। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक सीनियर प्रोफेसर खड़े हो गए और उन्होंने तकरीर के बीच में पंडित जी को टोक दिया, पंडित जी माफ कीजिएगा लेकिन यह घटना उस साल में नहीं हुई जिस साल में आप बता रहे हैं, वो साल तो कोई और था। जाहिर सी बात है, पंडित जी एक पल के लिए झेंप गए। फराग साहब ये देखकर कैसे चुप रह सकते थे, अपनी कुर्सी से बैठे बैठे कड़क के बोले, सिट डाउन प्रोफेसर, सिट डाउन, यू आर अ क्रैमर ऑफ हिस्ट्री एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। तुम इतिहास रटते हो और वो इतिहास रचते हैं। नेहरू जी मुस्कुराने लगे और पूरा मजमा तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। जब फराग साहब का नाम बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि इलाहाबाद शहर को उनके नाम से जाना जाने लगा, तो एक बार नगरपालिका से कुछ बड़े अफसर उनसे मिलने आए। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने फराग साहब को बड़ी इज्जत के साथ बताया कि नगरपालिका ने बैंक रोड चौराहे पर उनकी एक प्रतिमा लगाने का फैसला किया है। अब जीते जी किसकी प्रतिमा लगती है, फराग साहब को इस बात पर बेहद खुश होना चाहिए था, बात खुशी की थी, लेकिन वो भड़क गए। उन्होंने फौरन अफसरान को बाहर का दरवाजा दिखा दिया, निकल जाइए मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ऑफिसर समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया, गलती क्या हो गई, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने। फराग साहब चीखने लगे, अब ये दिन आ गए हैं मेरे कि बीच चौराहे पर कौवे मेरे सर पे बीट करेंगे, ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी, आइंदा ऐसा जलील ख्याल आए तो अपने बाप का पुतला लगा देना, खबरदार जो फराग गोरखपुरी का नाम लिया। ये औघड़पन, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। उनके साथ रहना एक भूचाल के साथ रहने जैसा था, कब धरती डोल उठेगी कुछ पता नहीं।
उनके साथी और शागिर्द रमेश चंद द्विवेदी बताते हैं कि फिराक के लॉन में एक बैगन का पौधा अपने आप उगाया था। पौधा अपने शबाब पर आ चुका था और उसमें एक बैगन भी लग गया था, सिर्फ एक। जाड़ों की नर्म धूप में बैगन बहुत खूबसूरत मालूम होता था और फिराक उसे आंखों में प्यार भरकर पैरों पैरों देखते रहते थे। नौकर को सख्त आदेश था पन्ना को कि खबरदार बैगन टूटने न पाए, अगर बैगन टूट गया तो कयामत आ जाएगी। बैगन को लकड़ियों से घेरना भी उनको पसंद नहीं था। इसी दौरान फिराक साहब को दिल्ली जाना पड़ गया। जाते जाते बैगन की हिफाजत की जिम्मेदारी नौकरों को सौंप गए, खास तौर से पन्ना को। दिल्ली पहुंचकर फिराक ने तार भेजा कि बैगन की पूरी हिफाजत और रखवाली की जाए। दिल्ली से लौटकर घर आए और उनका रिक्शा अभी गेट पर ही था कि तेज आवाज में कड़क के बोले, रमेश रिक्शे से कूद पड़ो और फौरन अंदर जाकर देखो कि बैगन सही सलामत तो है। बैगन टूट चुका था। रमेश को खामोश देखकर वो समझ गए कि बैगन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नौकर पर बहुत खफा हुए और ऐलान किया कि पन्ना तुम्हारी पूरी एक महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। पन्ना क्या करता, चुपचाप खड़ा था। कुर्सी पर बैठकर सर पे हाथ रख के फिराक गम में डूब गए। फिर अपना ही एक शेर पढ़ा, जब दिल की वफात हो गई है हर चीज की रात हो गई है। बेचारा पन्ना बैगन के चक्कर में उसकी तो एक महीने की तनख्वाह मरी गई, उससे रहा नहीं गया, बोल पड़ा, बाबू एक बैगन के लिए इतना हंगामा, दो पैसे के बैगन के लिए मेरी महीने भर की तनख्वाह काट ली। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। फिराक चीख पड़े, वो दो पैसे का बैगन था, वो बैगन नहीं पूरा ब्रह्मांड था। देखा नहीं उसके चारों ओर सूरज की किरणें किस श्रद्धा और भक्ति से तवाफ करती थीं, जैसे कोई पार्वती शिव की परिक्रमा कर रही हो। वो दो पैसे का बैगन नहीं, तुम दो पैसे के आदमी जरूर हो। पन्ना से रहा नहीं गया, बोला, बाबू आप दुखी ना हो और चिल्लाए ना, मैं अभी जाकर बाजार से 10 बैगन ले आता हूं। फिराक का गुस्सा अब गम में बदल चुका था। बोले, पन्ना साहब क्या तुम बाजार से बैगन लाकर इसी पेड़ में उसी अंदाज में उसी एंगल पर कोई और बैगन लगा सकते हो? उसे तुम्हारे बाप ने नहीं सृष्टि ने पैदा किया था, कुदरत ने पैदा किया था। हवा कैसे उसे अपनी बाहों में झुलाती थी, किरणें चूम के उठाती थी और जमीन पर उस बैगन के होने से रंग था, नूर था, रौनक थी, रोशनी थी, पौधे की कोख उजड़ गई। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई मेरा दुख क्या समझेगा, जाओ चाय ले आओ, तुम्हारी तनख्वाह नहीं कटेगी। फिराक गोरखपुरी किसी इंसान का नहीं, एक बैंगन में ब्रह्मांड देखने वाली आंखों का नाम था, उस कलम का नाम था जो कागज पर स्याही नहीं दिल का खून उड़ेल देती थी। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। फिराक साहब का पागल दिल और जीनियस दिमाग, दोनों की अनगिनत कहानियां मुझे जबानी याद है। अगर आप और सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम। टाइमलेस कालजयी। कालजयी रचना कौन सी होती है? बहुत सीधा सा अर्थ है कि जिस पर समय की धूल न जमे, बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी जो कहीं से पुरानी ना लगे। 1936 में पहली बार मुंशी प्रेमचंद की एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी जामिया में, जिसका नाम था कफन। प्यार किए बिना कोई संपूर्ण कैसे हो सकता है? योद्धा वही है जो हजारों को मार गिराए लेकिन नैनों का एक तीर न सह पाए। इश्क के भंवर में अपनी कश्ती फेंकने से पहले उसने अपने दिल का डर सलीम पर जाहिर किया था। कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली, ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली। हुजूर एक ना एक दिन ये बात आएगी कि तख्तो ताज भले हैं कि एक कनीज भली। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात करते हैं अब एक और शख्सियत के बारे में, और आशा करूंगा कि आपको इनकी कहानी सुनकर अच्छा लगेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष, ये अंतरिक्ष विभाग इसरो के परामर्शदाता हैं। मेनन जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर मेनन ने 1953 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय यूके से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। भारत और विदेश में असंख्य मानद डायरेक्टर डॉक्टरेट आदि की उपलब्धि हासिल हुई है। प्रोफेसर मेनन भारत में सभी तीनों विज्ञान अकेडमियों के फेलो हैं और वे प्रत्येक के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर मेनन ने ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष अवनिवेश किया है, और विशेषकर प्राथमिक कणों की उच्च ऊर्जा परस्पर क्रिया के लिए वे विख्यात हैं। उन्होंने किरणों कण भौतिकता में वैज्ञानिक कार्य किया है। तो आइए ऐसे विशेष वैज्ञानिक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मेनन जी ने जसवंत कॉलेज जोधपुर भारत में अपनी विज्ञान पढ़ाई पूरा करके 1946 में पूरी की थी। इसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत से ही MSc की डिग्री 1949 में प्राप्त की, और 1960 में उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय यूके से PhD किया, और फिर 1955 में पोस्ट डॉक्टरेटल रिसर्च की बात उन्होंने की। और भारत की सभी तीन विज्ञान अकेडमियों के फेलो, रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो 1970 में उन्होंने प्राप्त किया, और फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यूके मानद फेलो 1997 में इनको मिला। थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस के संस्थापक फेलो रहे। और फिर उपलब्धियों की बात करें या फिर अलग अलग पदों पर अगर काम किया इनको बोले, तो ऐसे 16 से 17 अलग अलग वैज्ञानिक पदों पर रहकर इन्होंने काम किया। और व्यावसायिक गतिविधि ब्रह्मांडीय किरणों कण भौतिक में वैज्ञानिक कार्य इनका काफ़ी फेमस रहा। पुरस्कारों की बात करें तो 9 से 10 पुरस्कार इन्हें प्राप्त है जो लिखित में हैं, और जो लिखित में नहीं है वो तो अनगिनत हैं। प्रोफेसर मेनन ने विश्वविद्यालयों में DSc ऑनर्स प्राप्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्कल विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, IIT मद्रास और खड़गपुर से भी इन्होंने अपनी जो है विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में जानकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मेनन का जन्म आज ही के दिन 1928 मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। चलिए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करके आपको फिर एक सुंदर विचार सुनाऊंगा और उसके बाद फिर अलविदा कहना चाहूँगा। भारत के बहुत ही पॉपुलर सितार वादक थे विलायत खां, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। और उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुस्तें सितार वादन से जुड़ी रही। उनके पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमादत हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे थे। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब ए सितार का सम्मान दिया था। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म 28 अगस्त 1928 को तत्कालीन पूर्व बंगाल के गौरीपुर नामक स्थान पर एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उनके पिता उस्ताद इनायत हुसैन खां अपने समय के न केवल सुरबहार और विस्तार के विख्यात वादक थे, बल्कि सितार वाद्य को विकसित रूप देने में अपना काफ़ी योगदान दिया था। तो ऐसे विशेष व्यक्ति की जीवन कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है और वादन की नई शैली के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र के साथ जो नई शैली थी, वो फिल्मों में भी काफ़ी अलग पहचान बनाई और 1958 में निर्मित सत्यजीत रे की बंगाल फिल्म जलसाघर और 1969 में मर्चेंट आइवरी की फिल्म दी गुरु और 1976 में मधुसूदन कुमार द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म कादम्बरी उस्ताद विलायत खां के संगीत से सुसज्जित था। वे वास्तव में सरल, सहज और सच्चे कला साधक थे। और ऐसे एक सितार वादक के रूप में विलायत खां ने 5 दशक से भी अधिक समय तक अपना जादू बिखेरा और सितार के इस महान वादक को फेफड़े का कैंसर भी हुआ और इस कैंसर के चपेट ने उनका पूरे तरह से कायाकल्प कर दिया और इलाज के लिए वह मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती हुए। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। 13 मार्च 2004 को इनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें विलायत खां के बारे में। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और जाते जाते एक सुंदर विचार आपके नाम। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अरे छुटकी यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: धागा ऐसा बांधा जो बंधनों से मुक्त करने वाला है, ये डोर ऐसी पक्की जो माया कितना भी जोर लगाए तो डोर नहीं टूटेगी।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का,
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का,
4: खुशियों के त्योहार का,
6: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
7: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: राजा से मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक, दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है ये मोमेंट। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रेडियो के साथ भी एक बहुत सुंदर सा बंधन है, एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से जीवन में आगे बढ़ाने का बंधन, एक दूसरे का साथ निभाने का बंधन, साथ साथ एक ऐसा अनूठा बंधन है जो सारे कम्युनिकेशन से कुछ अलग सा लगता है। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो न जाने कितने माध्यम आते जाते हैं जिंदगी में, लेकिन फिर भी रेडियो का जो अपनापन है वो जो अनुभव करता है वही जानता है। इसलिए इस प्यारे से परिवार को सजो कर रखेंगे और बढ़ा करेंगे इस वादे के साथ। आप सभी को आज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, अगला गीत आप सभी के लिए आ रहा है युवा मंच पर, और उसके बाद एक और सुरक्षा है जो हमें एक दूसरे की करनी है, जो हमें जानकारी के हथियार से मिलती है, और वो सुरक्षा है इंटरनेट की, डिजिटल सुरक्षा। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि हम साइबर सेफ रहें ये बड़ा ज़रूरी है, और

पे यूट्यूब पे फॉलो भी कर सकते हैं इसको, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से ये आपके पास आता है और बहुत ही सही जानकारी आपको मिलती है यहाँ पे। डिजिटल अरेस्ट की बात हो, साइबर फ्रॉड की बात हो, फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हो, बैंकिंग फ्रॉड की बात हो, कई ऐसे विषय हैं जिस पर हमें सही जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो इसीलिए आप सही जानकारी का हथियार बना लीजिए और सुरक्षा को अपने पास बुला लीजिए। चलिए फिलहाल आपको आगे बढ़ाते हैं, एक नए गीत की ओर लौट कर आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। This week's Cyber Safe Live brought to you by CyberDost, the official cyber safety awareness initiative by the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs.

0: आज का सेशन एक रियल डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस पर फोकस्ड है, जहां फ्रॉडस्टर ने एक सीनियर सिटीजन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर बनकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू कांटेक्ट किया और मनी लॉन्ड्रिंग केस का नाम लेकर उन्हें लीगल एक्शन का डर दिखाया। फ्रॉडस्टर्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स शेयर करके उनका ट्रस्ट जीता और उनसे 1 करोड़ ट्रांसफर करने को कहा। लेकिन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन डिटेक्ट होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाइमली इंटरवीन किया और 44 लाख के 2 RTGS ट्रांजेक्शन को फ्रॉडस्टर्स तक पहुंचने से रोका। इसी केस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
1: नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: सर, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इस केस में फ्रॉडस्टर्स ने सीनियर सिटीजन को कैसे अप्रोच किया और उनका ट्रस्ट कैसे जीता?
1: सो इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा I4C का और I4C की अवेयरनेस टीम का, आप लोगों का, जिन लोगों ने साइबर दोस्त और साइबर सेफ लाइफ जैसे इनिशिएटिव लेकर आम नागरिकों को अवेयरनेस कराना चाहा है साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इन चीज़ों की विधियों के बारे में। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो भी मैं वक्तव्य दूंगा वो मेरी निजी राय होंगी, उस पर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं समझा जाए। तो
0: जी
1: इस
0: सर,
1: केस में अगर मैं इस केस की बात करूँ, इस घटनाक्रम की बात करूँ, तो यह घटनाक्रम अगस्त के पहले वीक की है। सो पहले सप्ताह में सोमवार, चौथे 4th अगस्त 2026 सोमवार को हमारे एक वरिष्ठ नागरिक कस्टमर, जो कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 के कस्टमर हैं, सीनियर सिटीजन, शी इज हैविंग एज मोर देन 80 ईयर्स, उन्हें एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है। कॉल पुलिस वेशभूषा में, जो फ्रॉडस्टर था, साइबर अपराधी था, वो पुलिस की वेशभूषा में था। उसने कहा था कि हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है और हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी आपसे बात करेंगे। तो एक महिला, एक बुजुर्ग महिला, शी वॉज लिविंग अलोन इन हर हाउस, सो हर फैमिली वॉज इन US, हर सन वॉज इन US। तो उन्हें एक डराया जाता है कि आपको, हमारे सीनियर अधिकारी को, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और फिर उन्हें बताया गया कि आपका नाम, आपके नाम से मुंबई में एक अकाउंट खोला गया है और वह अकाउंट किसी साइबर अपराध, उसके उस अकाउंट के अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की गई है। तो इसमें आप, आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी और आपको 9 महीने की जेल की सजा हो सकती है। फिर उन्हें कहा गया कि यह जो जो हमारे और आपके बीच की जितनी बातें होंगी, सारी बातें गोपनीय रहेंगी, आप किसी से साझा नहीं करेंगी। अगर आप करती हैं तो जिनसे आप साझा करेंगे उन्हें भी अरेस्ट हो सकता है, उन्हें भी जेल की सजा हो सकती है। तो इस केस में पहले उन्हें डराया गया और दूसरा उन्हें यह भी डराया गया कि अगर आप किसी से साझा करते हैं तो फिर आपको सजा होगी, आप, उनको भी सजा हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि उन्हें कहा जाता है कि अब आप अपने, आपके पास जितनी संपत्ति है उस संपत्ति को हमें साझा कीजिए, हमें बताइए, और उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि क्या एक्शन लेता है। फिर इसमें क्या दिखाया जाता है कि उन्हें एक लीगल ऑर्डर दिया जाता है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू ही रहता है, जिसमें ईडी का साइन रहता है, और ईडी के साइन, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन के साइन के बाद उन्हें एक नोटिस दी जाती है। फिर एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी उनको शेयर की जाती है, उस पर भी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी का साइन रहता है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप फंड ट्रांसफर करें। उनसे पूछा गया कि आपके पास जितनी एफडीज हैं, 1 करोड़ की एफडी की डिमांड की गई थी जैसा कि आपने मेंशन किया है, उन एफडीज को टुकड़ों में, 20, 30, 40, 50 लाख के टुकड़ों में आप ट्रांसफर करें। और फिर उस ग्राहक ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर भी किए, उनकी एक रिसिप्ट भी दी जाती है और रिसिप्ट पे सुप्रीम कोर्ट का एक रिसिप्ट का नोटिस उन्हें सौंपा जाता है। तो यह एक पूरा घटनाक्रम था जिसमें उस वरिष्ठ ग्राहक को, सीनियर सिटीजन ग्राहक को, उन्हें ट्रैप किया जाता है। पहला डराकर कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा कन्विंस करके। हाँ, उन्हें यह भी कहा गया कि हमें पता है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका नाम आया है, किसी साइबर अपराधी ने नाम डाला है, तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सिंस आप हमें कोऑपरेट कर रही हैं इसीलिए हम आपको हथकड़ी लगाकर जेल नहीं ले जा रहे हैं। तो इन पर और प्रेशर बनाया जाता है। तो यह पूरा एक घटनाक्रम था इस केस में।
0: सर, जैसे कि आपने बताया, इस केस में फ्रॉडस्टर ने फेक डॉक्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर विक्टिम पर प्रेशर बनाया था, तो ऐसे केसेस में लोगों को कौन से रेड फ्लैग्स ध्यान रखने चाहिए?
1: हमने जितने केसेस ऐसे इन्वेस्टिगेट किए हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस हमें रिपोर्ट होते रहते हैं, तो कुछ पैटर्न्स हमें मिले हैं। पहला, इन्हें, इन कस्टमर्स को सबसे पहले वो सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट करते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि वैसे कस्टमर्स हो या वैसे नागरिक हो जो कि अकेले रहते हो, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके और जिन्हें एक फैमिली का सपोर्ट ना हो जिनसे ये शेयर किया जाए। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि इसमें उन्हें यह भी बताया जाता है कि आप किसी और से साझा करेंगे तो उन्हें जेल की कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी जब हमने कस्टमर से बात करने की कोशिश की आफ्टर वंस वी शी आइडेंटिफाइड शी रियलाइज्ड दैट शी इज अंडर डिस्ट्रेस, तो उन्होंने बताया कि उन्हें हमारी जो ब्रांच के शाखा के अधिकारी ने पूछा कि आपने हमसे क्यों नहीं शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे शेयर करते आपको भी जेल हो सकती थी। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जो रेड फ्लैग्स की बात कही आपने, तो कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे हैं कि, और यह सारे दर्शकों को स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को समझने की जरूरत होगी कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज नहीं होती है। कोई अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई या फिर पुलिस अथॉरिटीज, ट्राई, इन सब के बेसिस पे आपको डराने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं है। कोई गंभीर अपराध या पुलिस डिजिटली कभी अरेस्ट नहीं करती है। दूसरा, फेक एफआईआर या वारंट, सो जो इन केसेस में जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वह बिल्कुल सच्चे दिखते हैं, जैसा एक कोर्ट ऑर्डर होता है या फिर जैसे एक पुलिस की नोटिस होती है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी पुलिस डिजिटली ये चीजें नहीं देंगी। जब उनको देना भी होगा तो आपके पास आकर, आपके यहाँ आकर वो चीजें आपको दी जाएंगी। अगला, कि वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट। सो कॉल पर पुलिस तो कभी अरेस्ट करती नहीं है और ये भारतीय न्याय संहिता में भी कहीं नहीं है। भारतीय न्याय संहिता भी कहती है कि आपको पुलिस को पर्सनली करना पड़ेगा ऐसी चीजें। कॉन्फिडेंशियलिटी अगला रेड फ्लैग है कि इन केसेस में जहां पर भी हमने ऑब्जर्व किया है कि साइबर अपराधी यह कहते हैं ये चीजें आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको कोई पुलिस अथॉरिटी नहीं कहेगा कि आप इसको बनाए रखें कॉन्फिडेंशियलिटी कि आप इससे किसी से साझा ना करें, तो यह गलत है। फिर आपका ऑफिशियल आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए जब अगर कोई कस्टमर पूछता है या कोई आम नागरिक उनसे पूछता है कि आप हमें बताएं कि किस शाखा से हैं या क्या हैं, तो वहां पर भी वो वेरीफाई नहीं करने देते हैं। या अगर कोई कहेगा कि मैं पुलिस अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर ये शिकायत करती हूँ या उनसे बताती हूँ, उनसे जाकर मिलकर इस घटनाक्रम को बताती हूँ, तो बोलेंगे कि नहीं आपको किसी से नहीं मिलना, पुलिस अथॉरिटी से भी नहीं मिलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई पुलिस अथॉरिटी किसी भी केस में या तो आपके खिलाफ वारंट है या फिर आपके कोई आधिकारिक कार्रवाई हो रही है, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। जैसे कि इन केसेस में जहां पर भी साइबर डिजिटल अरेस्ट होते हैं वहां पर पुलिस अथॉरिटी एक दो दिन पहले दूसरे कॉन्टेक्ट के बाद आपसे यही कहती है अपनी संपत्ति की जानकारी दीजिए और उसके बाद उनको किसी फंड्स किसी अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जहां पर अगर कोई नागरिक कोई कस्टमर इन चीजों को ध्यान दे तो इन चीजों से बचा जा सकता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ जो एक प्रॉब्लम हमने ऑब्जर्व की है रिसेंटली कि इन केसेस में जहां पर भी जो कस्टमर हैं वो अलग रह रहे हैं, परिवार से अलग रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, तो ये आसानी से ट्रैप बन जाते हैं उनके। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा, इस केस में तो महिला अकेली रह रही थी, लेकिन एक और केस हमने ऐसे ही क्रैक किया था 4-5 महीने पहले, उसमें वो फैमिली के साथ रहते थे लेकिन जब से डिजिटली अरेस्ट हुए वो दूसरे महले पे रहने लगे और फैमिली नीचे की महले पे रहती थी। तो इतना मैनिपुलेट कर देते हैं ये फ्रॉडस्टर्स कि फैमिली सोच जो विक्टिम होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी परिवार को भी कैसे बचाऊं। तो ये रेड फ्लैग्स हैं जो कि किसी भी आम नागरिक को ध्यान देना चाहिए।
0: सर, आई थिंक इस केस में और यूजुअली डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में विक्टिम को आइसोलेट किया जाता है नियर बाय सराउंडिंग से, ताकि उनका एक्सेस टू रियलिटी धीरे धीरे कम हो जाए एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट देम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और इस केस में देखा गया कि विक्टिम अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक ब्रांच तक पहुंच गई थी। तो सर, आप बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट टीम को ट्रांजैक्शन में क्या सस्पिशियस लगा और उन्हें क्या एक्शन लिया?
1: ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी कोशिश रहती है कि हम ग्राहकों के विश्वास पे खड़े उतरें। अगर उन्होंने हमारे यहाँ पैसा जमा किया है तो हम उस पैसे को किसी भी फिजिकली या डिजिटली तरीके से अगर धोखाधड़ी हो रही है तो उससे कैसे बचाएं, तो यह हमारी कोशिश रहती है। इसी कोशिश को बरकरार रखने के लिए हमने फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रॉड मॉनिटरिंग के टूल्स लगाए हैं, जो टूल्स दिन भर 24/7 काम करते हैं और इन टूल्स से ऐसे रिजल्ट्स आते रहते हैं कि हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको रोक सकें। और कमोबेश भारत में जितने बैंक हैं सबने भी ऐसे टूल्स लगा रखे हैं और ऐसे परिणाम आते रहते हैं। जहां तक डिजिटल अरेस्ट या कुछ और साइबर अपराध जैसे डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इन सब के लिए हमने कुछ महीनों पहले एक AI ML बेस्ड मॉडल डेवलप किया। तो यह मॉडल, यह जो केस है, स्पेसिफिक केस है, ये इसी मॉडल का नतीजा है कि इस मॉडल ने उन सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया। और लाइक वी इन बैंक ऑफ बड़ौदा वी हैविंग गुड सेट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ लाइक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, सो दे कीप डूइंग वर्क ऑफ दोज, दे कीप वर्क ऑन रेगुलरली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई न्यू पैटर्न्स। तो जहां पर बिकॉज ये फ्रॉडस्टर्स दिन रात अपने पैटर्न्स चेंज करते रहते हैं, तो जैसे ही नया पैटर्न चेंज हुआ हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम रेगुलरली चेंज करते रहते हैं अपने भी पैरामीटर्स को। तो इसमें जहां तक मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि 4 तारीख को यह घटनाक्रम शुरू हुआ, 4 अगस्त को कस्टमर को कॉल आता है और उसके बाद 5-6-7 तक ट्रांजेक्शंस होते हैं। 7 तारीख को हमारी टीम को अलर्ट जनरेट हुआ और हमें AIML बेस्ड मॉडल ने अलर्ट जनरेट किया और उस अलर्ट के बेसिस पे हमारी जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की टीम है उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो हर एक अलर्ट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मॉडल्स बना के रखे हैं, डिजिटल रिस्क के लिए अलग मॉडल है, इन्वेस्टमेंट स्कैम के लिए अलग मॉडल है। तो अलर्ट जनरेट हुआ शाम को 7 बजे के करीब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया कि यह कस्टमर डिजिटल रिस्क लग रही है। देन हमें इन्फॉर्म किया गया, हमने फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट किया। उस कस्टमर ने तब तक 2 ट्रांजेक्शन कर दिए थे और यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा I4C टीम का, जिन्होंने इंडिया में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ऐसी संरचना तैयार की है जिस पर सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस अथॉरिटीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और हम अपने इंफॉर्मेशन को कितनी आसानी से एक दूसरे से साझा करते हैं और फिर उसके रिजल्ट भी हमें दिखते हैं। तो जैसा इस केस में हुआ, 7 बजे हमें पता चला कि यह कस्टमर डिजिटली अरेस्टेड है, तो हमने और हमारी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुई। तो फर्दर हमने उन 2 ट्रांजेक्शंस को लिया और अपने बेनिफिशियरी जो बैंक्स थे उन बैंक्स को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो हमारे जो रिसोर्सेज I4C की टीम, I4C में बैठते हैं, उन्होंने बैंक से कांटेक्ट किया एंड देन वी गॉट टू नो एक ट्रांजेक्शन बिहार में हो रहा है और एक दूसरा ट्रांजेक्शन तमिलनाडु में हो रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रेड फ्लैग फॉर अस। देन हमने फिर उन दोनों की अकाउंट सामने वाले बैंक से पता की, तो उनको उनके ट्रांजेक्शन देखने पर लगा कि यह फ्रॉडलेंट अकाउंट है। तो हमारा एक इसमें क्या हुआ कि पुख्ता हो गया कि नहीं ये फ्रॉड है ही, ये फ्रॉडस्टर्स हैं। उसके बाद इन चीजों करते हमने 7 बजे शुरू किया था, 10:30 बजे रात तक हमने इसको कंफर्म किया कि ये डिजिटली अरेस्ट है। उसके बाद हमने द्वारका सेक्टर 12 के शाखा प्रबंधक को कॉल किया, फोन किया और उन्हें कहा कि अगर ये आप एक बार कस्टमर से ग्राहक को पहुंचे और उनसे बात करें उन्हें कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, अगर वो फिर से ट्रांजेक्शन करने आती है तो आप उन्हें करने से रोके। सो यहाँ पर हमारी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट टूल टीम का रोल आता है कि हम दिन भर में लाखों ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते रहते हैं और जहां पर भी हमें एक रेड फ्लैग मिला, जहां पर भी ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए, हम उनको तुरंत इन्वेस्टिगेशन में डालते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद उन पे एक्शन लेते हैं। सो जस्ट इसका रिजल्ट यहाँ पर नजर आया।
0: सर, जैसे कि आपने बताया जो विक्टिम थे वो 2 RTGS ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली, आई थिंक उस प्रोसेस में थे एंड उसको सक्सेसफुली स्टॉप किया गया, तो ऐसे टाइमली इंटरवेंशन में बैंक और साइबर पुलिस की कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है?
1: सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्लासिक केस फॉर अस। सो इसको मैं, हम लोग जब भी अपनी टीम में बात करते हैं, सो वी से लाइक अगर हमने एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली कर लिया जैसा इस केस में हुआ था तो हमारे रिजल्ट्स जो होंगे हमारे अपेक्षित होंगे, सो हमारी अपेक्षा के अनुरूप ही होंगे। इस केस में हम, अगर मैं पूरी टीम को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे रखूँ तो हमारी फ्रॉड रिस्क टीम, मैनेजमेंट टीम कॉर्पोरेट ऑफिस की, देन हमारी एक जोनल दिल्ली जोन की रीजनल रिस्क ऑफिसर की टीम, देन हमारी ब्रांच सेक्टर 12 ब्रांच, पुलिस अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस की अथॉरिटी, सबने अपना रोल बखूबी निभाया। सो जैसा मैंने कहा था कि 7 तारीख की रात को हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, 8 को कस्टमर ट्रांजेक्शन करने आई ब्रांच में। तो जो हमारे ब्रांच के ऑफिसर्स थे, 2 ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स थी, दोज वर वेरी प्रॉम्प्ट ऑन दैट, सो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर कि आप बताएं कि क्यों करना है, क्या करना है। देन कस्टमर ने कहा कि हमें अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ब्रांच के स्टाफ ने, हमारी शाखा के अधिकारियों ने एक स्टेप आगे लेकर कस्टमर से कहा मुझे आपके रिश्तेदार से बात करनी है। तो क्योंकि इन केसेस में हमें एक और लेयर वेरिफिकेशन करना होता है, तो हमने उनके तो हमारी सीनियर सर्जन कस्टमर ने अपने बेटे का नंबर दिया, हमारे ब्रांच के स्टाफ ने उनको कॉल किया ऑन व्हाट्सएप, ऑन व्हाट्सएप शी कॉल्ड हर शी कॉल्ड हिम एंड देन ही सेड यस मैं यह ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हमें कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप हमारी माता जी को ट्रांजेक्शन करने दें। जब यह स्टेटमेंट आया उनके बेटे से बात करने के बाद, तो यह हमारे लिए एक डाउट था कि हम क्या करें क्या ना। तब हम लोगों ने कहा कि अब आप क्या कीजिए, जिस कस्टमर को ट्रांजेक्शन करने जा रही है बेनिफिशियरी अकाउंट, वो हमें वो आप लो। वो बेनिफिशियरी अकाउंट लिया गया, फिर हमने सामने वाले बैंक से बात किया तो हमें पता चल गया कि ये सस्पिशियस अकाउंट है। फिर हमने कन्विंस करने की कोशिश की, वो मान नहीं रहे थे। देन वी ट्राइड टू पिच इन पुलिस अथॉरिटी, और मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने श्री रजनीश गुप्ता जी IFSO सीनियर CP ज्वाइंट CP IFSO स्पेशल सेल, उनको हमने कॉल किया एंड थैंक टू हिम ही रिस्पॉन्डेड क्विकली। सो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेस्ट ऑफिसर को भेज रहा हूँ आपके यहाँ, एंड देन ही सेड ही सेंट मिस्टर संदीप तुशीर जी को, जो कि पास वाले थाना के में थे। सो उन्होंने उन ब्रांच में भेजा। जब वो आए तब यह केस क्रैक हुआ, और उस समय कन्विंसिंग कस्टमर ने माना कि वो डिस्प्लेयरिस्ट है। और उससे बड़ी बात है कि इस केस के बाद जब हमने महिला से पूछा, अपने सीनियर सिटीजन कस्टमर से पूछा कि क्या वो आपके बेटे थे सही में, देन ही वाज नॉट हिज सन, ही वाज फ्रॉडस्टर। तो आजकल ऐसे केसेस हमें पास्ट में नहीं मिले थे, यहीं पे हमें मिला कि फ्रॉडस्टर ने रिश्तेदार बनकर भी कॉल पिक किया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो इन विच वी आर वर्किंग, हाउ टू ट्रेस दीज थिंग्स ऑल्सो इन फ्यूचर। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन coordination with various entities and efficient coordination with various entities that came into the picture, and I'm thankful for I4C as well as Delhi police to help in this matter.
0: Sir, I think jaisa aapne bataya ki the victim was forced to I'm sure ki unko scammers ne definitely bola hoga ki aap hamara number de dijiye hum baat kar lenge, and this is how they're manipulating. And it is very difficult for the victim to also identify ki maybe this is suspicious. Unko lag raha hai ki wo matlab wo bank walon ko bhi ek tarike se gumrah kar rahe hai ki haan ye hamari rishtedar hai, jaise aapne bataya ki eventually wo nahi the. So aise hi agar kisi customer ko fraudsters pressure mein bank se large amount transfer karne ko bole, to customer ko transaction karne se pehle kya karna chahiye?
1: So, यहाँ पर जवाब देने के लिए मैं दो चीजें बोलूंगा कि कस्टमर को पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। सो इन केसेस में क्या होता है कि जब कस्टमर को डराया जाता है, डरा धमकाकर ऐसे फंड के ट्रांसफर करने होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें रुक कर सोचना चाहिए, जो मैंने रेड फ्लैग्स पहले बोले उस बारे में सोचना चाहिए, और रुक कर सोचना चाहिए कि क्या वो यह ट्रांजेक्शन करें, और करें तो क्यों करें। फिर उसके बाद उनको उनको अपने किसी ना किसी रिलेटिव से, किसी ना किसी संबंधी से यह चीजें साझा करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेशर का खेल हो जाता है कि आप उनको इतना मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, इतनी प्रेशर डाल दे रहे हैं उन पर कि वो इसमें समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसमें उनको अपने कस्टमर्स अपने रिश्तेदार को बताना चाहिए। दूसरा पुलिस अथॉरिटीज को बताने की जरूरत है कि ये ऐसा केस हो रहा है, या फिर वो किसी बैंक अपने शाखा में भी जा सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं पास्ट में जहां पर वो हमारी शाखा में आए हैं, और हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा। सो हमारे अधिकारी इस बारे में अवेयर हैं कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो इसमें वहां पर उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रेस कुछ होता नहीं है। जैसे इस केस में भी जब वो महिला आई तो हमने अपने जो अवेयरनेस मटेरियल्स थे, बिकॉज समटाइम्स वो डरी रहती हैं समझने की कोशिश, या फिर जो प्रिंट मटेरियल्स हैं, सारे मटेरियल्स हम लोग रखते हैं ब्रांचेस में, तो उनसे हम शेयर करते हैं कि ये देखिए कहीं ऐसी चीजें आपके साथ भी तो नहीं हो रही है, तो उससे बचा जा सकता है। दूसरा, अगर ऐसी घटना हो जा रही है तो उसमें आप बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं, साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर 1930 पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको आसानी होगी इन चीजों से बचने के लिए। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट देने की बात है, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आपके साथ कुछ केसेस में ऐसे डराया जाता है कि आप अपने संबंधियों से भी शेयर नहीं कर सकते हैं सारी चीजें। उन केसेस में आप बैंक में हैं, बैंक वाले रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए।
0: सर, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, अगर किसी विक्टिम ने फ्रॉडस्टर को मनी ट्रांसफर कर दिया है तो विक्टिम को कौन से डिटेल्स और एविडेंस रेडी रखने चाहिए रिपोर्ट करते वक्त?
1: ओके, इसमें अगर विक्टिम के साथ फ्रॉड हो गया है तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात ही नहीं करूंगा। डिजिटल अरेस्ट हुआ, पेमेंट स्कैम हुआ, या फिर एपी के स्कैम हुआ, किसी भी तरह के स्कैम होते हैं, बहुत सारे धोखाधड़ी के तरीके हैं, किसी भी तरीके का होता है, तो सबसे पहले तो आप 1930 पर जाएं, उन्हें कॉल करें, उन्हें बताएं कि हो गया ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा, आप साइबर क्राइम के हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो रखनी होगी कि आपको डिटेल रखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कब किया, किस डेट को किया, किस अमाउंट पे किया, किस टाइम पे किया, आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, बेनिफिशियरी के डिटेल क्या हैं, ये दीज आर द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यू शुड हैव टू शेयर विद 1930 या पुलिस में। इसके बाद आप फ्रॉडस्टर्स की डिटेल भी शेयर कर सकते हैं कि फ्रॉडस्टर्स का मोबाइल नंबर क्या था, व्हाट्सएप टेलीग्राम आईडी क्या थी। ये इंफॉर्मेशन क्या होते हैं कि इन फ्रॉड्स को दो तरीके से पकड़ना है, एक आपको इस स्पेसिफिक केस से आपको बचाना है और दूसरा इन अपराधियों से कोई दूसरे कस्टमर शिकार ना हो तो वो भी हमें बचाना है। तो पहला तो हम आपके लिए, आपको आपके पैसे ही बचाने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपके जो बेनिफिशियरी जहां पर आपने अमाउंट दिया उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। दूसरा, मुझे दूसरे ग्राहकों को भी, दूसरे लोगों को भी बचाना है, तो उसके लिए आपको पुलिस अथॉरिटीज को, बैंक अथॉरिटीज को, डीओटी को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे आपको किस नंबर से फोन आया है, तो जिस नंबर से फोन आया है वो फोन नंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इन एपीके स्कैम्स और अदर स्कैम्स जो अदर कॉल, वो फोन ड्यूटी पर जाकर संचार साथी पर रिपोर्ट कर दीजिए, तो वो नंबर आगे यूज नहीं हो पाएगा। फिर आपके जो कम्युनिकेशन के एविडेंसेस हैं, जो आपका कॉल लॉग है, आपको जो मैसेजेज आए हैं, अथॉरिटी ये सबमिट करके, तो उनके इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी, वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। ये आपको रखनी पड़ेगी। देन जहां पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, हर मल्टीपल ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको शेयर करनी जरूरत है। डिवाइस और अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के लिए, एक विक्टिम के लिए उस क्षण पे नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हम लोग भी जब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत जब हम लोग इन चीजों की एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये पैरामीटर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से आईपी से ट्रांजेक्शन हुए हैं, कहाँ कौन से डिवाइस से ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे ग्राहकों को इस तरह के फ्रॉड से बचा सकें।
0: सर, आखिर में अगर किसी को पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट एजेंसी या बैंक के नाम पर वीडियो कॉल करके अरेस्ट या लीगल एक्शन का डर दिखाया जाए और तुरंत पैसे मांगे जाए तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए?
1: यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा है, रुको, सोचो, एक्शन लो। यह मंत्र हम सबको याद रखना चाहिए कि हमें तुरंत ट्रांजेक्शन नहीं करना है, हमें पहले सोचना है कि क्या यह जेन्युइन अथॉरिटी है, जो पुलिस अथॉरिटी है या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी है या जो कोर्ट है, क्या ये जेन्युइन है। तो पहले हमें रुकना है, उसके बाद सोचना है कि मैं एविडेंसेस उनको जेन्युइनली वेरीफाई करना है कि जिस नंबर से कॉल आया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, जिन अथॉरिटीज से कॉल आया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर किए जा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, और उस एक्शन ले, मतलब उस बात उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के तरीके मैंने बता दिए, कहाँ कहाँ रिपोर्ट करने हैं और रिपोर्ट कैसे करने है कि आप 1930 पे जाकर कॉल करें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, बेसिक ट्रांजेक्शन डिटेल की इन्फॉर्मेशन होती है वो रखें, वो बताएं, या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करें। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो आपको शेयर करनी है। यहाँ पर मैं जो यंग व्यूवर्स हैं उनके लिए संदेश होगा कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं वो किसी के साथ भी हो सकते हैं, और ये कोई ऐसा टैबू ना हो, तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी हमें कि ऐसी कोई चीज नहीं होती और उन्हें बचने की जरूरत है। जितने बैंक्स हैं, जितने पुलिस अथॉरिटीज हैं, जितने गवर्नमेंट अथॉरिटी, वी ऑल आर डूइंग कम्युनिकेशन, अवेयरनेस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू करते हैं। हम वॉइस ब्लास्ट करा रहे हैं, व्हाट्सएप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनको व्यूवर्स को मतलब देखने की तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो साइबर अपराधी हैं, इनको सिर्फ आपसे पैसे चाहिए, ये आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो बस यही रुकिए, सोचिए एंड एक्शन लीजिए, दैट्स द तंत्र फॉर दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स।
0: थैंक यू सर, आज आपने बहुत क्लियरली समझाया कि फ्रॉडस्टर्स कैसे फियर और फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करके विक्टिम्स को फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, और टाइमली एक्शन किस तरह एक मेजर फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट कर सकता है। बैंक और साइबर पुलिस की कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन और इस केस से जुड़ी आपकी इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के लिए इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। Till then, stay safe, stay cyber alert. Thank you.
1: Thank you. Thank you.
0: This initiative by the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs.
2: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का।
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का।
4: खुशियों के त्योहार का,
5: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
6: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये राखी परमात्मा के प्रेम की राखी है, उनके साथ अविनाशी संबंध की राखी है, तो उनके साथ का अनुभव कर सदा खुश रहना।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: उठो, जागो, अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।
1: किस्मत

किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: अरे छुटकी यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सही में कितना खुशबू मिलता है जब अपना गांव और अपना अंचल के नाम सुनते हैं, क्यों नहीं भाई? क्योंकि जिस गांव और अंचल में शहर में रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल और शहर को हम भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर को, बच्चों का भाव को, भावना को और हृदय का जो तार है, संगीत के रूप में, भाषण के रूप में अपना प्रस्तुतियां रखने के लिए आज आपका पास इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। और सजाने के लिए हमारा होवनहार बच्चे बच्चियां उपस्थित रहते हैं। तो आज हमें खुशी है, हर्ष का साथ आपका पास हम पहुंच रहे हैं रेडियो कार्यक्रम को लेकर। क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, जिससे हमारा गांव और अंचल का समाचार, खबर, टैलेंट जन जन तक पहुंचे। सरकार का ये मंशा है, कम्युनिटी रेडियो सरकार ने दी। आपका रेडियो है आपके द्वारा, योर रेडियो फॉर योर सेल्फ। तो चलिए आज हम रेबदर नगर पालिका में पहुंचे और आबू राज का आवाज, पिंडवाड़ा का आवाज, सिरोही का आवाज आप सबका पास पहुंचाता है रेडियो मधुबन के माध्यम से। और हमारा श्रोता मित्र पूरा सिरोही जिले से व्हाट्सएप कर भेजते हैं, कॉल करके भेजते हैं जी, हमारा गांव में कब आएंगे, हमारा स्कूल में कब बच्चों का साथ मिलेंगे। हमें इस तरह जानकारी जब मिलता है, हमें खुशी होकर वहां तक पहुंचते हैं। तो आज हम मंडार नगर पालिका में पहुंचे और राजकीय गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार में पहुंचे। बच्चों का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। बालक और बालिका जब इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो उनका भावना, भाव, संगीत, गीत, कविता का माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं। अचानक में पहुंचते हैं, कोई सूचना नहीं मिलता, फिर भी बच्चे रेडी होते हैं। क्योंकि एवर रेडी में जो रहते हैं, अचानक में पास हो जाते हैं। पहले प्रस्तुति लेंगे, चाहे एकल गान हो, चाहे समूह रूप में, चाहे मिलकर गा सकते हैं, क्योंकि ये खुला मंच है, ओपन ग्राउंड है। तो पहला प्रस्तुति प्रभु याद में, परमात्मा का याद में आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे बच्चे। तो हमारा श्रोता मित्र भी बारी बारी सभी का आवाज सुनने को आतुर है, सुनेंगे जरूर। तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार की आवाज।
1: मेरा नाम सुकी कुमारी है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार। मेरे गांव का नाम बहादुरपुरा है।
2: मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरे गांव का नाम थल है।
3: प्रतिज्ञा है। मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरे गांव का नाम निचला गढ़ा बुरुड़।
4: मैं अप्सरा कुमारी हूँ। मेरी क्लास 11 है। मेरी स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरा गांव का नाम निचला गढ़ है।
5: विपदा में, संकट में, मुश्किल में दास तुम्हारा।

पुकारा है हुआ दर्शन पालन हारे का, इस हारे को सहारा है, इस हारे के सहारे का मन जब भी शाम पुकारा है हुआ दर्शन पालन।

0: दर्शन पालनहारे का इशारे को सहारा है, इशारे के सहारे का मैंने जब भी शाम पुकारा है, वह दर्शन पालनहारे का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर मैंने पहले भी बोला था जे बच्चे अपना दिल का भाव को भावना को संगीत के रूप में परिवेशन करते हैं, जब इस तरह मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं। कहीं पर भी हो, किस तरह भी हो, जहाँ मौका का इंतजार रहता है वो मौका का फायदा लेते हैं, और चांस जब मिलता है तो चांसलर बन जाते हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और उस लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा सभी बच्चे रेडी होकर रहे हैं। किसका बाद कौन आएंगे उनको पता है, और नाम, कौन सा क्लास और कहाँ से और इस कौन सा विद्यालय में पढ़ते, वो चीज भी बताते हैं। और ये बच्चे भी जो आए हैं उनको भी स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल और कहाँ से, वो चीज रख रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों को जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, जिसका चलते बच्चे भी खुशी और हर्ष का साथ, उमंग उत्साह साथ अपने अपने जगह पर इस तरह कार्यक्रम को प्रस्तुति करते हैं। लेकिन आज रेडियो मधुबन में इस कार्यक्रम को बखूबी से सजा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सभी बच्चे, ओके रेडी है ना? तो देर किस बात की, 1 2 3 बच्चे शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम पूनम है, मैं पालड़ी खेड़ा से आई हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक में पढ़ती हूँ।
2: मैं रीना कुमारी कक्षा 10th की छात्रा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम निमतलाई।
3: मैं नेहा कुंवर कक्षा 10th की छात्रा हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार से, मेरे गाँव का नाम रामपुरा जे है।

तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना।

0: ஜல அச்சுதம் கேசிவம் கிருஷ்ண தாமோதரம் ராம நாராயணம் ஜானகி வல்லவம்.
1: धन्यवाद.
2: बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद का पात्र तो आप सब है.

इन सारे, ये हमारा गुड़िया का है आवाज, ये हमारा बेटी का आवाज, ये हमारा दोस्त का आवाज, ये हमारा स्टूडेंट का आवाज, ऐसे महसूस करते हैं। और जब उनसे मिलते हैं तो उनको शाबाश देते हैं और स्नेह से प्यार से उनको याद करते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए, बच्चों का आवाज सुन रहे हैं और बीच बीच में आपको रेडियो मधुबन की तरफ से अच्छा अच्छा गीत भी लगाते हैं हमारा शेड्यूलर, जो कि बीके शुभश्री बहन वो भी शेड्यूलिंग करते समय भी ध्यान देते हैं। हम जो रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, एडिटिंग करते हैं, इसका बाद आपका पास सर्व करने के लिए शेड्यूलिंग में आप करते हैं और अच्छा अच्छा प्रोमो जिंगल और उस हिसाब से आपने संगीत भी लगाते हैं, एक पैकेज बन जाता है जिसका चलते पूरा 7 से 8 बजे आप हमारा मेहनत को आपका पास पहुंचाते हैं, जिसका चलते कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुति हो जाता है। सभी को धन्यवाद देते हैं टीम को, क्योंकि टेक्निकल चाहे फील्ड हो, चाहे शेड्यूलिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल सभी हमारा आरजेस, एडिटर्स, शेड्यूलर सब मिलकर कार्यक्रम को सुंदर बना देते हैं। एक टीम वर्क होता है रेडियो मधुबन में, कोई ऑडियो को लाते हैं, जो ऑडियो लाएंगे उसका कैसे प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने मिनट तक होना चाहिए और प्रोग्राम कैसे बनना चाहिए और उसको आप तक पहुंचाने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग तक पहुंचाने के लिए हमारा टेक्निकल हेड भी इस कार्यक्रम को हेल्दी बना देते हैं। स्क्रिप्ट राइटर भी कम नहीं है, एडिटर भी कम नहीं है और फील्ड जो आउटरीच फील्ड में जाकर रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं वो भी कम नहीं है, जिसका चलते आपका पास टीम का मेहनत जब आप सुनते हैं तो रंग लाता है कार्यक्रम। तो लेते हैं और एक प्रस्तुति, सभी रेडी बच्चे? ओके।
1: मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडर है।
2: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मंडर में।

0: आई है।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ आप सबको खुशी करा देते हैं, क्योंकि ताली बजाने में कोई कंजूस नहीं है, क्योंकि आपका उमंग उत्साह को और चार चांद लग जाता है, क्योंकि आप 20 लाखों लगाकर इस तरह कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए, चाहे भजन हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, प्रेरणादायी सॉन्ग हो, चाहे संगीत हो, सब अच्छा से प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि एक मौका का आवश्यकता रहता है हर जगह में, कोई उलाना न दे जी हमारा पास रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी तरफ से कोई शिक्षा ज्ञान समझ नहीं दे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए हमें अपना जीवन को समर्पित किए जनहित में, रेडियो हित में और गांव और अंचल का हित में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं बच्चों से और रूबरू हो रहे हैं और अपना आवाज को बुलंद करते हुए अपना अपना भावना बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं वो भी बताते हैं, जिसका चलते बच्चों को एक क्या साहस शक्ति और एक प्रेरणा मिल जाता है और अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षण भी दिखाई देते हैं, मेहनत भी करते हैं, बीच नाखून लगाकर पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई का साथ साथ और एक्स्ट्रा पढ़ाई जब करते हैं तो हमें आगे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, फ्यूचर में जरूर 12 घंटे का नौकरी करना नहीं पड़ेगा, कम समय 8 घंटा में ही वो खुश रहेंगे क्योंकि मेहनत का फल लाता है। तो ये विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई जरूर करते हैं बच्चे, विद्यालय में तो पढ़ते ही है विद्यार्थी जीवन में, इसका साथ साथ और घर जाकर 6 घंटा एक्स्ट्रा जब मेहनत करेंगे क्वालिटी का साथ तो जरूर आपने जो लक्ष्य रखे हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे। मात्र 5 साल मेहनत करना है, देखना आगे जाकर आप कहां से कहां पहुंच पाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो मेहनत जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पढ़ाई में समय देंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य तक एम जो रखे हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो चलिए ये था कुछ टिप्स विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का साथ साथ घर में और एक्स्ट्रा 6 घंटा मेहनत का साथ लगन के साथ क्वालिटी का साथ, क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का साथ जब करेंगे तो जरूर आत्मबल बढ़ेगा, बौद्धिक विकास होगा, एक अच्छा चरित्रवान बन पाएंगे क्योंकि देश को चाहिए एक चरित्रवान व्यक्तित्व, जो आपका पास वो विशेषता है। लेकिन क्या बात रही बात, आप उसको थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। चलिए समझ बहुत मिला है तो एक प्रस्तुति के लिए इंतजार कर रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करिए अपना नाम और जैसे पहले भी बताए थे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तब पता चलेगा हमारा बच्चे कहाँ से परिचय मिल जाएगा, तो शुरू करिए।
1: मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भोले मेरी सांस चलती है दिन ये ढलता है नाम से तेरे, किस्मत वो ही बनती है जो

सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन

0: राम झूलेंगे तो पालना झुलाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खास कर मैंने पहले भी बोला था जे बच्चे अपना दिल का भाव को भावना को संगीत के रूप में परिवेशन करते हैं, जब इस तरह मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं। कहीं पर भी हो, किस तरह भी हो, जहाँ मौका का इंतजार रहता है वो मौका का फायदा लेते हैं, और चांस जब मिलता है तो चांसलर बन जाते हैं। तो धन्यवाद के पात्र हैं। और तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलिए ब्रेक के बाद पुनः आप सबसे रूबरू होने के लिए पहुंच गए हैं और बच्चे भी उपस्थित हैं। लाइन क्रम अनुसार एक का बाद एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। हमें खुशी है बच्चों को एक मौका आज रेडियो मधुबन दे रहे हैं, जो स्टेज के माध्यम से अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसका चलते हमारा कार्यक्रम सुंदर रूप में सज रहे हैं और सजाने के लिए हमारा और एक प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। चाहे एकल हो चाहे ग्रुप का सामूहिक रूप में प्रस्तुतकरण करते हैं। यह अंतिम प्रस्तुति की ओर होगा, है ना बच्चे? ओके, अंतिम प्रस्तुति में सब सिर हिला रहे हैं। अंतिम प्रस्तुति जब हम कहते तो बच्चे हाँ जी कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सिर हिलाकर भी इशारा से हमें बताते हैं ये अंतिम प्रस्तुति होगी और हमें भी समय को देखते हुए अंतिम की ओर चलते हैं। सभी को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना बच्चे? चलिए शुरू करो।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। एक के बाद एक अपना आवाज को बुलंद से उमंग उत्साह के साथ शक्तिशाली बनकर कार्यक्रम को सजा रहे हैं। क्यों नहीं सजाएंगे, जब मौका मिलता है तो मौका का तो फायदा लेना चाहिए, जो बच्चे आज ले रहे हैं। क्योंकि बच्चे आज खासकर गर्ल्स बालिका विद्यालय सरकारी स्कूल मंडार का आवाज सुनने को मिल रहा है, और सभी को नाम का साथ संस्था प्रधान शिक्षकगण और सभी बच्चे जो इस कार्यक्रम को सजाए, और सजाने के लिए सभी का सहयोग, साथी सहयोगी सहेलियां सखिया सहपाठी उनको उमंग उत्साह दिलाए और आत्मसात भी किए, आत्मज्ञान भी लिए कि मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं जो कर रहा हूँ वो कैसे करता हूँ, सोचता हूँ मन से, फिर सोचने के बाद वो सोच को हम काम में लगाते हैं, एक्शन में आते हैं, कार्य में करते हैं, तो उसको बुद्धि से करते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा संस्कारित हो जाएगा। चलिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, समझ ज्ञान मिल गया है ना। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर विद्यार्थी विकास, आत्म बल, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संस्कारित बनने के लिए अपना उमंग उत्साह के साथ बच्चों को समझ मिला और सभी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। सबको आत्मबोध हुआ, आत्म प्रबंधन, क्योंकि खुद जब जग उठेंगे तो जगत के लिए और अच्छा हो पाएगा। पहले खुद को उठाना है, फिर जगत को उठाना है। तो ये था खासकर बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: भाई होता जिसे मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांधना, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक। दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
6: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे

0: अरे चुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे चुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो, अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी को समझना चाहें तो किसी कवि की नजर से देखें या किसी साइंटिस्ट की नजर से देखें जो तथ्यों को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ कवि हर एक नजारे में जिंदगी ढूंढ लेता है, यानी कि पर्सपेक्टिव तो कई है लेकिन जिंदगी को आप किस नजर से देखते हैं उसी रंग में रंगी होती है आपकी जिंदगी। चलिए आइए एक और नया रंग इसका खोज निकालते हैं। आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट जुड़ गई हैं और हम स्वागत करना चाहते हैं ग्लोबल अस्पताल से हमारे समक्ष जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, हमेशा ही अपने श्रोताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से भले हम बात करते हैं लेकिन अक्सर ये टू वे प्रोसेस होती है। जब हम कुछ शेयर करते हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होता है। सो खुशी होती है कि हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है।
0: जैसा आपने कहा कि लर्निंग लेसन है, तो जिंदगी के लिए कहा भी जाता है कि जैसे समुन्दर की तरह है, आप जितना जाने उतना कम है, कुछ ना कुछ और नया जरूर मालूम पड़ता रहता है। इमोशंस के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें करी थी, उनको कैसे रेट करें, कैसे समझें, कैसे रिप्लेस करें। आपने बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई थी रिकवर करने के लिए, कैसे खुद के साथ हम काम कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है जो आज सबको बहुत ट्रबल कर रही है और हमें सुनने में देखने में भी बहुत ज्यादा आ रही है, और वो है सेंसिटिविटी। मतलब हम जितने भावनात्मक हैं, भावनात्मक तो लोग पहले भी रहे होंगे और हमेशा ही होते हैं, लेकिन अभी ये बहुत देखने में आने लगा है कि बहुत जल्दी किसी की बातों का बड़ा असर पड़ जाता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, एकदम ठीक होते हैं, पर एकदम ठीक से एकदम नेगेटिव जाने में जैसे समय ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, अभी जो जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती है। पहले की जनरेशन हम देखते थे कि बड़ों की मार या बड़ों की कही हुई बातें या बड़ों की दी हुई शिक्षा, चाहे वो गुस्से में ही क्यों न दी गई हो, उसे बच्चे, युवा या जो भी उम्र के लोग हैं सब मान लेते थे, क्योंकि बड़ों के लिए एक रिस्पेक्ट था और उनके अनुभव से सीखने की भावना थी। तो अब वो कहीं नहीं रही है। हम जानते हैं हमारे स्कूलों में भी आजकल टीचर्स अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ठीक है पहले जमाने में मारते थे तो कोई नुकसान भी होता था लेकिन बच्चों को शिक्षाएं भी उसी तरह की मिलती थी। अब हमारे स्कूलों से छड़ी तो चली गई है, बट अगर आप हाथ से भी किसी को लगाएंगे तो भी उस टीचर पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए टीचर डरते हैं। इनफैक्ट मैं जिस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ वहां के टीचर्स से जब बात होती है तो कहते मैम अभी आजकल स्टूडेंट हमें धमकाते हैं कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम कंप्लेन कर देंगे। अगर हम बोलना भी चाहे, उनको डांटना भी चाहे, तब भी वो सहन नहीं कर सकते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं। उनके पेरेंट्स आकर कंप्लेन करते कि हमारे बच्चे को आपने क्यों डांटा, क्यों बोला। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चाहे जो भी बड़ा हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो या सोसाइटी में कोई भी बड़ा हो, वो छोटों को सही गाइडेंस और शिक्षा दे पाए, परंतु छोटों में अभी बड़ों के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहा है और इसीलिए वो किसी की बात सुन नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं जो ये बड़े नहीं जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का समंदर उनके सामने खुला हुआ है। सो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण है जिसके कारण हमारी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। हमें कोई कुछ बोल दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। कई बार वो बुरा लगना इतना दूर तक चला जाता है कि कई कई बच्चे या युवा सुसाइड भी करने लगे हैं। वो हर्ट होते हैं कई बातों से और फिर वो सहन न करने के कारण सुसाइड के बारे में सोचते हैं या सुसाइड कर ही लेते हैं। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो जमाना जैसे बदलता जा रहा है तो कारणों को पहले हम देखते कि क्या कारण है। मोबाइल और इंटरनेट के इस जमाने में बच्चों को तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई टेस्ट दिया हो कंप्यूटर से, तो तुरंत आपको रिजल्ट्स देता है, तो हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक जो आदत हमारी बढ़ गई है इस सोशल मीडिया के जमाने में, इंस्टेंट, अभी अभी सब कुछ चाहिए। इसलिए अगर फूड आपने ऑर्डर किया है और वो थोड़ा देरी से आता है तो आपका गुस्सा बढ़ जाता है। उस लाने वाले पर हम गुस्सा करते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि उसको आने में कोई दिक्कत हुई होगी।
0: हाँ।
1: क्योंकि आपने बोला है हाफ एन आवर में हम पहुंचा देंगे, तो अगर नहीं आते हैं 5 मिनट तो उस पर गुस्सा आता है। कई बार तो उनको तंग करने के लिए डिले करना, मतलब कई सारी बातें। तो फर्स्ट रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सब कुछ अभी अभी चाहिए, ये मानसिकता विकसित हो गई है। प्रतीक्षा न करने की क्षमता हो गई है कि हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी चाहिए, जो चाहिए वो अभी चाहिए।
0: आदत ही हो गई थी, जैसे आपने कहा इंटरनेट भी तुरंत तुरंत रिजल्ट, डिलीवरी भी फास्ट, सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है। तो ना क्विक हो ये तो ऐसा लगता है गलत है, जैसे कोई हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है या फिर मेरा अधिकार है उसके ऊपर। जैसा आपने कहा डिलीवरी वाले, ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं। दीदी क्या ये बचपन से, मतलब ये जैसा आपने कहा पहला कारण था, इसके अलावा भी और कोई कारण?
1: बहुत सारे कारण हैं जिसे हमें देखना जरूरी है। बच्चों को आजकल टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। जो ट्रेनिंग हमारे फैमिली सिस्टम में, हमारे कल्चर में था कि हम इमोशनली कैसे अपने आप को मैनेज कर पाए, उसका शिक्षा हमारे घरों में या हमारे स्कूल में नहीं मिल पा रही है। बच्चों को पढ़ाई और करियर की शिक्षा तो मिलती है, लेकिन भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना हम नहीं सिखा पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, चाहे वो घर या परिवार का सिस्टम हो, चाहे वो स्कूल का सिस्टम हो। बड़े भी अपनी भावनाओं को दबाते हैं, व्यक्त करने का जो ट्रेनिंग है वो उन्हें भी नहीं है। तो छोटे भी या तो सप्रेशन करते हैं या तो फिर गुस्से के माध्यम से, अग्रेशन के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करने का तरीका भी काफी वायलेंट होता है।
0: बहुत दिखाई पड़ रहा है आजकल ये कि बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो कुछ चीज फेंक दी या कैसे भी रिएक्ट कर दिया, दरवाजा जोर से मार दिया, और भी अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करते हैं।
1: तो इसके बजाय हमें भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। अगर हमें कोई ना सिखाए तो हमें खुद से ही सीखना होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए। ये एक और कारण है
0: जी।
1: तीसरा कारण है, इस समय प्रतिस्पर्धाओं के कारण तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटिशन इतना हाई हो गया है, एडवांस पीढ़ी हमारे सामने है, तो कई सारे दबाव है, पढ़ाई का दबाव है, नौकरी का दबाव है, फाइनेंशियल प्रेशर्स है। इन सभी प्रेशर्स के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, और इसके कारण उसकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं बहुत ज्यादा हाइप पर पहुंच जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन की लेवल पर जाती है।
0: बच्चों में भी इतना तनाव है दीदी, बच्चों में भी इतना स्ट्रेस है
1: जी, बहुत बहुत स्ट्रेस है। अगर आप किसी बच्चे को उसका स्कूल बैग ले जाते हुए देखेंगे तो आपको उन पर दया आएगी कि अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतना वजनदार बैग उठा के लेके जा रहे, बोझ हो रहा है। ये भी रीजन है कि सहनशीलता कुछ कम हो गई है। छोटी छोटी असफलताएं सफलता मिलती जाती है, असफलता मिलती है, सफलता को पचाना आसान है या फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी भी असफलता आती है तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो सफलता के अलावा असफलता भी सफलता की सीढ़ी है
0: जी,
1: ये नहीं समझ पाते, इसीलिए सहन नहीं कर सकते।
0: मुझे तो लगता है बच्चे शायद डबल प्रेशर में, पहले बच्चों के पास सिर्फ कंपटीशन होता था जो बच्चों के लेवल का होता था, अब जो बड़े होके लोग सोचते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसा, अब वो बचपन में वो भी प्रेशर आ गया है और बच्चों वाला प्रेशर भी है, तो डबल डबल प्रेशर आ गया बच्चों पे। तो
1: बिल्कुल यही सिनारियो है सोशल मीडिया में, जब हम आजकल हर एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जब हम दूसरों की खुशहाल परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं, है ना, आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए होता है, चाहे वो पोज देना है या फोटोज निकालने हैं या वीडियोस निकालने हैं, तो लोग चाहे अपनी जिंदगी में कितने भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन वो अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, और उस परफेक्ट पोस्ट को देखकर जो साधारण लोग हैं जिसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है।
0: ऐसी लगता है देख के बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है कि उनका ये वो वहाँ वेकेशन पे गए, उन्होंने ये कपड़े पहने, इससे वो मिले, यह सब, और एडमायर करते हैं नीचे तो कमेंट करते हैं कि तुमने बहुत ये किया, कमाल किया, और मेरी पोस्ट पे कम कमेंट है, कम लाइक्स है, तो भी बड़ा वो फील होता है।
1: इस जगह पर जो हमारा आत्मसम्मान है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे कहा जाता है कि देखो आजकल जो दिखता है वो बिकता है
0: जी,
1: है ना। तो सोशल मीडिया भी होड़ लगी हुई अपने आप को दिखाने की, अपने आप को पब्लिसिटी लेने की
0: जी,
1: तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है
0: जी,
1: देखिए सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो सुंदरता की बात कर ले, चाहे वो हेल्थ की बात कर ले, चाहे वो आर्थिक स्टेटस की बात कर ले, सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, किसी के पास कुछ कम, किसी के पास कुछ ज्यादा हो सकता है, ये वास्तविकता है। इसे स्वीकार न करने के कारण जो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है, ये भी एक रीजन होता है। जल्दी जल्दी मुझे उनके जैसा बनना है, बट जल्दी में कुछ नहीं होता है, हर चीज अपना टाइम लेती है। जब हम धरती में बीज बोते हैं तो वो अपने टाइम पर अंकुरित होता है। मैंने कल एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पेशेंस की कहानी है। तो एक बैम्बू का जो पेड़ होता है ना, बैम्बू का पेड़, सो उसका जब बीज लगाते हैं हम, तो वो जमीन के नीचे कई सालों तक वो ऊपर नहीं आता है उसका अंकुर, कई सालों तक उसका अंकुर नहीं, वो अंदर ही अंदर जमीन के अंदर रहता है, और कई सालों के बाद जब उसका अंकुर फूटता है, धरती के ऊपर उसका अंश आता है, तो कुछ ही महीनों में वो बहुत लंबा हो जाता है।
0: अच्छा,
1: इसका कारण क्या है? धरती के नीचे उसने गुप्त रूप से अपने आप पर काम करने में इतना समय लगाया, एंड जैसे ही धरती के ऊपर आया, कुछ ही समय में वो अपनी हाइट पकड़ लेता है। तो हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, अपने आप के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आरुषि आपको देखती हूँ, आप में बोलने की इतनी सुंदर कला है, आपकी आवाज इतनी मधुर है, और बहुत सारी कलाएं आपके पास है। अगर मैं आपके साथ कंपेयर करने लगूं और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूं, तो मैं उसी में रह जाऊंगी, और अपने में जो कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, उसे निखारना, उसे यूज करना रह जाएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम सेल्फ एस्टीम के नाम से भी जानते हैं।
0: उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत चला जाता है, क्योंकि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे दूसरों को देख के हमेशा ये लगा कि वो ज्यादा बेटर है मुझसे, दिखने में बेटर है और चीजों में बेटर है, तो जैसे कॉन्फिडेंस चला गया था। एक क्लास में एक हाथ उठा के सवाल पूछने का भी कई सालों तक कॉन्फिडेंस नहीं था इस कारण से, तो बहुत असर पड़ा एक लंबे समय तक।
1: यही होता है ना, बचपन से लेकर हम किस माहौल में पले, हमारा एनवायरमेंट हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत असर डालता है। एनवायरमेंट में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हम गलत चीजों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। मुझे याद है कि मैं जिस क्लास में पढ़ती थी, वहां पर कमिश्नर्स के बच्चे और बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे आते थे, और हम तो सामान्य परिवार से जाते थे, तो वो लोग, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है
0: जी,
1: तो उन्हीं के क्लास में हम बैठकर पढ़ते थे। इतना ज्यादा हम पढ़ाई में भी होशियार नहीं थे, बट कभी भी हमें उनके बड़े होने का, चाहे वो फाइनेंशियली या पोजीशन से बड़े होने का, हम पर कभी असर नहीं हुआ, हम कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। जो हमारे पास है उसको सजाने में, सवारने में, निखारने में हम लगे रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग हमसे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते थे, तो वो लोग चाहते थे कि हम इनसे दोस्ती करें। और मेरे तो सारे ही ऐसे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, जो बड़े परिवारों से आते थे, हमारे छोटे से घर में आकर पढ़ाई करते थे हम एक साथ, हमारे घर से वो खाना खाते थे, और मैं कहती थी सॉरी यार आप लोग इतने बड़े बड़े घर से हो और हमारे घर में ऐसा सिंपल सा खाना है और सिंपल सा हम रहते, वो बोलते थे कि नहीं यही हमें अच्छा लगता है, हमें अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, आपके यहाँ का सिंपल अच्छा लगता है। सो ये पता चलता है कि जब आप अपने आत्मसम्मान में रहते हैं तो सामने से आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है,
0: मतलब खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरों से मिलता है। मेरी तो बहुत मेहनत लगती है और मिलता बहुत कम है।
1: राइट सो ये जो हमें सीखने की बात है ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, अगर मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका हर बार धन्यवाद करती जाऊं, उसके लिए शुक्रगुजार होती रहूं कि अरे मेरे पास थोड़ा है लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ले जाता है, चाहे वो सुंदरता की ही बात क्यों ना हो। आजकल के यूथ ज्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर दिखने में मानते हैं, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो सुंदर नहीं है परंतु टैलेंटेड है, तो लोग उनके टैलेंट को पहचान कर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको काम मिलता है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट का कमाल है।
0: दीदी बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी और मुझे मतलब भी उनका नाम याद नहीं है, बट उन्होंने वही कहा था कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप वेयर करते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप कॉन्फिडेंटली कुछ पहनते हैं तो वो लोगों को अच्छा ही लगेगा, आप उसमें अच्छे ही लगेंगे, पर आपको ही लग रहा है कि नहीं मैं कम हूँ, नहीं मैं अच्छी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो शायद फिर वही लोग भी वैसे ही सोचते हैं। यहाँ भी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। हर रोज हम आईने में देखते हैं ना,
0: जी
1: आईने में देखते हैं खुद को, देखकर खुश होते हैं, तारीफ करते हैं हम अपनी खुद को देखकर खुश होते हैं, अरे वाह क्या बात है आप कितने अच्छे हो। तो एक बार मैं एक किसी हॉस्टल में रह रही थी, तो वहां पर जो केयरटेकर था उसने लड़कियों के मिरर पर एक लाइन लिख के रखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी लाइफ में उस लाइन ने बहुत ज्यादा मदद की मुझे। उसने लिख कर रखा था रूप को नहीं रूह को देखो।

0: संवाद की कमी रह गई।
1: ओके
0: माता पिता बच्चे इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। कल ही मेरे पास एक पति पत्नी आए थे, पत्नी को साइकोसोमैटिक डिजीजेस हुए थे, जैसे माइग्रेन था, बॉडी एक था, लेथार्जिक थे, नींद गायब हो गई थी, ये सारे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं। जब उसकी जड़ में जाने की हमने कोशिश की तो उसने कहा कि घर में कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, हमारी जॉइंट फैमिली है, सब लोग मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, और चलो सब तो करते ही है लेकिन मेरे हस्बैंड भी उनमें शामिल हो जाते हैं, सो मुझे किसी की तरफ से अपनापन महसूस नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं, मैं क्या चाहती हूँ उनसे कि वो आए, बैठे, मेरी बात सुने, हम दोनों एक आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करें, बट वो आते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मेरी तरफ नजर भी नहीं होती है। सो आजकल ये संवाद की कमी की वजह से हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल से संवाद करना इजी समझते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करना कठिन महसूस होता है। तो ये जो कारण है, इस वजह से भी हमारी जो सहन शक्ति है, टॉलरेंस है, कम होता जा रहा है। सो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं रेडियो पर आती हूँ, अच्छी अच्छी बातें होती है।
1: बहुत एग्जैक्टली भी मालूम चलता है कि कहाँ से शुरू करना है, नहीं तो वे कहते हैं बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं तो आंसर नहीं मिलता, यहाँ इस प्रोग्राम में आंसर मिलते हैं।
0: कई बार क्या होता है कि अभी हमारे पास बोलने की भी कला नहीं रही है, हम अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त कर सके, ये आर्ट भी हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल दुनिया में सब कुछ इजी, जैसे अभी हम इंटरनेट पर जाएं, हमें कुछ भी बोलना है हमें लिखकर मिल जाएगा, हम उसके लिए सोचते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करने के लिए डरते हैं कि अरे मैं कन्वे कर पाऊंगी या नहीं अपनी फीलिंग्स को, तो वो शब्द भी कहीं लुप्त होते जा रहे हैं।
1: बोल देते आई कांट एक्सप्लेन माय सेल्फ,
0: या
1: मैं नहीं समझा सकती, ऐसा भी होता है, डिफिकल्ट। तो मतलब कम्युनिकेशन की कमी भी है, और कोई कारण है दीदी?
0: जी बिल्कुल है। देखिए पहले जमाने में हर चीज हमें स्ट्रगल से मिलती थी, है ना, कि नहीं कुछ मेहनत करो तो कुछ मिलेगा,
1: तब मिलेगा,
0: लेकिन अब सब कुछ इजीली मिलता है। सफलता का भी यही हाल है कि असफलता लोगों को मिलती ही नहीं है, या मिले तो वो उसे पचा नहीं सकते, और कठिन लाइफ नहीं रही है। पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे की लाइफ वो बहुत सुविधाजनक कर दे,
1: बिल्कुल,
0: परंतु सुविधाजनक लाइफ को बनाते बनाते बच्चों को हम आलसी बना रहे हैं, उनको लाइफ की डिफिकल्टीज का सामना करने की आदत ही नहीं होती है, सब कुछ मिल रहा है। जो याद है बहुत अच्छी घटना है
1: जी,
0: गोवा में एक परिवार था, उनके कई सारे दुकान थे स्टेशनरी के, हमारे परिचित थे, उनके दो बेटे थे, अब काफी अमीर व्यक्ति थे वो, तो हम एक बार उनको विजिट कर रहे थे, उनके बेटे ने कहा मुझे घड़ी चाहिए, तो काफी दिन से वो कह रहा था मुझे घड़ी चाहिए घड़ी चाहिए, काफी महीने हो गए थे। उसके पिता बोल रहे थे हाँ मिल जाएगी दे देंगे मिल जाएंगी। मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, एक घड़ी की तो मांग है, आप क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, दे देते तुरंत उसको, आपके पास नहीं है ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उस घड़ी की वैल्यू उसको तभी समझ में आएगी जब कुछ मुश्किलातों के बाद उसे वो मिलेगी, या कुछ मेहनत के बाद मिलेगी।
1: ओके, तो उनकी थिंकिंग ऐसी थी बचपन से ही उनको तैयार करना कि जो चाहो वो तुरंत नहीं मिल जाता, जो आज नहीं हो रहा है शायद।
0: चुनौतियां तो हर एक के लाइफ में आती है, आप कब तक किसी के लाइफ की चुनौती से उसको बचा सकते हैं, उसकी चुनौतियां हैं, सामना भी उसको ही करना होगा। अगर वो हम डेवलप नहीं करते हैं तब फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है,
1: फिर जब अचानक से फेस करना होता है तो नहीं,
0: एंगर, ये सारे इश्यूज इसी की देन है।
1: ओके, तभी लोग कहते हैं कि अब शायद ये ज्यादा शब्द सुनाई देने लगे हैं, पहले इतना नहीं देते थे, हालांकि अवेयरनेस भी बड़ी है, विच इज वेरी गुड। दीदी आपने कई कारण बताए आज कि हम क्यों और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, क्यों अपने भावनाओं को इस कदर समझ नहीं पाते, या फिर बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है मूड हमारा,

0: उसके लिए जाते जाते कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं कि जो हमें आज हेल्पफुल हो। हालांकि इस टॉपिक को और गहराई से हम आगे समझेंगे कि ये जो आपने कारण बताया इनके लिए करना क्या है ये भी जानेंगे, मगर क्योंकि आज की समय सीमा यहीं तक इजाजत देती है तो क्या कुछ मेडिटेशन या अफर्मेशंस जो आप बताएं हम प्रैक्टिस कर सके?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत जरूरी है करना। सो हम कुछ मिनटों के लिए उन अफर्मेशंस को अपने आप में स्टोर करने के लिए अपने मन की तैयारी करते हैं। जैसे धरती में बीज बोने से पहले धरती को तैयार किया जाता है, वैसे ही अपने आप को हम फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करें। मैं अनुरोध करूंगी अपने श्रोताओं से कि वो जहां कहीं भी है 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाए, रिलैक्स करें अपने शरीर को, मन को शांत और एकाग्र करें, गहरी और लंबी सांस लें, पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें, मन की सीट को धरणी को तैयार करें जिस पर अभी बहुत खूबसूरत बातों का बीजारोपण हम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे शांत मन से प्रत्येक प्रश्न का भीतर से अनुभव करें। मैं हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के सामने सदा शांति से उपस्थित रहती हूं। हर परिस्थिति को मैं शांति के साथ डील करती हूं। मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे भीतर धैर्य और सहनशीलता सहजता से बढ़ रही है। मैं हर चुनौती को सीखने का अवसर समझकर उसका सामना करती हूं। मेरा मन परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर और शांत रहता है। मैं हर व्यक्ति को हर परिस्थिति को जो है जैसी है वैसे ही स्वीकार करती हूं। मैं प्रतिक्रिया करने के बजाय समझदारी से उत्तर देना पसंद करती हूं। गहरी और लंबी सांस ले, कठिन परिस्थिति में भी मैं अपना आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखती हूं। गहरी लंबी सांस ले, जो वाक्य हमने सुने हैं उसे अपने मन में कई बार दोहराएं, रजिस्टर करें। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। ये जो आपने कुछ लाइंस बोली ये मुझे लगता है हम सभी लिख कर रख लें ताकि भूले नहीं और इन्हें लगातार प्रैक्टिस करें
1: जी।
0: और जो आज हमने कारण जाने हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि कहीं मुझे कोई कारण इनमें से परेशान तो नहीं कर रहा। कुछ सॉल्यूशंस आप अपने अंदर से खोजें और कुछ हम आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे अगले एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।
1: जी शुक्रिया, धन्यवाद।
0: और दोस्तों आपसे लेते हैं इजाजत इसी वादे के साथ कि मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

ये राखी परमात्मा के प्रेम की राखी है, उनके साथ अविनाशी संबंध की राखी है, तो उनके साथ का अनुभव कर सदा खुश रहना।

0: होता जिसे मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ, भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ, मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक, दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
6: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

0: ये आजादी के सुनहरे सवेरे से पहले गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी की बजाय एक कानूनी अंधेरा लेकर आती थी। धरती की मांग स्वार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, फसल जवान होती, मगर इस पर किसान का कोई हक ना होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई जालिम सरकार की। ऐसा होने से भूख और त्राहिमान बढ़ने लगा। हुकूमत चाहती भी यही थी कि किसानों के देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया जाए। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा में आज आप सुनेंगे देश के इतिहास का एक और अध्याय जो जुड़ा हुआ है मातृभूमि की नींव से। आज हम सुनेंगे उस शख्स की कहानी जो देश पे जान लुटाने वाला और देश का सच्चा भक्त है, भगत सिंह की कहानी, जिनके पास बन्नो भी पहुंच चुकी है। तो आइए सुनते हैं देश के युवा क्रांतिकारी की कहानी।
1: चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगत सिंह जी कहाँ मिलेंगे?
2: बेटा, भगत जी तो अभी अपने साथी सुखदेव के घर पर रुके हुए हैं। तुम आगे आ गई हो, इसके पहले वाली गली में है उनका घर।
1: अच्छा चाचा, धन्यवाद।
2: हाँ हाँ ठीक है।
1: कोई है?
3: हाँ जी, कौन?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे भगत सिंह जी से मिलना है।
3: आप कौन जी और मुझसे क्यों मिलना?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे सब प्यार से पुचकी बुलाते हैं। मुझे गांधी दादू ने भेजा है आपके पास कहानी सुनने के लिए।
3: कहानी? कैसी कहानी?
1: अरे बाबा, आपकी कहानी, देश के स्वाधीनता की कहानी।
3: अच्छा ठीक है, पहले तुम अंदर आओ। एक बात बताओ बन्नो, तुम इस सदी की तो नहीं लगती, फिर कहां से आई हो?
1: मैं 21वीं सदी से आई हूँ और स्वाधीनता की कहानी सुनना चाहती हूँ आपसे।
3: अच्छा ठीक है, चलो तुमको उस दौर में ले चलता हूँ जहाँ इंकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये हमारे दिल की धड़कन थी। 8 अप्रैल 1929 का दिन, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके भारतीय समर्थक एक के बाद एक दमनकारी कानूनों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये कानून हमारी आवाज को कुचलने और मजदूरों के संघर्ष को रोकने के लिए लाए गए थे।
1: फिर आपने क्या किया? कैसे आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई?
3: हमारा संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम जानते थे कि यह सरकार जनता की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, उसे केवल अपनी सत्ता की भूख और दमनकारी नीतियों से मतलब है। हमने बहुत सोचा और फिर तय किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इन बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचा सके।
1: वो कैसे किया? बम फेंक कर? उनके कान के ताले तोड़े थे क्या?
3: हाँ, बम।
1: लेकिन उससे तो लोग जख्मी हो जाएंगे ना?
3: नहीं नहीं, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना था जो जानबूझकर बहरे बने हुए थे। हमने बमों को इस तरह से बनाया था कि उनसे जान का खतरा कम से कम हो। वो धुआं और शोर पैदा करने वाले थे ताकि पूरा सदन हमारे मकसद को नजरअंदाज ना कर सके।
1: बाप रे, ये सब आपने अकेले किया?
3: अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा साथी बटुकेश्वर दत्त था। हम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। हमने सोच लिया था कि हम भागेंगे नहीं बल्कि गिरफ्तार होंगे ताकि अपनी बात को अदालत के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके। असेंबली में उस वक्त अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, हमने योजना के मुताबिक कार्यवाही शुरू कर दी। पहले बम का धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया, लोग अपनी कुर्सियों से उठकर भागने लगे। कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी मच गई। फिर बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। बम फेंकने के बाद हमने अपनी जगह से खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया,
4: इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
3: इसके बाद हमने हवा में लाल रंग के पर्चे फेंके।
1: क्या लिखा था उस पर्चे पे?
3: उन पर्चों पर हमने लिखा था, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। हमने साफ साफ लिखा था कि हमारा मकसद किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है। जब पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई तो हमने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने वो संदेश दे दिया था जिसे यह बहरी सरकार कभी सुनना नहीं चाहती थी। हम जानते थे कि हमें सजा मिलेगी, लेकिन ये सजा हमारे लिए गर्व की बात होगी।
1: लेकिन आप दुनिया को क्या बताना चाहते थे?

0: हम दुनिया को बताना चाहते थे कि क्रांतिकारी सिर्फ गोली नहीं चलाते बल्कि वो विचारों की क्रांति भी करते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति के प्रतीक मात्र हैं। असली क्रांति तो विचारों की दुनिया में होती है और हमारी क्रांति की आवाज दिल्ली की उस असेंबली से निकलकर पूरे देश में गूंज चुकी थी। इंकलाब जिंदाबाद।
1: वाह क्या बात है, आपने तो असंभव को संभव कर दिया।
0: चल बन्नो तुझे मैं एक और कहानी सुनाता हूँ।
1: एक और कहानी?
0: हाँ सुनोगे?
1: क्यों नहीं, जरूर सुनाइए सुनाइए।
0: ये कहानी है हमारे लाला जी की, लाला लाजपत राय की। लाला जी, हम उन्हें पंजाब केसरी कहते थे। उनकी एक आवाज पर पंजाब का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता था। 30 अक्टूबर 1928 का दिन, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हम लाहौर में इकट्ठे हुए थे। उस दिन सड़कों पर एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी। हम सभी अपनी आवाजों को एक साथ बुलंद कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। उनका एक अधिकारी स्कॉट, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और उस लाठी चार्ज में लाला जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने देखा नहीं था कि कौन मार रहा था, बस इतना कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उनका यह बयान उनकी अंतिम इच्छा बन गया। एक महीने बाद 17 नवंबर को लाला जी हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय अपमान था, एक चुनौती थी जिसे हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया।
1: फिर क्या किया आपने?
0: मेरे खून में उबाल था। हमारी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथी भी खामोश नहीं बैठ सकते थे। हमने तय किया कि इस अपमान का बदला लेना होगा। जिस अधिकारी ने हमारे लाला जी की हत्या करवाई थी ना, उसे सजा देनी होगी। हमारा प्लान बना।
1: कैसा प्लान?
0: सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और मैं, 17 दिसंबर का दिन तय हुआ। हमें जानकारी मिली कि अधिकारी पुलिस मुख्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर आएगा। हम इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त जय गोपाल ने इशारा किया, स्कॉट आ गया है। राजगुरु ने निशाना साधा, मैं भी तैयार था। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार पास आया, राजगुरु ने गोली चलाई। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागा और पास जाकर अपनी पिस्तौल की 3 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। फिर हम वहां से निकल गए। अगले दिन पूरे लाहौर में दीवारों पर एक पर्चा चिपका दिया गया था जिस पर लिखा था, जेपी सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। हम जानते थे कि हमने स्कॉट की बजाय एक दूसरे अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया था। ये गलती थी, पर हमारा मकसद साफ था। हमने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, हमने तो उस ब्रिटिश सरकार के अहंकार को मारा था जिसने लाला जी जैसे महान नेता की जान ली थी। सैंडर्स तो बस उस क्रूरता का प्रतीक था।
1: तो आपने ऐसे बदला लिया?
0: ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था बन्नो। ये उन लाखों भारतीयों के लिए एक आवाज थी जो मानते थे कि अहिंसा की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये क्रांति की ज्वाला को और भी तेज से जलाने का एक कदम था। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी युवक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना थी, पर इसका असर बहुत बड़ा था। इसने भारत के नौजवानों में एक नई आग भर दी थी और मुझे पता था कि यही आग एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य को राख कर देगी। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम। कितनी रोमांच से भरी घटना थी। मन कर रहा है और भी कई किस्से सुनूं, मगर अभी मुझे जाना होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय, फिर मिलेंगे।
0: हाँ जी, ध्यान से जाना। हाँ।

0: अरे बन्नू किधर चल दी?
1: अरे दीदी आप, मैं तो भगत सिंह जी से मिलने आई थी, आप ही के टाइम मशीन से।
0: अच्छा क्या कहा उन्होंने?
1: उन्होंने बहुत सारी रोमांचक कहानियां सुनाई। और पता है दीदी, उनकी कहानियों को सुनकर मुझे भारत माँ के लिए की गई संघर्षों के बारे में जानने का और भी उत्साह बढ़ गया है। मगर मुझे उनसे उनके बारे में और भी चीजें पूछनी थी, मगर भूल गई।
0: बन्नो तुमको पता है, भगत सिंह देश के ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिनसे ब्रिटिश भी डरते थे। इसीलिए तो चालाकी से और छल से उन्होंने उनको फांसी का दंड दे दिया।
1: फांसी? पूरी कहानी बताओ ना दीदी।
0: पहले चलो 21वीं सदी में वापस चलते हैं, जाते जाते मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगी।
1: हाँ दीदी चलो।
2: और यही रुकती है आज की कहानी। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नारे में बदल जाती हैं। आज आपने भगत सिंह और उनके साथियों की गाथा सुनी, हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लेने का साहस और मौत से पहले होठों पर वही एक पुकार, वंदे मातरम। सोचिए जिस क्षण किसी माँ ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा होगा, उसके दिल में आंसू नहीं यही नारा गूंजा होगा। जिस पल किसी युवक ने जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी आखिरी सांस ली होगी, उस सांस में डर नहीं मातृभूमि का नाम होगा। वंदे मातरम एक गीत नहीं था, ये वो सहारा था जिससे टूटते हुए लोग खड़े हो गए। ये वो शब्द था जिसे बोलते हुए किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस एक नारे में पूरा भारत साथ खड़ा था। जब भगत सिंह ने इसे पुकारा तो वो फांसी की ओर नहीं बढ़े, वो अमरता की ओर चले गए। और उस दिन से हर पीढ़ी के सीने में ये नारा धड़कन बनकर बस गया। आज भी अगर हम आजाद हैं तो इसलिए नहीं कि जंजीरें टूट गई थी, बल्कि इसलिए कि वंदे मातरम कभी टूटने नहीं दिया गया। और अब सवाल ये नहीं कि कहानी खत्म हुई या नहीं, सवाल ये है जब अगली बार ये नारा गूंजे तो क्या हम उसके अर्थ को उतनी ही ईमानदारी से महसूस कर पाएंगे। जाने के लिए बने रहिए एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के साथ। सुनते रहिए, खामोशी में भी सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक नारा पूरी सभ्यता को जिंदा रखता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन, वंदे मातरम, जय हिंद।

0: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो।
1: ये ले तेरा गिफ्ट।
2: भैया मिठाई तो खा लो।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
4: रक्षा बंधन पर्व है,
5: भाई बहन के प्यार का।
4: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
1: बहन की रक्षा के वादे का।
4: खुशियों के त्योहार का,
6: रिश्तों की मिठास का,
4: परस्पर विश्वास का।
7: शब्दों की नहीं, पवित्र दिलों की बात है राखी।
4: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। राखी का पर्व माँ लक्ष्मी ने शुरू किया, कैसे तो जरा विचार करिए, हम जरूर बताएंगे। और जी हाँ, अगर शरीर का कोई भी अंग सुन पड़ गया है तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की आज हम ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी के साथ राखी मना करके, ठीक है। और भाई रेसिपी कैसे भूल सकते हैं, आज तो रक्षाबंधन है तो कुछ स्पेशली आपको खिलाएंगे। आप क्या पसंद करते हैं जरूर बताइएगा अपनी पसंद, नहीं तो हम तो बैठे हैं अपनी पसंद सुनाने के लिए। और आज का टंग ट्विस्टर तो बहुत ही लाजवाब होगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे छुटकी यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, आशना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का सुंदर सा विचार है, राखी का त्योहार माँ लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, माँ लक्ष्मी जी ने ही शुरू किया है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी है। ऐसी ही एक कथा राजा बलि, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी, तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल है। ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो ये मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। बहनें जब भाइयों को राखी बांधती है तब भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इस मंत्र के पीछे की धार्मिक घटना क्या है? आइए रक्षाबंधन त्योहार के पवित्र मौके पर जानते हैं इस मंत्र से रक्षाबंधन की कथा का क्या संबंध है और माता लक्ष्मी ने किसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त किया था। एक बार क्या होता है, दानवों और देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया जो 12 वर्षों तक चलता रहा।

इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित करके इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे जनार्दन, ये स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं है। हम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यथा दूर करो प्रभु। भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोकों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो चाहे सो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पैर जमीन मांगी। ये सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़ करके। उन्हें वामन पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि को यह दान देने से रोकना चाहा, लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बोना 3 कदम मतलब 3 पग में कितनी जमीन नाप पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से अपनी 3 पैर भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना 3रा पांव कहाँ रखूँ? इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना 3रा पैर मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्तवत्सल होते हैं। वे अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो दानवेंद्र बलि। राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से ये वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर आए उधर उसको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अवचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते, वे वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद फिर वैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने एक कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, है देव ऋषि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष सयाधारी भगवान कहाँ है, कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान्य, समृद्धि और ऐश्वर्य से खिल उठा। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसकी रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ भी मांगने का आग्रह किया। देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सन्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने का अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म परायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर वैकुंठ आ गई। जिस दिन ये घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी।
पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से ये तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देता है। तो इस तरह रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो ये हुआ आज का विचार, और आइए फिर से सुन लेते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मोहन जी कुमावत रोहिड़ा से जुड़ चुके हैं जो अभी वर्तमान में आबू रोड में रहते हैं। नमस्कार भाई साहब।
1: सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को तो हमारी बहनों का सुहाग बना रहे और हमारे भैया लोगों का घर आबाद रहे, तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि हमेशा उनके घर में खुशियाँ आवे और वो रक्षाबंधन इसी प्रकार प्यार से मनावे। तो मैं अपने तहे दिल से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ
0: जी। और सभी बहनों की तरफ से, रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को और आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, निरामय रहे।
1: मेरे पुराने जो बंधु श्रोता है उनके उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी अपने अन्य नए श्रोता है उनको भी बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं और आशीर्वाद
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका,
1: धन्यवाद।
0: तो ये थे मोहन जी कुमावत और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ शरीर के प्रभावित अंगों के लिए, जो अंग सुन पड़ जाते हैं किस कारण से वो सब जानेंगे। तो देखिए, सबसे अधिक टीबी का असर फेफड़ों पर होता है। जब टीबी होते हैं ना तो फेफड़ों पर पड़ता है। अन्य प्रभावित होने वाले अंगों में जैसे हड्डियाँ, आते, टॉन्सिल्स, चमड़ी, गुर्दे और प्रजनन अंग सम्मिलित है। चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो, सामान्य लक्षण एक से होते हैं। हरारत, हल्का सायंकालीन बुखार, भूख कम, वजन गिरना टीबी के सामान्य लक्षण है। फेफड़ों की टीबी में खांसी, बलगम आना, छाती दर्द, सांस में दिक्कत, खांसी के साथ खून आना, ये इसके खास लक्षण है। आंतों की टीबी में पेट में गैस का घोला बनना, बदहजमी, पेट फूलना खास लक्षण है। संतानहीनता का प्रमुख कारण बदहजमी, पेट फूलना, महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी का खास मतलब लक्षण है। गुर्दे की टीबी में पेशाब में खून आना और गुर्दों में सूजन आना खास संकेत है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीबी के कारण अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुंदर से उपाय आपको बता रही हूँ। एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालिए, फिर ठंडा होने पर शक्कर डाल करके रोज़ सुबह शाम पीजिए। इसमें क्या है, खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी, आरंभिक टीबी में लाभ होता है जब टीबी की शुरुआत है और यह सब कुछ दिक्कतें आ रही है तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। दूसरा उपाय है, यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्र में घी मिलाकर खाने से क्षय रोग का नाश होकर के बल मिलता है, ताकत मिलती है, ठीक है। फिर तीसरा है, यक्ष्मा में जिन्हें लगातार बुखार रहता है, ज्वर रहता हो, उन्हें 11 पत्ते तुलसी, फिर नमक, जीरा, हींग, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिला करके 3 बार कुछ दिन तक पीजिएगा, ठीक है, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। फिर से दोहरा रही हूँ कि आप 11 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा नमक, थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग 1 गिलास गर्म पानी में मिलाना है, ये सब कुछ, नींबू का रस भी 25 ग्राम मिलाना है और कुछ दिनों तक लगातार आपको पीना है, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। सेब खाना, सेब यानी कि एप्पल, एप्पल खाइएगा, यक्ष्मा में बहुत ही लाभदायक है। आतो, यकृत और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लास्ट उपाय बता रही हूँ, यक्ष्मा में भोजन के रूप में अंगूर का सेवन करिएगा। यक्ष्मा में, यक्ष्मा जिसको अंग मतलब ये टीबी कहते हैं, तो इसमें आप भोजन के रूप में अंगूर का सेवन करिएगा, काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर है और आपको अधिक से अधिक 3 बार और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है।

ठीक है, तो सुनिएगा, राखी रेशमी, रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15। और अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए मुस्कुराते।

0: राखी का धागा सिर्फ कलाई नहीं सजाता, राखी का धागा सिर्फ कलाई नहीं सजाता, ये भाई बहन के दिलों को पास लाता। रिश्तों में अगर कभी रूठना भी हो जाए, रिश्तों में अगर कभी रूठना भी हो जाए, प्यार का एक धागा फिर सब भुलाता, प्यार का एक धागा फिर सब भुलाता। तो आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, जो ये शायरी रखी है आपके समक्ष, अब इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज भाई बहन का पवित्र दिन है, बहुत ही सुंदर प्यारा पर्व है, तो क्या कर रहे हैं आप सभी? चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई जटान आपसे बोलता हूँ, और आपको, सभी परिवार को, सभी हमारे मित्रों को, सभी बहनों को आज के दिन की रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी
0: जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: दीदी हमारे सभी बहन अच्छी रहे, हमारी आज कोई हमारे मित्र मंडल है, हमारे मधुबन परिवार है, सभी बहने जिस तरह है, तो आज के दिन की सभी बहनों को शुभकामनाएं दीदी
0: जी।
1: सबको बस भाई बहन का एक मददगार बना रहे, ऐसी शुभकामना आज के दिन के लिए दीदी
0: जी।
1: और बहुत अच्छा त्योहार है आज, देखो आज इतनी हलचल है घरों में, बाजार में, रिश्तों में,
0: तो जी जी जी,
1: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी, सब खुश रहे अच्छे रहे।
0: आज आप भी कहीं जाने वाले हैं या आपके घर पर आ गई होगी बहने, है ना?
1: नहीं दीदी, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अभी बहन आ रही है, एक दो तीन दिन में तो आके गए और एक दिन आ रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, क्योंकि सबको जो मौका जब मिलता है तब आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: एक साथ तो नहीं आ सकते,
0: बिल्कुल ये तो है,
1: सभी परिवार में सामने वाले को भी घर पे आता है जाता है तो ऐसा रहता है दीदी। कल हमारी बड़ी बहन आई थी, वो सुबह में आके तो रात को चले गए, शाम को तीन चार दिन पहले भी एक बहन आए थे।
0: अच्छा,
1: तो अगले आज भी एक बहन सुबह में आ रहे हैं थोड़ी देर में बस।
0: जी जी जी जी,
1: तो और बेटी भी आ रही है।
0: जी जी जी जी,
1: अहमदाबाद से।
0: जी जी जी, तो ये रिश्तों में आजकल क्या हो रहा है सुरेश भाई, भाई बहन के रिश्तों में भी जो सबसे खास अजीज रिश्ता है उसमें भी दूरियां बढ़ती जा रही है, उसमें भी मन मुटाव होता जा रहा है।
1: सही बात है दीदी, बता आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है, शायद सामने वाले की बहन पे थोड़ा अनसमझ है, कभी कभी गायकों को भी थोड़ा समझ रहती है, तो ऐसे में मैं तो दीदी कहता हूँ उसको जो मन बनो तो जल्दी से इसको ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी बहन की एक बात करूँ तो मेरी छोटी बहन जितनी भी नहीं आती है, तीन साल से नहीं आती, मैं हर रोज कहता हूँ, हर रोज फोन करता हूँ, लेकिन नहीं आती है तो मैं क्या करूँ
0: जी,
1: मैं भी कह कह के थक गया। आज मैंने मेरी जल्दी छोटी बहन आज वो नहीं आई है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है,
0: बहन
1: आए एक दिन नहीं आती तो क्या हुआ, लेकिन इसको ऐसी थोड़ी सी गैर समझ हो गई है, लेकिन गैर समझ वो समझते नहीं है क्या करें। मैंने कितनी बार उसको बोला, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ कि मेरी गलती है,
0: ओहो, अरे
1: समझती तो क्या करें।
0: ऐसे भाई बहन के प्यारे से रिश्ते में एक बार गलती मान ली, बात खत्म हो गई ना।
1: लेकिन मैं हर बार गलती मानता हूँ, एक बार नहीं हर बार मानता हूँ, लेकिन उसको क्या हुआ है पता नहीं, नहीं समझती है।
0: अच्छा,
1: मैं कल परसों भी मैंने बहुत उसको फोन किया, मैं इसके घर, वो मेरे घर तीन साल से नहीं आती है, लेकिन मैं इसके घर 25 बार गया हूँ,
0: क्या बात
1: मेरे
0: है,
1: घर नहीं आती है।
0: अरे बाप,
1: क्या करूँ।
0: चलो, आपने गलती जो भी हुई हो एक्स वाई जेड, आपने स्वीकार कर ली, आपने माफी मांग ली, आप 25 बार चले गए, बात खत्म, आपकी तरफ से गिला शिकवा है ही नहीं, अब वो उसको पकड़ के बैठी हुई है तो फिर वो तो अब ईश्वरी मालिक है।
1: बिल्कुल छोटी बहन दीदी, इसको मैंने लात पास से तैरा था, वो उसको क्या था दीदी, मैं उसको खुल स्कूल भेजने जाते थे, मैं उसके भी बाल भी मैं बनाता था।
0: जी जी, क्या
1: मैं छोड़ के जाता था, बिल्कुल छोटी बहन है मेरी, कोई भी नहीं समझती है, तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन करो तो क्या करो,
0: कोई नहीं, कुछ क्या कि कुछ है ना, ऐसी बातें हो जाती है, समय पर छोड़ दीजिए, जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो समय पर छोड़ देना ही अच्छा है।
1: इसलिए मैंने छोड़ दिया था, चल तेरे को जब आना होता है ना, मैं तो कुछ नहीं, मेरी तरफ से मैं सब कुछ मैं बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: चलो मैं और एक ऑर्केस्ट्रा चला दूँ तो।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्योंकि विषय तो मैं बता चुका हूँ क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है तो
0: जी जी जी जी जी जी
1: जाना चाहिए, बहनों को समझ जाना चाहिए
0: बिल्कुल,
1: और भैया को समझ जाना चाहिए
0: जी।
1: तो मैं ऑर्केस्ट्रा सुना।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, आए बहन की बने रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाए बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
0: क्या बात है जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आपने भी देखे अपनी व्यथा को बताई है कि कैसे बहन नाराज है, और हम इस दिन को मनाते हैं। तो भाई मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी गिला शिकवा है ख़त्म करिए। अरे हम आपस कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, खून का रिश्ता है। अरे कुछ गलती मुझसे हुई, कुछ गलती आपसे हुई, चले मुझसे हुई आपसे नहीं हुई तो क्या अपनी बहन को माफ़ नहीं करोगे? या भाई से हुई बहन से नहीं हुई तो क्या अपने भाई को माफ़ नहीं करेंगे? हाँ थोड़ा सा आपको अगर ऐसा है कि कैसे गलती हो गई तो थोड़ा भाई झगड़ लीजिए, आपस में बात कर लीजिए कैसा किया वैसा किया, तो उसका समाधान आएगा। गांठ बांध कर हम बैठ जाते हैं तो उसका समाधान नहीं आता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए कोई भी बात की टीस है आपके मन में तो आप बता दीजिए कि ऐसी बात है, आपने ऐसा किया, अब क्या करना है। तो सामने वाला भी अपनी बात रखेगा और उस बात को वही खत्म कर देगा, बाकी पकड़ के रखने में कोई फायदा नहीं। हेलो,
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: जी ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हम अच्छे हैं सुभाष भाई, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखो आज बहुत ही पावन, पवित्र, खूबसूरत, प्यारा, मनोहर दिन, रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार का त्योहार है। तो आपको और रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोता भाई बहने सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार और रक्षाबंधन की दिल से हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपने भी बहुत ही अच्छा विचार सुनाया विशेष दिन का। और सुरेश भाई हमारे पहले दोस्त जोटाना वाले, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सभी का शुक्रिया और सभी को बधाई। ओम शांति दीदी, ओम शांति
0: जी। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? चलिए रख दिया है, कोई बात नहीं। अगर आप भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आज के विषय में भी अपनी बात रख सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। जो मैं बोल के सुना रही हूँ ध्यान दीजिएगा। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। हेलो, हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते
0: जी,
3: रक्षाबंधन की हमारे आपके भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन
0: ऑन एयर है आप?
3: हाँ जी
0: हाँ जी। तो आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस दिन को कैसे आप खास मना रहे हैं?
3: तो हमारे तो क्या है कि हम पांच भाई थे, बहन भी थे,
0: जी
3: हमारे तो कोई बहन नहीं है, धर्म की बहन हमारे गांव में ही एक बहन है, तो ये आए थे तो 2 दिन पहले
0: जी।
3: तो ये राखी लेके आए थे तो हमने ये सब किया है, तो हमारी ये है दिया और ये सब किया। लेकिन क्या है, आज हमारी बेटी आने वाली है
0: जी,
3: चार भाई बेटे हैं मेरे और एक ही बेटी है, तो कल से कॉल कर रही है। हमने भी ये तो सुबोध ने और इसके घर से बुलाया है कि भी आओ यहाँ भोजन का सब ये करेंगे, तो आज आने वाले हैं
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए।
3: जैसे थोड़ी पहले बोला कहा है, ऐसे हमारे भी हमारे भाई के एक ही बेटा है, दो बेटियां है, तो थोड़ा ये हुआ है बहन जी, बनाव हुआ है।
0: अच्छा।
3: माता पिता से, बहनों से तो नहीं हुआ था लेकिन माता पिता से हुआ है
0: जी।
3: इसको जॉब भी दिलवाई है, ये जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बहुत परिस्थितियां बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को बोलता नहीं, माता पिता को नहीं बोलता, बहनों को नहीं बोलता, कोई कॉल भी नहीं करता, ये नहीं करता, तो क्या करे बहन जी। ऐसा ये कुछ हो जाता है तो इतना है, ये तो एक साल में ये होना हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि कोई इसके घर से कोई ये है क्या है, कोई समझ में नहीं आता बहन
0: जी। जी जी जी
3: तो नहीं, आज भी नहीं आया घर पे
0: जी,
3: बहने भी नहीं आई।
0: अच्छा, अब बहने कैसे आएगी जब भाई बुलाता ही नहीं है, तो बहने कैसे आएगी भाई। माता पिता का झगड़ा है तो माता पिता के साथ रखो, लेकिन बहनों ने क्या बिगाड़ा,
3: क्या बिगाड़ा,
0: और माता पिता से क्या आप एक नहीं होंगे, इकलौता बेटा है, माता पिता क्या बच्चे का बुरा तो नहीं चाहेंगे।
3: हाँ, बुरा क्यों चाहे, बहन जी जॉब दिलवाई है, इसका जो रिटायर्ड हुए सब पैसे इसमें एक कर दिए और जॉब दिलवाई, और ये फिर ये माता पिता से और बहनों से सब घर से अलग हो गए
0: जी। ये तो स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ हो गया। ये तो
3: कहानी याद आ गई, छोटी सी है बहन जी,
0: कि जी।
3: एक बहन थी तो भाइयों ने इसकी शादी की, ठीक है, तो इसकी परिस्थितियां कोई अच्छी नहीं थी बहन के घर से, तो ये बुलाते भी नहीं थे कि भाई अब इसको क्या बुलाए, क्या है इसके पास, ऐसा थोड़ा भाइयों में थोड़ा ये था
0: जी।
3: तो परिस्थितियां तो एक सरखी तो नहीं हो रहती बहन जी, तो फिर क्या हुआ कि भाई बहन की घर से थोड़ी परिस्थितियां बहन की सुधर गई और अच्छी परिस्थिति हुई, मेहनत की ये किया, तो फिर भाइयों को पता चला कि भाई बहन तो थोड़ा परिस्थितियां तो थोड़ी अच्छी हो गई है, हमारे भी कोई पैसों की जरूरत पड़े तो हमें भी मदद करेगी, काम आएगी, तो बुलाते हैं इस साल रक्षाबंधन पे।
0: अच्छा,
3: तो क्या किया भाई, उनको बुलाया बहन, इतने सालों से तो नहीं बुलाते थे
0: जी,
3: बुलाया तो बहन को पता चल गया कि भाई इतने सालों से नहीं बुलाया तो इस साल बुला रहे हैं, तो हमारी परिस्थितियां थोड़ी ठीक हुई है तो चलो जाते हैं।

0: गहने पहने पहरे पहने
1: जी,
0: सभी गहन गहने पहर के भाई भाइयों के घर गई
1: जी।
0: तो भाइयों ने भोजन बनाया था, मिष्ठान आदि बेटी सभी बनाया, तो बैठा है बहन को भोजन करने के लिए
1: जी।
0: तो बहन ने एक थाली दूसरी मंगवाई, खाली थाली
1: जी,
0: एक खाली थाली लाओ। तो इसमें सभी गहने बहन ने एक एक करके एक थाली में रख दिए। और बहन बोली कि भाई ये मेरा, मुझे नहीं बुलाया, मेरे ये गहनों को बुलाया है। मेरी परिस्थिति ऐसी थी तो आपने नहीं बुलाते थे इतने सालों तक
1: जी।
0: लेकिन आज आपने ये बुलाया है तो ये मुझे नहीं बुलाया ये मेरे। हाँ, तो ये फिर भाइयों को पछतावा हुआ कि भाई हमें बहुत गलती की थी, माफी मांगी किया
1: जी।
0: तो एक नहीं करना चाहिए बहन जी,
1: ये
0: परिस्थिति जो जिसकी जो परिस्थिति है। लेकिन आज के दिन बहन को भाई के घर जाना और भाइयों को भी बुलाना चाहिए, भाइयों के घर से है, बहन की भाभियां है, इसको भी बुलाना चाहिए कि भी आओ। देखो कल दो तीन बार कॉल किया हमारे सुबोध के घर से, आओ तुम, कब आओ, आते हो, यहाँ सब खाना बना बनाएंगे, सब बैठेंगे
1: जी।
0: तो ये आज के दिन की थोड़ी बात है
1: जी जी जी, जी।
0: तो मैंने शेयर,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ा होता है, उल्टे बहन की परिस्थिति डाउन हो तो उस समय तो भाइयों को और आगे आना चाहिए।
0: हाँ, आगे हम देखते हैं ना। देखो सुभद्रा अर्जुन की बहन, पांडवों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसको निकाल दिया था करके, ठीक है। तो कृष्ण ने क्या सोचा कि भाई चलो संबंध बांधे, ऐसे तो वो लेने वाले नहीं थे पांडव। सुभद्रा का शादी की अर्जुन से, और ड्रग संपत्ति फिर कृष्ण ने दी
1: जी जी जी।
0: ये उदाहरण एक लेना चाहिए बहन जी की भाई परिस्थितियां नहीं है तो ऐसे संबंध जो बांधा है तो हमें कुछ मदद करनी चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
0: दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है
1: जी। कंचन भाई चले, बहुत बहुत आभार आपका।
0: हाँ जी बहन जी, बहनों को
1: जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आइए अब यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटते हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए पहले हमारे श्रोता बंधु से बात कर लेते हैं। हेलो, चलिए तो सुन लेते एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: होता जिसे मैं रक्षाबंधन पे राखी बांध पाती।
1: अरे भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है, मुझे राखी बांध दो, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
2: भाई को चिट्ठी में राखी नहीं बल्कि अपना प्यार भेज रही हूँ। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखना।
3: मनु भैया मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो मेरे लिए सगे भाई से कम नहीं है।
4: मेरा भाई सरहद पर तैनात है, मैं उसके साथ रक्षाबंधन नहीं मना सकती तो क्या हुआ। मेरा भाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की रक्षा कर रहा है।
5: भावनाएं अनेक लेकिन राखी का पवित्र धागा एक। दिल की शुभ भावनाओं को जुबां पे लाएं, बीती बातें भुलाकर स्नेह का बंधन निभाएं।
6: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी को

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में दयाराम जी रामपुरा से जुड़ चुके हैं। दयाराम जी नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति दीदी, हमारी प्यारी बहन उषा जी और सभी मेरी जो रेडियो के माध्यम से जो हमारे परिवार की बहनें हैं उन सभी को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और हमारा जो आशीर्वाद हमारी बहनों पर बना रहे और हमारे बहनों के साथ साथ जो हमारे प्रिय भाई है तो उन पर भी बना रहे। सुरेश भाई है, कंचन भाई है, मदन लाल जी है, पूरे राम जी है और बहुत सारे है इन सभी पर और हमारी आरजे बहनी है उन पर तो विशेष कर खास बना रहे तो वो हमारे लिए कार्यक्रम अच्छा करती है और उन पर बना रहे वो मैं जो हमारे शब्दों के माध्यम से उन तक हमारी राखी पहुंचाती है और हमारा जो भावनाएं होती है दिल में उनके साथ हम व्यक्त करते हैं तो उन बहनों को सभी को हमारी दादियों को बहनों को भाइयों को हमारे राजकुमारों को सभी को बहुत बहुत आज के दिन की हार्दिक बधाई और बढ़िया हूँ अच्छा हूँ। और राखी का त्योहार है, बहने भी आई थी, राखी कलाई पर बांध के गई है
0: जी।
1: और बहनों को जो हमारा आशीर्वाद है, कई भाइयों ने तो हमारी बहनों के जो गिफ्ट के रूप में कहीं ने कोई मदिरा पान भी छोड़ दिया है, कहीं ने बीड़ी भी छोड़ी है तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है
0: जी जी जी जी।
1: और दीदी आपका आज का टांग ट्विस्टर।
0: हाँ जी हाँ जी सुनाइए।
1: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की प्रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, ढेर सारी
1: धन्यवाद दीदी आपके लिए।
0: बहुत बहुत आभार आपका दयाराम जी। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आपने भी अपने दिल के भाव व्यक्त किए हैं सभी के समक्ष। वो कहते हैं ना कि कलाई पर राखी आंखों में प्यार हो, कलाई पर राखी आंखों में प्यार हो, भाई बहन का रिश्ता यूं ही शानदार हो, दुनिया चाहे कितनी भी क्यों न आए, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों न आए, दिल से दिल का रिश्ता सदा बरकरार हो, दिल से दिल का रिश्ता सदा बरकरार हो। पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी।
2: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज भले और रक्षाबंधन की सबको बधाई। और एक गीत बोलता हूँ के
0: हाँ जी
2: लेडीज आवाज में बोलता हूँ के मेरे लोग मारे है ये हरे राखड़ी ना विल्लो आज जाड़ा ने पांड से भाई मारो चांद से आपू छू आशीष आज एन बंद्रो बल्लीराज दान गेंद्रो महाबल सैन तत्व रक्षा मी भद्र माचल माचल
0: जी। हमने भी यही सुनाया था विचार में जी।
2: दूसरा के ये फूल लोग का तारो का
0: सबका कहना है एक हजार में मेरी बहना है,
2: सारी उम्र हमें
0: संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, क्या बात है फिरोज भाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? अच्छा आप अच्छा बोलते हैं, आराम से सुना सकते हैं आप टंग ट्विस्टर भी, बहुत सरल है। ठीक है, फिर भी कोशिश करिएगा जुड़ के बोलने की, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से और देखिए बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है और आप गीतों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है. अब आप ही जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं. नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं. आज के त्योहार के बारे में आप बता सकते हैं तो आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं. आज का त्योहार बहुत ही अच्छा त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है. बहुत सारे दिन मनाते हैं लेकिन आज का दिन भी खास है. और जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं. आप भी जो भी सुन रहे इस कार्यक्रम को, रेडियो मधुबन परिवार का हिस्सा हो, आपको भी जुड़ने का अधिकार है और आप जुड़ सकते हो. हेलो हेलो नमस्कार. हाँ जी सुरेश भाई
3: नमस्ते.
0: नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में. आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं.
3: जी जी दीदी, आपको भी बहुत सारी शुभकामना और सभी हमारे देश की बहनों को भी शुभकामना और सभी के लिए आज के दिन की ढेर ढेर सारी शुभकामना. बहुत पावन पवित्र दिन है तो, और हमारे दोस्त भी अपना भाव इतना अच्छी तरह से व्यक्त कर रहे थे, हम सुन के हमारा दिल मन गदगद हो रहा है.
0: जी जी जी
3: जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. तो दीदी मैं बताऊंगा कि जो इस प्रोग्राम में बातें की गई, तो अब ये क्या है दीदी कि खास करके जो भाई बहन के जो थोड़े से रिश्ते ये होते हैं ना, तो उनमें जो हम लोग क्या करते हैं और लोगों को भी, सभी अगर सुन रहे तो उनको भी ये कहना चाहूंगा कि जो बहन भाई से ज्यादा अपनी भाभी को ज्यादा अगर खुश रखे या जो भी वो करेंगे, तो भाई तो अपने आप ही बहन के प्रति जो प्यार रहता ही है. तो क्या कहते हैं कि कोई भी भाई बहन अगर नहीं बोलते है तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस भाई और भाभी और ननद को सुलह करा देते हैं दूसरे को, तो फिर वो रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता है.
0: जी,
3: अगर
0: जी.
3: बहन भी के चलो उनके मन में ये है, गुस्सा है, नहीं बोल रही, तो उस भाभी को भी आगे कर देते हैं कि चलो ननद है कैसे भी है लेकिन रिश्ता बनाए रखना, तो ये तो करना जरूरी है, तो ये रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएगी.
0: बिल्कुल सही कहा आपने.
3: जी जी जी. और बस हमारी बहन, मेरी तीन बहन है
0: जी.
3: जो बड़ी बहन है मधु, मधुबेन है, तो वो मुंबई वसई में रहती है. और दूसरे नंबर की आशा बहन है, वो नई मुंबई में रहती है. और तीसरी नई मुंबई में धारावी में रहती
0: है. क्या बात है, तब तो या तो तीनों ही बहनें आ जाए या आप चले जाओ, एक ही जगह सारे हो जाए त्योहार का आनंद.
3: हाँ थोड़े से दूर है तो आएंगे, तो कुछ दिनों के बाद आएंगे. हमारे यहाँ 10 दिन आसपास भी राखी बांधन तो भी चलता है, ऐसा नहीं कि आज के दिन ही.
0: जी जी, ये वैसे ऋषि पंचमी तक चलता है त्योहार.
3: हाँ दीदी,
0: और भाई और बहन का प्यार तो दिल में होना चाहिए ना, तो हमेशा ही रक्षाबंधन. जी,
3: और अब तो जो फोन का जमाना आ गया है ना, तो हर रोज वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे का हाल चाल, सब कुछ ऐसे ही लगे कि जैसे हम एक साथ ही रहते हैं.
0: जी
3: जी,
0: सही
3: जी,
0: बात है.
3: और मैं टंकिस्टर सुनाने की कोशिश करता हूँ.
0: हाँ जी जरूर.
3: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत. राखी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत. राखी रेशम की राखी, रेशम रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी, राखी रचाई रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत. हैप्पी बन.
0: पहली लाइन में थोड़ी गड़बड़ हुई है.
3: वो तो पंक्ति टीचर है तो.
0: जी जी जी,
3: तो
0: फिर भी अच्छी कोशिश की है. बहुत बहुत आभार आपका.
3: जी नमस्ते दीदी, ओम शांति.
0: ओम शांति. तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से. आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है और टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है. तो कहने का भाव यही है, जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि भाभी और ननन का रिश्ता अच्छा होगा तो भाई तो अपना ही है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के, हर सिक्के के दो पहलू है, अच्छा भी है बुरा भी है, है ना. अभी ब्रेक में ही किसी का फोन आया, अभी उससे बात करना बाकी है. अभी पूरी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उनको समझ गए थे कि बहन बता रही थी भाभी क्या करती है, मुंह के सामने अच्छा रहती है और भाई के कान भरती है। तो भाई अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बोलता, एक भाई एक बहन, और भाई बात नहीं करता है। अगर भाई के घर पर बहन जाती है तो किसी न किसी कारण से बहन के इंसल्ट करता है, बहन के ऊपर कमेंट कसता है, और भाभी मीठी मीठी बातें करती है और भाई को चढ़ाती है। अब आप बोलिए, अब ऐसा भी भला होता होगा है। हेलो
2: हेलो दीदी, नमस्कार, ओम शांति।
0: हाँ जी,
2: कुशवा बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी विक्रम भाई, नमस्कार, कैसे हो आप?
2: सब बढ़िया है दीदी।
0: जी जी जी,
2: के आपको बहुत बहुत बधाई।
0: जी आपको भी, और स्वास्थ्य बढ़िया?
2: हाँ दीदी सब बढ़िया है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, परिवार भी बढ़िया है। हम
0: जी अच्छी बात है,
2: कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी।
0: जी थैंक यू,
2: रक्षाबंधन का
0: थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मना रहे हैं इस त्योहार को?
2: ये तो दीदी आज लौकुश जयंती है, तो राम हमारे यहाँ गांव में लव लौकुश की झांकी बनाकर पूरे गांव में घुमाते हैं।
0: अच्छा।
2: और तो फिर वापस हम, हमारा संगठन है कुशवा समाज का
0: जी,
2: तो वहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर और मंच पे कोई महानुभव आकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और साथ ही एक दूसरों को बधाइयां देते हैं रक्षाबंधन की
0: जी।
2: और फिर पूरे मतलब कुशवा समाज मिलकर भंडारा सहित भोजन करते हैं जी।
0: अच्छा जी जी जी जी, प्रतिभोज रहता है। तो कौन सी जयंती बोल रहे हैं आप?
2: लवकुश जयंती।
0: अच्छा लवकुश जयंती,
2: लवकुश का जन्म हुआ था ना दीदी आज।
0: जी जी जी,
2: तो वो लवकुश की जयंती मनाते हैं
0: जी
2: हमारे यहाँ।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको दोनों ही त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: हाँ दीदी सुनाऊंगा।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
2: हाँ
0: हाँ जी,
2: राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी में रिश्तों की रौनक, राखी राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी में रिश्तों की रौनक, राखी राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी में रिश्तों की रौनक, राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत।
0: क्या बात, 3 से अधिक नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार विक्रम भाई।
2: हाँ
0: जी थैंक यू। तो ये थे विक्रम भाई मध्य प्रदेश से, और आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है, लवकुश जयंती भी है, तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि मैं बता रही थी कि वो बहन रोते हुए बता रही थी कि भाभी बोल के नहीं बिगाड़ती है, लेकिन भाई को इतना मतलब इतना नेगेटिव भाई के अंदर भर दिया है कि अब कौन बहन चाहेगी अपने मायके जाए और भाई उसका कॉमेंट कसे, उसका ताना मारे, उस पर उसके बात बात पर इंसल्ट करे। तो कह रही मैं इस बार कहीं जाने वाली नहीं हूँ, रो के बता रही थे। अब बोले ऐसा भी होता है, इसलिए कहते हैं ना कि देखे कहीं बहन में कुछ बातें हो जाती है नेगेटिव, कहीं भाई में तो कहीं भाभी में। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहन बेटियों का अधिकार है अपने मायके में आने का। आप जो प्यार से उनको रखेंगे वो ही उनके साथ जाएगा, वो खाने पीने लेने की भूखी नहीं है, रिश्ता निभाने की वजह से वो आपके घर पर आते हैं। तो कम से कम आप दिल से उनका अच्छा स्वागत करिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, दिल से उनकी मनोहार करिए, ये उनके लिए काफ़ी होता है। भले आप उनके यथा योग्य जो हो दो, नहीं हो तो मत दो, लेकिन प्यार से जरूर पेश आइए। हेलो
4: खम्मा गणी हुकुम।
0: हाँ जी गणी खम्मा सा, उमेश सिंह जी कैसे हो आप? जी
4: से निवेदन कर रहा
0: हूं। जी जी जी, बहुत समय के बाद बात हो रही है
4: जी, अंतराल आ गया था प्रस्तुति।
0: जी जी जी, तो आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आपको भी दीदी।
0: जी
5: ये पर्व है स्नेह समरसता और आपसी भाईचारे प्रेम का है, जो केवल आधुनिक युग में बहन भाई तक ही सीमित नहीं रहा है
0: जी।
5: इतिहास गवाह है कि हमारे स्थानीय लोक देवता बाबा रामदेव, जो पंच पीरों में भी जाने जाते हैं
0: जी,
5: उन्होंने समरसता का संदेश दिया
0: जी।
5: अछूत पीड़ित जातियों के बीच में रह करके उन्होंने सेवा की थी
0: जी।
5: संत रविदास की जयंती भी इस पर्व पर मनाई जा रही है, शताब्दी वर्ष है उनका
0: जी।
5: तो समरसता के रूप में उनको भी याद किया जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वास्तव में भगवान ने इस दिन थोड़ा आपने जो वृतांत बताया था
0: जी,
5: कि वो स्नेह सूत्र एक स्वर्ग पर अधिकार करने वाले राजा को भी वचनों में बांध देता है कि ये नबंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान अनुबंधावी रक्षति माचल माचल
0: जी।
5: एक बार पुनः शुभकामनाएं सभी को
0: जी। आपको भी बहुत बहुत आभार आपका,
5: धन्यवाद दीदी
0: जी। और टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
5: थोड़ा बाहर हूँ, फोन अच्छा। नहीं पाया था।
0: चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे उमेश सिंह जी ग्राम ओसिया से, और आइए इस विषय को अब यही समाप्त करते हैं। कहने का भाव यही है।

कि देखे को जो भी गिला शिकवा है, आप कहते हैं ना एक तरफ हम खून का रिश्ता कहते हैं दूसरी तरफ दूरियां बढ़ाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। भाई बहन का प्यार बना रहे और जो भी गिले शिकवे हो माफ कर दो, माफी मांग लो, बात यही खत्म कर दो और अपने रिश्ते को मजबूत कर दो। यही आज का संदेश है। और आइए अब फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज हम आपको सिखाएंगे शाही टुकड़ा स्पेशल रेसिपी, क्योंकि रक्षाबंधन है और ऐसे खास त्योहार पर तो भाई मीठा तो बनता ही है। और कहते हैं ना, भाई बहन को और बहन भाई को पहले सबसे पहले मुख मीठा कराते तो किसका कराते, कोई मिठाई का ही कराते हैं ना, वो भी मावे का ही, भले पेड़े हो, चाहे दूध का हलवा हो, चाहे रबड़ी हो, इस तरह की मिठाई ही ज़्यादा खिलाई जाती है। तो सोचा कि चलिए आज आपको भोजन में मैं शाही टुकड़े सिखा देती हूँ। तो सामग्री में खास कुछ नहीं चाहिए, दूध चाहिए रबड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो दूध ले लीजिए और ब्रेड ले लीजिए, शक्कर लेनी है, घी लेना है और ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा सामग्री नहीं है, दूध, शक्कर, ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स और घी। अब बनाने का तरीका भी आप सीख लीजिए। ब्रेड को क्या करना है, आपको ब्रेड को चारों तरफ से वो किनोरे निकाल देनी है, किनोरे निकाल करके घी में तल देना है, घी से तल करके आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और इधर आप रबड़ी बना दीजिए। रबड़ी बनाना आपको कितनी बार सिखाया है, दूध उबालिए अच्छी तरह, मोटे पेंदे वाली कढ़ाई में उबालिएगा, ठीक है, और हिलाते रहिए बीच बीच में, ऊपर जब मलाई आए तो एक दूसरी पतीले में आप लेते जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा दूध रह जाए फिर ये सारी मलाई अंदर डाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए, और तो ये बन गई रबड़ी, हिला दीजिए और फिर गैस बंद करके इसके ऊपर आप केसर भी डाल सकते हैं, केसर का तार पहले से ही दूध में भिगो दीजिए, वो भी डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। चलिए आगे की प्रोसेस बाद में बताऊंगी। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, हेलो,
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: सभी भाई बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यही सदा खुश रहे, बस हर दिन एक त्यौहार हो, बस ऐसी मैं शुभकामनाएं करूँगा।
0: जी जी जी।
1: और बस मैं तो सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए आया था।
0: जी जी जी जी।
1: बाकी आप फिट एंड फाइन?
0: जी जी, हम अच्छे हैं।
1: ठीक है, ओके, चलो, जय माता दी, जय
0: जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और इनके पिताजी का पहला त्यौहार है रक्षाबंधन। कहते हैं ना कि पहला त्यौहार आता है तो आने जाने वाले भी लगे रहते हैं, मिलने आते हैं, फिर भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आपको सिखा रही थी शाही टुकड़े, तो ये रबड़ी तैयार हो चुकी है, ठीक है। ब्रेड को भी हमने तल के निकाल दिया है। अब आप इस ब्रेड को एक प्लेट में रखिए, फिर ये रबड़ी जब आपके ठंडी हो जाए फिर इस रबड़ी को ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला दीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट की कतरन बुरका दीजिए। ये बन गया शाही टुकड़ा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही, आप खुद जब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक प्रोसेस रह गई है, वो भी बता देती हूँ। आप एक तार की चाशनी बनाइएगा और ये जो ब्रेड हम घी में से तल के निकालते हैं तुरंत ही आप उस चाशनी में डालिए, ठीक है। भले आप निकाल करके उसका घी निकल जाए उसके बाद डालिए, पर चाशनी में डाल करके दोनों तरफ पलटी लगाकर तुरंत निकाल दीजिए। चाशनी में ज़्यादा देर रखना नहीं है, नहीं तो ये ब्रेड गल जाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। इसलिए तुरंत ही आप एक तार की चाशनी, एक तार की भी पूरी मत आने दीजिए, ठीक है, और फिर चाशनी में से निकाल दीजिए। तुरंत निकाल करके आप एक चाली में रखिए ताकि अतिरिक्त चाशनी उसी चाशनी में गिरे, और फिर आप एक प्लेट में रखिए, ऊपर रबड़ी सब तरफ फैलाइए, ऊपर कतरन जो ड्राई फ्रूट्स ये है, बादाम, पिस्ता, काजू, इन सब की कतरन आप फैला दीजिए, सजा दीजिए इसके द्वारा, और फिर आप खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। क्या टेस्टी और क्या स्वादिष्ट, और ये एक मिठाई हो गई, ठीक है। फिर आप नमकीन में कुछ भी बना सकते हैं। तो जो भी सात्विक चीज़ हम बनाते हैं इष्ट देव को भोग लगा करके ही भोग स्वीकार करिएगा, ठीक है। तो ये बन गए हमारे शाही टुकड़े, और आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: ओम शांति, मैं हूं मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके

रिश्तों की रौनक राखी। राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी। राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। राखी रेशमी रेशम की राखी, राखी ने रिश्तों की रौनक राखी। राखी रचाए रिश्तों की रीत, भाई बहन की बनी रहे प्रीत। तो ये हमने भी 3 बार सुना दिया है, तो स्वयं के लिए भी। तो चलिए टंग ट्विस्टर सुनाया है, उनका नाम सुनाना चाहूंगी। सुरेश भाई झोटाना से आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया है। फिर दयाराम जी रामपुरा से आपने भी बहुत ही अच्छा सुनाया है। सुरेश भाई धानेराव से, फिर विक्रम भाई मध्य प्रदेश से आपने बहुत ही अच्छी तरह टंग ट्विस्टर को सुनाया। इसके लिए एक बार तो आप सभी के लिए ढेर सारी तारीफ। फिर शुभकामना देने के लिए जुड़े हैं, विषय में भी कोई कोई जुड़े हैं। सगुना बहन ने शुभकामनाएं दी है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। बाकी विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से। सुभाष भाई ने भी शुभकामनाएं दी है। कंचन भाई जुड़े हैं, दयाराम जी, फिरोज भाई और सुरेश भाई धानेराव से, विक्रम भाई और उमेश सिंह जी जोधपुर ग्राम ओसिया से। आप सभी विषय में जुड़े और बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया, अपनी राय व्यक्त की, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। जो बुद्धिमान होता है वह उतनी ही बातें करता है जितनी आवश्यक होती है, अतः कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब मैं प्यारे श्रोता बंधु, आज मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार की है, आप सभी को सौगात के रूप में देना चाहूँगी। मैंने खुद एक कविता बनाई है। आज के समय में भाई बहनों का रिश्ता कैसा होता जा रहा है, तो इस पर व्यंग्यात्मक कविता है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल मिलेंगे। कल क्या है आप सभी जानते हैं, कल अंताक्षरी कार्यक्रम होगा। कल की थीम रहेगी भाई बहन के गीतों की और तीज, जो बड़ी तीज आ रही है, तीज के गीत, ठीक है, और लोकगीत, ये तीनों ही मिक्स रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा और हमें अभी दीजिएगा अनुमति। तो आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। राखी आई थाली सजी, मिठाई भी मुस्काई। राखी आई थाली सजी, मिठाई भी मुस्काई। बहन बोली भैया याद है बचपन की लड़ाई। भैया बोला सब याद है पर अब वो बात कहाँ। भैया बोला सब याद है पर अब वो बात कहाँ। तुम व्हाट्सएप पर, मैं इंस्टाग्राम पर, मिलना होता कहाँ। तुम व्हाट्सएप पर, मैं इंस्टाग्राम पर, मिलना होता कहाँ। कभी बहन की चोटी खींची, कभी भाई ने रुलाया। थोड़ी सी नोकझोंक, फिर भी दिल से दिल मिलाया। आज उसी रिश्ते में जाने कैसी दूरी आई। आज उसी रिश्ते में जाने कैसी दूरी आई। महीना महीना भाई बहन में बात न होती हाय। पहले राखी का धागा दिलों को जोड़ता था। पहले राखी का धागा दिलों को जोड़ता था। अब भले कितनी राखी बांधो, दिल अक्सर टूटता है। उपहारों की कीमत बढ़ी, रिश्तों की कीमत घट गई। उपहारों की कीमत बढ़ी, रिश्तों की कीमत घट गई। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, कहते कहते बस पोस्ट तक रह गई। राखी तो कलाई पर बंध गई हर साल। राखी तो कलाई पर बंध गई हर साल। पर रिश्तों की गांठ खुली तो कौन करेगा सवाल। आओ इस राखी पर एक वादा कर जाए। आओ इस राखी पर एक वादा कर जाए। सिर्फ धागा नहीं रिश्तों को भी थोड़ा समय दे जाए। सिर्फ धागा नहीं रिश्तों को भी थोड़ा समय दे जाए। न तकरार रहे मन में, न कोई शिकायत बाकी। न तकरार रहे मन में, न कोई शिकायत बाकी। कलाई पर धागा हो और दिल में हो सच्ची राखी। न बहन रोए घर में, न भाई हो उदास। न बहन रोए घर में, न भाई हो उदास। आओ सब मिलकर मनाएं राखी का त्योहार। आओ सब मिलकर मनाएं राखी का त्योहार।

0: छुटकी, क्या बात है, उदास क्यों है इतनी?
1: भाई, राखी है।
0: तब तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना?
1: नहीं भाई,
0: छुटकी, क्या बात है, उदास क्यों है इतनी?
1: भाई, राखी है।
0: तब तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना?
1: नहीं भाई, मुझ जैसी कई बहनें रो रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं कोई छेड़ रहा है, उन्हें अपनी नजरों से दूषित कर रहा है। भाई, क्या इस राखी पर आप मेरी एक बात मानोगे? क्या आप मेरे जितना हर नारी को सम्मान दोगे, ताकि मैं आपको गर्व से राखी बांध सकूं?
0: हाँ गुड़िया, मैं वचन देता हूँ कि मैं सभी बहनों और माताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखूंगा, ताकि हमारे समाज में उनका जीवन सुरक्षित हो जाए और वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत कर सके।
2: भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, छोटी बहन को ना।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है लेकर आ गए हैं, और पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे आदरणीय गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन कहानी, कैसे वो गुजरात के एक गांव से निकले और उनको जैसे परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति हुई, उन्होंने सोचा है कि अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करें, इस देश की सेवा करें और इस संसार की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। सेवा की भावना जो जागृत हुई है उनके अंदर, लेकिन उसको कैसे हासिल किया? जैसे आप सभी को याद होगा कि उनके बहुत सारी कठिनाइयां थी उनके लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि हर किसी को मंजूर नहीं था इस तरीके की सादगी और योगी जीवन जीने का। कैसे वो आगे बढ़े और वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, अपने जीवन को वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे उन्होंने कैसे जिया है, आइए आज जानते हैं आगे की कहानी को। जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। आदरणीय गंगाधर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको घसीट कर लेके गया है उसके बाद फिर क्या हुआ?
4: तो इसी दौरान एक, जब मैं गुरुवार को सेंटर पे गया था, 85 की बात है, फरवरी मार्च की बात, तो वहाँ एक बुलेटिन आता था। उस टाइम तो ये मोबाइल की ये सुविधाएं नहीं होती थी, एक मधुबन से जो डायरेक्शन आता मुरली के अंदर लिखा हुआ आता था, और वो दीदी पढ़ती थी और जिसको जो है डायरेक्शन देती, तो उसमें आया कि एक पदयात्रा का निकलने वाली है, भारतवर्ष से 13 पदयात्रा का आयोजन 1985 में, ये बुलेटिन आई। तो उसमें पढ़ा और फिर बोला कि शाम का समय था, हम सेंटर पर थे, तो कहा कि कौन कौन जाएगा, किसको जाने की इच्छा है तो हाथ खड़ा करो। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा जैसे दीदी ने, पुष्पा दीदी थी हमारी, तो हाथ खड़ा किया। तो फिर ठीक है, मैं ना जाना ना पहचाना, क्योंकि घर में तो छुट्टी थी नहीं, और वो कितनी लंबी यात्रा, 5000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से दिल्ली पद यात्रा, और करीब करीब 6 महीने समय। मैं फाइनल ईयर में था, तो मार्च में मैंने एग्जाम देने के बाद जून से स्टार्ट होने वाली वो पद यात्रा। तो मुझे अभी वो फॉर्म भरना है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, घर से स्वीकृति पत्र चाहिए, और खुद की स्वइच्छा चाहिए, और हेल्दी होना चाहिए, तो ये सारी बातें थी। तो ये फॉर्म भरना था, तो अब फॉर्म की तारीख लास्ट लास्ट थी, और मधुबन वो फॉर्म भेजना था, वहाँ से सिलेक्शन होगा। और फिर तो लास्ट डेट आ गई, तो दीदी फिर मेरे को बोले कि आपका तो कुछ आया नहीं, तो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जाने नहीं मिलेगा। अब भाई से कैसे बोलूं, क्योंकि वो तो विरोध थे, रोज बाबा को अमृत वेले 2 से 5 योग करके, बाबा आज तो मैं बोलूंगा। तो जब भाई के सामने जाओ ऐसे जैसे मुंह बंद हो जाता था, तो ऐसे बहुत हुआ। अब लास्ट है, अभी तो देना ही है, 2-4 दिन ही बाकी है। तो उस टाइम गुरुवार का दिन था, तो अमृत वेले में फिर अपने आज तो बोलूंगा ही। तो जैसे 2-3-4 दिन मैंने से आज तो मैं बोलूंगा, लेकिन उस टाइम बाबा की मुरली चलती थी, मैं युक्ति रचता था कि मुझे अभी भाई, मैं अभी गुजरात जाऊंगा और मेरी एग्जाम भी हो गई है, पापा को मिलने चला जाऊंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान ऐसे युक्ति रहता, तो मुरली में बहुत अच्छी बात आई, बच्चे कभी भगवान के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अब ये बात आई, अभी मैंने युक्ति रची, लेकिन ये युक्ति मेरी वो बाबा की मुरली से, मैं बोला ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। बस तो वहां खत्म हो गया, मेरी युक्ति फेल हो गई। बाबा कहता है उसमें मेरा फायदा है, मेरा खुद की मनमत में तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इस तरह से मन में द्वंद्व चला और फिर मैंने बोला नहीं ये तो युक्ति है, तो वो दिन चला गया। फिर दूसरा दिन भी दूसरी युक्ति रही, वो भी फेल हो गई। फिर तीसरा अभी लास्ट लास्ट है, तो अभी क्या करूँ। अमृत वेल बाबा करो, मुझे तो जाना है पदयात्रा, कुछ भी हो जाए ये आपको करना। तो हुआ क्या कि लास्ट में जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो सारे ऑर्डर्स वगैरह आते थे, तो हम फैक्ट्री बंद हुई 5 बजे और उसके बाद जो किसका ऑर्डर पूरा हुआ, बॉम्बे का, कलकत्ता का, चेन्नई का, वो सब हम सप्लाई करते थे। तो इसका तैयार हो गया, ये प्रोसेसिंग बाकी इतना है। तो हम ऐसे दो भाई फैक्ट्री में अंदर देखने गए, मूड भाई का बहुत अच्छा था। तो मेरे मन से मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन मन में मूड अच्छा था ऐसा मैंने संकल्प आया और तुरंत मन में ये हिम्मत आई कि मैं ना पदयात्रा में जाना चाहता हूँ और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये यात्रा है और 5 महीने की है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मेरा भाई का पता नहीं क्या हुआ, अभी जाओ तो मैं भी चलूंगा जो विरोध करने वाला, तो ऐसे हुआ। तो मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में A4 का पेपर ले आया और उसको ब्लैंक पेज पे साइन करा दिया। लिखना क्या वो पता नहीं, तो लिखना है वो तो दीदी को बोलूंगा इसमें जो लिखना है लिख दो। और मैं बस ऐसा जैसे कि शाम को खाना बना एक तरफ रह गया और यहाँ हम 15 किलोमीटर बस ये काम पूरा करके जो भी है, तो भागा भागा भागा दीदी के पास जाके आया। दीदी मैं ये ले आया और उसमें सारा लिखा और मेरे को पद यात्रा में जाने को मिला। फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको उसे ले लिया और ये स्वीकृति मिल गई और इन्होंने भेजा और मेरा फिर आना हुआ मधुबन और पद यात्रा का मेरा फाइनल हो गया। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत में चलते हैं, तो वो न जाने, अब मैं तो भाई के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता था, लेकिन बाबा का चमत्कार के कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये बात मेरे जीवन से बिल्कुल ये ज्ञान में आने से कि दृढ़ता है वहां सफल, ये बात मेरी वहां से स्टार्ट।
1: आपके जीवन में आदर्श कौन रहे?
4: आदर्श तो फिर जैसे मैं 85 में जो पदयात्रा में आया, तो पहले तो हम गीता पाठ ही थे, तो गीता का ही सारा ये योगेश्वर और ये सब चलता था। लेकिन यहाँ जब आए तो मधुबन में आए तो पहले मुझे सेवा मिली ओम शांति भवन। वो भी एक मजेदार कहानी है कि भाई अभी 6 महीना मुझे निकलना है, 6 महीना कोई अपने बेटे को कैसे छोड़ेगा। तो हम जाना है तैयार भी हो गया, तो भी मैं अभी भाई से हिम्मत नहीं कर पाया 6 महीना, लेकिन बाबा की ये मदद के उन लोगों को मैंने बोला कि अभी मेरी डेट आ गई मुझे जाना है। तो वो मुझे गाते गाते सेंटर पर ले आए सभी परिवार को लेके, और वहाँ सेंटर पर ले मैं इसको छुट्टी दे रहा हूँ, आपने हमें नहीं बताया। फिर वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आए, रेलवे स्टेशन छोड़ने आए तो विदर्भ जोन है हमारा, तो विदर्भ जोन ने सभी सेंटर की इंचार्ज जो बहने थी वो व्हाइट व्हाइट कपड़े, उन्होंने कभी देखा नहीं था बहनों को ब्रह्मा कुमारी को, तो व्हाइट व्हाइट 25 बहने जो, क्योंकि पदयात्रा का जो ओपनिंग था ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे वो वहाँ ओपनिंग करने वाले थे, ज्ञान कलश देके यात्रा का शुभारंभ ओम शांति भवन में करने वाले थे। तो जो डेकोरेशन की जो मधुबन में डेकोरेशन करने की ड्यूटी नागपुर जोन को दी गई थी, परिणाम स्वरूप हम सारा सामान लेके आ रहे थे। तो 25 मुख्य बहने थी सेंटरों की वो भी आ रही थी हमारे साथ, दीदी भी साथ में, तो हम दो भाई सिलेक्ट हुए थे, एक भंडारा से और नागपुर से, दो भाई थे तो हम आए और यहाँ आए। और फिर यहाँ हमें जो अभी आप देखोगे पांडव भवन में राजू भाई की जो ऑफिस है वो देवधाम करके था, वहाँ हमें रहने का भी मिला और वहाँ सारा डेकोरेशन का सामान, ऑफिस तो बाद में बनी और हम यहाँ आ गए मधुबन।
1: सो जैसे लगभग 1985 से आप संस्था में समर्पित रूप से अब सेवा,
4: हाँ फिर वहाँ ही रह गए और बीच में गए जो भी कार्यवाही थी कि भाई समर्पित के लिए किया है तो वैसे करके गए, और फिर दिल नहीं लग रहा था और रिजल्ट भी आ गया और सब, फिर यहाँ ही रहने लगे।
1: तो आपने क्या पढ़ाई पूरी की थी?
4: मैंने BCom ग्रेजुएट किया, MCom में कर रहा था, तो MCom का सेकंड ईयर के बीच में ये घटना घटी और फिर मैंने
1: काम छोड़ दिया,
4: वो परीक्षा भी नहीं दिया और आधे में ही मैं फिर मधुबनी आ गया। अब मुझे कहीं नहीं जाना है मन में यही है कि मुझे जीवन ऐसे ही जीना है, तो फिर यहाँ मधुबन आ।
1: क्या प्रेरणा रही समर्पित होने के लिए आपको?
4: समर्पित लेके बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, हम क्योंकि ज्ञान गीता पढ़ते थे तो ज्ञान में जो उसमें एक श्लोक आता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार है। और तो नरक के द्वार पढ़ते तो उस टाइम समझ में नहीं आता था। अब यहाँ ये पता है काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है, तो चेतना से अंदर कॉन्शियस से भी ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो ये तो हिंसा है, और हिंसा है तो बाबा से प्यार कैसे जुटे? बाबा से नजदीक तो हम नहीं जाएंगे,
3: परमात्मा के नजदीक,
4: परमात्मा से नजदीक हम नहीं जा पाएंगे। तो वो एक अंदर मन में चलता रहा, तो फिर ये जीना है तो नशा खूब रहता था। बाबा ने जो कहा है तो मुरली बस सुनना है, और फिर हमें ड्यूटी भी शुरू शुरू में 15 दिन के लिए वहाँ शांतामणि दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती सेवादारी। उसके बाद फिर चंद्रमणि दादी ने भी हमें, क्योंकि और मनोहर दादी हमारे विदर्भ जोन की क्षेत्र की वो प्रभारी थी, तो उनसे सारा मेल मिलाप होता रहा और बड़े प्यार से। उसके बाद मैं टोली में गया, टोली डिपार्टमेंट है हमारा जो प्रसाद वितरण का, उसमें रामनाथ भाई के पास गया। रामनाथ भाई भी बड़े ज्ञानी थे, तो मुरली सुनना और एक्यूरेट करना वो खुद भी ध्यान रखते थे और हमारा भी ध्यान रखते थे कि नहीं पढ़ाई पर मुरली सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। एक छोटी सी बुक पॉकेट में रखते थे क्योंकि वो सुना थे
3: जी।
4: तो आदर्श में फिर आपने जैसे पूछा बहुत अच्छी बात के आदर्श कौन रहा, तो उसमें ये रहा कि हम जहाँ डिपार्टमेंट है उसके बाजू में दादी का नाश्ते का कक्ष है, तो दादी रोज आती थी हमारे पास, हमें रोज जैसे छोटे बच्चों की तरह। तो दो बातें जरूर पूछती थी, आपने अमृत वेला किया, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा बताओ, तो उनको बताना पड़ता था। उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो माइक भी नहीं था डिपार्टमेंट जो माइक आता था। तो और हमें ड्यूटी थी, तो उस टाइम हम तोसा को पैकिंग वगैरह करते थे, मुश्किल से 2,000-2,500 की, तो लास्ट में पार्टी हुई 2,500 मानना सबसे बड़ी पार्टी, तो 1,500-2,000 ऐसे लोग आते थे पार्टी बाबा को मिलने। तो हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम मुरली सुनने जा पाए, और मुरलियाँ हाथ में नहीं मिलती थी, तो एक ही मुरली दादी के पास ही होती थी और सुनाएंगे उससे ही हमें सुन। तो थोड़ा सा हम जाते थे तो प्रसाद वितरण के लिए जो ओम शांति भवन में, तो वहाँ माइक थे तो वहाँ सुन लेते, तो वो नोट कर लेते थे, वो नोट करके फिर दादी आएगी पूछेगी तो हम बताएंगे। और दादी बड़े प्यार से, और इतना सा प्रसाद लेंगी ना, तोसा का एक उस टाइम तोसा ही होता था, मोन थार दो ही चीज हो, इतना लेंगे और खाएंगे और बड़े प्यार से चली जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ कि अब 2-3 साल हो गए मुझे वहाँ, 3-4 साल 5 साल ऐसा मुझे हो गया वहाँ। तो दादी जी ने जो ज्ञान स्वरूप प्रोजेक्ट है इसके बारे में सेवा का वृद्धि के कारण बाबा का मैसेज आया, तो फिर वो ज्ञान का जमीन ली गई और उसका डेवलपमेंट का काम चालू। तो अभी वहाँ कौन जाएगा ये सारा देख रेख करने के लिए, तो ये बात मधुवन में दादी ने सभी के सामने रखी। दादी जी का शाम को लगभग रोज क्लास होता था, तो उसमें मधुवनवासी होते थे, और उसमें कहा था सभी कहते थे भाई माँ दादियों को छोड़ के कौन जाएंगे, इतना मधुवन छोड़ के कौन, एक भावना थी ना बॉन्डेज, तो कोई जाना नहीं चाहता था। वो तो जंगल था ज्ञान सर, वहाँ भालू रहते थे तो कोई जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। तो अभी मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ, तो निर्वेर भाई और दादी ही सारा कारोबार संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो निर्वेर भाई ने कहा कि वो जो बच्चा आया है ना टोली डिपार्टमेंट में, वो पढ़ा लिखा है दादी, उनको भेजो वहाँ, जो सारा हिसाब किताब का, फाइनेंस का, ये सारा मैनेजमेंट करना, लिख के हिसाब देना, अकाउंटिंग करना, तो इनको भेजो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर दादी जी हमारे पास रोज आती थी, तो दादी मेरे को पूछती थी मैं तेरे को एक दूसरी सेवा दूंगी। तो रामनाथ भाई हमें सहमत नहीं होते थे कि दादी मैंने हैंड्स तैयार किया है, आप नहीं ले सकते, मना मेरी सहमति नहीं है, ऐसा दादी रामनाथ भाई बताते। लेकिन दादी ने फिर रोज आती थी, तो तेरे को एक बड़ी सेवा, इतना तोसा लेंगे और फिर चली जाएंगे। मैं बोला दादी रोज मुझे पूछ रही है, ऐसा 10-15 दिन चलता रहा, तो मेरे से रहा नहीं गया, दादी जी आप जो कहेंगे मैं हाँ जी, वहाँ भाषा ही हाँ जी की थी, मेरे को ये आता है नहीं आता ये बात नहीं, जो दादी जी के वो करना है इसको। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक बार दादी ने कहा तुम 2 घंटे है ना ज्ञान सरोवर जाना। दादी इतनी रॉयल थी और हमें जैसे कि बच्चों का माँ का प्यार जैसे एकदम पालन पोषण इतना स्नेह होता था दादी के सानिध्य में, आप लोगों ने भी जानते हो, तो उसके कारण मैं कहा कि ठीक है। और फिर मेरे दो घंटे दिन में जाना और रामनाथ को बोला इसको दो घंटे छुट्टी दो और ये हिसाब किताब करेगा और आपके पास भी सेवा करेगा। ऐसी मेरी सेवा चालू हुई। फिर वहाँ कारोबार बढ़ता गया, कहाँ ज्ञान सरोवर का कारोबार बढ़ा, तो फिर बोला कि चार घंटा। ऐसे करते करते फिर दादी ने कहा कि अच्छा इसको अभी रामनाथ तो दूसरा हैंड्स तैयार कर ले। और तो मेरा
3: ज्ञान सरोवर रह गया।
4: ज्ञान सरोवर का यज्ञ का बड़ा पहला प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का ऐसा वैसा उसका दायित्व तो मुझे दिया गया, जो फिर मैं उसके सारे उसी में रच बच गया और ज्ञान सरोवर का कारोबार।
3: तो ये जो पीरियड आप देखते हैं, चार दशकों से अधिक समय से आप संस्था से जुड़े और सेवाएं कर रहे हैं मुख्यालय में रहते हुए, अपने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि या प्राप्तियों को आप अनुभव करते?
4: कहते हैं ना, जो आदि में हमारा जैसे जन्म पत्री होती है ना, ऐसा ही हमारा जीवन बन। तो हमारा जन्म पत्री में जैसे मैंने कहा कि 5-6 बजे से 7 बजे योग कर रहे थे, मैं वो गीता पाठशाला में एंट्रेंस हुआ नया नया और वहाँ योग चल रहा था, उसमें गीत बहुत सुंदर बज रहा था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए हैं, पावर और सुख का वर्षा देने आए। ये गीत बहुत सुंदर गीत है, अभी भी है अपने मधु अपने यहाँ। तो वो गीत से मेरा जन्म हुआ कि भगवान स्वयं आया है, हमें वर्षा देने आया, सुख का वर्षा देने आया। तो उसी से वो वाइब्रेशन और योग में बड़ी रुचि थे रुचि रही और हम 2 से 5 मधुबन में भी आए तो 2 से 5 हम योग करते थे और मज़ा आता था, यंग थे तो वो रुचि रही। तो अंदर में अंदर कि नहीं, मुझे बस बाबा को मैंने जान लिया और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब वैराग टाइप का, और बाबा जो कहे वही फॉलो करना, उसको स्टडी करते थे। और रामनाथ भाई हमें अच्छे मिले तो वो भी ज्ञान के चिंतन कराते, आज बाबा ने क्यों कहा कैसे कहा, तो ये भी एक हमारा एक सपोर्टिव और मुझे संग अच्छा मिला। तो इस तरह से कि जीवन में जो बाबा कहते हैं, अब बाबा आया तो हम अभी बाबा का सेवा और बाबा के भी ज्ञान योग करना, यही जीवन का उद्देश्य रहा। और दादी का सानिध्य जो मिला, वो जो एक प्रकाशमणि दादी जी का जो सानिध्य मिला, और मैं जब घर से, मेरे जो बैकग्राउंड में घर से मैं 6 किताब पढ़ के, तभी लगभग 10-10 बरस का होगा, तब से मैं घर से बाहर ही चला गया, तो माँ बाप का प्यार मुझे इतना नहीं मिला था। तो मैं कभी कहता था कि जैसे राखी बांधती थी बहने, तो मैं कहता था मुझे तो बाबा का चित्र देते थे और उसके पीछे स्लोगन लिखे थे, हाथ से लिखा हुआ स्लोगन देते थे, उस टाइम ये सब प्रिंटिंग का नहीं होता था। तो एक जब राखी आई तो मैंने कहा कि मुझे तो मम्मा का चित्र आना चाहिए राखी में, क्योंकि मैं मम्मा माँ है मेरी, वो माँ का तो प्यार मुझे नहीं मिला, तो ये माँ मेरी में, तो वो सच में वही मेरे को मम्मा का चित्र के साथ वो स्लोगन लिखे आया। तो उसे और विश्वास बैठता गया। तो दादी ने जैसे माँ का प्यार दिया तो वो बॉन्डेज एक बहुत हो गया, और ये मेरा आदर्श रहा कि दादी ने जो कहा और कहा, और वहाँ भाषा ये रही कि जो बड़े कहे उसको हाँ जी करना, ना जी करना, ये भाषा नहीं। ज्ञान में सफल होना है तो जो बड़ों ने कहा उसमें हमारा कल्याण, ये आदर्श रहा और यही ज्ञान से हम आगे बढ़े
3: जी। सो भाई साहब, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, कौन सी सेवाएं संभालते हैं यहाँ पर?
4: बात यह हुई कि जब ये ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद फिर ये शांतिवन का जो बातें चलने लगी, तो दादी ने कहा कि शांतिवन में अभी करना, तो यहाँ भी कोई आना नहीं चाहता, भगवान नीचे कौन आएगा, यहाँ भोपाल भाई और अशोक भाई करके थोड़े रहते थे और यहाँ खेती बाड़ी हुआ करते। तो मेरे को बोला कि आपने तो सारा किया, अकाउंट का सारा सब कुछ दिया है, तो आप भी नीचे जाओ और ये कारोबार। तो फिर मैं पहली बार दादी को थोड़ा सा सहमे आवाज से बोलने लगा, दादी मुझे दूसरी सेवा दे दो ना, क्योंकि हम मन में तो ये था कि अभी मधुबन छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, तो ये मन में था। दादी को कहा तो दादी ने कहा अच्छा, तो रमेश भाई थे हमारे जो अकाउंट में, तो उससे तो छुट्टी ले ली थी, और लेकिन सेवा में मुझे रखा था नीरज भाई ने, दादी और नीरज भाई संभालते थे उस टाइम, तो रमेश भाई तो मधुबन से आते थे अकाउंट के हिसाब से, तो मैंने छुट्टी ले ली थी, अभी मेरे कोई दूसरी सेवा दे दो दादी, लेकिन मधुबन में, भले झाड़ू पोछा की दो लेकिन मधुबन में रहेंगे। दादी ने पहली बार मुझे थोड़े मतलब डर डर के भी दादी को ऐसे मैंने बोला, कभी ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ ऐसा बोलेंगे तो घर भेज देंगे, ये डर रहता था मधुबन में हमें घर भेज देंगे, इसलिए बोलना नहीं होता, लेकिन मैंने बोल दिया। तो दादी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर दादी मुरली सुना कर वो आंगन में बैठती आते थे, फिर दो तीन

0: हुआ, फिर मेरे को बुलाया, तुमको है ना वो सेवा करनी है, अभी अकाउंट की ही करनी है, लेकिन शांतिवन में जाओ, यहाँ दर गर्मी वहाँ ठंडी, तो मन में ये कहने हम नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बार बोला तो अच्छा तू रमेश से मिल लेना। रमेश भाई ने बोला कि नहीं तुमको ही करनी है ये सेवा, तुमने ये ज्ञान सुनो, तेरे को आता है सब तुम कर। लेकिन मैंने बोला भाई मुझे सारा हिसाब किताब करना, कोई कागज मिलता है वो उसमें सारा मगज उसमें ज्यादा ज्ञान योग छूट जाता है मेरा। मन में ये था। तो फिर ठीक है ऐसे जो भी हुआ उसके बाद फिर मैंने कहा, तो दादी ने फिर से मुझे जो महादेव नगर है ना जो चंद्रिका दीदी का उनका मकान का ओपनिंग था, उसके पूर्व दिन जो दादी दूसरे दिन ओपनिंग करने जाने वाली, तो रात को मीटिंग हुई, इसमें ये नीरज भाई, दादी, करुणा भाई और वही लोग संभालते थे ऊपर मधुबन में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको अभी ज्ञान सरोवर की सेवा से मुक्त है। तो करुणा भाई ने बोला कि हमें भी एक सीनियर भाई चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा कारोबार है जहाँ साउंड का, इसका सारा उसका भी अकाउंट करना है, तो मुझे दे दो। तो ऐसा डिसाइड हो गया। तो दूसरे दिन मेरे को दादी से अशोक गाबा जो अभी है उसने मेरे को बोला कि तुमको अभी ज्ञान सरोवर में करुणा भाई के पास सेवा कर। तो मेरे मन में बोला अच्छा ठीक है, मधुबन तो रहने मिला ऐसा करके। हाँ दादी जी ओपनिंग करने चली गई, लेकिन तीन दिन तक मन में खुंदक रही, मेरे को तो मधुबन रहना था फिर ज्ञान सरोवर ये। तो इस तरह से मन में एक जो मधुबन मना बाबा का उसमें गीत बहुत सुंदर है कि मधुबन स्वर्ग भूमि है और स्वर्ग भूमि को छोड़ के अभी मधुबन में मुख्य मुश्किल से हमें मिला है मौका, फिर से मैं वहां छोड़ के कैसे लेकिन सेवा। तो ये एक मन में थोड़ा सा था, तो क्योंकि यज्ञ में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं, भगवान तो आबू में ही आएगा, कहीं नीचे थोड़ी आएगा, नीचे जाओ फिर बाहर वाले लोगों से काम कराना ये सब, थोड़ा हम अपने परिवार में पवित्र भाई बहनों के साथ रहना संग ये सब अच्छा लगा। तो मैंने ये भावना मन में थी ठीक है। फिर उन्होंने कहा तो फिर मैं ओम शांति मीडिया का कारोबार, पहले तो मैं अकाउंटिंग करता रहा और मीन वाइल विंग की सेवा आरंभ हुई, तो विंग की सेवा में फिर मीडिया में था, तो मीडिया में फिर मुझे ये दायित्व दिया गया जो हमारी मासिक पत्रिका ओम शांति मीडिया निकलती है उसका उत्तरदायित्व दिया गया, क्योंकि मुझे तो कोई जर्नलिस्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन दादी जी ने मुझे बुला के कहा कि तुमको अभी ये सेवाएं वृद्धि हो रही है तो ज्ञानामृत तो है ही, लेकिन ओम शांति मीडिया में ऐसा समाचार सुनाना है और दो बातें याद रख तुझे ये सब लिखना करना। उस टाइम क्या है कि दादी के जिसके ऊपर नजर हो जाती थी ना ये काम ठीक कर लेता सेवा ठीक, तो उसको वो दादी सेवा देती जाती थी। तो हम उस टाइम तो पेपर तो पढ़ते नहीं थे, बाबा की महावाक्य में आता था बच्चे है ना रावण की मुरली पसंद करते ज्ञान का मुरली, क्यों रावण बाबा कहते हैं कि उसमें जो खराब आजकल के न्यूज़पेपर है उसमें तो खबरें ऐसी आती हैं जो, तो हमने वो टच नहीं किया था 10 साल से, ये रावण की मुरली हम टच नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिस राह पर हमें जाना नहीं उस राह का समाचार सुन के क्या करेंगे, ऐसा भाव मन में आता था। तो लेकिन हमें सेवा ही वो मेरे जीवन में ये रहा कि समर्पित होने के बाद भी जो मेरी कमजोरी थी, मेरे को जो कम आता था वही मेरे सामने पेपर होता था, वही मुझे सेवा देते थी दादी। तो अकाउंट में भी हमारे फैक्ट्री में तो एक अकाउंटेंट रखते थे और उसको पैसे देते थे, वो अकाउंटिंग करके चला जाता था फैक्ट्री से तो सारा। लेकिन यहाँ मेरी कमजोरी थी ये अकाउंटिंग करना, ये हालांकि मैंने पढ़ाई की थी अकाउंटेंसी में, लेकिन यही करना ये माथा पच्ची है, तो यहाँ भी मुझे वही डिपार्टमेंट मिला ज्ञान सरोवर का सारा हिसाब किताब ये सब करना, तो जो मेरी कमजोरी है वही मुझे सेवा मिलती थी। अब ये मैं सोचा कि अभी ये रावण की मुरली मिली थी तो दादी ने मुझे वही सेवा दे दी, लेकिन दादी यहाँ तो सेवा ईश्वरीय सेवा समाचार। तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया और अभी कौन सिखाए कैसे लिखना है क्या करना है, तो मैं लाइब्रेरी में गया और एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें राजस्थान पत्रिका होती थी, भास्कर नहीं आया था तब, दिव्य ज्योति नव ज्योति वगैरह होते थे, तो वो मैंने पढ़ने लगा। तो उसमें से मैंने सुना कि न्यूज़ कैसे बनती है, अब कौन सिखाए यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट है नहीं, तो मैं पढ़ा तो उसमें दो चार बातें थोड़ी समझ में आई। एक तो उसमें नाम लिखा है कि कहाँ का है, भीनमाल का है या रेवदर का है, न्यूज़ का नाम लिखा रहता था। दूसरे फिर ये बात समझ में आई कि कौन से संदर्भ में है, तो भाई ये मेला है, ये कृषि मेला है, गऊ मेला है, उसमें इन्होंने ये बात कही। फिर कौन वीआईपी है, तो उसके वो फिर स्थान व्यक्ति कौन बोल रहा है ये पांच बातें, तो ये बात समझ में आई। तो वो उसके आधार से मैंने मेरे को ड्यूटी दे दी थी 10 दिन के, आपको 15-15 दिन में चलाना है। तो मीनवाइल फिर मुझे मैंने लिखा और फिर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो अभी शरीर छोड़ा कमल दीक्षित जी करके, आप भी जानते होंगे, तो वो कमल दीक्षित जी जो भोपाल में रहते थे और राजस्थान पत्रिका के एडिटर भी रहे हुए थे, तो वो मीडिया कॉन्ट्रोवर्स में और बाबा के यज्ञ से जुड़े हुए। तो फिर करुणा भाई ने कहा कि भाई ये है तो इनके साथ मिलो और सीख लो जो भी है, तो मैं सीखा। फिर वो मेरे को हेल्प करते थे, तो A4 साइज का जो पेपर है ना उतना ही ओम शांति मीडिया निकलता था ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ज्ञानामृत में चला। तो अब जर्नलिस्ट ना होने के कारण और हमारी हिंदी भी एक साहित्य के रूप में लिखना और बोलना वो अलग बात होती है, तो एक लाइन में मेरी 17 मिस्टेक ही होती थी। वो कहे ठीक करो, फिर वो बड़े प्यार से कहता था कोई बात नहीं, और वो ऐसे ही छप जाती थी गलतियाँ, बिंदी नहीं लगा कोई तो, लेकिन वो मुझे ढांचे से सीख जाएगा। और वो फिर चले जाते थे, 2-4 दिन आते थे फिर चले जाते थे, तो ऐसा महीने में 1-2 बार आते थे। तो ऐसे करके मैंने फिर ये जर्नलिज्म बाबा ही कहो समझ लो, मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारी विशेषता, यहाँ सच कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जिसको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का बारे में एक अगर सही में अगर समझना चाहते हैं तो ये हम स्वयं परमात्मा ही सब कार्य कराते हैं और परमात्मा ही नियुक्त करते हैं, परमात्मा ही उसको वो विशेषता भरते हैं, चाहे उसके लौकिक योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो योग्यता भर के उसको परफेक्ट बनाते हैं। और एक सुंदर कारोबार ये ब्रह्मा कुमारी में, और मेरे को भी ये दायित्व मिला जो आज भी चल रहा है ओम शांति मीडिया पत्रिका, जो अभी पहले पाक्षिक थी, अभी इस साल से हमने उसको मासिक किया है और सारे गांव-गांव में जाती है और विदेश में भी जाती है और लाखों पाठक है उसके, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही है, और उसमें ईश्वरीय सेवा समाचार भी बड़े, जो हमें कहीं मालूम नहीं है तो हम एक दूसरे से पढ़ के भी और सुन के भी, और ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा चल रहा है। और वर्तमान समय इसका दफ्तर अभी शांति वन में और आनंद भवन में, और मैं वही सेवा करता हूँ, एडिटिंग की सेवा करता हूँ। तो बाबा ने मुझे जो कुछ नहीं आता था तो जो भी इतनी सेवा बदलते तो मुझे एडिटर बनाया, और एडिटर से और एडिटर ही नहीं लेकिन सारा मैनेजमेंट पे करना, सारा डेवलप करना। आज हम मेरे साथ 10-12 भाई बहन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप में हम ये कारोबार चलाते हैं शांतिवन में आनंद भवन।
1: बहुत सुंदर जर्नी रही भाई जी, एक समर्पण भाव और एक निश्चय, और जब ज्ञान की समझ होती है और क्लैरिटी मिलता है कि मुझे क्या मिल रहा है तो जीवन में दृढ़ता अपने आप आती है, और हम जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। यह आपकी इस जीवन यात्रा से हमें यह समझ में आता है। आज आपने अपनी समय निकाल करके आप आए, और एक योगी जीवन क्या होता है, एक लौकिक काम करते हुए भी एक अलौकिकता को उसमें दर्शाना, और अलौकिकता अपने जीवन में जब आता है लौकिकता अपने आप जो चली जाती है और हम खुद एक आदर्श बन जाते हैं, ये भी आपने हमें आपके इस जीवन की यात्रा से परिचय कराया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत आपको भी, रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम से आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: प्यार भैया।
1: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
2: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
2: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
2: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अभी बजे हैं रात के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: अरे छुटकी, यहाँ तो आ।
1: क्या भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे छुटकी मत बुलाया करो।
0: अरे लेकिन मुझे तो मेरी छोटी सी गोलू सी।
1: भैया गोलू?
0: मेरा मतलब है मेरी वही प्यारी बहन मुझे याद आती है जो गेट पे खड़े होकर मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती थी।
2: तू पढ़ाई के लिए बाहर जाएगी तो तेरी बहुत याद आएगी।
1: चलो चलो अब जल्दी से राखी के लिए हाथ आगे करो, नहीं तो बचपन की तरह मम्मी से शिकायत कर दूंगी।
3: ये धागा है रक्षा का, ये धागा है उस प्यार का जो बड़े होने के साथ भी बचपन सा रहता है, जो दूर जाने पर भी पास होने का एहसास कराता है, जो सदा रक्षा बनकर साथ रहता है, जो गलती होने पर हाथ पकड़कर सही मार्ग दिखाता है, जो रूठों को मनाता है, वो प्यार भाई बहन का पवित्र बंधन कहलाता है। आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सही में कितना खुशबू मिलता है जब अपना गांव और अपना अंचल के नाम सुनते हैं, क्यों नहीं भाई? क्योंकि जिस गांव और अंचल में शहर में रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल और शहर का भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर को, बच्चों का भाव को, भावना को और हृदय का जो तार है, संगीत के रूप में, भाषण के रूप में अपना प्रस्तुतियां रखने के लिए आज आपका पास इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। और सजाने के लिए हमारा होवनहार बच्चे बच्चियां उपस्थित रहते हैं, तो आज हमें खुशी है, हर्ष का साथ आपका पास हम पहुंच रहे हैं रेडियो कार्यक्रम को लेकर। क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, जिससे हमारा गांव और अंचल का समाचार, खबर, टैलेंट जन जन तक पहुंचे। सरकार का ये मंशा है, कम्युनिटी रेडियो सरकार ने दी। आपका रेडियो है आपके द्वारा, योर रेडियो फॉर योर सेल्फ। तो चलिए आज हम रेबदर नगर पालिका में पहुंचे और आबू राज का आवाज, पिंडवाड़ा का आवाज, सिरोही का आवाज आप सबका पास पहुंचाता है रेडियो मधुबन के माध्यम से। और हमारा श्रोता मित्र पूरा सिरोही जिले से व्हाट्सएप कर भेजते हैं, कॉल करके भेजते हैं जी, हमारा गांव में कब आएंगे, हमारा स्कूल में कब बच्चों का साथ मिलेंगे। हमें इस तरह जानकारी जब मिलता है, हमें खुशी होकर वहां तक पहुंचते हैं। तो आज हम मंडार नगर पालिका में पहुंचे और राजकीय गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार में पहुंचे। बच्चों का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। बालक और बालिका जब इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो उनका भावना, भाव, संगीत, गीत, कविता का माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं। अचानक में पहुंचते हैं, कोई सूचना नहीं मिलता, फिर भी बच्चे रेडी होते हैं, क्योंकि एवर रेडी में जो रहते हैं अचानक में पास हो जाते हैं। पहले प्रस्तुति लेंगे, चाहे एकल गान हो, चाहे समूह रूप में, चाहे मिलकर गा सकते हैं, क्योंकि ये खुला मंच है, ओपन राउंड है। तो पहला प्रस्तुति प्रभु याद में, परमात्मा का याद में आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे बच्चे। तो हमारा श्रोता मित्र भी बारी बारी सभी का आवाज सुनने को आतुर है, सुनेंगे जरूर। तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार की आवाज।
1: मेरा नाम सुकी कुमारी है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार। मेरे गांव का नाम बहादुरपुरा है।
2: मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरे गाँव का नाम थल है।
3: प्रतिज्ञा है। मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरे गांव का नाम निचला गढ़ा बुरुड़।
4: मैं अप्सरा कुमारी हूँ। मेरी क्लास 11 है। मेरी स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है। मेरा गांव का नाम निचला गढ़ है।
5: विपदा में, संकट में, मुश्किल में दास तुम्हारा।

0: दर्शन पालनहारे का इस हारे को सहारा है, इस हारे के इस हारे का मैंने जब भी शाम पुकारा है, वह दर्शन पालनहारे का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खास कर मैंने पहले भी बोला था जे बच्चे अपना दिल का भाव को भावना को संगीत के रूप में परिवेशन करते हैं, जब इस तरह मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं। कहीं पर भी हो, किस तरह भी हो, जहाँ मौका का इंतजार रहता है वो मौका का फायदा लेते हैं, और चांस जब मिलता है तो चांसलर बन जाते हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और उस लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा सभी बच्चे रेडी होकर आए हैं। इसके बाद कौन आएंगे उनको पता है, और नाम, कौन सा क्लास और कहाँ से और इस कौन सा विद्यालय में पढ़ते वो चीज भी बताते हैं। और ये बच्चे भी जो आए हैं उनको भी स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल और कहाँ से वो चीज रख रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों को जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, जिसका चलते बच्चे भी खुशी और हर्ष का साथ, उमंग उत्साह के साथ अपने अपने जगह पर इस तरह कार्यक्रम को प्रस्तुति करते हैं। लेकिन आज रेडियो मधुबन में इस कार्यक्रम को बखूबी से सजा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सही बच्चे, ओके रेडी है ना? तो देर किस बात की, 1 2 3 बच्चे शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम पूनम है, मैं पालड़ी खेड़ा से आई हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक में पढ़ती हूँ।
2: मैं रीना कुमारी कक्षा 10th की छात्रा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम निमतलई।
3: मैं नेहा कुंवर कक्षा 10th की छात्रा हूँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार से, मेरे गाँव का नाम रामपुरा जे है।

0: తెచ్చాను అచ్యుతం శివం కృష్ణ దామోదరం రామనారాయణం జానకీ వల్లభం. ధన్యవాద్.
1: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद का पात्र तो आप सब है. हमको पता था जे बच्चे ऐसे मौका पर ही चौका छक्का लगाते हैं क्योंकि चांस मिलना चाहिए और जो चांस मिलता है तो बच्चे चांसलर बन जाते हैं. क्यों नहीं भाई, क्योंकि माँ बाप का सहयोग, शिक्षकगण का सहयोग और साथ ही सहयोगी का सहयोग भी मिलता है जिसका चलते बच्चे कार्यक्रम को पूरा स्वस्थ मस्त बना देते हैं, जिसका चलते रेडियो कार्यक्रम सुंदर रूप में हो जाता है. जब रेडियो में प्रसारण होता है रिकॉर्डिंग प्रोग्राम को आपके पास रखते हैं तो हमारा श्रोता मित्र भी झूमते हैं और जब सुनते हैं इनका नाम, इनका अरे ये हमारा गुड़िया का है आवाज, ये हमारा बेटी का आवाज, ये हमारा दोस्त का आवाज, ये हमारा स्टूडेंट का आवाज, ऐसे महसूस करते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो उनको शाबाश देते हैं और स्नेह से प्यार से उनको याद करते हैं. तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे. सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर.

चलिए, बच्चों का आवाज सुन रहे हैं और बीच बीच में आपको रेडियो मधुबन की तरफ से अच्छा अच्छा गीत भी लगाते हैं हमारा शेड्यूलर, जो कि बीके शुभश्री बहन वो भी शेड्यूलिंग करते समय भी ध्यान देते हैं। हम जो रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, एडिटिंग करते हैं, इसका बाद आपका पास सर्व करने के लिए शेड्यूलिंग में आप करते हैं और अच्छा अच्छा प्रोमो जिंगल और उस हिसाब से आपने संगीत भी लगाते हैं, एक पैकेज बन जाता है जिसका चलते पूरा 7 से 8 बजे आप हमारा मेहनत को आपका पास पहुंचाते हैं, जिसका चलते कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुति हो जाता है। सभी को धन्यवाद देते हैं टीम को, क्योंकि टेक्निकल चाहे फील्ड हो, चाहे शेड्यूलिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल सभी

0: हमारा आरजेस, एडिटर्स, शेड्यूलर सब मिलकर कार्यक्रम को सुंदर बना देते हैं, क्योंकि टीम वर्क होता है रेडियो मधुबन में। कोई ऑडियो को लाते हैं, जो ऑडियो लाएंगे उसका कैसे प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने मिनट तक होना चाहिए और प्रोग्राम कैसे बनना चाहिए और उसको आप तक पहुंचाने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग तक पहुंचाने के लिए हमारा टेक्निकल हेड भी इस कार्यक्रम को हेल्दी बना देते हैं। स्क्रिप्ट राइटर भी कम नहीं है, एडिटर भी कम नहीं है और फील्ड जो आउटरीच फील्ड में जाकर रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं वो भी कम नहीं है, जिसका चलते आपका पास टीम का मेहनत जब आप सुनते हैं तो रंग लाता है कार्यक्रम। तो लेते हैं और एक प्रस्तुति, सभी रेडी बच्चे? ओके।
1: मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडर है।
2: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मंडर में।

तुझ पे भरोसा कर ले माँ, भर के फलक में तुझे निहारू मेरे चवीद कर ले माँ, कौन डिगाहे पथ से ज्यादा तुझ पे भरोसा कर।

0: माई है।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ आप सबको खुशी करा देते हैं, क्योंकि ताली बजाने में कोई कंजूस नहीं है, क्योंकि आपका उमंग उत्साह को और चार चांद लग जाता है, क्योंकि आप 20 लाखों लगाकर इस तरह कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए, चाहे भजन हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, प्रेरणादायी सॉन्ग हो, चाहे संगीत हो, सब अच्छा से प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि एक मौका का आवश्यकता रहता है हर जगह में, कोई उलाना न दे जे हमारा पास रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी तरफ से कोई शिक्षा ज्ञान समझ नहीं दे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए हमें अपना जीवन को समर्पित किए जनहित में, रेडियो हित में और गांव और अंचल का हित में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं बच्चों से और रूबरू हो रहे हैं और अपना आवाज को बुलंद करते हुए अपना अपना भावना बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं वो भी बताते हैं, जिसका चलते बच्चों को एक क्या साहस शक्ति और एक प्रेरणा मिल जाता है और अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षण भी दिखाई देते हैं, मेहनत भी करते हैं, बीच नाखून लगाकर पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई का साथ साथ और एक्स्ट्रा पढ़ाई जब करते हैं तो हमें आगे

के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन।

0: झूलेंगे तो पालना झूलांगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खास कर मैंने पहले भी बोला था, जे बच्चे अपना दिल का भाव को, भावना को संगीत के रूप में परिवेशन करते हैं, जब इस तरह मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं। कहीं पर भी हो, किस तरह भी हो, जहां मौका का इंतजार रहता है वो मौका का फायदा लेते हैं, और चांस जब मिलता है तो चांसलर बन जाते हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलिए ब्रेक के बाद पुनः आप सबसे रूबरू होने के लिए पहुंच गए हैं और बच्चे भी उपस्थित हैं। लाइन क्रम अनुसार एक का बाद एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। हमें खुशी है बच्चों को एक मौका आज रेडियो मधुबन दे रहे हैं, जो स्टेज के माध्यम से अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसका चलते हमारा कार्यक्रम सुंदर रूप में सज रहे हैं और सजाने के लिए हमारा और एक प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। चाहे एकल हो चाहे ग्रुप का सामूहिक रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। यह अंतिम प्रस्तुति की ओर होगा, है ना बच्चे? ओके, अंतिम प्रस्तुति में सब सिर हिला रहे हैं। अंतिम प्रस्तुति जब हम कहते तो बच्चे हाँ जी कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सिर हिलाकर भी इशारा से हमें बताते हैं ये अंतिम प्रस्तुति होगी और हमें भी समय को देखते हुए अंतिम की ओर चलते हैं। सभी को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना बच्चे? चलिए शुरू करो।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। एक के बाद एक अपना आवाज को बुलंद से उमंग उत्साह का साथ शक्तिशाली बनकर कार्यक्रम को सजा रहे हैं। क्यों नहीं सजाएंगे कि जब मौका मिलता है तो मौका का तो फायदा लेना चाहिए, जो बच्चे आज ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज खासकर गर्ल्स बालिका विद्यालय सरकारी स्कूल मंडार का आवाज सुनने को मिल रहा है। और सभी को नाम का साथ संस्था प्रधान शिक्षकगण और सभी बच्चे जो इस कार्यक्रम को सजाए, और सजाने के लिए सभी का सहयोग, साथी सहयोगी सहेलियां सखियां सहपाठी उनको उमंग उत्साह दिलाए और आत्मसात भी किए, आत्मज्ञान भी लिए कि मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए और मैं जो कर रहा हूँ वो कैसे करता हूँ, सोचता हूँ मन से, फिर सोचने के बाद वो सोच को हम काम में लगाते हैं, एक्शन में आते हैं, कार्य में करते हैं, तो उसको बुद्धि से करते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा संस्कारित हो जाएगा। चलिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, समझ ज्ञान मिल गया है ना। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर विद्यार्थी विकास, आत्मबल, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संस्कारित बनने के लिए अपना उमंग उत्साह के साथ बच्चों को समझ मिला और सभी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। सबको आत्मबोध हुआ, आत्म प्रबंधन, क्योंकि खुद जब जाग उठेंगे तो जगत के लिए और अच्छा हो पाएगा। पहले खुद को उठाना है, फिर जगत को उठाना है। तो ये था खासकर बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: अभी आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर साप्ताहिक अंक कार्यक्रम का।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब वक्त हो गया कार्यक्रम जीवन रोशनी का, और कहते हैं कि रिश्ते केवल नाम से नहीं बल्कि भावना से बनते हैं। जब हमारे मन में ये भाव जागता है कि सामने वाला भी मेरा अपना है, तब दूरी कम होने लगती है, मतभेद संवाद में बदलने लगते हैं और जीवन में सहयोग की भावना बढ़ती है। तो आज जीवन रोशनी में हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पर जो हमें ये सिखाएगा कि आज जो हम संवाद नहीं कर रहे हैं या भ्रातृत्व भावना समाज से खत्म हो रही है, तो उसे पुनः कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम विचारों के मतभेद के बावजूद एक दूसरे को अपना मान सकते हैं? क्या प्रतियोगिता के बीच भी सहयोग और सम्मान बनाए रखा जा सकता है? तो इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम से, जिसका नाम है जीवन रोशनी। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बीके राज सिंह भाई जी, जो मूल रूप से कोटा राजस्थान से हैं। भाई जी ने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से MSc तथा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मैनेजमेंट में MSc की है। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति उनकी गहरी रुचि रही और वर्ष 1995 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपने जीवन की दिशा के रूप में चुना। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व्यापार एवं उद्योग प्रभाग माउंट आबू से, यानी कि हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी ने देश भर में आर्मी, BSF, CRPF, CISF, रेलवे, एयरपोर्ट स्टाफ, जेल और सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे कॉरपोरेट जगत के कंपनीज, कॉलेज, स्कूल्स और राज्य शिविरों के माध्यम से 500 से अधिक स्थानों पर, यानी कि देश के हर कोने पर जा करके आपने अपनी सेवाएं दी, वर्कशॉप्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से। तो आज वो हमारे साथ है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ब्रदरहुड यानी कि भ्रातृत्व भावना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। और 25 अगस्त को हम मनाने वाले हैं दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस। तो दादी जी भी यही भावना रखती थी और भाई जी ने करीब से दादी जी को भी देखा है, तो उनके अनुभव भी हम इस विषय को समझते हुए जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज सिंह भाई जी रेडियो मधुबन पर।
2: धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाने का चांस दिया।
0: जी, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सरल शब्दों में कि क्या होता है भ्रातृत्व भावना, यानी कि ब्रदरहुड क्या है?
2: सिंपली यूं कहें कि हम अक्सर बातें करते हैं आपस में, हमारा भाईचारा होना चाहिए, और जब भाईचारा बन गया तो एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना बनेगी। तो भाईचारा का मतलब, भ्रातृत्व भावना का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यक्तियों केवल कहें मात्र, लेकिन उनके साथ साथ उसका सम्मान भी करें। अपनापन की भावना और सहयोग की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा। वे मेरा भाई है ऐसा भी नहीं सोचना है, लेकिन साथ साथ उसके सुख दुख को समझना, उसकी गरिमा का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग करना, ही सच्चा ब्रदरहुड है।
0: ओके, तो मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार और अपनत्व की भावना
2: होना चाहिए।
0: ओके, तो इसके पीछे कोई गहरी सोच है, आपको क्या लगता है, क्या विचार?
2: क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचते हैं। जब हम दिल से उसको अपना बनाते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है। बाहर ही हम दिखावा करेंगे तो वो सामने वाला भी समझ जाता है, वाइब्रेशन उसको कैसे हो जाता है कि ये केवल दिखाने के लिए भाईचारे की बात करता है, लेकिन अंदर से कुछ और है।
0: जी, मतलब हमारे देश में हो या फिर कहीं और कॉम्पिटिशन होता है तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि वो हमारा भाई है, लेकिन अंदर से नहीं सोचते हैं कि ये भाई है।
2: हाँ, अंदर से ही भावनाएं नहीं होती है तो सामने वाला समझ जाता है कि ये अंदर से नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारे प्रति वो भावना नहीं जागृत होती है भाईचारे की।
0: ओके, तो जैसे हम सोचेंगे तो सामने वाला भी वैसे ही सोचने लगेगा। तो क्या हम किसी व्यक्ति से विचारों में असहमत अगर हैं, हम उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, तो भी उसके प्रति भ्रातृत्व की भावना रख सकते हैं? अगर हमारे ओपिनियन मैच नहीं होता, हम दूसरे जगह से आते हैं, हमारे खान पान, रहन सहन, विचारधारा सब अलग है, तो क्या हम इस ब्रदरहुड वाली भावना को रख सकते हैं?
2: हाँ, जरूर रख सकते हैं। वो किसी जाति का भी हो सकता है, किसी धर्म का भी हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी होता है
0: जी।
2: तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन ब्रदरहुड का मतलब ये, जब हम एक इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हम एक ईश्वर की संतान है, शरीर के कॉस्ट्यूम भले हमने अलग अलग पहने हुए, लेकिन अंदर से हम एक एनर्जी है, अंदर से हम उस पिता की संतान है, तो वो हमारा भाई है। चाहे उसकी कल्चर अलग हो सकती है, उसका व्यवहार अलग हो सकता है, उसका बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशंस हमारे सेम है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। तो चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कबीले का हो, किसी भी देश का हो, ये कुछ वैल्यूज जो है इंटरनली सब हर एक को चाहिए होता है।
0: जी ओके। तो वैसे भी भारत में कहते हैं कि वसुदेव कुटुम्बकम, यानी कि भातृ भाव की भावना लेकर के सबको ट्रीट करना चाहिए। कुछ सवाल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में कोई स्टाफ आपके कॉलिग है, वो हमसे कम्पीट करता है, कंपटीशन का भाव रखता है, और हमें लगता है कि वो हमारी प्रोग्रेस रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्रदरहुड को कैसे मेंटेन करें, भातृत्व भावना को कैसे मेंटेन करें?
2: जैसे ऑफिस में कोई हमारे साथी, वो उसके अंदर जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो उसको हम कोलैबोरेशन में उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी आगे बढ़ा है वो उसकी विशेषताओं के आधार पर बना है। अगर उसको हम जेलसी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारे अंदर वो इमोशंस जागृत नहीं होंगे। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशेषताएं दी है, जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर नहीं, और उसके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ा है, और मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसके आधार पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन कमियों को ठीक करने के लिए साथ साथ हम पुरुषार्थ करें, और उसको ईर्ष्या ना करके उसको भी मोटिवेट करें। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे।
0: जी, इसका मतलब भाई जी कह रहे हैं कि रेस करें, रीस नहीं करें, जेलेसी ना करें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक मार्केट में सेम सब्जियां लोग बेचते हैं, अगर कंपटीशन होता तो शायद वो मार्केट ही नहीं होता, लेकिन कहाँ गलती हम कर रहे हैं उसे देखना है।
2: और मार्केट में सब्जी उसकी ज्यादा बिकती है जिसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ प्यार से प्रेम से करेगा। हम केवल प्रोडक्ट ही सेल नहीं करते, लेकिन साथ साथ अपना व्यवहार भी हम दूसरों को देते हैं, वैल्यूज भी हम देते हैं, तो कस्टमर जो आता है आपके व्यवहार से सीख के जाता है कि ये व्यक्ति केवल हमें प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, केवल बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वैल्यूज है जो मुझे भी चाहिए, मैं अपने फैमिली में इसको अप्लाई कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री विंग से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझा पा रहे हैं और समझते भी हैं। अगला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो क्या फिर भी उसके प्रति हम भाईचारे की भावना रखें, या व्यवहारिक रूप से ये कैसे संभव हो सकता है प्रैक्टिकल में?
2: वो भले हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन अगर हम भी उसको देख देख के यही सोचते रहे कि मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूं, तो ये जो बदले की भावना हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम जितना, एक ये साइकिल है, जितना किसी के प्रति नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ के बोल बोलेंगे, दूसरों के साथ बात करेंगे, तो वो वातावरण उसके पास पहुँचता है। भले आज हमारे को लगता है कि मेरे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, मैं इतना इसको सहयोग देता हूँ, तो भी मुझे सहयोग नहीं देता है, लेकिन देते देते देते क्या होता है कि एक टाइम उसको फील होता है कि इस आदमी ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि सराउंडिंग में वो वातावरण फैलता है और उस तक वो बात पहुंचती है कि आप उसके लिए गलत सोच रहे हो, लेकिन वो उसने आप हमेशा आपके लिए सुभावना सोची, आपको हमेशा कोऑपरेट करता है। तो अंदर से हम जब सुभावना रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे चेंज होता है।
0: ओके, तो कोशिश करेंगे उनकी अच्छाइयां देखने की,
2: अच्छाई देखने की।
0: हाँ। जी ओके।
2: जैसे दादी जी कहती थी कि व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो लेकिन विशेषताएं जरूर होती है, और जब विशेषताओं को हम ध्यान में रख करके दादी जी विशेष ईयर से उसको सेवाओं में आगे बढ़ाती थी कि इसके अंदर ये विशेषता है, तो विशेषताएं हम देखेंगे तो जो कमियां है वो अपने आप ही फिर कम होती चली जाती। जैसे दादी जी कहती थी किसी के अंदर गुस्सा बहुत आता है, तो दादी प्यार से कहती ये आजकल बहुत कम गुस्सा करता है। तो वो अगर ये बोले कि नहीं आपको तो गुस्सा बहुत आता है, आप तो बहुत यहाँ रहने लायक नहीं, लेकिन दादी उस चीज को पॉइंट आउट ऐसे तरीके से करती कि आजकल बहुत इसके अंदर सुधार हुआ है, धीरे धीरे देखो गुस्सा इस पे कंट्रोल होने लगा और बहुत कम अभी गुस्सा करता है, तो सामने वाला को ये रिलाइज होता था, भले वो गुस्सा उतना ही करता लेकिन रिलाइज ये होता था कि देखो मेरे को दादी जी ने ऐसा कहा, मतलब मेरे अंदर वो गुस्सा कम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो प्रयास करता था कि मेरे अंदर गुस्सा कम आए, कंट्रोल करने की कोशिश करता था।
0: तो शुभ भावना हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे भाई जी ने दादी जी के एग्जाम्पल दिया। तो जब हमें लगता है कि मैंने दूसरों के लिए इतना किया लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया, तब सहयोग देने की जो भावना है वो कई बार खत्म हो जाती है, उससे कैसे बनाए रखें?
2: दूसरों के लिए हमने इसलिए कि मेरे लिए किसने के, लेकिन हाँ अगर हम ये मन में रखें कि किसी के लिए मैंने जो भी किया है वो मैंने कोई स्वार्थ के वश नहीं किया। जब हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना आती है कि मुझे उस जो मैंने उसके लिए किया मुझे उसका रिटर्न चाहिए, जब हम ये सोचते हैं तो हमें वो भाईचारा हमारे अंदर वो पनपता नहीं है। जब हमें सोचते हैं कि मैंने दिया, प्रकृति भी हमें ये सिखाती है कि आज जो पेड़ पौधे हमें जो फल देते हैं वो ये नहीं सोच के देते हैं कि बाद में मुझे कुछ देंगे, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमें देती रहती है। बारिश का मौसम, बारिश हमें दे रही है तो बदले हमसे कुछ उनको चाहिए नहीं, तो प्रकृति पति जो परमात्मा हमें ये सिखाता है कि आप अपनी तरफ से देते जाओ देते जाओ। जब आप देते जाएंगे तो वो रिटर्न होके आएगा, क्योंकि हम ये सिखाते हैं ना कर्म की गति, तो ये जो आप देंगे वही आपको मिलेगा
0: जी।
2: तो आप मिले या नहीं मिले ये सोच के आप देने की भावना जागृत करें। परमात्मा कहते हैं आप दाता के बच्चे हो, आप देते रहो तो एक दिन आपके सामने वो चीजें आएगी। आपको मिला नहीं मिले लेकिन अपना आप ही वो मिलेगा,
0: लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम व्यक्ति से मिले,
2: किसी और से मिलेगा
0: जी। तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सेम व्यक्ति से मिले तो फिर दुख होता है,
2: फिर दुख होता है
0: जी।
2: लेकिन वही चीज हम किसी और के द्वारा हमें मिल जाती है, जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं उससे नहीं मिलता, अक्सर ऐसा ही होता है, उससे हमें नहीं मिलता लेकिन कहीं और से मिल जाता है। लेकिन समय गुजरने के बाद उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया ऐसा।
0: लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशंस के कारण दुख होता है,
2: हाँ,
0: उस दुख को आप जाहिर होने ना दो और हाँ, कर्म करते रहो डिटैच होके, तभी वो फल मिलेगा
2: जी जी जी।
0: ओके, तो आज समाज में ओपिनियंस, लाइफस्टाइल, भाषा, संस्कृति और विचारों में बहुत डिफरेंसेस हैं, एक ही घर में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक दूसरे को अपना कैसे महसूस करें, मतलब एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है हमें इंसानों को एक्सेप्ट करने में, क्या भाव रखें?
2: एक्चुअल में क्या हो रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम जीवन में वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए। आज जो चीज़ फैशन में है एक महीने बाद, 10 दिन बाद वो आउटडेट हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो चीज़ों में हम अपडेट हो गए लेकिन वैल्यूज में डाउनफॉल हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार अभी धीरे धीरे बदलते रहे हैं। और आजकल डिफरेंसेज इसलिए हो रहा कि जैसे माता पिता है अपने बच्चों से, उनका विचार डिफरेंस है, क्योंकि माता पिता जो है वो ये चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखी है तो बच्चों के अंदर वो डालना चाहते हैं, लेकिन बच्चे स्वीकार नहीं करते। जैसे माता पिता है उन्होंने अपने ज़माने में दलिया खाया, दाल रोटी चावल खाया है, तो वो बच्चे उससे यही अपेक्षा करे वो भी वही खाना खाए, लेकिन आजकल के जो बच्चे उनको चाउमीन चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, उनको फास्ट फूड चाहिए, और वो ज़बरदस्ती उनके साथ करना चाहते तो लोग मैचिंग नहीं हो पाते हैं। तो समय अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम पुराने ज़माने के लोग, हमें मान लो लता मंगेशकर के गीत पसंद है, किशोर कुमार इनके गीत पसंद है, लेकिन नई जनरेशन को भी हम यही चाहते हैं कि वो भी वही सुने, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते हैं। उनको नई जनरेशन के नए जो सिंगर आए उनके गीत पसंद है, तो समय अनुसार हम उनको देख करके उनके साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, तब अपनापन की भावना आएगी। हम अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकते, उनके विचार भी अपने अंदर हमें समाने पड़ेंगे, क्योंकि जनरेशन बहुत तेजी से बदल रही है। तो उस जन जिसको कहते हैं आजकल जेन जी, तो जेन जी के विचार बहुत फास्ट है, बहुत प्रगतिशील
0: विचारधारा
2: वाली जेन जी एक है, यूथ है, तो उनके विचारों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे से फास्ट है। जैसे स्मार्टफोन है ना, वो स्मार्टफोन की तरह हमारे से फास्ट है, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज है, लेकिन उनके साथ साथ उनको हमें सहयोग देने की जरूरत है, उनको सहानुभूति देने की जरूरत है, तब हम उनके साथ में एडजस्ट हो सके और तब हम भावना जागृत कर सकेंगे।
0: ओके, तो बिल्कुल डिफरेंसेस है लेकिन एक्सेप्ट करके उनके साथ अपग्रेड अपडेट होने की जरूरत है, जैसे भाई जी ने कहा। क्या हम अलग है कि सोच भातृत्व भाव यानी कि ब्रदरहुड को कमजोर करती है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। हम बाहरी रूप से अलग अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा से अलग हो सकते हैं, हम संस्कृति से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनर में तो हम एक ही है, हाँ, अंदर में हम एक ही है, एक दूसरे से हम प्यार, क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं आए, हम आए कहीं और से, जिस दुनिया से आए उस दुनिया में कोई रिलीजियस नहीं है, कोई अलग नहीं है, वहाँ केवल एक ही चीज़ है कि हम एक ईश्वर की संतान है और उसके हम बच्चे हैं और लाइट ऑफ पॉइंट है। वहाँ पर कोई संस्कृति नहीं है अलग, कोई विचारधारा अलग नहीं, एक ही विचारधारा है और एक ही वैल्यूज है जो सबके अंदर हमें दिखाई देते हैं, और सबको एक ही डिमांड है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो कहीं का भी हो
0: जी,
2: किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश काल का हो, उसको ये चीजें की जरूरत होती ही है। तो जब इस भावना से हम देखते हैं तो अपना आप वो भाईचारा पनपता है
0: जी। बिल्कुल, तो जैसे भाई जी ने कहा कि हम सब भी एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है और एक देश से आए हुए हैं, इस बात को हम ध्यान में रखें। अगर किसी की सोच हमसे बिल्कुल विपरीत हो तो उसके साथ संवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: सबसे पहले हमारे अंदर लिसनिंग पावर होना चाहिए कि सामने वाले की मेरी सोच विपरीत है लेकिन वो क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, उसको हम समझें, और समझने के साथ साथ उसके जब वो सारा सुनने के बाद समाने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि वो उसकी सोच डिफरेंस क्यों ही है। हो सकता है वो जिस सराउंडिंग वातावरण में रहा हो तो इस कारण से वो ऐसा सोचता हो कि फलाना व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो पूरी बात जब हम सुनेंगे तो फिर हम उस पर कैलकुलेशन पे आएंगे कि व्यक्ति इस वजह से बोल रहा है। तो उसकी बात को सुनते हुए हम अपनी बात को रखें। जैसे हमें दादी जी सिखाती थी कि भाई कोई बात को आपको करेक्ट करना है तो डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना है। तो डायरेक्ट ना बोलने के साथ साथ उसकी बात पहले सुनो और फिर साथ में जैसे कहते हैं ना कि सैंडविच जैसे लगा के उसकी महिमा करते हुए
0: जी।
2: उसको साथ साथ वो बात उसको पेश करना कि आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपके विचार अलग हो सके लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये करेक्शन करेंगे, ये चीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा जीवन में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो भले सोच लगे लेकिन हम अपने विचार उसको रिस्पेक्ट से प्यार से हम उसको दे सकते हैं और वो स्वीकार करेगा उस बात को।
0: जी, तो बात करने की तरीके आना चाहिए और जैसे भाई जी ने कहा कि लिसनिंग, आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सुनने से पहले जज कर लेते हैं, तो इसके वजह से संवाद करते समय भी प्रॉब्लम होती है हमें। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सुनना है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जीवन में आते हैं, मान लीजिए दो कॉलिग्स हैं, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति है, वो भ्रातृत्व भावना की भावना से उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकता है?
2: वो तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग विचार जाने, उनका सुने और उनकी प्रॉब्लम समझे किस बार कारण से इन दोनों के आपस में बीच में टकराव है या एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे। तो दोनों का सुनने के बाद में बीच का रास्ता निकाले, ब्रिज बन के पुल के माध्यम से कि आप अपनी जगह राइट है लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेंगे तो सामने वाला भी समझने के लिए तैयार है, फिर उसके पास जाके भी बोलेंगे कि आप भी ठीक है, उसके अंदर ये चीज की है कि मेरे साथ में इन्होंने ऐसा किया तो आप इस पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी। तो तीसरा व्यक्ति ब्रिज के रूप में जब अपना सहयोग देगा तो दोनों आपस में मिल सकते हैं।
0: जी, तो आजकल हम ब्रिज की जगह पे शायद जले पे नमक चढ़े
2: एक की चार बातें मिला के बोलते हैं कि आपके बारे में वैसा बोल रहा था वैसे, तो और नजदीक आने के बजाय और दूर हो जाते हैं।
0: ओके, तो ब्रिज का
2: ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो दुनिया में बहुत ईगो बढ़ रहा है तो एक दूसरे को हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी है कि उसके कारण व्यक्ति का माइंड भी वैसा ही हो गया है,
0: हम विश्वास भी नहीं कर पाते एक दूसरे पे।
2: हाँ, विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले एक जमाना था तो एक दूसरे को हम एडजस्ट कर पाते, अभी इतना जल्दी हो गया कि मन के अंदर सहन शक्ति हमारी खत्म हो गई है। हम सुनना ही पसंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि रील से आप देखते हैं 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, तो जो भी माइंड ऐसा हो गया कि उसमें इमोशंस खत्म हो गए, हमें जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। अगर कोई अब आज की डेट में आप देखो कोई मूवी देखना भी चाहता है या मोबाइल में देखे तो तुरंत फॉरवर्ड करेगा, कारण क्या मन में वो चीजें नहीं है, इमोशंस ही नहीं है उस चीज के, जो भी कहना है आप मुझे सार में कहो, तो माइंड ऐसा हो गया इसलिए वो दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है, कोऑपरेट नहीं कर पाता है।
0: ओके, बिल्कुल, तो मेन चीज है ईगो प्रॉब्लम के कारण हम भ्रातृत्व भाव को, ब्रदरहुड को अपना भी नहीं पा रहे हैं, और जैसे भाई जी ने कहा अगर तीसरे को सॉल्व करना है तो ब्रिज बने। अच्छा भाई जी, गुस्से में कही गई किसी बात से रिश्ता खराब हो जाए,
2: हाँ,

0: तो पहला कदम किसे उठाना चाहिए? मान लीजिए आपस में झगड़ा हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, तो पहला कदम कैसे उठाना चाहिए और किससे उठाना चाहिए?
1: पहला कदम, अब जो पहले जो झुकेगा उसी को उठाना पड़ेगा, आखिर किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और उसके बीच में सबसे पहले आता है ईगो। तो ईगो में ये देखा जाए कि रिश्ता अगर महत्वपूर्ण है, मेरा दोस्त है, साथी है, जो भी, अगर मेरा रिलेशन मेरा जरूरी है, तो ईगो को उसको साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कोर्ट के अंदर या जेलों में जो ज़्यादातर केसेस जा रहे हैं, वो गुस्से के कारण और ईगो के कारण जा रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर के हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, और वो चारों तरफ फैल जाती है। तो हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते कि नहीं, मुझे ऐसा उसने क्यों कह दिया, मेरा उसने अपमान कर दिया सबके बीच में, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, है ना, या मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे से उसने पैसे मांग लिए, उधारी मांग ली, या मेरी उसने ये हिस्सा मेरे से छुड़ा लिया। तो इस बात को लेकर के हम बहुत सालों में तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और सोच सोच के हमें अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें ये महसूस होता कि नहीं, ये छोटी चीज़ है और मेरा रिलेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे से नुकसान में हम बहुत बड़ा फायदा खो देते हैं ना, उस चीज़ के कारण हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ होती है एक दूसरे से, तो वो भी हम खो देते हैं, रिलेशन हमारे चले जाते हैं। तो हमें ही झुक करके अगर उसके साथ में संवाद कायम करें, अगर खुद नहीं बात कर सकते हो तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा हम बात पहुंचाएं कि मैं बात करना चाहता हूं। अगर एक सिंपल लाइन भी अगर हम बोल दें कि भाई मेरी गलती थी, सॉरी, इसमें कोई हम बड़े छोटे नहीं हो जाते, अगर हम रियलाइज कर लें कि मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं, तो सामने वाला भी ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, वो भी झुक जाता है, नहीं वो मेरी भी गलती थी। तो जब दोनों एक दूसरे के आगे झुकते हैं तो संवाद आया आसानी से कायम हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं।
0: जी भाई जी, आजकल देखा जा रहा है कि घर घर में भाई भाई के बीच में झगड़ा है
1: जी,
0: और यहाँ पे भी ईगो प्रॉब्लम भी है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज की भी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। तो एक भाई सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, तो उसका भी तो कर्तव्य है ना। तो ऐसे हर रिलेशनशिप में है कि सिर्फ हमेशा मैं ही क्यों झुकूं।
1: उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का भी झगड़ा होता है, लेकिन उसके दूसरे तरीके भी होते हैं, हम ही क्यों झुके, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि सामने वाला भी झुकता है, जब उसको महसूस होता है कि हर बार ये झुका है और मैं अकड़ के रहा हूँ। क्योंकि जब उसके सामने भी सिचुएशन आती है, अभी भाई के साथ तो अकड़ के रहेगा, लेकिन जब दूसरे सामने वाले लोग जो झुकाते हैं उसको, तब उसको रियलाइज होता है कि मेरा भाई तो मेरे लिए बहुत कोऑपरेट करता है। सामने वाला जो होता है, जो अननोन पर्सन है, वो तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो उसके आगे हम झुक जाते हैं, लेकिन भाई के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन अगर हम अपना, अगर हम रियल में भाई समझते हैं, अपनापन समझते हैं, तो अगर हम झुकते भी करें कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये होगा। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ कि ज्यादातर जब नहीं झुकते हैं तो ये कोर्ट केसेस में जाता है, अपराध बढ़ते हैं, मारपीट हो जाती है, और मारपीट होने के कारण हम जेलों में चले जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल साल भर, 10 साल वहां निकाल के आते हैं, फिर जाके रियलाइज होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। जब जेल में जाता है आदमी, उसको वो चीज फील होती है कि मैंने बहुत गलत कर लिया
0: जी।
1: तो वहां जाने पर क्या हुआ, हमारी इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, समय भी जाती है। तो मेरा तो यही विचार है कि अगर हम पहले ही इसको कंट्रोल कर, पहले ही हम झुक जाए, वो जो रियलाइज हो उसके पहले हम रियलाइज कर लें, तो हमारा समय भी बच जाए, इज्जत भी बच जाए और धन भी बच जाए
0: जी।
1: तो चाहे कैसा भी हो, थोड़ा सा हम झुके, और जो हमारे पास सराउंडिंग में जो सोर्सेस है कि ये व्यक्ति किसकी बात मान सकता है, उन सोर्सेस का हम उपयोग करें
0: जी,
1: जिससे हो सकता है उसके अंदर में भी कुछ चेंजेज आए।
0: बिल्कुल, सुख और शांति अगर चाहते हैं तो अपनों के आगे हम झुक सकते हैं।
1: कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें फैमिली भी है, भाई भी है, पत्नी है, तो हमें बच्चे देखने पड़ते हैं, माता पिता को देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि उसका असर केवल एक व्यक्ति पे नहीं पड़ता, हमारी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ वहां तक असर जाता है, मदर की फैमिली तक भी असर है, दूर दूर तक उस चीज का असर जाता है। और आज के टाइम पे लोग कोई हमारे लिए सुभावना नहीं रखते हैं, लोग मजे लेते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा, जले पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं। तो हमें तो मीठा बनना है, हमें बात को बढ़ाना नहीं है, बात को समाना है, छोटा करना है
0: जी, तभी हम ब्रदरहुड को कायम रख सकते हैं जी। क्या जो फॉरगिविंग है, क्षमा करना, तो वो भी भातृत्व भाव का एक हिस्सा है, लेकिन क्षमा करना वो भी कला है शायद, कैसे क्षमा करेंगे?
1: क्षमा करना, जैसे कहते हैं जो बड़ा आदमी होता है वही क्षमा कर पाता है, जितना जैसे घड़ा फुल भरा होगा तो ज्यादा छलकेगा नहीं, आधा भरा होगा तो छलकेगा, जल्दी उछल जाएगा। तो हमारे अंदर अगर जितने वैल्यूज होंगे कि मुझे ईश्वर ने इतना सारा दिया है और इतना सारा मुझे सिखाया है, तो हम दूसरों को वही देंगे। अगर मेरे अंदर गुस्सा होगा तो मैं दूसरों को गुस्सा दूंगा, मेरे अंदर अशांति होगी तो मैं दूसरों को अशांति दूंगा। तो मेरे अंदर जितनी शांति होगी, जितना दूसरों के प्रति प्रेम होगा, जितना भाईचारा होगा, उतना ही हम दूसरों को दे सकेंगे। बैंक, मेरे बैंक में बैलेंस होगा तभी तो मैं दूसरों को डोनेट कर सकूंगा, बैलेंस नहीं होता कहते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा
0: जी।
1: जब हमारे अंदर होगा तभी हम दूसरों को दे सकेंगे।
0: तो कैसे भरना है? तो
1: वो हम मेडिटेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है बाहर की चीज दिखावे नहीं है। जैसे हम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को दिखता नहीं है, इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है। जब डाउनलोड करेंगे तब वो प्ले होता है, तब वो अपना कार्य करता है। तो परमात्मा ने हमें यहाँ जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है तो इसको अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है ना, अपडेट करने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल भी आजकल काम नहीं करता, वो भी अपडेट मांगता है, जो उसको अपडेट करते हैं बार बार। तो हमें रोज रोज अपने इस मेंटल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और वो अपडेट करने का तरीका है मेडिटेशन। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं रोज रोज वो हमारा अपडेट होता है, स्कैन होता है, वायरस हमारे निकलते हैं और उससे हम अपना आप ही आगे बढ़ते रहते हैं
0: जी। ओके, तो अपडेट करने के टाइम में कौन से चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं आप, डाउनलोड करते हैं?
1: मेन चीज़ तो यही है कि जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस चले जाते तो उसको हम स्कैन करते हैं और वायरस निकाल, दोबारा से कोई वायरस ना आए तो उसके लिए हम ऐसा सॉफ्टवेयर डालते हैं, एंटीवायरस डाल के रखते हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई फॉर्मेट का सिस्टम तो है नहीं, जो परमात्मा ने ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर डाल के देखा है पूरी ताउम्र या पूरी जिंदगी वो रहेगा। वायरस हम पूरा निकाल नहीं सकते, लेकिन कोई वायरस आगे ना बढ़े, ज्यादा फाइल करप्ट ना हो, उसके लिए एंटीवायरस डालना पड़े, तो वो एंटीवायरस है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में सिंपल चीज ये कि हम अपने आप को पहले यहाँ एनर्जी समझे। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, एक प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज करते हैं या हम जो भी यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करते हैं और आए दिन अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार एक इंस्टॉल कर लिया हमने कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा किस प्रकार की हूँ, शरीर तो मेरा थोड़ा समय का ही है, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है हमेशा अजर अमर अविनाशी है। तो जब हम थॉट्स अपने आप को पॉजिटिव देते हैं और मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा क्या है वो भी एक लाइट और पॉइंट है, उससे जैसे हम कनेक्ट होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें पता नहीं था, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज इंटरनेट के माध्यम से भेजनी है, आपने देखा कि यहाँ पे वाईफाई है, तो आप क्या कर रहे हैं, पासवर्ड अपनी तरीके से आप लगा रहे हैं, लेकिन पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। जब पासवर्ड पता नहीं, आप कितना भी ट्राई करो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा
0: जी।
1: तो आप इस बिल्डिंग के आसपास जो व्यक्ति रहता है उससे आप पूछेंगे, भाई यहाँ वाईफाई तो दिखा रहा है लेकिन मुझे पासवर्ड पता नहीं है
0: जी।
1: तो पासवर्ड उसी व्यक्ति को पता है क्योंकि उसने वाईफाई लगाया हुआ है, तो वो फिर वो पासवर्ड आपको बताएगा, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि परमात्मा से हमें कैसे कनेक्ट होना है, तो हम अपने आसपास के लोगों से, दूर दराज लोगों से ये पूछ रहे थे कि भाई भगवान से कनेक्ट होने का पासवर्ड क्या है। तो वो भी अपने तरीके से बताते हैं, ये लगा लो इससे लग जाएगा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वाईफाई लगाने वाला स्वयं परमात्मा है। भगवान स्वयं आकर के हमें बताता है कि ये पासवर्ड है, आप इस पासवर्ड को डालेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ये जब हमें पता पड़ा कि हम लाइट ऑफ पॉइंट है, तो तुरंत परमात्मा से हम कनेक्ट हो गए और हमें वो एनर्जी और वो शक्तियां हमारे पास आने लगी,
0: वो वैल्यूज भी
1: अपने आप ट्रांसफर
0: हो जाती जी। तो ये मेडिटेशन करने से हमें शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि हम मातृत्व भाव के साथ रह सकते हैं लोगों के साथ। परिवार में कई बार भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन होता है ना, आपके बच्चों ने ये कर दिया, इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या अलग अलग तरीके से कंपैरिजन और जेलसी आ जाती है। तो वहाँ रिश्तों को कैसे भातृत्व भाव के साथ स्ट्रेंथन करें?
1: हाँ, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आजकल जो पेरेंटिंग भी हो रही है, तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इतना सारा नंबर लिया, तू क्यों नहीं लेके आता है, क्या कारण है? तो आजकल ये बहुत ज़्यादा होने के कारण बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, माता पिता भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे कि मैं कोटा से हूँ, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं
0: जी।
1: और उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, माता पिता का प्रेशर होता है, प्लस टीचर का प्रेशर होता है, आसपास के दोस्तों का भी होता है, इसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कईयों को देखा है कि वो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी उनको पावर मतलब दबाना नहीं है, उसको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। उसके अंदर जो नंबर आया अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि आपके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं, आप पढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी, उसको हम सहयोग देते हुए भी हम मोटिवेट करें, ना कि दूसरे से हम कंपेरिजन कराएं। क्योंकि लेटेस्ट ही हमने देखा, एक बच्चे ने एक फोन के कारण सुसाइड किया, उससे गिर गया, तो उसके पीछे यही आया कि बच्चा दूसरों को देख देख के सीख रहा था कि उसके पास एप्पल आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए. इसलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है स्टेटस जनरेट स्ट्रेस. आप स्टेटस को मेंटेन करने जाएंगे, इनकम आपकी इतनी है नहीं है, और जब वो मेंटेन करने जाएंगे तो आप एन केन पर कारण लोगों से आप दूसरे तरीके ढूंढेंगे कैसे मेरे पास इनकम है. जब गलत कदम उठाने जाएंगे तो फिर गलत कदम का गलत ही नतीजा होता है
0: जी.
1: तो हम भी सादगी में रहना पसंद करें, बच्चों को भी वो सिखाएं, क्योंकि हम दूसरों को देख के हमें अपना जीवन नहीं जीना है, हमें अपनी क्वालिटी के आधार पर जीवन जीना. अपनी क्वालिटी को आप जितना डेवलप करेंगे तो आगे चल के वो जो चीजें आपको चाहिए वो अपने आप मिलेगी
0: जी.
1: लेकिन बच्चों को हमें उनको मोटिवेट करना है, ना कि उनको डाउनफॉल करना है. दूसरों के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे ये सर्टिफिकेट देते हैं, माँ बाप मुझे ठीक से लाइक नहीं करते हैं, मुझे आए दिन डांटते रहते हैं, परेशान करते हैं. तो डांटने डपड़ने के बजाय उनसे प्यार से मोटिवेट करें. आपने देखा अपने यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, तो दादियां भी हमें यही सिखाती थी कि कोई भी गलती हो जाती है उसकी बजाय डांटती नहीं थी
0: जी.
1: एक बार ज्ञान सरों में यहाँ पे एक भाई था, उससे काफ़ी बड़ी उस टाइम टीवी बहुत महंगी आती थी, टीवी गिर गई तो दादी जी आए और उन्होंने देखा, और देखने के बाद में वो भाई की तरफ देखो रखे और स्माइल किया बस, कुछ नहीं कहा. फिर दादी को पूछा, दादी आपने उसको डांटा क्यों नहीं, इतनी महंगी टीवी तोड़ दी उसने. बोला डांटने से टीवी को जुड़ नहीं जाती है
0: जी.
1: लेकिन मैंने उसको स्माइल दी, उसमें उसको प्यार भी मिल गया उसको, और एक सावधानी भी मिल गई कि आगे से अपने आप ध्यान देगा, क्योंकि जानबूझ के कोई गलती ऐसी करता नहीं है, वो हो गया उससे. तो यही भावना हम अपने बच्चों से भी लगे रखें, बार बार उनको टॉर्चर ना करें, किस तरह से दबाए नहीं, उनको मोटिवेट करें, शिक्षाएं दें, सावधानियां दें, लेकिन वो प्यार से. हम खुद गुस्से में रहेंगे तो हमारे से भी वो सामने वाला यही सीखा कि जब पापा गुस्सा करते हैं तो मुझे लगता है शायद यही फार्मूला है दुनिया को चलाने का, तो फिर वो भी धीरे धीरे गुस्सा करना सीख जाता है. माता पिता जब बूढ़े होते हैं, जब वो बड़ा होकर फिर माता पिता वो गुस्सा करता है, क्योंकि हमने उसको सिखाया ही वही है, प्यार करना नहीं सिखाया, प्यार देना नहीं सिखाया, तो गुस्सा देना करना सिखाया, तो सामने बड़ा होकर फिर वही करता, फिर वो अपने बच्चों के साथ भी वही ट्रीट करता है. इसके कारण धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता जाता है.
0: जी जी बिल्कुल. अगर हम स्टेटस मेंटेन करने को जाए तो भाई जी ने कहा कि स्ट्रेस होगी, तो इसीलिए कंपैरिजन कंपटीशन को साइड में रखते हुए अपने क्वालिटीज को ढूंढें और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे अपने आप सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, ऐसे भाई जी ने हमें बताया. तो बच्चों में बचपन से ही जैसे आपने कहा कि हम सब एक दूसरे के साथी हैं, इसकी भावना विकसित करने के लिए और क्या पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं चीज़ें?
1: और पेरेंट्स ये ऐड कर सकते हैं, बच्चों के सामने आप कभी भी अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ गलत व्यवहार ना करें. आप उसको करेक्ट करने जाएंगे, आप उसको डांटेंगे वाइफ को, तो बच्चा वो सीखता है कि पापा मेरी मम्मी को ऐसे डांट रहे, तो उसके अंदर वो अंदर ही अंदर एग्रेसिव की भावना जागृत होती है
0: जी.
1: तो अगर हमारे बीच में कुछ मनमुटाव भी है तो बच्चों के सामने ना करें
0: जी.
1: जब एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, तो हम उसको बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं. पहले हम ये समझते थे कि पत्नी को या अपनी वाइफ को डांटेंगे तो ये सुधरेगी. अभी दोनों बराबर के लिए शादी शुदा होना मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ है तो मेरे हिसाब से चले. अभी समय बदल गया. शादी शुदा मतलब हम एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, कंपेनियन है, तो एक दूसरे की हमें साथ देना है, सहयोग देना है, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देख करके उनके अंदर जो विशेषता है उनको आगे बढ़ाना है
0: जी.
1: जब हम एक दूसरे की महिमा करेंगे, एक दूसरे की मोटिवेट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसका प्रभाव बच्चे पे ना पड़े. बच्चा ये सीखता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या प्यार दिया है ना, कैसे मुझे आगे बढ़ाया, तो वो फिर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेगा. अगर हम वैल्यूज हमारे अंदर होगा तो वैल्यूज बच्चों को देंगे, बच्चे अपने बच्चों को देंगे. हमारे अंदर अगर गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत, वो सब दिखते हैं तो बच्चे भी देखते हैं, तो वही सामने वालों को ट्रांसफर करेंगे. तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं
0: जी.
1: हमारे पास जो संपत्ति बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपए बंगला है, हम चाहते हैं मेरी संपत्ति उसको ट्रांसफर कर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो संस्कार है वो भी एक प्रकार की संपत्ति है. तो हमारे जो संस्कार की जो संपत्ति है बच्चों को देना चाहते हैं, तो हम बच्चों को कैसी संस्कृति देना चाहते हैं, कैसी संपत्ति देना चाहते हैं, कि वही उसके साथ जानी है, वो आगे आगे से आगे ट्रांसफर करेगा. ये बैंक बैलेंस बंगलों तो यहीं तक रह जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक जाएंगे, लेकिन उसके आगे वाली संतान तक नहीं जाएंगे. लेकिन अगर हमने साथ में ये संस्कार दिए, इसलिए कहते हैं वेल्थ के साथ विजडम चाहिए. धन हमें बाप दादा से मिल जाता है, करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, लेकिन धन के साथ में, वेल्थ के साथ में विजडम नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो उसको गंवा देगा. इसलिए राजस्थान में कहावत है कि यदि बेटा कपूत तो क्यों धन संचय. यदि आपका बेटा गुणवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, संस्कारवान नहीं है, तो उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है
0: जी.
1: आप इकट्ठा करेंगे तो क्या करेगा, उड़ा देगा, सब खत्म कर देगा। फिर हमारे यहाँ कहते हैं अगर बेटा सपूत तो क्यों धन सच, अगर बेटा आपका ज्ञानवान है, गुणवान है, संस्कारी, आपने अच्छे गुण दिए, उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है खुद कमा लेगा
0: जी।
1: तो हमें मेन ये देखना कि हमें अपने संस्कारों से बच्चों का परिवेश ऐसा करना है कि बच्चे बड़े होकर के ये महिमा कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिए
0: हैं। जी बिल्कुल, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं कि वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, तो इस बात का हम ध्यान दे सकते हैं। समाज के दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम सच में हर व्यक्ति को अपना भाई बहन माने तो हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें सबसे पहला बदलाव क्या आएगा?
1: सबसे पहला बदलाव ये है कि हम अपने ईगो को साइड में रखेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी जो पोस्ट पोजीशन है, मुझे इस दृष्टि से लोग देखे। लेकिन अगर हमने यही सोच लिया कि नहीं ये मेरे भाई बहन है, तो हमारा पोस्ट पोजीशन तो साइड में हो जाता है ना, तो हम हमारे अंदर निमित्तता आ जाएगी, निर्माणता आ जाएगी। हम जितनी बड़ी पोस्ट पे होंगे उतना ही हम लोगों के साथ में हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे
0: जी।
1: ये चीज दादी जी के अंदर थी, वो इतनी बड़ी संस्था की चीफ होते हुए भी वो ये समझती थी कि ये मेरे बाबा के बच्चे, मेरे भाई है, मेरी बहन है
0: जी।
1: तो वो कभी इस पोस्ट पोजीशन का अहंकार नहीं होता था कि मैं इतनी बड़ी संस्था की चीफ हूँ तो मेरे हिसाब से लोग चले। वो खुद आगे होकर के लीडर करती थी, लीडिंग पावर थी उनके अंदर। तो जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं हमारे साथ।
0: जी बिल्कुल, तो दादी जी के अंदर सच में ये भावना थी। पूरे आबू रोड में अगर आप पूछें जिन्होंने दादी जी को देखा है, उनके अंग संग्रह हैं, तो वो ये बात को ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और आज जब लोग कहते हैं कि मुझे दूसरों से क्या लेना देना, आज की जो लाइफ हो गई है, तो इसमें जो ब्रदरहुड का सोच है, इसका सकारात्मक उत्तर क्या हो सकता है?
1: देखो, अगर दूसरों के साथ में रहना देना नहीं है तो, क्योंकि आज हम सभी क्या है, एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी, हम अकेले रह नहीं सकते, हम एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है
0: जी।
1: जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर एक में वायरस आ गया तो धीरे धीरे दूसरे में भी आएगा
0: जी।
1: तो अगर हम ये सोच के मुझे क्या मतलब उसकी प्रॉब्लम, वो जाना है, लेकिन हमें आज उसकी प्रॉब्लम कल वो हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे हमने देखा 2020-21 में हमने देखा कि जब वो कोरोना आया, अगर हम सोचते हैं कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे उसको ठीक करने की जरूरत नहीं, तो अगर नहीं करेंगे धीरे धीरे वो आप तक भी फैलता जाएगा। वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो सब पे कनेक्ट हो जाता है। तो आज हमारे अंदर में भी वो चीज़ें हैं, बुराइयां अगर उस सामने के अंदर है, उसको आप ठीक नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो बुराई आपके अंदर भी प्रवेश करने लग जाएगी
0: जी।
1: तो और बीमार पड़े, जैसे कहते ना, एक एप्पल अगर सड़ा हुआ तो क्या है, लोगों के संपर्क में आएगा, दूसरों को भी खराब करेगा
0: जी,
1: तो उसको साइड कर देते। तो यहाँ उसको साइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर ये वीकनेस आई कैसे और कैसे हम उसको मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। समझो कोई व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, अब वो नशे के इतना अधीन हो गया कि बेचारा कमजोर है, छोड़ नहीं सकता, लेकिन छोड़ने के लिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कुछ। आज जैसे अपने अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान क्यों चल रहा है, हमें क्या मतलब, बहुत लोग पी रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसा बड़ा कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि समाज में यह बहुत बड़ी कुरीति है
0: जी।
1: नशा नाश की जड़ जैसे कहा था, तो व्यक्ति अगर एक नशा करेगा तो वो उसके उसका साथ देख के दूसरे उसके दोस्त भी करने लग जाएंगे, धीरे धीरे उसके बच्चे भी वही सीखेंगे, मतलब पूरा समाज पे दुष्प्रभाव एक पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति को हमने ठीक कर लिया तो उसकी वाइफ भी ठीक रहेगी, उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे, तो पूरा समाज धीरे धीरे हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समाज धीरे धीरे परिवर्तन होता है और होता जाता है। तो हमें उसके साथ में इन्वॉल्व होना जरूरी है उसको ठीक करने के लिए
0: जी।
1: हम समाज से भाग नहीं सकते क्योंकि समाज का एक अंग है, तो हमें वो जुड़ करके समाज को ठीक करना है।
0: बिल्कुल, कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर हम खुद ठीक हो जाते हैं और सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर समाज भी ठीक होने लगता है। क्या छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी की मदद करना, सुनना, सम्मान देना भी भातृत्व भाव को मजबूत करती है?
1: जरूर मजबूत करती है, क्योंकि यही तो एक हमारा मेन बेस है, संस्था का भी मेन बेस यही है, क्यों हमने इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए। आपने देखा हो यहाँ पे मजदूर वर्ग एक कार्य करता है, श्रमिक जो काम करते हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं होती कि ये छोटा व्यक्ति है, हम ये सत्य सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनको प्यार से चलाते हैं। इसलिए मैंने देखा हो दादी जी के टाइम पर भी हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर्स काम यहाँ पर आते थे, और बाहर में भी होटलों में उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, वहाँ भी बोला था आप हमारे साथ आइए, आप यहाँ करें, उससे ज़्यादा हम सैलरी आपको देंगे, लेकिन वो वर्कर्स जो थे, श्रमिक थे, वो छोड़ के नहीं जाते थे। तो मैंने एक से पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो, आपको वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, और आपको काम भी मिले, बोला हमें केवल सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन सैलरी के साथ जो हमें प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो यहाँ पे मिलता है, और जो अपनापन चाहिए वो हमें यहाँ मिलता है। ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे हम केवल सैलरी देते हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ हमारे साथ व्यवहार जो करते हैं वो ठीक नहीं होता है।
0: जी
1: कहीं कर्मचारियों के साथ में या कहीं ऐसे अधिकारी होते हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है,
0: जी
1: और यहाँ जो उनको इज्जत मिलती है, जो अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम इस परिवार का एक हिस्सा है, भले हम
0: जी
1: छोटे हैं लेकिन हमें ये फील होता है कि ये हमारा परिवार है, तो हम अपनी जो सेवाएं, अपना जो कार्य है, हम दिल से करते हैं। तो छोटा छोटा जो हम दया की भावना दिखाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, और अच्छी भावना के साथ वो सारे कार्य सुचारू रूप से
1: सुचारू रूप
0: करते
1: से।
0: हैं। जी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आपके सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों अपनी बात को सही मान रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे आपने कहा लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ब्रदरहुड की भावना के साथ बीच में जाना हो तो क्या करेंगे हम?
1: थोड़े समय के बाद उनको अकेला छोड़ना चाहिए, और बाद में फिर दोनों से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग रह करके बात करें, प्रॉब्लम कहाँ है, दोनों का मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। जब दोनों को अलग अलग बिठा के हम सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर हम अपनी बात रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वो लोग कई बातों पर फिर कन्विंस हो जाते हैं,
0: जी
1: क्योंकि
0: जैसे
1: उन्होंने थर्ड पर्सन से बातें सुनी होती है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, सच्चाई कुछ और होती है। जब तीसरा व्यक्ति जाकर के दोनों की बातें सुनता है और फिर उनको कम्युनिकेट करता है कि आप जो समझ रहे हैं या सुन रहे हैं वो गलत है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा आपके बारे में, तब वो उसको रिलाइज होता है कि मैं अभी तक फालतू में उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहा था, उसने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं कहा, तो फिर आदमी मोल्ड हो जाता है।
0: जी ओके, तो फिर आप अपने ब्रदरहुड की भावना के साथ दोनों की बात को अलग अलग सुन के फिर आपको निर्णय लेना है। जैसे आपने कहा कि हम एक एनर्जी है, हम आत्मा है, और दादी जी भी समझती थी कि
1: जी
0: आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है, जैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी जो भातृत्व भावना है इसे नेचुरली मजबूत कर लेती है। तो चलते फिरते काम करते हुए तो कैसे वो भाव रखे फिर?
1: सिंपली सा चीज है कि जैसे ये कॉन्शियस है हमारे अंदर, जो हमें फील हो रहा है कि हम आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो इसको ही हमें जागृत रखना है। बाकी तो ये जो चीज़ें हम जब शरीर छोड़ते हैं तो सब बदल जाता है। जैसे सिंपली आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें सिम पड़ा हुआ है।
0: जी
1: आप सिम निकाल दो, मोबाइल डेड हो जाए, कोई काम का नहीं है, है ना। तो हमारा शरीर भी लाइक एक मोबाइल है, मोबाइल में सिम पड़ा है, सिम मतलब आत्मा है, तो आत्मा में जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसी को सिम कहते हैं, है ना। एस मतलब संस्कार, आई मतलब इंटेलेक्ट, और एम मतलब माइंड, वो सिम हो गया। तो जब हमारा शरीर धीरे धीरे जब पुराना होता है, हमारी एज बढ़ती है 40 साल 50 साल, तो हम इस शरीर से भी दुखी और परेशान होने लगते हैं। जैसे हमारा मोबाइल खराब होता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता भी खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, भाई नया मोबाइल दे दो। अब नया मोबाइल ले लेते हैं और हम इसमें से पुराने मोबाइल से सिम निकाल के नए में डाल देते हैं और अच्छे से वर्क करता है। अब हमारा ये शरीर जब धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये मोबाइल अब खराब हो गया, मैं इससे काम नहीं कर सकता, मुझे चेंज करो, क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, ये भगवान के पास है। तो भगवान क्या करता है, इस मोबाइल में से सिम निकाल लेता है, यानी आत्मा निकाल लेता है और नए मोबाइल में वो डाल देता है। नया मोबाइल मतलब बच्चे के अंदर डाल देता है,
0: जी
1: ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो किसी बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है ना।
0: जी
1: जैसे कई बार सिम में कॉन्टेक्ट नंबर चले जाते हैं, तो जैसे दूसरे में डालें तो भी वो डिस्प्ले होते हैं,
0: राइट।
1: ऐसे वो बच्चे को पुरानी बातें याद रह जाती है, जबकि उसका शरीर हम जला देते हैं या दफना देते हैं, तो याददाश्त कौन लेके आता है, आत्मा लेके आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी, वो पावरफुल है। साइंस में कहा जाता है कि जो जितना होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है, जितना छोटा होता है। तो जब हम परमाणु की बात करते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन कितने शक्तिशाली होते हैं। तो ये आत्मा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से करोड़ों गुना छोटी चीज है।
0: जी
1: तो ये जो शरीर में भ्रकुटी के बीच में विद्यमान है, ये कितनी पावरफुल होगी। तो जब हम बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है, हम रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, तो हमारे अंदर से अपने आप ही शांति के वाइब्रेशन निकलने लगते हैं। हमें कोई करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जैसे हम उसमें स्थित होते हैं, अपने आप डिटेच हो जाते हैं और हमारा रिलैक्सेशन अपने आप ही शुरू होने लग जाता है।
0: ओके, तो ये बीच बीच में हमें रियलाइज करना जी, जी. है कि हम आत्मा है, तभी हम अपने रिश्तों को और भातृत्व भाव को भी नेचुरली मजबूत कर सकते हैं. जब हम व्यक्ति के रोल या पोजीशन के बजाय उसके इनर आइडेंटिटी को देखते हैं, जैसे आपने कहा, तभी हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है वो सामने वाले का.

0: बिल्कुल, यहाँ पे लाखों की संख्या में अपने भाई बहन जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उनका गुस्सा शांत होने लग जाता है, उनकी बुरी आदतें छूटने लग जाती हैं, और साथ ही साथ ये जब उनको रियलाइज होता है कि ना केवल मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, जब हमें स्मृति आती है कि हम ईश्वर की संतान है। अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि हम कहते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ, हम पढ़ते राम की रामायण है, लेकिन अवगुण किसके धारण करते हैं? रावण के, है ना। कभी हमने भगवान को नहीं देखा हुआ कि आज सीता जी को रावण चुरा के ले गया, तो वो टेंशन में हो तो भाई एक बोतल पी ले या सिगरेट पी ले या कुछ ऐसा कर ले, कोई व्यसनों का सहारा लिया हो, भले उनके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आई हो, हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है व्यसनों का सहारा लेते हैं
1: जी।
0: तो हम कहते हैं ईश्वर की संतान है, तो हमारे अंदर ईश्वर के गुण आने चाहिए
1: जी।
0: तो जैसे हम परमात्मा के बनते हैं तो हमें ये स्मृति आती है कि हम देवी कुल की आत्मा, भगवान हमें ऊंचा उठाने के लिए आया, तो अपने आप ही वो बुरी आदतें हमारी छूटने लगती है और अच्छे संस्कार हमारे अंदर वो डेवलप होने लग जाते हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। ये मेडिटेशन का कमाल है।
1: मेडिटेशन का कमाल है, तो इसे हम रोज थोड़ा थोड़ा करें। तो क्या जो ब्रदरहुड की भावना है ये शुरुआत खुद को बदलने के लिए है, दूसरों को नहीं?
0: नहीं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं ठीक हो जाए, लेकिन हम पूरा जीवन भर यही ट्राई करते रहे ये बदले ये बदले। उसके लिए हम बहुत सारे उपाय लगते हैं, किसी को मारने पीटने के लिए भेज देते हैं या किसी आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम ठीक करने के लिए पता नहीं हम क्या क्या यत्न करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बदलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे स्वभाव संस्कार भी के कारण भी सामने वाला दुखी होता है, वो परेशान रहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, अगर कहता भी है तो हम रियलाइज नहीं करते
1: जी
0: कि मेरे अंदर ये कमियां हैं ये कमजोरी है। लेकिन जब हम अपने को पहचानते हैं और हमें महसूस होता है, क्योंकि वो फिल्टर होता है ना, एंटीवायरस जब डालते हैं तो स्कैन करता है कि मेरे अंदर कौन कौन से वायरस है
1: जी,
0: जो मेरी अंदर की फाइलों को करप्ट कर रहा है, तो जब मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं लोगों के सामने बहुत चुगली करता हूँ, लोगों के मेरे अंदर कोई बात पचती नहीं, मैं इधर की उधर बहुत करता हूँ, मैं मुझे बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत अग्रेसिव नेचर का हूँ, तो इसके कारण ना ही मेरा बिजनेस चल पा रहा है, ना ही मैं फैमिली में अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, ना ही मैं वाइफ के साथ ठीक से बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि अग्रेसिव नेचर होने के कारण लोग मेरे से दूरियां बनाने लग गए और हम ये सोचते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं बैठते हो। तो जब हमें रियलाइज होता है कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ कमियां है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उनपे हम जब काम करने लगते हैं तो जो मेरे से दूर गए लोग वो धीरे धीरे अपने आप ही नजदीक आने लग जाते हैं
1: जी। ओके, बिल्कुल। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। भातृत्व भाव जो है, ब्रदरहुड जो है, उसकी एक पहचान,
0: उसकी एक ही पहचान है कि सबसे पहले अपना ईगो को साइड में रखें, कुछ भी हो जाए मेरे अहंकार को मुझे आगे नहीं आने देना, क्योंकि अहंकार के कारण ही बहुत सारी ज्यादातर बातें बिगड़ती है
1: जी।
0: जैसे मैं सिंपल सी बात बता दूं, एक जगह मैं एक प्रोग्राम के लिए जाने वाला था, तो वहां देखा कि वो छोटी सिटी थी पर रोड बहुत छोटे थे, सकड़े रोड थे, उसमें इधर से एक गाड़ी जा सकती थी और एक ही गाड़ी आ सकती, दोनों क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैंने देखा इस गाड़ी से एक व्यक्ति गया, सामने से भी एक गाड़ी आ गई, अब वो दोनों आपस में पीछे लेने चाहते, ईगो बढ़ गया
1: जी।
0: मैं क्यों पीछे लूं, वो भी सामने वाला सोच मैं क्यों पीछे लूं, उसके पीछे और भी गाड़ियां लग गई और बैठे बैठे हॉर्न मारने लगे, कोई पीछे लेना नहीं चाहता। तो इसमें क्या देखा, इस गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था उसने अखबार निकाला ड्रॉर से और अखबार टांग पे टांग रख के पढ़ने लगा, सामने वाला गाड़ी में से ड्राइवर निकला और उसने आके बोला इसको कि जब तुम अखबार पढ़ लो तो मुझे देना ताकि मुझे भी पढ़ना है। तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो, 1 घंटा, कोई पीछे लेना नहीं चाहता। किसी ने पुलिस वाले को फोन कर दिया
1: जी।
0: पुलिस वाला आया और उसको 2-4 तो उसने गालियां दी, धमकाया उसको, अपमानित भी हुआ, आखिर पीछे तो लेना ही पड़ा
1: जी।
0: तो वो ईगो ही था, ईगो के कारण हम वहां बैठे हुए। तो ऐसे हर एक की लाइफ में ऐसा ईगो होता है, आखिर ईगो हमें छोड़ना ही पड़ता, चाहे सिचुएशन छुड़ाती है या कोई कानून छुड़ाता है, किसी ना किसी कोई ना कोई व्यक्ति आके हमें आके डरा के धमका के हमें झुकाता जरूर है, लेकिन वो प्रेशर में फिर हमें झुकना पड़ता है। तो क्यों ना हम कोई आके हमें झुकाए, इससे अच्छा हम पहले से ही झुक जाए, पहले से हम ईगो साइड में रख करके हम जाए तो हमारा समय बच जाए, इज्जत भी बच जाए, धन भी बच जाए
1: जी।
0: तो सबसे मेन आज के टाइम पे हमने देखा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ईगो को हमें साइड में रख करके चलेंगे तो भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा,
1: भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो वही भाईचारे को कमजोर करने वाली एक आदत ईगो ही है,
0: ईगो ही है
1: जी। भाईचारे को बढ़ाने वाला एक छोटा व्यवहार क्या है, क्या एक कदम हम उठा सकते हैं?
0: हमें एक दूसरे को सम्मान देना है, उनको सहयोग देना है, उसके बुरे वक्त में हमें काम आना है। जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई ऐसा चैलेंजेज आ गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहाँ जाके हम केवल ना, हमारे पास धन भी नहीं है, लेकिन केवल उसके साथ में खड़े होना, उसके पीठ पे हाथ फेरना, उसको थपथपाना कि कोई नहीं मैं बैठा हूँ आपके साथ में, मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं करूँगा, तो वो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और सिचुएशन अपना आप पार कर लेता है। सिर्फ उसको हिम्मत देने वाला कोई चाहिए
1: जी,
0: साहस देने वाला, शक्ति देने वाला,
1: देने वाला, हिम्मत देने वाला। हाँ। जी, तो कॉन्फ्लिक्ट के समय याद रखने वाला एक विचार जब परिस्थिति सामने हो,
0: उस टाइम ये कि ये भी चला जाएगा,
1: ये भी चला जाएगा जी।
0: जैसे बाबा कहते हैं, हमारे दादियां सिखाते हैं कि नथिंग न्यू, थोड़े समय से की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। हमारे जीवन में समस्याएं आई, आपने देखा होगा, आपके सामने भी कोई एक समस्या रही होगी साल भर पहले, और आज उसके बारे में सोचेंगे आपकी, अरे इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी, फालतू में इतना बारे में सोच सोच के मैं टेंशन कर लिया। तो जब समय गुजरता है तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन वो सामने समस्या देख के हम उसको सोच सोच के बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो टाइम आने पर वो गुजर जाती है।
1: आज ये समय भी चला जाता है।
0: उस टाइम जब कोरोना आया तो लोग घबराए, अरे कोरोना हो गया अब क्या करें, अब आज के डेट में सोचेंगे तो अरे वो तो छोटी सी बीमारी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये की चीज रहे कि ये समय भी धीरे धीरे गुजर जाएगा, और उस समय को काटने के लिए अगर हम ये मन में रखें मेरे साथ भगवान है, परमात्मा मेरे साथ में, तो मेरा एक कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी पिता मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी एक पावर है, विल पावर। वर्तमान समय क्या होगा कि हमारी विल पावर कमजोर हो गई, इसलिए हम सामना नहीं कर पाते। और भगवान से हम हमेशा गीत गाते आए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना था। अभी वर्तमान समय सबका मन का विश्वास कमजोर हो गया, तो जब परमात्मा से हम जब कनेक्ट होते हैं, भगवान वो हमें शक्ति देता है। जब हमारी मन का विश्वास बढ़ जाता है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको हम सहज रूप से सामना कर लेते हैं और सहज रूप से पार कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सोसाइटी में भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल कदम,
0: सहयोग की भावना,
1: सहयोग की भावना। और अंत में अगर हर व्यक्ति ये मेरा अपना है की भावना से जीने लगे तो समाज कैसा बन जाएगा,
0: जिसके लिए हमने सबने परिकल्पना की, दादियों ने की, हमारे बाबा ने की, शिव बाबा ने भी की, कि पूरा समाज ही स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आज वर्तमान में हम देखते हैं, आश्रम किसे कहा जाता है, आश्रम उसे कहा जाता है जहाँ सुख मिलता हो, शांति मिलता हो, लेकिन आज गृहस्थ में ये चीजें तो नहीं मिलती। हर घर में लड़ाई है, हर घर में महाभारत, हर घर में रामायण है। तो उस गृहस्थ को आश्रम की बनाने, आश्रम की तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बनने के लिए हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे जाके पहाड़ों में गुफाओं में जाने की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो दादी जी ने हमें सिखाया, बाबा ने हमें सिखाया कि आप घर में रहते हुए भी सन्यासी बनो, तो सन्यास कैसे बनना है कि ये जो बुराइयां हमारे अंदर है, जो बुरे संस्कार है, उनका हमें सन्यास करना है। ना कि चीजों का, ना कि वस्तुओं का। तो गृहस्थ में रहते हुए भी इन बुराइयों का हम सन्यास करेंगे तो गृहस्थ भी वापस फिर आश्रम की तरह बन जाएगा, हम खुद सन्यासी हो जाएंगे। तो परमात्मा का यही संदेश कि जब ऐसा हम अच्छाइयों को धारण करेंगे, ये घर जो है, ये परिवार जो है, ये दुनिया जो है, अपना आप ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग इसी धरती को कहा जाता है। आपने देखा जब गर्मी का मौसम था तो पतझड़ थी, पूरा सुनसान था, पूरा चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी और पूरा रेगिस्तान था, लेकिन जैसे ही बारिश आया अपना आप ही हरियाली हो गई है। तो ये प्रकृति जो है समय के अनुसार अपना आप रूप परिवर्तन कर लेती है। तो जब मई जून का मौसम होता है तो गर्मी होती है, और जब ये जुलाई अगस्त का तो हरियाली होगी, टाइम गुजरता है अपना। तो इसी धरती पे पहले स्वर्ग था और इसी धरती पे फिर स्वर्ग आने वाला है। तो नर कोई, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, इसी धरती पे। जब हमारे शब्द बदलते, हमारे विचार बदलते, हमारा व्यवहार बदलता है, तो ये दुनिया, ये समाज अपने आप ही स्वर्ग जैसा हो जाता है।
1: ओके, तो जरूर स्वर्ग यहीं पर है। तो हमें अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को बदलना है, परमात्मा को याद करते हुए अपने को आत्मा समझते हुए।
0: हाँ
1: जी, तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब वक्त हो गया है यहीं से विदा लेने का।
0: मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का जो अनुभव है, जो यही कहता है कि आप जो भी कारोबार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, या फैमिली में रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे कहते हैं कि दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो हमारा जो परिवार है ये हमारे साथ में 10-20 साल 50 साल 100 साल तक ही रहने वाला है, चाहे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, जो भी है परिवार के सदस्य है, लेकिन जब इस दुनिया में हम आए थे अकेले ही आए थे, और जब जाएंगे तो भी अकेले ही जाएंगे। लेकिन दुनिया में ये कहा जाता अकेले आए थे और साथ में कुछ जाना नहीं, लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया, दादियों ने ये सिखाया कि साथ में जरूर हमारे साथ जाता है, वो जाता है हमारी दुआएं, वो जाते हैं हमारे अच्छे संस्कार। जब हम अच्छे संस्कार अच्छे पुण्य कर्म करके जाते हैं तो हमारे साथ वो जरूर जाते हैं। बाकी जो धन संपत्ति यहाँ के यहीं रह जाती है, तो हम यही कहना चाहेंगे आप परिवार में रहते हुए समाज में रहते हुए आप मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करें, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं

0: मेडिटेशन के बल पे आगे बढ़ता चला जाता है।
1: ओके जी, तो भाईचारे को अगर आगे बढ़ाना है तो मेडिटेशन के जरिए आप भाईचारे के भावना को अपने अंदर ला सकते हैं, उसे पुश कर सकते हैं, आगे भी उसे शेयर कर सकते हैं।
0: मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि वैल्यूज कोई डिग्री नहीं है कि आपने एक साल का कोर्स कर लिया तो आपको ये डिग्री मिल गई। हमारे अंदर ये गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत हमेशा ही भरे रहते हैं। ये वायरस एक्टिव ना हो उसके लिए जैसे हमने एंटीवायरस लिया है, अभी आपने देखा कोरोना के लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। तो वैक्सीन रोज रोज हमें लेनी है ताकि वो जो वायरस है उनका असर हमारे ऊपर कम हो।
1: कम हो, तो जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, और इस बात पे यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका
1: लिए।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और मुझे बोलने का चांस दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बीके राज सिंह भाई जी, और दादी जी की स्मृति में भी उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और साथ ही साथ दादी जी की जो मूल बात, मूल संस्कार जो भ्रातृत्व भावना भाईचारे की, तो इस विषय को आपने स्पष्ट किया, बहुत सहज तरीके से आपने हमें समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: धन्यवाद आपको भी
1: जी, तो यहीं पर रुकना चाहेंगे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चलो भैया जल्दी से आगे हाथ करो,
3: ये ले तेरा आगे।
4: भैया मिठाई तो खा लो।
5: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है।
6: रक्षा बंधन पर्व है,
7: भाई बहन के प्यार का।
8: पवित्र धागों का त्योहार है राखी,
9: बहन की रक्षा के वादे का।
10: खुशियों के त्योहार का,
11: रिश्तों की मिठास का,
12: परस्पर विश्वास का।
13: शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी।
14: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: Meditation is the soul's flight with the feathers of a divine intellect. Let's fly now towards our supreme abode beyond the sun, moon,

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

शांति। आज है 29 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ के अंदर कई प्रकार के बच्चे रहते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कई बार कई बच्चे पर चिंतन पर दर्शन के शिकार होते हैं, एक दूसरे के मन को खराब करते हैं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं और जाकर के दूसरों को भी सुनाते हैं। उसमें कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। तभी बाबा आज के महावाक्य में कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत बहुत सहनशील बनना है। निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सब में समान रहना है और कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये हमें भीतर से हिला देते हैं, हलचल में ले आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे फालतू पर चिंतन में नहीं जाना है, वाहियात बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। सदा लक्ष्य रहे कि हमें चढ़ती कला में जाना है, आगे बढ़ना है, न कि किसी की बातों में आना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रिय से करने का नहीं रहता, अर्थात जैसे कोई न कोई रीत रसम रिवाज कर्म कांड आदि करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। बाबा कहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। शांति में बैठ परमात्मा को याद करना है। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्म कांड है। यहां तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं।
घर में रहते सब कुछ करते सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते जब देवता बनते हैं तो यहां ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे, यहां साधारण रहना है। बाबा कहते हैं यहां इस दुनिया में साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा। बाबा की भविष्यवाणी भी है आगे समय कैसा आना है। तो बाबा कहे समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना, तो किसी को कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा सुनाया। बातों की बनावट में आकर कोई ने कुछ कहा, क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है। बताओ बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं कई बार बच्चे, और सुनी सुनाई बातों में जाकर के उनको उल्टा सुल्टा सुना देते और कहते हैं तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं इनको दे अभिमान है। बाहर का शो बहुत है, यह किसी ने सुनाया, जाकर के उसको बाबा के नाम से सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी, बाबा ने ऐसे कहा। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, ये दुनिया तो है ही ऐसी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। अगर बाबा के नाम से भी कोई कहे तो भी बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुननी है, अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। भगवान कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं बाबा, कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। परमात्मा
सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है, बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही है। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं ये कोई नई बात नहीं है, तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिट-खिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहां धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए, देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। बाबा कहे भोजन की शुद्धि हो, क्योंकि देवताएं भी कभी भी ये अशुद्ध तामसिक भोजन नहीं खाते हैं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्व गुण संपन्न सोले कला संपूर्ण यहां ही बनना है। यहां बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी, यहां बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आप ही लेनी है, ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना, स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूं, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं, भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है, उसमें साधु संत सब आ गए है तो सब आत्मा है ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही है, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है, सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, बाबा कहते कोई तो देखो भीख मांगते

रहते, कोई को सांप पांव पड़ते हैं। तो वैरायटी है ना सन्यासियों में। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे है ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। दिखाते हैं ऐसे शास्त्र में कि कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, कोई भारी सजा भी नहीं देनी, हल्की सजा। बेचारे अबोध अनजान है, समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना। फिर चित्रों की तो दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं। कितना बाबा निरहंकारी है। बाबा कहते हैं तुम बुद्धि से मुझे याद करो, चित्र आदि रखने की भी दरकार नहीं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं, नहीं तो कैसे आऊं, श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा। सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं, मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, और ये दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, न वह जा सकते हैं, न कोई कह सकते हैं न जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा ना सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है, वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशुक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहे तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला,
अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो, बाबा आकर यहां ब्रुकुटी में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहां है। आत्मा कहां से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है, उनका मुख्य स्थान ब्रुकुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी हूं, इसमें आकर बैठा हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा आकर तुम्हें जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है, दैवी धर्म वाले जो होंगे वह जट समझ जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। ये बात और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, फिर धीरे धीरे वो धर्म वृद्धि को पाते हैं। यहां तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते मैं गारंटी करता हूं। क्या गारंटी करते हैं बाबा? कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, वहां पतित एक भी नहीं होता। सतयुग में पतित एक भी होता नहीं, ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते हैं वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है ये निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं, बनवाए हैं फिर करेक्ट भी कराए हैं। विश्व रतन दादा हमेशा कहते थे कैसे बाबा को आकर के वो चित्र दिखाते थे, बाबा ये चित्र बनाया, फिर बाबा उसमें करेक्शन देते थे, फिर वो वापस उसको करेक्ट करके लाकर दिखाते थे। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे, समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी साक्षात्कार होने से, जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। लगातार 2-3 दिन से बाबा सीढ़ी के चित्र पर हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं। देरी से आने वाले को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था, अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे तो भागंती हो जाते थे तो कोई कहते हैं आगे आते थे तो अच्छा होता था, तो बाबा क्या कहते, अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है, पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस में लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते,
नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती है।

आप प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है, सहनशील बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। आज का स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। सत्यता भी पवित्रता का ही एक आयाम है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। अच्छा,